हर कृपा ते हुआ हर भगत, हर भगत जना कै मुहे डिठे, जगत तरिया सब लोड़ी है। श्लोक महला तीजा, सारस ना जल जाओ, जिन हर का स्वाओ ना पाया, नानक रसना शब्द रसाए, जिन हर हर मन वसाया। महला तीजा, सारस ना जल जाओ, जिन हर का नाम वसारिया, नानक गुरमुख रसना हर जपै, हर कै नाए प्यारिया। पौड़ी हर आपे ठाकुर सेवक भगत, हर आपे करे कराए, हर आपे वेखे विगसे आपे, जित पावे तित लाए, हर इक ना मार्ग पाए आपे, हर इक ना उजड़ पाए, हर सच्चा साहिब सचत पावस, कर वेखे चलत सुबाई।

फिर आपे जगत उपाया करते, दान सबना कौ दिया, आपे सेव बनायन गुरमुख, आपे अमृत पिया, आप निरंकार आकार है आपे।

0: दिन रह सदा गुण गाय, बिन कर्म किने ना पायु,
1: भौंक मोए बिल लाय।
0: गुर कै शब्द मन तन भिजै, आप वसै मन आय, नानक नदरी पाई, आपे लय मलाई पौड़ी, आपे वेद पुराण सब शास्त्र, आप कथै आप भिजै, आपे ही बह पूजे करता, आप परपंच करीजै, आप परविरत।

आप निर्विर्ति आपे अकाथक थीजै आपे पुन सब आप कराई आप लिप्त वर्तीजै आपे सुख दुख देवै करता आपे बख्श करीजै। श्लोक महला तीजा। सेका अंदर हो जोर छाड तू पहो कर झल गवाए गुर कै भय कीते निस्तरे भय विच निरभउ पाए मन कठोर शब्द भेद तू शांत वसै मन आए शांति विच कार कमावनी सा खसम पाए थाए नानक काम करो।

बाणी आपे खंडवर भंड करे आप समुंदे आप है सागर आपे ही विच रतन धरे आप लहाए करे जिस कृपा जिसनो गुरमुख करे हरे आपे भौजल आप है बोहिथा आपे खेवट आप तरे आपे करे कराए करता अवर ना दूजा तुझे सरे। सलोक महला तीजा सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए नाम पदार्थ पाइए अचिंत वसै मन आए जन्म मरण दुख कटिए हौ मैं ममता जाए उत्तम पदवी पाइए सच्चे रह समाए नानक पूर्व जिन को लिखिया तिन्ना सतगुर मिलिया आए महला तीजा नाम रत्ता सतगुरु है कल युग बोहित होए गुरमुख होए सो पार पवे जिन्ना अंदर सच्चा सोए नाम संभाले नाम संग्रह नामे ही पत होए नानक सतगुर पाया

खंडन आपे सब कट भोग वै स्वामी आपे ही सब अंजन आप विवेक आप सब बेता आपे गुरमुख भंजन जन नानक सलाहे ना रजै तुद करते तू हर सुखदा।

कर्म मास आहार गुरमुख पाईऐ नानका खादै जाहे विकार मर्दाना पहला काया लाहणे आप मद मजलस तृष्णा धात मनसा कटोरी कूड़ भरी पी लाए जमकाल इत मद पीतै नानका बहुते खटी है बेकार ज्ञान गुड़ सलाह मंडे पौ मास आहार नानक एहो भोजन सच है सच नाम आधार काया लाहन आप मद अमृत किसकी धार सत संगत स्यों मिलाप होए लिव कटोरी अमृत भरी पी पी कट है बेकार पौड़ी आपे सुर नर गण गंधर्वा आपे खट दर्शन की बाणी आपे सेव संकर महेशा आपे गुरमुख अकथ कहानी आपे जोगी आपे भोगी आपे सन्यासी फिरै बिबाणी आपे नाल गोसत आप अपदेसै आपे

जित हर प्रभ मेरा चेते आवै, हर स्यों प्रीत उपजै, माया मोह जलावै, गुर प्रसादी दुबदा मरै, मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार, नानक संध्या करै मनमुखी जियो ना टिकै, मर जम्मै होए खुआर महला तीजा, प्रियो प्रियो करती सब जग फिरी, मेरी प्यास ना जाए, नानक सतगुर मिले है मेरी प्यास गई, फिर पाया घर आए पौड़ी, आपे तंत परम तंत सब आपे, आपे ठाकुर दास भया, आपे दास अठ वर्ण उपायन, आप ब्रह्म आप राज लया, आपे मारे आपे छोड़े, आपे बख्शे करे दया, आप अपुल ना भुलै कब ही,

साहिब संभाले हो, साहिब सदा हजूर है, पर मैं के छौड़ कट के अंतर जोत तरे हो, हर का नाम अमृत है, दारू एहो लाए हो, सतगुर का भाणा चित रखो हो, संयम सच्चा ने हो, नानक एथे सुख है अंदर रख सी, अगै हर स्यों केल करे हो, पौड़ी आपे भार 18।

पावै, आपे सतगुर मेल सुख देवै, अपना सेवक आप हर पावै, अपनिया सेवका की आप पैज रखै, अपनिया भगता की पैरी पावै, धर्म राय है हर का किया, हर जन सेवक नेड़ ना आवै, जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा।

अगम अगोचर अत वड्डा अतुल ना तुलिया जाय, कीमत किनै ना पाइया कितै ना लया जाय। गुर कै शब्द भेदिया इन बिद वसिया मन आय, नानक आप अमेव है गुर किरपा ते रहिया समाय। आपे मिलिया मिल रहिया,

नानक गुरमुख पाई है जां कौ नदर करी पौड़ी आपे सब घट अंदरे आपे ही बाहर आपे गुप्त वर्तदा आपे ही जाहर जुग शक्ति गुबार कर वर्त्या सुन्ना हर उथै वेद प्राण ना सासता आपे हर नर हर

चूड़ा भन पलंग स्यो मुंडे सन बाही सन बाह एते वेश करेंदिए मुंडे सहो रातो अबराहा ना मनियार ना चूड़िया ना से बंगड़िया जो सह कंठ ना लगिया जलन से बाहड़िया सब सहिया सहो रावण गईया हों धादी कै दर जावा अम्माली हों खरी सुचजी तै सह एक ना पावा माठ गुंदाई पट्टिया भरिए मांग सदूरे अगे गई ना मनिया मरो वसूर वसूरे मैं रवंदी सब जग रुन्ना रुनने बणो पंखेरू एक ना रुन्ना मेरे तन का बिरहा जिन्हो पिरहो विछोड़ी सुपने आया पी गया मैं जल भरिया रोए आए ना सका तुझ कन प्यारे भेज ना सका कोई आओ

पड़ी गुर कै शब्द मलाए मेरी मेरी कर दे घट गए इना हाथ केहो ना आया सतगुर मिले है सच मिले सच नाम समाया आसा मनसा इहो शरीर है अंतर जोत जगाए नानक मनमुख बंद है गुरमुख मुक्त कराए वडहंस महला तीजा सुहागणी सदा मुख उजला गुर कै सहज सुभाए सदा फिर राव है अपना विचों आप गवाए मेरे मन तू हर हर नाम त्याए सतगुरु मोह को हर दिया बुझाए रहाओ दुहागनी खरिया बिल लांदियां तिन्ना महल ना पाए।

मिलाया, पूरा सतगुर हर नाम त्याया रहाय। ब्रह्म वेद बाणी परगासी, माया मोह पसारा, महादेव ज्ञानी वरतै घर अपने, तामस बहुत अहंकारा।

देहे शरीर सुख होवै शब्द हर नाय, नाम परमल हृदय रहे आसमाय। नानक मस्तक जिस वड भाग, गुर की बाणी सहज बैराग। वडहंस महला तीजा, पूरे गुर ते नाम पाया जाए।

ज्ञान आए, परमे भूला फिरे संसार, मर जन्मे जम करे खुआर, नानक से बड़ भागी जिन हर नाम ते आया, गुर प्रसादी।

जिन पेर रावया सा भली सुहागण से मैं गुण नाही हाँ क्या करी दोहागण नित

मैं निर्गुण बख्श नानक वेचारा। वडहंस महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मैं मन वड्डी आस हरे, क्यों कर हर दर्शन पावा। हौ जाए पुछा अपने सतगुर, गुर पुछ मन मुग्ध समझावा। भूला मन समझै गुर शब्दी, हर हर सदा त्याए। नानक जिस नदर करे मेरा प्यारा, तो हर चरणी चित लाए। आउ सब वेश करी पिर कारण, जे हर प्रभ साचे पावा।

खाले जिसनो नदर करे मेरा प्यारा सो हर हर सदा संभाले सो हर हर नाम सदा सदा संभाले जिस सतगुरु पूरा मेरा मिलया नानक हर जन हर इक्के होए हर जप हर सेती रलिया वडहंस महला पंजवां घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हत ऊंचा ताका दरबारा अंत नाही किश पारा वारा कोट कोट कोट लख तावै एक तिल ताका महल ना पावे सहावी कौन सो वेला जित प्रभ मेला रहाव लाख भगत जाको अराध है लाख तपीसर तप ही साध है लाख

पह आया दुख भ्रम हमारा सगल मताया महल बुलाया प्रभ अमृत पूंचा कहो नानक प्रभ मेरा ऊंचा वडांस महला पंजवां धन सो वेला जित दर्शन करना।

सो जानी। सच हुक्म तुम्हारा तख्त नवासी, आए ना जावे मेरा प्रभ अविनाशी। तुम मेहरवान दास हम दीना, नानक साहिब भरपुर लीना।

प्रभु दाते जिसह जनाब हो तिनह तुम जाते सदा सदा जाई बलिहारी इत उत देखो ओट तुम्हारी मोहे निर्गुण गुण किशु ना जाता नानक साधु देख मन राता वडहंस महला पंजवा अंतर जामी सो प्रभ पूरा दान दे साधु की तूरा कर कृपा प्रभ दीन दयाला तेरी ओट पूर्ण गोपाला रहाओ जल कल महियल रहया पर पूरे निकट वसै नाही प्रभ दूरे जिसनो नदर करे सो त्याए आठ पैर हर के गुण गाए जी जंत सगले प्रत पारे सरन परे हो नानक हर द्वारे वडहंस महला पंजवा तू वड दाता अंतर जामी सब मह रविया पूर्ण प्रभ स्वामी मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा हौ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाव तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे मन निर्मल होए संता तूरे चरण कमल हृदय उरतारे

संभाली। जे सौ भोजन मैं नीरे मेरा मन तन प्रेम परम का, बिन दर्शन क्यों मन धीरे। सुन सज्जन मेरे प्रीतम भाई,

तिस बिन रह ना सका। ज्यों चातरक जल को बिल लाता, हौ क्या गुण तेरे सार संभाली। मैं निर्गुण को रख लेता, हौ पई उडीनी कंत को अमाली। सो पेर कद नैनी देखा, सब रस भोगण विसरे, बिन पिर कितै ना लेखा। इहो कापड़ तन ना सखावई, कर ना सको हौ वेसा। जिन्नी सखी लाल रावया प्यारा, तिन आगै हम आदेसा। मैं सब शिंगार बनाया अमाली, बिन पिर काम ना आए। जां सह बात ना पुछिया अमाली, ता बिरथा जोबन सब जाए। तन तन ते सुहागणी अमाली, जिन सहो रहया समाए। हौ वारिया तिन सुहागणी अमाली, तिनके धुआं सद पाए। जिचर दूजा भरम सा अमाली।

वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, मंदा किसे ना आख झगड़ा पावना, नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आप वन्यावना।

वारी खसम कढाए किरत कमावना, सब उपायन आप आपे नदर करे, कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे, सब कोई मीठा मांग देखे, खसम भावे सो करे, किश पुन दान अनेक करनी, नाम तुल ना समसरे, नानका जिन नाम मिलिया, कर्म होवा तुर कदे, सब उपायन आप आपे नदर करे, बड़हंस महला पहला, करहो दया तेरा नाम बखाना, सब उपाय आप आपे सर्ब समाना, सर्बे समाना आप तू है, उपाय तमे लाइया, एक तुझ ही किए राजे, किकना भिख पवाइया, लोभ मोह तुझ किया मीठा, एत भरम भलाना, सदा दया करो अपनी, ताम नाम वखाना, नाम तेरा है साचा, सदा मैं मन पाना, दुख गया सुख आए समान, गावन सुर नर सुगड़ सुजान, सुर नर सुगड़ सुजान गावह, जो तेरे मन भावहि, माया मोहे चेतह नाही, अहला जन्म गवावहि, एक मूड मुग्ध न

कब हो ना जावे, राजू ता तेरा सदा निहचल, एहो कब हो ना जावे, चाकर ता तेरा सोए हो वै, जोए सहज समावे, दुश्मन ता दुख ना लगे मूले, पाप नेड़ ना आवे, हों बलिहारी सदा हुआ, एक तेरा नावे, जुगा जुगंतर भगत तुम्हारे।

सब वापार भला जे सहजे की जय राम। अन दिन नाम वखाणी है लाहा हर रस पी जय राम। लाहा हर रस लीजै हर रा बीजै।

नानक हर की भगत नराली, गुरमुख विरलै कीजै, गुरमुख खेती हर अंतर बीजिए, हर लीजै शरीर जमाए राम, अपने घर अंदर रस पुंच तू, लाहा लै परथाए राम, लाहा परथाए हर मन वसाए, धन खेती वापारा, हर नाम ध्याए मन वसाए।

नानक नाम बीज मन अंदर सच्चै शब्द सुपहाय हर व्यापार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वडभागो राम गुरमति मन निज कर वसिया सच्चै शब्द बैरागो राम मुख मस्तक भागो।

अपारा खोटे खरे सब परखियन तित सच्चे कै दरबारा राम खोटे दरगहा सुटियन उभे करन पुकारा राम उभे करन पुकारा मुगद गुवारा मन मुख जन्म गवाया विख्या माया जिन जगत पुलाया साचा नाम ना पाया मन मुख संता नाल वैर कर

किस आखी है और करना किछु ना जाई राम जित भावे तित लाए सी ज्यों तिस दी वडियाई राम ज्यों तिस दी वडियाई आप कराई वरियाम ना फुसती कोई जगजीवन दाता कर्म विधाता आपे बक्के सोई गुर प्रसादी आप गवाई है नानक नाम पत पाई आप करे किसे आखी है और करना किछु ना जाई।

रसना हर रस पीजै अंतर पीजै साच शब्द बीचारी अंतर खूटा अमृत भरिया शब्दे काड पीयै पनिहारी जिस नदर करे सोई सच लागै रसना राम रबीजै नानक नाम रते से निर्मल होर हऊं मैं मैल परीजै पंडित ज्योत की सब पढ़ पढ़ कूक दे किस पह करह पुकारा राम माया मोह अंतर मल लागै माया के वापारा राम माया के वापारा जगत प्यारा आवन जान दुख पाई विख का कीड़ा विख स्यों लागा बिष्टा माही समाई जो तुर लिखिया सोए कमावे कोए ना मेटन हारा नानक नाम रते तिन सदा सुख पाया होर मूरख कूक मोए गावारा माया मोहे मन रंगिया मोहे सुध न काई राम गुरमुख इहो मन रंगी है दूजा रंग जाई राम दूजा रंग जाई साच समाई सच भरे भंडारा गुरमुख होवै सोई बूजै सच सवारण हारा आपे मेले सो हर मिलै होर कहना किसू ना जाई नानक बिन नावै भरम भलाया।

सच्चा मन पाया सच वसाया, शब्द रत्ते अंत नबेरा, नानक नाम रत्ते से सच समाणे, बहुर ना पवजल फेरा, माया मोह सब बरल है,

सेवा लागे से वट भागे जुग जुग एको जाता जात सत संयम कर्म कमावे बिन गुर गत नहीं पाई नानक तिसनो शब्द बुझाए जो जाए पवे हर सरनाई जो हर मत दे सा उपजे होर मत ना काई राम अंतर बाहर एक तू आपे देहे बुझाई राम आपे देहे बुझाई अवर ना पहाई गुरमुख हर रस चाखिया दर साचै सदा है साचा साचै शब्द सुभाखिया कर्म है निज कर पाया सतगुर देह वडाई नानक जो नाम रते से महल पाए मत प्रवान सच साई वडहंस महला चौथा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरा मन सतगुर प्रीत लगाई राम हर

आए जप हर हर नाम भिक्षे राम जप हर हर नाम कमल पर गास्ते हर नाम नमंग निद पाई हूं मैं रोग गया दुख लाथा हर सहज समाद लगाई हर नाम वडाई सतगुर ते पाई सुख सतगुर देव मन परसते हों जीवा सतगुर देख सरसे कोई आण मलावे मेरा सतगुर पूरा राम हों मन तन देवा तिस काट शरीर राम हों मन तन काट काट तिस दे जो सतगुर बचन सुनाए मेरा मन बैराग भया बैरागी मिल गुर दर्शन सुख पाए हर हर कृपा करो सुख दाते देहो सतगुर चरण हम धूरा कोई आण मलावे।

देव, हर पुरख निरंजन सोई राम, हर हर नाम जिन्नी अराध्या, तिनका दुख परम पहो पागा, सेवक भाई मिले वडभागी, जिन गुर चरनी मन लागा, कहो नानक हरे आप मलाए, मिल सतगुर पुरख सुख होई, गुर जेवड दाता, मैं अवर ना कोई, वडहंस महला चौथा, हौ गुर बिन खरी निमाणी राम, जग जीवन दाता, गुर मेल समाणी राम, सतगुर मेल हर नाम समाणी, जप हर हर नाम ते आया, जिस कारण हौ ढूंढ टुनेंदी, सो सज्जन हर घर पाया, एक दृष्ट हर एको जाता, हर आत्म राम पछाणी, हौ गुर बिन खरी निमाणी, जिन्ना सतगुर जिन सतगुर पाया,

तिनके जिन सतगुर पुरख प्रभ के आया तू वरदाता अंतर जामी मेरी श्रद्धा पूर हर राया गुरसिख मेल मेरी श्रद्धा पूरी अन दिन राम गुण गाए जिन सतगुर पाया तिन हर प्रभ मेल मलाए हों वारी गुरसिख मीत प्यारे राम हर नाम सुनाए मेरा प्रीतम नाम अधारे राम हर हर नाम मेरा प्राण सिखाए किस बिन घड़ी निमख नहीं जीवा हर हर कृपा करे सुख दाता गुरमुख अमृत पीवा हरे आपे श्रद्धा लाए मलाए हरे आपे आप सवारे हों वारी गुरसिख मीत प्यारे हरे आपे पुरख निरंजन सोई राम हरे आपे मेले करे सो होई राम जो हर प्रभ भावे सोई होवे अवर न करना जाई बहुत सियाणप लया न जाई कर थाके सब चतुराई गुर प्रसाद जन नानक देखिया मैं हर बिन अवर ना कोई हरे आपे पुरख निरंजन सोई बड़ा हंस महला चौथा हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया राम तिमर अज्ञान गवाया गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया अज्ञान अंधेर बनासे सतगुर सेव परम पद पाया हर जपया सास ग्रासे जिनको हर प्रभ कृपा धारी ते सतगुर सेवा लाया हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया मेरा सतगुर प्यारा मैं गुर बिन रहन ना जाई राम हर नाम देवे मेरा अंत सखाई राम हर हर नाम मेरा अंत सखाई गुर सतगुर नाम दृढ़ाया जिथे पुस्त कलत्र कोई बेली नाही तिथे हर हर नाम छड़ाया तन तन सतगुर पुरख निरंजन जित मिल हर नाम त्याई मेरा सतगुर प्यारा मैं गुर बिन रहन ना जाई जिन्नी दर्शन सतगुर पुरख ना पाया राम तिन निफल जन्म सब बिरथा गवाया राम निफल जन्म तिन बिरथा गवाया ते साकत मोए मर चूरे कर हुंदै रतन पदार्थ भूखे भागहीन हर दूरे हर हर तिनका दर्शना करियो हो जिन्नी हर हर नाम ना त्याया जिन्नी दर्शन सतगुर पुरख ना पाया हम चातरक दीन हर पास बेनंती राम गुर मेल मेरा प्यारा हम सतगुर करह भगती राम हर हर सतगुर करह भगती जा हर प्रभ कृपा तारे मैं गुर बिन अवर ना कोई बेली गुर सतगुर प्राण हमारे कहो नानक गुर नाम दृढ़ाया हर हर नाम हर सती हम चातरक दीन हर पास बेनंती वडहंस महला चौथा हर कृपा कर सतगुर मेल सुखदाता राम हम पूछे हैं सतगुर पास हर बाता राम सतगुर पास हर बात पूछे हैं जिन नाम पदार्थ पाया पाए लगे हैं नित करहें बेनंती गुर सतगुर पंथ बताया सोई भगत दुख सुख समत कर जाने हर हर नाम हर राता हर कृपा कर
गुर सतगुर मेल सुख दाता, सुन गुरमुख सुन गुरमुख नाम, सब बिन से हूं मैं पापा राम। जप हर हर जप हर हर नाम, लथे अड़े जग तापा राम। हर हर नाम जिन्नी आराध्या, तिनके दुख पाप नवारे। सतगुर ज्ञान खड़ग हाथ दीना, जम कंकर मार बिदारे। हर प्रभ कृपा धारी सुख दाते, दुख लाथे पाप संतापा। सुन गुरमुख नाम, सब बिन से हूं मैं पापा। जप हर हर जप हर हर नाम, मेरा मन पाया राम। मुख गुरमुख जप, सब रोग गवाया राम। गुरमुख जप सब रोग गवाया, अरोगत भये शरीरा। अनदिन सहज समाध हर लागी, हर जपया गहर गंभीरा। जात अजात नाम जिन त्याया, तिन परम पदार्थ पाया। जप हर हर नाम, मेरा मन पाया। हर तारु कृपा, कर कृपा लेहु उबारे राम। हम पापी निर्गुण दीन तुम्हारे राम। हम पापी निर्गुण दीन तुम्हारे, हर दयाल शरणाया। तू दुख भंजन सर्व सुख दाता, हम पाथर तरे तराया। सतगुर भेट राम रस पाया, जन नानक नाम उधारे। हर तारुहु कृपा, कर कृपा लेहु उबारे राम। वडहंस महला चौथा घोड़िया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। देहे तेजन जी राम उपाइया राम, धन मानस जन्म पुन पाइया राम। मानस जन्म वड पुन्ने पाया, देहे सो कंचन चंगड़िया। गुरमुख रंग चलूला पावे, हर हर हर नव रंगड़िया। एहे देहे सो बांकी जित हर जापी, हर हर नाम सुहाविया। वडभागी पाई नाम सुखाई, जन नानक राम उपाइया। देह पावो जीन बुझ चंगा राम, चढ़ लंगा जी बिखम भोए अंगा राम। बिखम भोए अंगा अंत तरंगा, गुरमुख पार लंघाए। हर बोहत चढ़ वडभागी लंघै, गुर खेवट शब्द तराए। अन दिन हर रंग हर गुण गावे, हर रंगी हर रंगा। जन नानक निर्वाण पद पाया, हर उत्तम हर पद चंगा। कड़ियाल मुखे गुर ज्ञान दृढ़ाया राम, तन प्रेम हर चाबक लाया राम। तन प्रेम हर हर लाए चाबक, मन जिनै गुरमुख जीतिया। अकड़ो कढ़ावै शब्द पावै, अपियो हर रस पीतिया।

जाड़ हर हर नाम रतन नाराम, जाड़ नाम रतन गोविंद पाया, हर मिले हर गुण सुख घने, गुर शब्द पाया हर नाम त्याया, बड़भागी हर रंग हर बाणी, हर मिले स्वामी अंतर जामी, हर नव तन हर नव रंगिया, नानक बखाण नाम जान, हर नाम हर प्रभ मंगिया, कड़ियाल मुखे गुर अंकस पाया राम, मन मैगल गुर शब्द वस आया राम, मन वसगत आया परम पद पाया, सा धन कंत प्यारी, अंतर प्रेम लगा हर सेती, कर सो है हर प्रभ नारी, हर रंग राती सहजे माती, हर प्रभ हर हर पाया, नानक जन हर दास कहत है, वडभागी हर हर त्याया, देह घोड़ी जी जित हर पाया राम, मिल सतगुर जी मंगल गाया राम, हर गाए मंगल राम नामा, हर सेव सेवक सेवकी, प्रभ जाए पावे रंग महली, हर रंग माने रंग की, गुण राम गाए मन सुपहाय, हर गुरमति मन त्याया, जन नानक हर कृपा तारी, देह घोड़ी चढ़ हर पाया, राग बड़ा हंस महल।

0: तुद सलाही
1: गुण अवगण मेरा किसना बिचारिया
0: बख्श लिया खिन माही नौ निद पाई बजी वधाई वाजे अनहद तूरे कहो नानक मैं वर घर पाया मेरे लाथे जी सगल वसूरे सलोक क्या सुनेंदो कूड़ वंजन पवन चलारिया नानक सुनियर ते परवान जो सुनेंदे सच धनी चंत तिन घोल कमाई जिन प्रभ श्रवणी सुनिया राम ते सहज सुहेले जिन हर हर रसना भणिया राम ते सहज सुहेले गुण अमोले जगत उदाहरण आए भै बोहित सागर प्रभ चरणा केते पार लंघाए जिन कौ कृपा करी मेरे ठाकुर तिनका लेखा ना गणिया कहो नानक तिन कोल कमाई जिन प्रभ श्रवणी सुनिया सलोक लोइन लोई डिठ प्यास ना बुझै मूह घणी नानक से अखड़िया बेअन्न।

मात पिता स्वाम सज्जन सब जगत बाल गोपाला जो सरने आवे गुण निदान पावे सो बहुड़ जन्म ना मरता।

पूर्व कमाया धन सरंदा सच्चा पातशाह जिन जग तंदे लाया साहिब सिमरहो मेरे भाई हो सबना एहो पयाण इतै तंदा कूड़ा चार देहा आगे सर पर जाना ज्यो मेहमान काहे गर्व कीजै जित सेवै दरगहा सुख पाईऐ नाम तिसै का लीजै आगे हुक्म न चलै मूले सिर सिर क्या वेहाना साहिब सिमरिहो मेरे भाई हो सबना एहो पयाना जो तिस भावै समरथ सो थीऐ हीलड़ा एहो संसारु जल थल मही अल रव रहिया साचड़ा सिरजन हारु साचा सिरजन हारु अलख अपारु ताका अंत न पाया आया तिनका सफल भया है एक मान जिनी त्याया ताहे ताहे उसारे आपे हुक्म सवार नहा।

ऐथे आया सब को जासी, कूड़ करहो अहंकारो, नानक रुन्ना बाबा जानिए, जे रोवे लाए प्यारो, वड़हंस महला पहला, आव हो मिल हो सहेली हो, सचड़ा नाम लए हां, रोवे है बिरहा तन का, अपना साहेब संभाले हां, साहेब संभाले हैं पंथ निहाले हैं, असा पे उथे जाना, जिसका किया तिन्हीं लिया, हुआ तिसे का पाणा, जो तिन कर

गई परांति पेर निर्मायल सदा सुखदाता नानक शब्द मलाए फिर हों चुनिया भी मिल है जे सतगुर लाग है साचे पाए।

समाय जिन्हें अपना पिर नहीं जाता कर्म विधाता कूड़ मुठी कूड़े आरे सुने हो कंत मेहली हो फिर सेवे हो शब्द विचारे सब जागे आप

झूठे बिन शब्द पिर ना पायो जन्म गवायो रोवे अवगुण यारी झूठी फिर जग जीवन किसनो रोइये रोवे कंत वसारे सब जग आप उपायो आवन जान संसारी सो फिर सच्चा सत ही साचा है ना ओह मरे ना जाए भूली फिरे धन इणिया रंड बैठी दूजे पहाए रंड बैठी दूजे पाए माया मोहे दुख पाए आप कटे तन सीजे जो किश आया सब किश जासी दुख लागा पाए दूजे जम काल ना सूजे माया जग लूजे लभ लोभ चेत लाए सो फिर

सब आखुहु सतगुरु वाहु वाहु जिन दान हर नाम मुख दिया। सलोक महला तीजा भै विच सब आकार है निरपो हर जीओ सोए सतगुर सेवे हर मन वसै तिथै भौ कदे ना होए दुश्मन दुख तिसनो नेड़।

पूरा धन धन है, जिन हर उपदेश दे सब सृष्ट सवारी, नित जप्यो संतोह राम नाम, भौजल बिख तारी, गुरपूरै हर उपदेश।

क्रोध विनाश, सतगुर का पहु छोड़िया मन हट काम ना आवे रास, जमपुर बद्दे मारी है को ना सुने अरदास, नानक पूर्व लिखिया कमावना गुरमुख नाम निवास पौड़ी, सो सतगुर सेवे हो साध जन जिना हर हर नाम दिरडाया, सो सतगुर पूजो हो दिन सरात जिन जगन्नाथ जगदीश जपाया, सो सतगुर देखो हो एक निमख निमख जिन हर का हर पंथ बताया, किस सतगुर की सब पगी पव हो जिन मोह अंधेर चुकाया, सो सतगुर कहो हो सब धन धन जिन हर भगत भंडार लहाया, श्लोक महला तीजा सतगुर मिले भुख गई

मनाय इस भेखै थामहु गिरहु भला जिथहु को वरसाय। शब्द रत्ते तिन्ना सूजी पई दूजे भरम भुलाय। पया किरत कमावना कहना कछु ना जाए। नानक जोत सुभावै।

ना हुवे अचिंत वत्सै मन आय अंतर तीर्थ ज्ञान है सतगुर दिया बुझाय मैल गई मन निर्मल हुआ अमृत सारे तीर्थ नहाय सज्जन मिले सज्जना सच्चै शब्द सुपहाय घर ही परचा पाया ज्योति ज्योत मिलाय पाखंड जम काल ना छोड़े ले जासी पत गवाय नानक नाम रते से उबरे सच्चे सिउं लिभ लाए पौड़ी तित जाए बहु सत संगति जिते हर का हर नाम बिलोई सहजे ही हर नाम लेहो हर तत ना खोई नित जप्यो हो हर हर दिन सरात हर दरगाह ढोई है सो पाए पूरा सतगुरु जिस तुर मस्तक लिलाट लखोई है तिस गुर को सब नमस्कार करो जिन हर की हर गाल गलोई है। श्लोक महला तीजा सज्जन मिले सज्जना।

गुर कै शब्द अपार एह सज्जन मिले ना विछड़ है जे आप मेले करतार इक ना दर्शन की प्रतीत ना आईया शब्द ना करह विचार विछड़िया का क्या विछड़ जिन्ना दूजे भाए प्यार मनमुख सेती दोस्ती थोड़िया दिन चार इस प्रीति टुटदी विलम ना होवे इत दोस्त।

वर्मी मारी साप ना मरे त्यों गुरे कर्म कमाहे सतगुर दाता सेवी शब्द वसे मन आए मन तन शीतल शांत होए तृष्णा अग्न बुझाए सुखा सिर सदा सुख होए जा विचों आप गवाए गुरमुख उदासी सो करे।

अंध बहु कर्म कमावे, दूजे भाई प्यार अणहुंदा आप गणाईंदे, जम मार करे तिन खुआर, नानक किसनो आखी है जाया।

नानक नाम निदान है गुरमुख पाया जाय मनमुख घर हुंदी वत ना जाननी अंधे भौंक मुए बिल लाए महला तीजा कंचन काया निर्मली जो सच नाम सच लागी निर्मल ज्योत निरंजन पाया गुरमुख भ्रम पौ भागी नानक गुरमुख सदा सुख पावे अन दिन हर बैरागी पौड़ी ते गुरसिख धन धन है जिनी गुर उपदेश सुनिया हर कन्नी गुर सतगुर नाम दृढ़ आया तिन हम मैं दुखदा भन्नी।

सतगुर की गल मन्नी जो गुरमुख नाल के आए दे तिन चढ़ी चवगण वन्नी। सलोक महला तीजा मनमुख कायत रूप है बिन नावै नक नाही अन दिन धंधे व्यापिया सुपने भी सुख नाही।

उन्होंने गुरु का शब्द कमाए, अंतर शांत सदा सुख, दर सत्य सुबा पाए, नानक गुरमुख हर नाम पाया, तैजे सच समाए पौड़ी, गुरमुख प्रहलाद जप हर गत पाई, गुरमुख जनक हर नाम लिवलाई, गुरमुख वशिष्ट हर उपदेश सुनाई, बिन गुर हर नाम ना किने पाया मेरे भाई, गुरमुख हर भगत हर आप लहाई, श्लोक महला तीजा, सतगुर की प्रतीत ना आईया, शब्द ना लागो भाव, उसनो सुख ना उपजै, भावे सौ गेड़ा आवो जाओ, नानक गुरमुख सहज मिले, सच्चे स्यों लिवलाओ, महला तीजा, ए मन ऐसा सतगुरु खोज लहो, जित सेवे जन्म मरण दुख जाए, सहसा मूल ना होवे, हों मैं शब्द जलाए, कूड़े की पाल विच्चों निकले, सच वसे मन आए, अंतर शांत मन सुख होए, सच संयम कार कमाए, नानक पूरे

0: खलवाया हर नावै की वड़ियाई कर्म प्राप्त होवे गुरमुख विरले किन त्याया।
1: श्लोक महला तीजा बिन सतगुर सेवे जगत मोवा बिरता जन्म गवाए दूजे भाए।

पछताए महला तीजा। इस जग में पुरख एक है, होर सगली नार सबाई, सब कट भोग वह लिप्त रह, लख ना लखना जाई। पूरा गुर वे खालिया, शब्दे सोजी पाई, पुरखे सेव है से पुरख हो वह, जिन्नी हों मैं शब्द जलाई।

सेवक सेवा करी हर सच्चे के गुण गाई नानक वेख विगस्या हर सच्चे की वडियाई पौड़ी जिनकै हर नाम वस्या सद हिरदै हर नामो तिनको रखन हारा हर नाम पिता हर नामो माता हर नाम सखाई मित्र हमारा हर नावे नाल गल्ला हर नावे नाल मसलक हर नाम हमारी करदा नित सारा हर नाम हमारी संगत अत प्यारी हर नाम कुल हर नाम परवारा जन नानक कौ हर नाम हर गुर दिया हर हलत पलत सदा करे निसतारा सलोक महला तीजा जिन कौ सतगुर भेटिया ते हर कीर्त सदा कमाहे चिंत हर नाम तिनकै मन वसिया सच्चै शब्द समाहे कुल उधार है अपना मोख पदवी आपे पाहे पार ब्रह्म तिनको संतुष्ट भया जो गुर चरणी जन पाहे जन नानक हर का दास है कर कृपा हर लाज रखाए महला तीजा हम मैं अंदर खड़क है खड़के खड़क विहाय हम मैं वड्डा रोग है मर जम्मै आवे जाय जिनको पूर्व लिखिया तिन्ना सतगुर मिलिया प्रभ आय नानक गुर प्रसादी उभरे हम मैं शब्द जलाए पौड़ी हर नाम हमारा प्रभ अवगत अगोचर अविनाशी पुरख बिधाता हर नाम हम सिरे वह हर नाम हम पूज्य है हर नामे ही मन राता हर नामे जेवड कोई अवरना सूजे हर नामो अंत छडाता हर नाम दिया गुर पर उपकारी धन धन गुरु का पिता माता।

कै सार नानक जिन को नदर करे से गुरमुख लंगे पार महला तीजा इको सतगुर जागता होर जग सूता मोह प्यास सतगुर सेवन जा गन से जो रते सच नाम गुणतास मनमुख अंध ना चेतनी जन्म मर होहे विनाश नानक गुरमुख तिन्नी नाम त्याया जिनको तुर पूर्व लिखे आस पौड़ी हर नाम हमारा भोजन शक्ति प्रकार जित खाया हमको तृप्त भई हर नाम हमारा पहनन जित फिर नंगे ना होवे होर पहनन की हमारी सरद गई हर नाम हमारा वणज।

जान गई। हर का नाम गुरमुख किन विरले त्याया, जिनको तुर कर्म प्राप्त लिखत पई। श्लोक महला तीजा, जगत अज्ञानी अंध है, दूजे भाई कर्म कमाए, दूजे भाई जेते कर्म करे, दुख लगे तन धाए, गुर प्रसादी सुख उपजे, जा गुर का शब्द कमाए, सच्ची बाणी कर्म करे, अन दिन नाम त्याए, नानक जित आपे लाए तित लगे, रहना किसु ना जाए महला तीजा। हम घर नाम खजाना सदा है, भगत भरे भंडारा, सतगुर दाता जी का सद जीवै देवनहारा, अन दिन कीर्तन सदा करह, गुर कै शब्द अपारा, शब्द गुरु का सद उच्च रह, जुग जुग वरतावन हारा, एहो मनुआ सदा सुख वस्त है, सहजे करे वापारा, अंतर गुर ज्ञान हर रतन है, मुक्त करावन हारा, नानक जिसनो नदर करे सो पाए, सो होवै दर सचियारा पौड़ी, तन तन सो गुर सिख कही है, जो सतगुर चरणी जाए पया, तन तन सो गुर सिख कही है, जिन हर नामा मुख राम कहया, तन तन सो गुर सिख कही है, जिस हर नाम सुनिया मन आनंद भया, तन तन सो गुर सिख कही है, जिन सतगुर सेवा कर हर नाम लया, तिस गुर सिख कौ हौ सदा नमस्कारी, जो गुर कै पाण गुर सिख चलिया। श्लोक महला तीजा, मन हठ किने ना पायो, सब थके कर्म कमाए, मन हठ भेख कर भरम दे,

पौड़ी जिन उपाय जी तिन हर राखिया अमृत सच्चा नाव भोजन चाखिया तिपत रहे आघाए मिटी पपाखिया सब अंदर एक वरतै तिन विरले लाखिया जन नानक भय निहाल प्रभ की पाखिया श्लोक महला तीजा सतगुरु नो सब को वेखदा जेता जगत संसार दिठै मुक्त ना हो गई जिचर शब्द ना

0: नानक गुरमति सुख पाया, बख्शे बख्शन हार पौड़ी। तू आपे आप, आप सब करता, कोई दूजा हुए सो अवरो कही है। हरे आपे बोले आप बुलावे, हरे आपे जल थल रव रही है। हरे आपे मारे हरे आपे छोड़े, मन हर सरनी पड़ रही है।
1: हर दिन कोई मार जीवाल न सके,
0: मन होए निचिंद निसल होए रही है। उठदियां बहदियां सुतियां, सदा सदा हर नाम ते आई है।

सोथिय रन के रुन्नै होए धरती उपर कोट गाड़ केती गई बजाए जो असमान ना मावनी तिन नक नथा पाए जे मन जान है सूलियां काहे मिठा खाहे नानक औगन जे तड़े तेते गली जंजीर जे गुण होन ता कटियन ते भाई से वीर अगे गए ना मनियन मार कड होवे पीर सोठ महला पहला कर पहला मन हाली किरसानी करनी शर्म पानी तन खेत नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी वेस पाओ कर्म कर जमसी से कर भागठ देख बाबा माया साथ ना होए इन माया जग मोहया विरला बूझै कोई रहाओ हाण हट कर आर जा सच नाम कर वथ सुरत सोच कर भांड साल तिस विच तिसनो रख वणजारिया स्यो वणज कर लै लाहा मन हस्त सुन सासत सौदागरी सत घोड़े लै चल खर्च बन चंगियाईया मत मन जान है कल निरंकार कै देस जाहे ता सुख लह महल लाए चित कर चाकरी मन नाम कर कम बन बदियां कर धावनी ता को आखै धन नानक वेखै नदर कर चढ़ै चवगण वन सोठ महला पहला चौतुके

अत भाई हुक्म भया बाहर घर छोड़िया हिन मह भई पराई नाम दान इशनान ना मन मुख तित तन धूड़ तुमाई मन मानिया नाम सिखाई पाए परहु गुर कै बलिहार जिन साची बूझ बुझाई रहा जग स्यो झूठ प्रीत मन भेदया जन स्यो वाद रचाई माया मगन अहनस मग जो है नाम ना लेवै मरै बिख खाई गंधन वहन रत्ता हित कारी शब्द सुरत ना आई रंग ना राता रस नहीं भेदया मनमुख पत गुआई साध सभा में सहज ना चाखिया

पल्ले साचा शब्द समाने रहाओ। तू पूरा हम पूरे होशे, तू गौरा हम हौरे, तुझ ही मन राते एहन सुप्रभाते। हर रसना जप मान रे, तुम साचे हम तुम ही राचे, शब्द भेद फुन साचे, एहनस नाम रते से सूचे, मर जन्मे से काचे, अवर ना दिसह किस सालाही, तिसह शरीक ना कोई, प्रणवत नानक दासन दासा, गुरमत जानिया सोई। चौथ महला पहला, अलख अपार अगम अगोचर, ना तिस काल ना कर्मा, जात अजात अजोनी संपहो, ना तिस भाओ ना भरमा, साचे सचियार विटोह कुरबान, ना तिस रूप वर्ण नहीं रेखिया, साचा शब्द नीशान रहाओ, ना तिस मात पिता सुत बंदप, ना तिस काम ना नारी, अकुल निरंजन अपर परंपर, सगली जोत तुम्हारी, घट घट अंतर ब्रह्म लुकाया, घट घट जोत सबाई।

जुगत सवाई। सतगुर सेव पदार्थ पाव है, छूट है शब्द कमाई। सूचै भांडै साच समावै, विरले सूचाचारी। तंतै कौ परम तंत मलाया।

केहो रस त्यों लहो गुर मेला हर दे रहाउ संत जना मिल संगति गुरमुख तीरथ होए अट तट तीरथ मजना गुर दर्श प्राप्त हो।

बिहारी जियो। सतगुर बंधन तोड़ नरारे, बहुड़ ना गर्भ मजारी जियो। नानक ज्ञान रतन परगासिया, हर मन वसिया निरंकारी जियो। सोठ महला पहला, जिस जल निद कारण तुम जागे आए। सो अमृत गुर पाही जियो, छोड़ो हो वेस भेख चतराई। दुबदा इहो फल नाही जियो, मन रे थिर रहो मत कत जाही जियो। बाहर ढूंढत बहुत दुख पाव है, घर अमृत घट माही जियो। रहाओ अवगुण छोड़ गुणा कौ धावो, कर अवगुण पछताही जियो। सर अपसर की सार ना जाने, फिर कीच बुढ़ाही जियो। अंतर मैल लोभ बहु झूठे, बाहर नावो काही जियो। निर्मल नाम जपो सद गुरमुख, अंतर की गत ताही जियो। पर हर लोभ निंदा कूड त्यागो, सच गुर बचनी फल पाही जियो। ज्यों पावै त्यों राखो हर जियो, जन नानक शब्द सलाही जियो। सोठ महला पहला पंच पदे, अपना घर मूसत राख ना साक है। की पर घर जोहन लागा, घर दर राख है जे रस चाख है। जो गुरमुख सेवक लागा, मन रे समझ कमन मत लागा। नाम विसार अन रस लोभाने, फिर पछताहे अभागा रहाव। आवत को हरख जात को रोवह, एह दुख सुख नाले लागा। आपे दुख सुख भोग पुगावै, गुरमुख सो अनरागा। हर रस ऊपर अवर क्या कही है, जिन पिया सो तृप्तागा। माया मोहित जिन एहो रस खोया।

पाया, पूरे गुरु की सेवा कीनी, अचिंत हर मन वसाया, मन तन निर्मल सदा सुख अंतर, विचों भरम चुकाया, हर का मार्ग सदा पंथ विखड़ा, ओ पाए गुर विचारा, हर कै रंग राता शब्दे माता, हम मैं तजे विकारा, नानक नाम रता इक रंगी, शब्द सवारन हारा, सोठ महला तीजा, हर जियो तुदनो सदा सलाही प्यारी, जिचर घट अंतर है सासा, एक पल खिन बिसर है तू स्वामी, जानो बरस पचासा, हम मूड मुगद सदा से पाई, गुर कै शब्द परगासा, हर जियो तुम आपे देहो बुझाई, हर जियो तुद विटो वारिया सादही, तेरे नाम विटो बल जाय रहाओ, हम शब्द मोए शब्द मार जवाले पाई, शब्दे ही मुक्त पाई, शब्दे मन तन निर्मल होआ, हर वस्या मन आई, शब्द गुरदाता जित मन राता, हर सिउ रहे आसमाई, शब्द ना जान है से अन्ने बोले, से कित आए संसारा, हर रस ना पाया, बिरथा जन्म गवाया, जम है वारो वारा, बिस्ता के कीड़े बिस्ता माहि समाणी, मान मुख मुग्ध गोबारा, आपे कर वेखै मार्ग लाए भाई, किस बिन अवर ना कोई, जो तुर लिखिया सो कोई ना मिटै भाई, करता करे सो होई, नानक नाम वसया मन अंतर भाई, अवर ना दूजा कोई।

मन पाणी तू गुण दाता शब्द पछाता गुण कह गुणी समाणी मन मेरे हर जियो सदा संभाल अंत काल तेरा बेली होवे सदा लिब है तेरे नाल रहाव दुष्ट चौंकड़ी सदा कूड़ कमावे ना बूझ विचारी निंदा दुष्टी ते किन फल पाया हरनाक्ष नख है बिदारी प्रहलाद जन सद हर गुण गावे हर जियो लय उबारी आपस कहो

पछताई। सफल जन्म भगता का कीता, गुर सेवा आप लाए। शब्दे राते सहजे माते, अनदिन हर गुण गाए। नानक दास कह बेनंती, हौ लागा तिन कै पाए। सोठ महला तीजा, सो सिख सखा बंद पह पाई। जे गुर के पाणी विच आवै, अपने पाणे जो चले पाई। विछड़ चोटा खावै, बिन सतगुर सुख कदे ना पावे पाई। फिर पछोतावे, हर के दास सुहेले पाई। जन्म जन्म के किल बिख दुख काटे, आपे मेल मलाई रहाओ। यो कटंब सब जी के बंधन पाई। परम भुला संसारा, बिन गुर बंधन टूट है नाही। गुरमुख मोख द्वारा, कर्म कर है गुर शब्द ना पछाण है। मर जन्म है वारु वारा, हौ मेरा जग पलच रहया पाई। कोए ना किस ही केरा, गुरमुख महल पायन गुण गावन। निज घर होए बसेरा, ऐथे बूझै सो आप पछाणै। हर प्रभ है तिस केरा, सतगुरु सदा दयाल है भाई। बिन भागा क्या पाईऐ, एक नदर कर वेखै सब ऊपर। जेहा भाव तेहा फल पाईऐ, नानक नाम वसै मन अंतर। विचों आप गवाईऐ, सोठ महला तीजा चौथुके।

सरनाई अपनी नदर करे पत राखै हर नामो दे वडियाई रहाओ पूरे गुरते आप पछाता शब्द सच्चै विचारा हिरदय जग जीवन सद वस्या अज काम क्रोध अहंकारा सदा हजूर रविया सब ठाई हिरदय नाम अपारा जुग जुग बाणी शब्द पछाणी नाउ मीठा मनह प्यारा सतगुर सेव जिन नाम पछाता सफल जन्म जग आया हर रस चाख सदा मन तृप्तिया गुण गावे गुणी अगाया कमल प्रगास सदा रंग राता अनहद शब्द बजाया तन मन निर्मल निर्मल बाणी सच्चे सच समाया राम नाम की गत कोए ना बूझे गुरमत हृदय समाई गुरमुख होवै सो मग पजा।

आई। नानक नाम समाल है से जन सोहन, दर साचै पत पाई। सोठ महला तीजा दो तुके, सतगुर मिले उल्टी पई पाई। जीवत मरे ता बूझ पाए, सो गुरु सो सिख है पाई। जिस ज्योति ज्योत मलाए, मन रे हर हर सेती लिव लाए। मन हर जप मीठा लागे पाई, गुरमुख पाए हर थाए रहाओ। बिन गुर प्रीत ना उपजै पाई, मनमुख दूजै पाए। तोह कुट है मनमुख कर्म करह पाई, पल्लै किछु ना पाए। गुर मिलै नाम मन रविया पाई, साची प्रीत प्यार। सदा हर के गुण रवै पाई, गुर कै हित अपार। आया सो परवान है पाई, जे गुर सेवा चित लाए। नानक नाम हर पाई पाई, गुर शब्दी मेलाए। सोठ महला तीजा घर पहला, तिही गुणी त्रे भवन व्यापिया पाई। गुरमुख बूझ बुझाए, राम नाम लग छूटी है पाई।

तेरे मन वसै भाई, सदा हर के गुण गाए रहाउ। नामे ते सब उपजे भाई, नाए विसरे मर जाए। अज्ञानी जगत अंध है भाई, सूते गए मोहाए। गुरमुख जागे ते उभरे भाई, भवजल पार उतार। जग में लाहा हर नाम है भाई, हिरदय रखिया उरतार। गुर सरनाई उभरे भाई, राम नाम लिवलाए। नानक नाओ बेड़ा नाओ तुलहड़ा भाई, जित लग पार जन पाए। सोठ महला तीजा घर पहला, सतगुर सुख सागर जागे अंतर। होर थै सुख नाई, हौ मैं जगत दुख रोग व्यापिया। मर जन मैं रोवै ताही, प्राणी सतगुर सेव सुख पाए।

कमावे है। हर रस साधना आया संध्या तर्पण करह गायत्री बिन बूझे दुख पाया। सतगुर सेवे सो वड भागी जिसनो आप मलाई। हर रस पी जन सदा तृप्तासे विचों आप गवाई। एहो जग अंधा सब अंध कमावे बिन गुर मग ना पाई। नानक सतगुर मिले ता अखी वेख घर अंदर सच पाए। सोठ महला तीजा बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा। जुग चारे परमाई हम दीन तुम जुग जुग दाते।

मन निर्मल हुआ, गिल बिख काटन हारा, शब्द मर हो फिर जीव हो सद ही, ता फिर मरन ना होई, अमृत नाम सदा मन मीठा, शब्दे पावे कोई, दाते दात रखी हाथ अपने, जिस पावे तिस देई, नानक नाम रते सुख पाया, दरगाह जाप है से, सोठ महला तीजा, सतगुर सेवे ता सहज धुन उपजे, गत मत तद ही पाए, हर का नाम सच्चा मन वस्या।

सो होई, नानक राम नाम निस्तारा, शब्दे हम मैं खोई, सोठ महला चौथा घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आपे आप वरतदा प्यारा, आपे आप अपाह, वणजारा जग आप है प्यारा, आपे साचा साहु, आपे वणज व्यापारिया प्यारा।

कर दया अमृत मुख चोए रहाव। आपे जल थल सबत है प्यारा, प्रभ आपे करे सो होए। सबना रिजक समाह दा प्यारा, दूजा अवर ना कोय। आपे खेल खलाए दा प्यारा, आपे करे सो होए।

प्यारा आप लखावे सोई आपे गहर गंभीर है प्यारा तिस जेवड़ अवर ना कोई सब घट आपे भोग वै प्यारा विच नारी पुरख सब सोई नानक गुप्त वरतदा प्यारा गुरमुख प्रगट होए सोठ महला चौथा आपे ही सब आप है प्यारा आपे थाप उथापै आपे वेख विकसदा प्यारा कर चूज वेख प्रभ आपै आपे वण तिण सबत है प्यारा आपे गुरमुख जापै जप मन हर हर नाम रस त्रापै अमृत नाम महारस मीठा गुर शब्दी चख जापै रहाओ आपे तीरथ तुलहड़ा प्यारा आप तरै प्रभ आपै आपे जाल बताए दा प्यारा सब जग मछली हर आपै आप अपुल ना भुलई प्यारा अवर ना दूजा जापै आपे सिंगी नाद है प्यारा तुने आप बजाए आपै आपे जोगी पुरख है प्यारा आपे ही तप तापै आपे सतगुर

प्यारी ज्यों हर प्रभ मेरे पाया आपे जंती जंत है प्यारा जन नानक वजह वजाया सोठ महला चौथा

आप दया कर रखदा प्यारा, आपे सुगड़ सुजान मेरे मन, जप राम नाम निशान। सत संगत मिल त्याए तू हर हर, बहुड़ ना आवन जान रहाओ। आपे ही गुण वरतदा प्यारा, आपे ही परवान, आपे बख्श कराईंदा प्यारा, आपे सच निशान। आपे हुक्म वरतदा प्यारा, आपे ही फुरमान, आपे भगत भंडार है।

प्यारी जप नानक भगत समाहा सोठ महला चौथा दो तुके अनक जन्म विछड़े दुख पाया मन मुख कर्म करे अहंकारी साधु पर सत ही प्रभ पाया गोविंद शरण तमारी गोविंद प्रीत लगी अत प्यारी जब सत संग भए साधु जन हिरदय मिलया शांत मरारी रहाउ तू हिरदय गुपत वस है दिन राती तेरा भाव ना बुझ गवारी सतगुरु पुरख मिलया प्रभ प्रगटिया गुण गावे गुण विचारी गुरमुख प्रगास भया शांत आई दुरमत बुद्ध निवारी आत्म ब्रह्म कीन सुख पाया सत संगत पुरख तुमारी पुरख है पुरख मिलया गुर पाया जिनको कृपा भई तुमारी नानक अतुल सहज सुख पाया अन दिन जागत रह बनवारी सोरठ महला चौथा हर सिंह प्रीत अंतर मन भेदिया।

ताहुसी जो जो दिसै वड्डा वडेरा सो सो खाकू रलसी निरभउ निरंकार भव खंडन सब सुख नव निध देसी हर जियो तेरी दाती राजा मानस बपड़ा क्या सलाई क्या किसका मोहताजा रहा जिन हर त्याया सब किस तिसका तिसकी भूख गवाई ऐसा धन दिया सुख दाता नखोटना कब ही जाई आनंद भया सुख सहज समाणी।

निरपौ भय गुरचरणी लागे, एक राम नाम आधार सफल दर्शन अकाल मूर्त प्रभ है ती होम नहारा। कंठ लगाए अपने जन राखे अपनी प्रीत प्यारा, वड्डी वड्याई अचरज सोभा कारज आया रास्ते, नानक को गुरपुरा भेट्यो सगले दुख बिनासे। सोरठ महला पंजवा सुखिए को पेख है सब सुखिया,

रहाउ। कोट पराग मिट है जन सेवा, हर कीर्तन रस गाइय, इहां सुख आगे मुख उज्जल, जन का संग वड भागी पाइय, रसना एक अनेक गुण पूरन, जन की केतक उपमा कहिय, अगम अगोचर सद अविनाशी, शरण संतन की लहिय, निर्गुण नीच अनाथ अपराधी, ओट संतन की आही, बूढ़त मोह ग्रह अंध कूप मह, नानक लेहो निवाही, सोठ महला पंजवा कर पहला, जा कै हिरदय वसया तू करते, ताकी तै आस पुजाई, दास अपने कौ तू विसरह नाही, चरण धूर मन पाई, तेरी अकथ कथा कथन ना जाई, गुण निदान सुख दाते स्वामी, सब ते ऊच बढ़ाई रहाओ, सो सो कर्म करत है प्राणी, जैसी तुम लिख पाई, सेवक कौ तुम सेवा दीनी, दर्शन देख अघाई, सर्व निरंतर तुम्हें सुमाने, जा को तुदे आप बुझाई, गुर प्रसाद मिटेओ अज्ञाना, प्रगट भय सब ठाई, सोई ज्ञानी सोई त्यानी, सोई पुरख सुपहाई, कहो नानक जिस भय दयाला, तां को मन ते बिसर ना जाई, सोठ महला पंजवा, सगल समग्री।

साध शर्म छुटकारा बिन गुर पूरे जन्म मरण ना रहे फिर आवत बारो बारा रहाओ ओहो जो परम पलावा कहियत तिन मह उर्जियो सगल संसारा पूर्ण भगत पुरख स्वामी का सर्व थोक ते न्यारा निंदो नाही काहू बात एहो खसम का किया जाको कृपा करी प्रभ मेरे मिल साध संगत नाउ लिया पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर सब ना करत उदारा कहो नानक गुर बिन नहीं तरिया एहो पूरन तत बिचारा सोठ महला पंजवा खोजत खोजत खोज बिचारेउ राम नाम तत सारा किल बिख काटे निमख अराध्या गुरमुख पार उतारा हर रस पीवहो पुरख ज्ञानी सुन सुन महा तृप्त मन पावे साधु अमृत बाणी रहाओ मुकत भुगत जुगत सच पाईए सर्ब सुखा का दाता अपने दास को भगत दान देवे पूर्ण पुरख विधाता सरवणी सुनिए रसना गाईए हृदय त्याईए सोई करण कारण समरथ स्वामी जाते बिरथा ना कोई वड्डे भाग रतन जन्म पाया करहो कृपा कृपाला साध संग नानक गुण गावे सिमरै सदा गोपाला सोठ महला पंजवा कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा कोट बिघन लाथे प्रभ सरना प्रगटे भले संजोगा प्रभ बाणी शब्द सुभाख्या गावहो सुनहो पढ़हो नित भाई गुरपूरै तू राख्या रहाओ साचा साहिब अमित वडाई भगत वच्छल दयाला संतां की पैज रखदा आया आद बिरद प्रतपाला हरे अमृत नाम भोजन नित पुंचो हो सर्ब वेला मुख पाव हो जरा मरा ताप सब नाठा गुण गोबिंद नित गाव हो।

योगे अंतर गुरु नानक की वडियाई। चौथ महला पंजवा घर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुरहाई। सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी।

सरण परिजय कर सो भला मनाई है। सुन मीता जियो पिंड सब तन अर्पीजै, इयो दर्शन हर जियो पाई। भयो अनग्रहो प्रसाद संतन कै, हर नामा है मीठा जन नानक कौ गुर कृपा तारी। सब अकुल निरंजन दीठा सोरठ महला पंजवां, कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी। सर्ब जिया का दातारे प्रतपालै नित सार संभालै, एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे। हर आराधना जाना रे, हर हर गुर गुर करता रे। हर जियो नाम परियो रामदास रहाउ, दीन दयाल कृपाल सुख सागर। सर्ब कटां पर पूरी रे, पेखत सुनत सदा है संगे। मैं मूर्ख जानिया दूरी रे, हर बेअंत हों मित कर वरनो। क्या जाना होए कैसो रे, करो बेनती सतगुरे अपने। मैं मूर्ख देहो उपदेसो रे, मैं मूर्ख की केतक बात है। कोट परादी तरियारे गुर नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास ना परियारी। सोठ महला पंजवां, जिन्ना बात को बहुत अंदेसरो, ते मिटे सब गया सहज सैन अर सुखमन नारी। ऊंद कमल बिगसया देखो अचरज भया, जेहे ठाकुर को सुनत अगाध बोध। सो हृदय गुर दया रहाउ, जोए दूत मोहे बहुत संतावत। ते भयानक भया करह बेनती राख ठाकुर ते, हम तेरी सरनया। जह भंडार गोविंद का खुलिया, जेहे प्राप्त ते लया। एक रतन मोह को गुर दीना, मेरा मन तन शीतल थिया। एक बूंद गुर अमृत दीनो, ता अटल अमर नाम हुआ। भगत भंडार गुर नानक कौ सौंपे, फिर लेखा मूल ना लया। सोरठ महला पंजवां, चरण कमल स्यों जाका मन लीना। से जन तृप्त अघाई गुण अमोल, जिस हृदय ना वस्या। ते नर तृष्ण त्रिखाई हर अरादे अरोग अनदाई। जिसनो विसरै मेरा राम स्नेही, तिस लाख बेदन जन आई रहाउ। जेह जन ओट गई प्रभ तेरी, से सुखिये प्रभ सरने। जेह नर विसरिया पुरख बधाता, ते दुखिया मह गणने। जेह गुरमान प्रभु लिवलाई, ते महा आनंद रस करिया। जेह प्रभु बिसार गुर ते बेमुखाई, ते नरक घोर मह परिया। जित को लाया तित ही लागा, तैसो ही वरतारा। नानक सह पकरी संतन की, हृदय भये मगन चरनारा। सोरठ महला पंजवां, राजन मह राजा उरझायो। मानन मह अभमानी, लोभन मह लोभी लोभायो। त्यों हर रंग रचे ज्ञानी, हर जन को यही सुहावै। पेख निकट कर सेवा सतगुर, हर कीर्तन ही तृप्तावै रहाउ। अमलन स्यों अमली लपटायो, भूमन भूम प्यारी। हीर संग बारक है लीना, प्रभ संत ऐसे हितकारी। विद्या मह विद्यंसी रचिया, नैन देख सुख पाव है। जैसे रसना साध लुभानी, त्यों हर जन हर गुण गाव है। जैसी भूख तैसी का पूरक, सगल कटां का स्वामी। नानक प्यास लगी दर्शन की, प्रभ मिलिया अंतर जामी। सोरठ महला पंजवां, हम मैले तुम उजल करते।

हम भलो ना जाने। तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख बधाते, तुम राखो अपने बाला, तुम निदान अटल सुल्तान। जी जंत सब जाचे कहो नानक हम इह हवाला, राख संतन कै पाछै।

अब कहां करे तू जो फाट्यो सगलो लिखा महा आनंद भई सुख पाया संतन कै प्रसादे कहो नानक हर स्यों मन मानिया रंग रत्ते बिस्मादी।

सुख नहीं पाइए। हो होरेन तू सगल की मेरे मन तौ आनंद मंगल सुख पाइए। काल ना भाने अंतर बिद जाने ता की कर मन सेवा कर पूजा होम एहो मनुआ। अकाल मूत गुरदेवा गोविंद दामोदर दयाल माधवी।

आंद मंगल विश्रामा मन बाछत फल मिले अचिंता पूर्ण होए कामा इहां सुख आगे मुख उज्जल मिट गए आवन जाने निरपौ भये हिरदय नाम वसिया अपने सतगुर कै मन पानी उठत बैठत हर गुण गावे दुख दर्द भ्रम भागा कहो नानक ताके पूर करम्मा जाका गुर चरनी मन लागा चौथ महला पंजवा रतन छाड़ कौडी संग लागे जाते कछु ना पाईए पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे मन सदा त्याईए सिमरहो हर हर नाम परानी बिनसै काची दे अज्ञानी रहाउ मृग तृष्णार सुपन मनोरथ ताकी कछ ना वडाई राम भजन बिन काम ना आवस संग ना काहू जाई हौ हौ करत बेहाय।

हो पूर्ण अविनाशी, काम क्रोध बिख जारी, महाबिखम अगन को सागर, साधु संग उधारी, पूरा गुर मेत्यो परम अंधेरा, पाज प्रेम भगत प्रभ नेरा रहाओ, हर हर नाम निदान रस पिया, मन तन रहे अगाई, जत कत पूर रहे ओ परमेश्वर, कत आवे कत जाई, जप तप संजम ज्ञान तत बेता, जिस मन वसै गोपाला, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, ता की पूर्ण काला, काल कलेश मिटे दुख सगले, काती जम की पासा, कहो नानक प्रभ कृपा तारी, मन तन भये बिगासा, सोठ महला पंजवा, करन कराव नहार प्रभ दाता, पार ब्रह्म प्रभ स्वामी, सगले जी किए दयाला, तो प्रभ अंतर जामी, मेरा गुर हुआ आप सहाई, सुख सहज आनंद मंगल रस, अचर्ज पई बढ़ाई रहा, गुर की शरण पए पै नास्ती, साची दरगाह माने, गुण गावत अराध नाम हर, आए अपने थाने, जय जयकार करे सब उस्तत, संगत साध प्यारी, सद बलिहार जाओ प्रभे अपने, जिन पूर्ण पैज सुवारी, गोष्ट ज्ञान नाम सुन उधरे, जिन जिन दर्शन पाया, पयो कृपाल नानक प्रभे अपना, अंत सेती घर आया, सूरठ महला पंजवा, प्रभ की शरण सगल पहलाती, दुख बिन से सुख पाया, दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी, पूरा सतगुर त्याया,

थीवै बिघन बनासन सब दुख नासन गुर चरणी मन लागा गुण गावत अचुत अविनाशी अन दिन हर रंग जागा मन इच्छे से फल पाई हर की कथा सुहेली आदि अंत मद नानक को सो प्रभ होआ बेली सूरठ महला पंजवा पंच पदा बिनसै मोह मेरा अर तेरा बिनसै अपनी तारी संतो हो इहा बताव हो कारी जित हों मैं गर्भ नवारी रहाओ सर्ब भूत पार ब्रह्म कर मान्या होवां सगल रे नारी देखियो प्रभ जीओ अपने संगे चूकै पीत परमहारी औखद नाम निर्मल जल अमृत पाईऐ गुरु द्वारी कहो नानक जिस मस्तक लिखिया तिस गुर मिल रोग बिदारी सोरठ महला पंजवा कर दूजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगल बनस्पत मह बै संतर सगल दूध मह किया ऊच नीच मह जोत समाणी कट कट माध हो जिया संतो हो कट कट रहे समाह पूर्ण पूर रहो सर्ब मह जल थलर मैया आहो रहाओ गुण निदान नानक जस गावै सतगुर परम चकायो सर्ब निवासी सदा अलेपा सब मह रहे समायु सूरठ महला पंजवा जा कै सिमरन होए आनंदा बिनसै जन्म मरण पै दुखी चार पदार्थ नव निद पावह बहुर ना तृष्णा भुखी जाको नाम लैत तू सुखी सास सास त्यावो ठाकुर कौ मन तन की अरे मुखी रहाओ शांत पावह होवह मन शीतल अग्न ना अंतर तुखी

झूठ निंदा इनते आप छडावहु एह पीतर ते इनको डारहु आपन निकट बलावहु अपनी बिद आप जनावहु।

गुरपूरा भेटियो वडभागी जन नानक कतह ना धावहु सूरठ महला पंजवा जाकै सिमरन सब कछ पाई है बिरथी काल न जाई तिस प्रभ त्याग अवर कत राचुहु जो सब मह रहे आसमाई हर हर सिमरहो संत गोपाला साध संग मिल नाम त्यावहु पूर्ण होए काला रहाउ सार संभालै नित प्रत पालै प्रेम सहत गल लावै कहो नानक प्रभ तुमरे बिसरत जगत जीवन कैसे पावै सूरठ महला पंजवा अबनासी जीयन को दाता सिमरत सब मल खोई गुण निधान भगतन कहो बर्तन बिरला पावै कोई मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई जाकी सरन पया सुख पाई है बहुड़े दुख ना होई रहाओ वडभागी साध संग प्राप्त तिन भेटत दुरमत खोई तिन की धूर नानक दास बांचै जिन हर नाम हृदय परोई सूरठ महला पंजवा जन्म जन्म के दुख निवारै सूका मन साधारै दर्शन भेटत होत निहाला हर का नाम बीचारै मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम औखद मुख देवै काटै जम की फंदा रहाउ समरथ पुरख पूर्ण बेधाते आपे करनै हारा अपना दास हर आप उभारिया नानक नाम अधारा सूरठ महला पंजवा अंतर की गत तुम ही जानी तुझ ही पाहे नबेरो बख्श लै हो साहिब प्रभ अपने लाख खते कर फेरो।

संत प्रभ सगल उधारी दर्शन देखण हारी गुरपुरे की अचरज वडियाई नानक सद बलिहारी चौठ महला पंजवा संचन करो नाम धन निर्मल थाती अगम अपार बिलस बनोद आनंद सुख माणु खाए जीव हो सिख परवार हर के चरण कमल आधार संत प्रसाद पायो सत

राम रतन जस गाय मिट गई चिंता सिमर अनंता सागर तरिया पाई हृदय हर के चरण वसाई सुख पाया सहज धुन उपजी रोगा घाण मटाई रहा क्या गुण तेरे आख बखाना कीमत कहण ना जाई नानक भगत पए अबनासी अपना प्रभ भया सहाई।

रोग गए गुरबचनी, मन इच्छे फल पाया, मेरा गुरपूरा सुखदाता, करन कारण समरथ स्वामी, पूर्ण पुरख बधाता रहाउ, आनंद बनोद मंगल गुण गावहु, गुरु नानक पए दयाला, जय जयकार पए जग भीतर, हुआ पार ब्रह्म रखवाला।

ताप गवाया भाई ठांड पई संसार अपने जी जंते आपे राखे जमह कियो हकतार हर के चरण हृदय उर तार सदा सदा प्रभ सिमरी है भाई दुख किल बिख काटन हार रहाओ तिसकी सरनी उबरै भाई जिन रखिया सब कोय करन कारण समरथ सो भाई सच्चे सच्ची सोए नानक प्रभु त्याई भाई मन तन शीतल होए चौथ महला पंजवा संत हो हर हर नाम त्याई सुख सागर प्रभ विसरो नाही मन चिंदियाड़ा फल पाई रहाओ सतगुर पूरे ताप गवाया।

हर का नाम आधारु नानक पात राखी परमेश्वर उदरिया सब संसारु सोठ महला पंजवा मेरा सत

आख्या पूरन पई वडाई पार ब्रह्म पूरा मेरे नाल गुरपूरे पूरी सब राखी हुए सर्व दयाल रहाओ अन दिन नानक नाम ते आए जी प्राण का दाता अपने दास को कंठ लाए राखे ज्यों बारिक पित माता सोठ महला पंजवा घर तीजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिल पंचो नहीं सहसा चुकाया सिकदारो नह पति आया उमराव हो आग्या तेरा मिल राजन रामन बेरा अब ढूंढन कतो ना जाई गोविंद भेटे।

ग्रह आई आनंद मंगल सुख पाई संतो राम नाम निस्तरी है उठत बैठत हर हर त्याई है आनंदिन सो कृत करी है।

रखवाला कर कृपा अपनी कर राखी मात पिता ज्यों पाला रहाउ वडभागी सतगुर पाया जिन जम का पंथ मटाया

कर कृपा अंतर जामी, दास नानक सरन स्वामी। सूरठ महला पंजवां, गुरपुरै चरनी लाया, हर

नावै अपना नाम आपे दिया प्रभ करन हार रख लिया हर दर्शन प्राण आधार।

सदा सुपहाई मन चिंदे सगले फल पावहु जी कै संग सहाई रहाउ नारायण प्राण आधारा।

मिल त्याई है मन बाछत फल पाई गुर पूरा हृदय त्याई गुर गोपाल आनंदा जप जप जीवे परमानंदा जन नानक नाम त्याया।

सर्व गुणा सुखदायो मंदर चरके पंथ निहारो नैन नीर भर आयो हाँ हाँ पीत भयो है बीचो सुनत दे।

जैसा बालक पाए सुपाई लख अपराध कमावे कार्य उपदेश चिड़के बहु भांति।

सब बिद जाने ता किस पह आख सुनाई है कहने कथन ना पीजे गोविंद हर पावे पैजर खाई है अवर ओट मैं सगली देखी एक तेरी ओट रहाई है।

हर हर नाम अवखद मुख पाया गन नानक सुख बसंती सोरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभ पये आनंदा दुख कलेश सब नाथे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना कारज सगले सांठे जग जीवन नाम तुम्हारा गुर पूरे दियो उपदेसा जप भौजल पारे उतारा रहाओ तू है मंत्री सुन है प्रभ तू है

प्रभु स्वामी पात मत कीनी पूरी सदा सदा नानक बलिहारी वांछो संतां धूड़ी सोठ महला पंजवां गुरपुरा नमस्कारी प्रभ सबे काज सवारी हरे अपनी किरपा धारी प्रभ पूरन पैज सवारी अपने दास को भयो सहाई सगल

प्रभु की अकथ कहानी जन बोले अमृत बाणी नानक दास बखानी गुरपुरे ते जानी सोठ महला पंजवां आदि।

मिल साध संग हर प्याया, आठ पहर अरादियो हर हर, मन चिंदिया फल पाया रहाऊ, परा पूर्बला अंकुर जागया, राम नाम मन लागया, मन तन हर दर्श

पास अपने की कार जे आप सवारी रहाओ मेरा प्रभ पर उपकारी पूर्ण कल दिन धारी नानक सरनी आया मन चिंदिया फल पाया सोठ महला पंजवां।

हर हर हर अरादु हर अराद सबो किश पाई कार्ज सगले साधु रहाव प्रेम भगत प्रबलागी तू पाए जिस वड भागी जन नानक नाम ते आया।

पन्ना आनंद करह नर नारी हर हर प्रभ कृपा तारी संतोह सुख हो आज सब थाई पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर राव।

सोई संत गुण गावे, प्रेम भगतता का मन लीना, पार ब्रह्म मन पावे, आठ पहर हर का जस रवना।

ता जो सिवरै तिसकी गत हुए उधर है सगले कोटा रहाउ संत संग जस गाया एहु पूरन हर तन पाया कहो नानक आप मटाया सब पार ब्रह्म।

गुरबाणी गावह पाई, ओह सफल सदा सुखदाई। नानक नाम ते आया, पूर्व लिखिया पाया, चौथ महला पंजवां, गुर पूरा आराधे, कार्य सगले साधे, सगल मनोरथ पूरे, बाजे अनहद तूरे, संत हो राम जपत सुख पाया, संत अस्थान बसे सुख सहजे, सगले दुख मिटाया, रहाउ गुरपूरे की बाणी, पार ब्रह्म मन पाणी, नानक दास वखाणी, निर्मल अकथ कहानी, चौथ महला पंजवां, भूखे खावत लाज ना आवे, त्यों हर जन हर गुण गावे, अपने काज को क्यों अलकाइए, जित सिमरन दरगाह मुख उज्जल, सदा सदा सु

कै पाणै दास बाणी ब्रह्म बखाणै नानक प्रभ सुखदाई जिन पूरी बणत बनाई सोठ महला पंजवा प्रभ अपना हृदय त्याई कर सही सलामत आई संतोख भया संसार।

हरे सगले दास को सुमत दीती रहाओ प्रव सगले तान वसाए सुख शांत फिर आए नानक प्रव सरनाए दिन सगले रोग मिटाए सोठ महला पंजवा सर्व सुखा का दाता सतगुर ताकी सरनी पाईए दर्शन भेट होते आनंदा दुख गया हर गाइए हर रस पीवो हो पाई नाम जप हो नामो अराध हो गुरपुरे की सरनाई रहा तिसे प्राप्त जिस तुर लिखिया सोई पूरन पाई।

सिमर माधो होहे पतत पनीत काल ब्याल ज्यो परयो डोले मुख पसारे मीत आज काल फुन तोहे ग्रस है समझ राखो।

सब मही अवर सगल मिथ्या ए जानो भजन राम को सही फिरत फिरत बहुते जोग हारियो।

उदरी ता को जस उरतारु रहाउ अटल पयो त्रू जा कह सिमरन हर निरपय पद पाया दुख हरता एह बिद को स्वामी तैं काहे बिसराया जब ही शरण गही कृपा निध

तिमर मोह मन रहो उरजाई रहाओ सगल जन्म परम ही परम खोयो नह अस्थिर मत पाई विख्या सकत रहो निस्बासुर नह छूटी अधमाई साध

पूत सनबंदी सगरे तन स्यों लागे जब ही निर्तन देखो नर कौ संग शाड सब भागे कहो कहा या मन बौरे को इनस्यों ने हो लगायो दीना नाथ सकल पै पंजन जसता को बिसरायो स्वान पूछ ज्यो भयो ना सूदो बहुत जतन मैं कीनो नानक लाज।

तू ठह लागे जन्मे अकारत थोयो कर पर पंच उदर निज पोखयो पश की न्याई सोयो राम भजन की गत नहीं जानी माया हाथ बिकाना उर्ज रहे हो बिखियन संग बौरा नाम रतन बिसराना रहे हो अचेत ना चेते हो गोविंद बिरथा औद सरानी कहो नानक हर बिरद पछानो।

हरख सोग ते रह नियारो नाहे मान अपमाना आसा मनसा सगल त्यागे जग ते रह निरासा काम क्रोध जेह परसै नाहन तेह घट ब्रह्म निवासा गुर कृपा जेह नर को कीनी तेह एह जुगत पछानी नानक ली।

बिंद सुख वास्ती नाम वसै सुख पाई जिहवा नेतर सोतर सच राती जल बूजी तुझ है बुझाई आस निरास रह बैरागी

मनमुख जंत दुख सदा निवासी गुरमुख दे वडियाई अपर अपार अगम अगोचर कहने कीम ना पाई सुन संवाद महा परमार्थ तीन पवन पत नामंग मस्त कलेख जिया जग जोनी सिर सिर लेख सहामंग कर्म सुकर्म कराए आपे आपे भगत दृढ़ामंग मन मुख झूठ लह पै मान आपे ज्ञान अगामंग जिन चाखिया से साध जानन ज्यों गुंगे मिठियाई अकथ का क्या कथिए भाई चालो सदा रजाई गुरदाता मेले ता मत होवे निगुरे मत ना काई ज्यों चलाए त्यों चाल है भाई होर क्या को करे चतराई एक भरम भला एक भगती राते तेरा खेल अपारा जित तुद लाए तेहा फल पाया तू हुक्म चलावन हारा सेवा करी जे कछ होए अपना जियो पिंड तुम्हारा सतगुरु।

प्यारे अमृत रसन हरे बूढ़े पारे पै बिना प्यारे तारे नदर करे पी तू है सलाहना प्यारे पी तेरी सलाह बिन बोहित पै डुबिय प्यारे कंदी पाए कहा रहाओ सालाही सालाहना प्यारे दूजा अवर ना कोई मेरे प्रभ सलाहन से भले प्यारे शब्द रते रंग होए किसकी संगत जे मिले प्यारे रस लै तत्व लोए पत परवाना साच का प्यारी नाम सच्चा निशान आया लिख ले जावना प्यारी हुक्मी हुक्म पछाण गुर बिन हुक्म ना बूझिए प्यारी साचे साचा तान हुक्मै अंदर निम्या प्यारी हुक्मै उधर मजार हुक्मै अंदर जम्या प्यारी उन्दो सिर के पार।

पुरतार सोरठ महला पहला पहला दुतुकी तू गुण दातो निर्मलो पाई निर्मल ना मन होय हम अपराधी निर्गुणे पाई

प्रभ तिनके जिन हर का नाम प्यारा गुर प्रसाद सदा मन वसिया सब काज सुवारन हारा उन्ना की रीस करे सो विगुच्चे जिन हर प्रभ है रखवारा बिन सतगुर सेवे किन ना पाया मन मुख भौंक मोए बिललाई आवह जावह ठौर ना पावह दुख मह दुख समाई गुरमुख होवै सो अमृत पीवै सहजे साच समाई बिन सतगुर सेवे जन्म ना छोड़ै जे अनेक कर्म करै अधिकाई वेद पढ़ै तै वाद बखाणै बिन हार पत गवाई सच्चा सतगुर साची जिस बाणी भज सूत है गुर सरनाई।

पंजवां घर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब जग जिन्ह उपाया पाई करण कारण समरथ जियो पिंड जिन साजिया पाई दे कर अपनी वथ किन कहिए क्यों देखिए पाई करता एक अकथ गुरु गोविंद सलाहिए पाई जिस ते जापै तथ मेरे मन जपिए हर भगवंता नाम दान दे जाने अपने दुख दर्द का हंता रहाओ जाके घर सब किछ है पाई नौ निद भरे भंडार तिसकी कीमत ना पवे पाई ऊंचा अगम अपार जी जंत प्रित पाल दा पाई नित नित कर दा सार सतगुर पूरा पेटिए पाई शब्द मलावन हार सच्चे चरण सरेविए पाई ब्रह्म पौ होए नास मिल संत सभा मन मांजिए पाई हर कै नाम निवास मिटै अंधेरा अज्ञानता पाई कमल होए प्रगास गुरबचनी सुख उपजै पाई सब फल सतगुर पास मेरा तेरा छोड़िए पाई होइए सब की तूर घट घट ब्रह्म पसारिया पाई पेखै सुनै हजूर जित दिन विसरै पार ब्रह्म पाई एत दिन मरिए चूर करन करावन समरथ हो पाई सर्व कला भरपूर प्रेम पदार्थ नाम है पाई माया मोह विनाश तिस पावै ता मेल लय पाई हिरदय नाम निवास गुरमुख कमल परगासी है पाई हृदय होवै परगास प्रगट भया प्रताप प्रभ पाई मौलिया तरत आकाश गुरपूरै संतोखिया पाई ऐन सलागा पाओ रसना राम रवै सदा पाई।

जिस पर तीत ना आवे पाई सो जियड़ा जल जाओ। बहु गुण मेरे साहिब भाई हौ तिसकै बल जाओ। वो निर्गुण आरे पालदा पाई देन थावे थाओ। रिजक संभाहे सास सास पाई गूड़ा जाका नाओ। जिस गुर साचा पेटी है पाई पूरा तिस करमाओ। तिस बिन घड़ी ना जीवी है पाई सर्ब कला भरपूर। सास ग्रास ना विसरै पाई पेखों सदा हजूर। साधु संग मिलाया पाई

हलत पलत सवारिया प्यारी मस्तक सच निशान सो प्रभ कदे ना विसरै प्यारी नानक सद कुर्बान सोरठ महला पंजवा घर दूजा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो निवल पोंगम साधे पंच जना स्यों संग ना छुटकियो अधिक हम बुद्ध बादे।

फिर जन्मे हर सिंह संग ना गया। राज लीला राजन की रचना करिया हुक्म अखारा। तेज सोहनी चंदन चोआ नरक कोर का।

कहो नानक तिस भयो परापत जिस पुरब लिखे का लहना तेरो सेवक एह रंग माता भयो कृपाल दीन।

ओरठ सदा सुहावनी जे सच्चा मन होए दंदी मैल ना कत मन जीवै सच्चा सोए ससुरै पेयै पैवसी सतगुर सेवन संग पर हर कपड़ जे पिर मिले खुशी रावै पिर संग सदा शिंगारी नाओ मन कदे

कर्म मणि सब सच महला चौथा सूरठ ताम स्वामणि जा हर नाम टंडोले गुरपुरख मनावै अपना गुरमती हर हर बोले हर प्रेम कसाई दिन सरात हर रत्ती हर रंग चोले हर जैसा पुरख ना लभई सब देखिया जगत मैं टोले गुर सत गुर नाम दृढ़ाया मन अनत ना काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सत गुर के गोल गोले पौड़ी तू आपे शिष्ट करता सिर जनहारिया तुदे आपे खेल रचाए तुदे आप सवारिया दाता करता आप आप भोगण हारिया सब तेरा शब्द वरतै उपावन हारिया हौ गुरमुख सदा सलाही गुर को वारिया सलोक महला तीजा हौ मैं जल ते जल मोए भ्रम आए दूजै पाए पूरे सतगुर राख लिए अपने पन्ने पाए एहो जग जलता नदरी आया गुर कै शब्द सुपाए शब्द रते से सीतल पए नानक सच कमाए महला तीजा सफलो सतगुर से।

फुरमाई और गुरमुख कार कमावा जे गुरु समझाई है। श्लोक महला तीजा पूर्व लिखिया कमावना जे करता है आप लिखियास मोहठ गौली पाइन विसरिया गुणतास मत जानो जग जीवंदा दूजे पाए मुहयास जिन्नी गुरमुख नाम ना चेते हो से बहन ना मिलनी पास दुख लागा बहुआत घना

वे सही चुक गया वे सास, नानक गुरमुखा नो सुख अगला, जिन्ना अंतर नाम निवास। महला तीजा, से सहन से सजना जे गुरमुख मिल है सुपाय, सतगुर का पाना अन दिन कर है से सच रहे समाय। दूजे पाए लगे सजन ना आखिए है, जे अभमान कर है वेकार, मन मुख आप स्वार्थी कार्ज ना सकह सवार। नानक पूर्व लिखिया कमावना कोई ना मेटन हार, पौड़ी तुदे आपे जगते अपाए कै, आप खेल रचाया त्रै गुण आप सिरजिया, माया मोह बधाया विच हों मैं लेखा मंगिए, फिर आवे जाया जिन्ना हर आप कृपा करे, से गुर समझाया बलिहारी गुर अपने, सदा सदा कुमाया।

मुख उबरे जिन्नी सच नाम चित लाया बिन नावे जग कमला फिरे गुरमुख नगरी आया तंदा करत्या निफल जन्म गवाया सुखदाता मन ना वसाया नानक नाम तिना को मिलया जिनको तुर लिख पाया महला तीजा घर ही मह अमृत भरपूर है मन मुखा साधना पाया ज्यों कस्तूरी मिर्ग ना जाने भ्रम दा भरम भुलाया अमृत तज बिक संग्रह करतै आप खवाया गुरमुख विरले सोजी पई तिना अंदर ब्रह्म दिखाया तन मन शीतल होया

हरे आपे से टसवार सिर तंदे लाए दा इक ना भगती लाए इक आप खुआए दा इक ना मार्ग पाए इक उजड़ पाए दा जन नानक नाम त्याए गुरमुख गुण गाइंदा श्लोक महला तीजा सतगुर की सेवा सफल है।

इस जग में नाम अलभ है, गुरमुख वसै मन आए, नानक जो गुर सेव है अपना, हों तिन बलिहारे जाओ। महला तीजा, मनमुख मन अजित है, दूजे लगे जाए, तिसनु सुख सुपने नहीं, दुखे दुख व्याय, कर कर पढ़ पढ़ पंडित थके, सिद्ध समाद लगाए, एहो मन वस न आवे, थके कर्म कमाए, भेख धारी भेख कर थके, अखट तीरथ नहाए, मन की सार ना जाननी, हों मैं परम पलाए, गुर प्रसादी भउ पया, बडभाग वस्या मन आए, पै पय मन वस हुआ, हों मैं शब्द जलाए, सच रति से निर्मले, ज्योति ज्योत मलाए, सतगुर मिले नाउ पाया, नानक सुख समाई पौड़ी।

पकड़ चलाया काल ता खरा ड्रामना ओ वेला हाथ ना आवे फिर पछतावना। श्लोक महला तीजा। सतगुर तेजो मोह फिरे से बत्ते दुख सहाय फिर मिलन ना पाए नी जमह तै मर जाए सहसा रोग ना छोड़ई दुख ही मह दुख पाए नानक नदरी बख्श ले शब्दे मेल मलाहे। महला तीजा। जो सतगुर ते मोह फिरे तिन्ना ठौर ना ठाउ ज्यों छुट्टड़ घर घर फिरे दुह चारन बदनाउ नानक गुरमुख बख्शी है जे सतगुर मेल मलाओ। पौड़ी। जो सेवह सत मरार से पवजल तर गया जो बोले हर हर नाऊ तिन जम छड़ गया ते दरगाह पैंदे जाहे जिन्ना हर जप लया हर सेवह से पुरख जिन्ना हर तुदमया गुण गावा प्यारे नित गुरमुख भ्रम पहु गया। श्लोक महला तीजा। थाले विच तै वस्तु पईओ हर भोजन अमृत सार जित खादै मन तृप्ती है पाईऐ मोख द्वार इहो भोजन अलभ है संतो लभै गुर विचार ए मदावनी क्यों विचों कढ़ीऐ सदा रखीऐ उर धार ए मदावनी सतगुरु पाई गुरसिखा लद्दी पाल नानक जिस बुझाए सो बुझसी हर पाया गुरमुख काल। महला तीजा। जो तुर मेले से मिल रहे सतगुर स्यों चित लाए आप विछोड़न से बिछड़े दूजे पाए खवाए नानक बिन कर्मा क्या पाईए पूर्व लिखिया कमाई। पौड़ी। बह सखियां जस गाव है गावन हारिया हर नाम सलाहे हो नित हर को बलिहारिया जिन्नी सुन मन्या हर नाम तिना हों वारिया गुरमुखियां हर मेल मलावन हारिया हों बल जावा दिन रात गुर देखन हारिया। श्लोक महला तीजा। विण नाम है सब परम दे नित जग तोता सहसार मन मुख कर्म कमावनी हूं मैं अंध गुबार गुरमुख अमृत पीवना नानक शब्द विचार। महला तीजा। सहजे जागे सहजे सोवे गुरमुख अन्न देने उस्तत होवे मन मुख परमे सहसा होवे अंतर चिंता नींद ना सोवे ज्ञानी जागह सवह सुपाए नानक नाम रतिया बल जाओ। पौड़ी। से हर नाम त्याव है जो हर रत्या हर एक त्याव है एक इको हर सत्या हर इको वरत एक इको उत्पत्या जो हर नाम त्याव है तिन दर सट कत्या गुरमति देव आप गुरमुख हर जपया। श्लोक महला तीजा। अंतर ज्ञान ना आय जित किस सोजी पाए विण डिठा क्या सलाही है अंधा अंध कमाए नानक शब्द पछाणी है।

लाभ सदा खटिया नाम अपार विख विच अमृत प्रगटिया कर्म पिया मनहार नानक सच सलाही है धन सवार नहार पौड़ी जिन्ना अंदर कूड़ वरतै सच ना पावई जे को बोले सच कूड़ा जल जावई कूड़े आरी रजै कूड़ जो विस्ता काग खावे जिस हार होए कृपाल सो नाम त्यावई।

लायु अंत दुख पहुताय आई अंदरों बाहरों अंधिया सुध न काई पाए पंडित तिनकी बरकती सब जगत खाए जो रत्ते हर नाय जिन गुर कै शब्द सलाहया हर स्यों रहे समाय पंडित दूजे पाए बरकत ना हो गई ना तन पल्ले पाए पढ़ थके संतोख ना आयो

पावड़ी हर सज्जन मेल प्यारी मिल पंथ दसाई जो हर दसे मेता किस हों बल जाई गुण सांझी तिन स्यों करी हर नाम त्याई हर सेवी प्यारा नित सेव हर सुख पाई बलिहारी सतगुर तिस जिन सोजी पाई। सलोक महला तीजा पंडित मैल ना चुकई जे वेद पढ़े जुग चार त्रै गुण माया मूल है विच हों मैं नाम विसार पंडित भूले दूजे लागे माया कै वापार अंतर तृष्णा भुख है मूर्ख भुखिया मोए गवार सतगुर सेवै सुख पाया सच्चै शब्द विचार अंदरों तृष्णा भुख गई सच्चै नाए प्यार नानक नाम रत्ते सहजे रज्जे।

पिच्छै सुख नहीं, मर जम्मै वारु वार, तृष्णा कदे ना बुझई, दुबदा हुए खुआर, मुह काले तिना निंदका, तित सच्चै दरबार, नानक नाम विहूणिया, ना उरवार ना पार पौड़ी, जो हर नाम ते आईंदे, से हर हर नाम रते मन माही, जिन्ना मन चेते एक अरादया, तिना एक सबिन दूजा को नाही, से पुरख हर सेम दे, जिन तुर मस्तक लेख लखाही, हर के गुण नित गाम दे, हर गुण गाए गुणी समझाही, वड्याई वड्डी गुरमखा, गुरपुरे हर नाम समाही, सलोक महला तीजा, सतगुर की सेवा गाखड़ी, सिर तीजै आप गवाए, शब्द मरह फिर ना मरह, ता सेवा पवे सब थाए, पारस परसे पारस हुए, सच रह लिवलाए, जिस पूर्व होए लिखिया, किस सतगुर मिले प्रभ आए, नानक गणतै सेवक ना मिले, जिस बख्शे सो पवै थाई, महला तीजा, महल कुमहल ना

नावै नू सब खोज दे थक रहे लिवलाई बिन सतगुर किने ना पायु गुरमुख मिले मिलाई बिन नावै पैनन खान सब बाद है तिग सिद्धि तिग करमात सा सिद्ध सा करमात है अचिंत करे जिस दात नानक गुरमुख हर नाम मन वसै एहा सिद्ध एहा करमात पौड़ी हम ढाडी हर प्रभ खसम के नित गावह हर गुण क्षमता हर कीर्तन करह हर जस सुनह तिस कवला कंता हर दाता सब जगत पिखारिया मंगत जन जनता हर देव हो दान दयाल हुए विच पाथर कृ

जम्मण मरना मिट गया, काले का किसना बसाई, हर सेती मन राव रहया, सच्चे रहे आसमाई, नानक हों बलिहारी तिनको, जो चलन सतगुर पाए महला तीजा, बिन शब्द शुद्ध ना होवे, जे अनेक करे श्रृंगार, फिर की सार ना जाने, दूजे पाए प्यार, साक सुत साक लखणी, नानक नारी विच कुनार पौड़ी, हर हर अपनी दया कर, हर बोली बैणी, हर नाम त्याई हर उच्चरा, हर लाहा लैणी, जो जपदे हर हर दिन सरात, दिन

नाम उपजै किसना भुख सब जाय नानक नामे रतिया नामो पल्ले पाए महला चौथा सतगुर पुरख जे मारिया प्रम प्रमया कर छोड़ गया उस पिछे वजै पकड़ी मुंह काला आ गै पया उस अरल बरल मोह निकले नित झगू सुतदा मोआ क्या होए किसे ही दह कीते जां तुर किरत उस दा एहो जेहा पया जिथे ओह जाए तिथे ओह झूठा कूड़ बोले किसे ना पावे वेखो भाई वड्याई हर संतो स्वामी अपने की जैसा कोई करे तैसा कोई पावे एहो ब्रह्म विचार होए दर साचे अगों दे जन नानक आख सुनावे पौड़ी गुर सच्चे बता थे हो रखवाले गुर दित्ते पूर्ण होई आस गुर चरनी मन रत्ते गुर किरपाल बेअन अवगुण सब हते गुरे अपनी किरपा धार अपने कर लिते नानक सद बलिहार जिस गुर के गुण इते सलोक महला पहला तां की रजाए लेख्या पाए अब क्या की जय पांडे हुक्म होआ हासल तदे होए लिपड़िया हंड है जी कमांदे महला दूजा नक नथ खसम हाथ किरत धके दे जहां दाने तहां खाने नानका सच हे पौड़ी सबे गल्लां आप हाट बहालियो न आपे रचन रचाए आपे ही काल्यो न आपे जनते उपाए आप प्रित पाल्यो न दास रखे कंठ लाए नदर निहाल्यो न नानक भगतां सदा आनंद भाओ दूजा जाल्यो सलोक महला तीजा ए मन हर जी त्याए तू एक मन एक चित पाए हर किया सदा सदा वड्याईया दे ना पछोताए हौ हर कै सद बलिहार ने जित सेवै सुख पाए नानक गुरमुख मिल रह हम मैं शब्द जलाए महला तीजा आपे सेवा लाए आपे बख्श करे।

तेन निज घर वास है, जुग जुग सुबा हुई पौड़ी। तू करन कारण समरथ है करती, मैं तुझ बिन अवर ना कोई। तुदे आपे सिष्ट सिद्धिया, आपे फुन गोई। सब इको शब्द वर्तदा, जो करे सो होई। वडियाई गुरमुख दे प्रप, हर पावे सोई। गुरमुख नानक आराध्या, सब आखो धन धन धन गुर सोई। शुद्ध राग सोरठ बाणी भगत कबीर जी की, घर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद बुत पूज पूज हिंदू मुए,

संसार अंध गहेरा चौ दिस पसरियो है जम जेवरा रहाउ कबत पड़े पड़ कबता मुए कपड़ किदा रह जाई जटा तार तार जोगी मुए तेरी गत इन्हें ना पाई दर्भ संच संच राजे मुए गडले कंचन भारी बेल पड़े पड़ पंडित मुए।

पर माहे लिखे ब्रह्म ज्ञानी कहो कबीर जन पये खालसे प्रेम भगत जे जानी कर दूजा दोए

ना जाई। हमरा भरम गया पहु भागा, जब राम नाम चित लागा। रहाउ बाजीगर डंक बजाई,

तुम राम न कर सपतारा, जग जीवन प्राण आधारा, रहाउ तेरे गलह तौक पग बेरी, तुम घर घर मई।

जित लाई तित लागी चेरी तै समत कहा ते पाई जाते भ्रम की लीक मटाई सो रस कबीर जानिया मेरो गुर प्रसाद मन मानिया जे बाज ना जिया जाई जो मिले ता काल अगाई सद जीवन भलो कहाही मुए बिन जीवन नाही अब क्या कथिया ज्ञान बिचारा निज निरखत गत व्यवहारा रहाओ कस कुंकम चंदन गारिया बिन नैन हो जगत निहारिया पूत पिता एक जाया बिन ठाहर नगर बसाया।

तो पंच सैल सुख माने कबीर है सो धन पाया हर भेदत आप मिटाया क्या पढ़ी है क्या गुनी है क्या वेद पुराना सुनी है पढ़े सुने क्या होई जो सहज ना मिलो सोई हर का नाम ना जप सगवारा क्या सोच है बारंबारा रहाओ अंधियारे।

मन पवन सुख बनिया किस जोग प्राप्त गनिया रहाउ गुर दिखलाई मोरी जित मिर्ग पड़त है चोरी मूंदलिए दरवाजे बाजी अले अनहद बाजे कुंभ कमल जल भरिया जल मेटिया उभा करिया कहो कबीर जन जानिया जो जानिया तो मन मानिया।

तह अनहद शब्द बजंता ज्योति ज्योत समानी मैं गुर प्रसादी जानी रतन कमल कोठरी चमकार भी जुल तही मेरे नाही दूर निज आत्म रहया भरपूर।

मिल पारस कंचन होया, मुख मन सारतन परोया, निज पाओ पया ब्रह्म भागा, गुर पूछे मन पति आगा, जल पीतर

नाही। अनल अगम जैसे लहर मैं उदद जल केवल जल माही। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा जैसा मानिए होए ना तैसा रहा। नरपत एक संघासन सोया सुपने पया पेखारी। अच्छत राज बिसरत दुख पाया सो गत पई हमारी। राज पोयंग प्रसंग जैसे है अब कछ मर्म जनाया। अनक कटक जैसे भूल परे अब कहते कहन ना आया। सर्वे एक अनेक स्वामी सब कट भोग वै सोई। कह रविदास हाथ पै नीर सहजे हुए सो होई। जो हम बांधे मोह फास हम प्रेम बंधन तुम बाधे। अपने छूटन को जतन करो

सब जगत व्यापियो भगत नहीं संतापा कह रविदास भगत एक बाडी अब एह का स्यो कही है जा कारण हम तुम आराधी सो दुख अजबू सही है दलभ जन्म पुन फल पायो बिरथा जात अब बिकै राजे इंद्र समसर ग्रह आसन बिन हर भगत कहो केह लेख ना बिचारियो राजा राम को रस यह रस अनरस बीसर जाही रहाओ जान अजान पय हम बावर सोच असोच दिवस जाही इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नहीं कहियत ज्ञान अचरियत अनकश समझना पर अपर माया कह रविदास उदास दास मत पर हर कोप करहो जी दया सुख सागर सुरतर चिंता मन काम तेन बस जाके चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध नवनिध कर तलता की हर हर हरना जपह रसना अवर सब त्याग वचन रचना रहाओ नाना ख्यान प्राण बेद बिद चौतीस अखर माही व्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सरनाही सहज समाद उपाद रहत फुन बड़े भाग लिव लागी कह रविदास प्रगास हृदय धर जन्म मरण पै भागी जो तुम गिरवर तो हम मोरा जो तुम चंद तो हम पये है चकोरा माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरह तुम स्यो तोर कमन स्यो जो रह रहा जो तुम दीवरा तो हम बाती जो तुम तीरथ तो हम जाती साची प्रीत हम तुम स्यो जोरी तुम स्यो जोर अवर संग तो।

वेदन उपज खरी पई वाकाय औखद नाही हर का नाम अमृत जल निर्मल एहो औखद जग सारा गुर प्रसाद कह जन।

भावै सब आखो संसार, तुद भावै अद्धि परवान, नानक जाने जान सुजान, तनासरी महल।

यो जुगत पछाणे गुर प्रसादी एको जाने काजी सो जो उल्टी करे गुर प्रसादी जीवत मरे सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे आप तरे सगले कुल तारे दान संबंध सोई दिल तोवे मुसलमान सोई मालक होवे पढ़िया बूझे सो परवान जिस सिर दरगाह का निशान तनासरी महला पहला कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद काल नाही जोग नाही नाही सत का टप था नष्ट जग प्रित होए डूबता इव जग तल मह राम नाम सार अखी ता मीट है नाक पकड़ है ठगण को संसार रहाओ आठ सेती नाक पकड़ है सूझते तिन लो मगर पाचे कछ ना सूझे एहो पदम अलो खतरिया ता धर्म छोड़िया मलेश भाख्या गही श्रेष्ठ सब एक वर्ण होई धर्म की गत रही अष्ट साज साज प्राण सोदह करह वेद अभ्यास बिन नाम हर के मुक्त नाही कह नानक दास तनासरी महला पहला आरती एक ओंकार सतगुर प्रसाद गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल आलो पवन चवरो करे सगल बनराए फूलंत ज्योति ऐसी आरती होए भाव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द।

गुरमती घट प्रगट होए, सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया, नानक नाम मिले मन मानिया। तनासरी महला तीजा, हर नाम तन निर्मल अत अपारा, गुर कै शब्द परे भंडारा, नाम तन बिन होर सब बिख जान, माया मोहे जले अभमान, गुरमुख हर रस चाखै कोई।

मन धोए, साची भगत सदा सुख होए। जिन हर रस चाखिया सो हर जन लोग, किस सदा हरख

बिन सतगुरु सब मुई बिल लाए, अन दिन दा जह शांत ना पाए। सतगुर मिले सब त्रिशन बुझाए, नानक नाम शांत सुख पाए। तनासरी महला तीजा, सदा धन अंतर नाम संभाले, जी जंत जिन्हें प्रतपाले।

जन निर्मल होए, अंतर नाम बसे पात उत्तम होए। रहाओ गुरमुख उबरे हर सरनाई, राम नाम राते भगत दृढ़ाई। भगत करे जन वडियाई पाए, काच रते सुख सहज समाए।

कूड़क सत तृष्णा यज्ञ बुझाए, अंतर शांत सहज सुख पाए, गुर कै भाणे चले ता आप जाए, साच महल पाए हर गुण गाए, ना शब्द बूझे ना जाने बाणी,

क्या पावा तना श्री महला तीजा। मन मरे तात मर जाए, बिन मन मुए कैसे हर पाए। यो मन मरे दारू जाने कोए, मन शब्द मरे बूझे जन सोए। जिसनो बख्शे हर दे बढ़ियाई, गुर प्रसाद वसे मन आई। रहाव गुरमुख करनी कार कमावे, ता इस मन की

नानक गुरमुख नाम पछाणे तनासरी महला तीजा काका तन संचह मूर्ख गवार मनमुख भूले अंध गवार बिख्या कै तन सदा दुख होए ना साथ जाए ना प्राप्त होए साचा तन गुरमति पाए काचा तन हुनिया वै जाए रहाव मनमुख भूले सब मरह गवार भव जल डूबे ना उरवार ना पार सतगुर भेटे पूरै भाग साच रखे अहनस बैराग चहो जोग मह अमृत सा।

चाहे सोवे, उत्तम ब्रह्म पछाणे कोई। सच साचा सच आप दिरड़ाए, नानक आपे वेखे आपे सच लाए। तना श्री महला।

लाए, गुरमत साची साचा विचार, आपे बख्शे दे विचार, हर नाम अचरज प्रभ आप सुनाए, कली काल विच गुरमुख पाए, रहाओ हम मूरख मूरख मन माहे, हम मैं विच सबकार कमाहे, गुर प्रसादी हम मैं जाए, आपे बख्शे लए मलाए, भिख्या का तन बहुत अभमान, अहंकार डूबे ना पावे मान, आप छोड़ सदा सुख होई, गुरमत सालाही सच सोई, आपे साजे करता सोए, तिस बिन दूजा अवर ना कोई, जिस सच लाए सोई लागे, नानक नाम सदा सुख आगे, राग तनासरी महला तीजा कर चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हम भीखक पे खारी तेरे, तू निज पत है दाता, हो दयाल नाम देहो मंगत जन को, सदा रहो रंग राता, हम भले

किरपन को अब किस कृपा की जय हो दयाल दर्शन दे हो अपना ऐसी बख्श करी जय पंत नानक परम पट खुले गुर प्रसादी जानिया साची लिव लागी है पीतर सत गुर सिंह मन मानिया तनासरी महला चौथा घर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो हर सेव है संत भगत तिनके सब पाप निवारी।

हर जपना हर संत चले हर नाली जिन हर जपया से हर हुए हर मिलया केल के लाली हर हर जपन जप लोच लुचानी हर कृपा कर बनवाली जन नानक संगत साध हर मेलो हम साध जना पगराली तनासरी महला चौथा हर हर बूंद पए हर स्वामी हम चात्रिक बिलल बिल लाती हर हर कृपा करो प्रभ अपनी मुख देव हो हर निमखाती हर बिन रह ना सको एक राती ज्यो बिन अमलै अमली मर जाई है त्यों हर बिन हम मर जाती रहा तुम हर सरवर आते अगाह हम लह ना सक है अंत माती तू परे परे अपरंपर स्वामी मित जानो आपन गाती हर के संत जना हर जपेओ गुर रंग चलो लहराती हर हर भगत बनी अत सुबा हर जपेओ उत्तम पाती आपे ठाकुर आपे सेवक आप बनावे पाती नानक जन तुमरी सरनाई हर राखो लाज पगाती तनासरी महला चौथा कर युग का धर्म कहो तुम पाई के विशुत है हम छुटका की हर हर जप बेड़ी हर तुलहा हर जपे हो तरह तरा की हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपावो हो अपना हम मांगी भगत एकाकी रहा हर के सेवक से हर प्यारे जिन जपियो हर बचना की लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया सब छूटी जम की बाकी हर के संत जपियो मन हर हर लग संगत साध जना की दिनियर सूर तृष्णा अग्न बुझानी शिव चरयो चंद चंदा की तुम वड पुरख।

दास दसा की तनासरी महला चौथा घर पंजवा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद उरतार विचार मरार रमो रम मनमोहन नाम जपीने अदृष्ट अगोचर अपरंपर स्वामी गुरपुरै प्रगट कर दीने राम पारस चंदन हम काष्ट लोस हर संग हरि सतसंग भये हर कंचन चंदन कीने रहाओ नव से खत बोल है मुख आगर मेरा हर प्रभ इव नाप कीने जन नानक हर हिरदय सद त्याव हो इउ हर प्रभ मेरा पीने तनासरी महला चौथा गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुर इव हर हर नाम त्याई हर दरगह पावे है फिर जन्म ना आवे है हर हर हर ज्योत समाई जप मन नाम हरी हो हे सर्व सुखी।

कर दीजै। नानक हर सिमरन का है चाव, तना श्री महला चौथा। सेवक सिख पूजन सब आवे है, सब गावे है हर हर उत्तम बानी। गावया सुनिया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मान।

हर कथा जिन जनहु जानी रहाओ आपे गुर चेला है आपे आपे हर प्रभु चोज वडानी जन नानक आप मलाए सोई हर मिलसी अवर सब त्याग ओहा हर पानी तनासरी महला चौथा इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर जा कै वस है काम तीना सो ऐसा हर त्याय मेरे जियड़े ता सर्व सुख पावे मेरे मना जप मन सत नाम सदा सत नाम हलत पलत मुख उज्जल हुई है नित त्याय हर पुरख निरंजना रहाओ जह हर सिमरन भया तह अपाद गत कीनी वड भागी हर जपना जन नानक को गुर एह मत दीनी जप हर पवजल तरना।

प्यारी सब तुझ त्यावह मेरे साह ज्यो भावै त्यों रख तू मेरे प्यारे सच नानक के पातशाह तनासरी महला पंजवां घर पहला चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद भव खंडन दुख पंजन स्वामी भगत वचल निरंकारी कोट पराध मिटे खिन भीतर।

लकिया तेरी कुदरत कौन बिचारे जल थल महियल रविया सरब ठाई अगम रूप गिरधारे कीर्त करह सगल जन तेरे तू अबनासी पुरख मरारे ज्यों पावे त्यों राखो स्वामी जन नानक सरन द्वारे तनासरी महला पंजवा दिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल स्यों हेत बढ़ायो

मन गायो भयो परगास सदा सुख मन मह सतगुर पूरा पायो रहाओ गुण निदान रिद भीतर वसिया ता दुख भरम भउ भागा भई परा।

सुख सुबा बाजे अनहत बानी कहो नानक निश्चल घर बांधियो गुर कियो बंधानी तनासरी महला पंजवा वड्डे वड्डे राजने अर भूवन ताकि त्रिशन ना बूजी लपट रहे माया रंग माते लोचन कशु ना सूजी बिख्या मह किन्हीं त्रिपत ना पाई ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रापै बिन हर कहां अगाई रहाओ दिन दिन करत भोजन बहु बिंजन ताकि मिटै ना भूखा।

पूजा ऐसी दृढ़ी विपरीत माया मोह भूलो अवरहित हर चंदौरी बन हर पातरे यह तुहारो बीत रहाओ चंदन लेप होत देखो सुख गर्दभ भस्म संगीत अमृत संग ना।

केल वेख दुख भागे गुर ज्ञान अंजन नेत्र दीत साध संग इन दुख ते निकसेओ नानक एक परीत तनासरी महला पंजवां पानी पक्का पीसो संत आगे गुण गोविंद जस गाई सास सास मन नाम सम

सदा सदा तुध त्याई रहाओ। तुमरी कृपा ते मोह मान छूटे, बिन सजाए परमाई अंध रूप रवे ओ सब मदे।

आनंद राज पाए मुकटे निमुख बुलाई जाप ताप भगत सा पूरी जो प्रभ कै मन पाई नाम जपत कृष्णा सब बुझी है नानक त्रिपत अगाई तनासरी महला पंजवां जिन कीने वस अपने त्रै गुण पवन चतुर संसारा जग इशनान ताप थान खंडे क्या एहो जंत विचारा प्रभ की ओट गही तो छूटो साध प्रसाद हर हर हर गा।

दीठी ऐसी ठगौरी पाए पलावे मन सब कै लागे मीठी माए बाप पूत हित प्राता उन घर घर मेले ओ दुआ किस ही वाद घाट किस ही पह सगले लर लर मुआ हौ बलिहारी सतगुर अपने जिन ओह चलत दिखाया गूजी पाहे जले संसारा भगत ना व्यापै माया संत प्रसाद महा सुख पाया सगले बंधन काटे हर हर नाम नानक धन पाया अपने घर ले आया खाते तनासरी महला पंजवा तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे निमख निमख तुम ही प्रतपालो हम बारिक तुमरे तारे।

कोट पराध हमारे खंडो हो, अनक विधि समझाव हो, हमे अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम आपन बिरद रखाव हो, तुमरी शरण तुम्हारी आस्था, तुम ही सजन सोहेले, राखो राखन हार दयाला।

फिर मोल कहार जास तिन पायो जिस किरपैन साध संग रंग प्रभ पेटे नानक सुख जन रैन तनासरी मा

मन एकै मन विश्वास प्रभ धारिया चरण रीन बांछै नित नानक पुनः पुनः बलिहारिया तनासरी महला पंजवां मेरा लागू राम स्यों हेत सतगुर मेरा सदा सहाय दिन दुख का

अवतार तेरी शरण पया हो जीवा तू सम्राट पुरख मेहरवान आठ पहर प्रभ को आरादी नानक सद कुर्बान राग तना श्री महल।

काल आन संयम किछ ना सूझै ए जतन काट कल काल रहाउ आद अंत दयाल पूरन तिस बिना नहीं कोय जन्म मरण निवार हर जप सिमर स्वामी सोय वेद।

कथै शास्त्र भगत करहै विचार मुक्त पाइय साध संगत बिनस जाए अंधार चरण कमल आधार।

पधारन सब कुल तारन हर हर नाम त्याय नानक नाम निरंजन गाइय पाइय सर्ब निधाना कर कृपा जिस दे स्वामी बिरले काहू जाना तनासरी महला पंजवा कर दूजा चौपदे

रहाओ। साध की शोभायत मचकीनी, संत वडाई हर जस कीनी। आनंद संतन कै भगत गोविंद, सुख संतन कै बिनसी चिंद। जह साध संतन होवह एकत्र, तह हर जस गावह नाद कवित। साध सभा मह आनंद विश्राम, उन संग सो पाई जिस मस्तक कराम।

रास मिल साध संगत होवत परगास जीयन का दाता पूर्ण सब ठाए कोट क्लेश मिटह।

तू करह करावह स्वामी सा मसलत प्रवान रहाव पत परमेश्वर गत नारायण धन गोपाल गुण साखी चरण सरन नानक दास हर हर संति ए बिद जाति तनासरी महला पंजवा सगल मनोरथ प्रभ ते पाए कंठ लाए गुर राखे संसार सागर मह जलन ना दीने किने ना दुत्तर पाखे

अराध हर के प्रीतम साध जां कै संग तेरे बंधन छूटे गहो पार ब्रह्म सरन हृदय कमल चरण अवर आस कस पटल ना कीजे सोई भगत ज्ञानी ध्यानी तपा सोई नानक जां को कृपा कीजे तनासरी महल।

साध जन तन धन आपन थापियो हर जापना निमुख जापियो अर्थ द्रव देख कस संग नाही चलना जा को रे कर्म भला तिने ओट गही संत पल्ला तिन नाही रे जम संतावै साधु की संगना पायो रे परम निदान मिट्यो है अभमान एक निरंकार नानक मन लगना तनासरी महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारी काल कलेश लोभ मोह महा भौजल तारी रहाओ सास सास निमुख निमुख दिन सरहन चितारी साध संग जपन संग मन निदान तारी चरण कमल नमचकार गुण गोविंद बिचारी साध जना की रेन नानक मंगल सुख सधारे तनासरी महला पंजवा घर अठवा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिमरो सिमर सिमर सुख पावो सास सास संभाले एह लोक परलोक संग सहाय जत कत मोहे रख।

निरतन कौ तन अंदले कौ टिक मात दूध जैसे बाले सागर मैं बोहित पायो हर नानक करी कृपा कृपाले। तनासरी महला पंजवा पये कृपाल दयाल गोविंदा अमृत हृदय सिंचाई नवनित रिद सिद्ध हर लाग रही जन पाई संतन को अंध सगल ही जाई ग्रह बाहर ठाकुर भगतन का।

कर आई। संत अनुग्रह पए मन निर्मल नानक हर गुण गाई। तनासरी महला पंजवा जाको हर रंग लागो इस युग में सो कहियत है सूरा। आत्म जिने सगल वस ताकै जाका सतगुर पूरा।

मन भरमा तब लग मुक्त ना कोई। कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई। तनासरी महला पंजवा नाम गुर दियो है अपने जां कै मस्तक करमा। नाम दृढ़ावै नाम जपावै ताका जुग मह धर्मा।

जिस जन कह पाले सोई पूरा साहा नाम व्यवहारा नानक अधारा नाम प्राप्त लाहा तनासरी महला पंजवा नेत्र पनीत पय दर्श पेखे माता परो रवाल रस रस गुण

मिलै नानक संत सेवा तनासरी महला पंजवा संत कृपाल दयाल दमोदर काम क्रोध बिख जारी राजमाल जोबन तन जियरा इन ऊपर लै बारी मन तन राम नाम हितकारी सुख सहज आनंद मंगल सहत भवनिध पार उतारी रहाओ तन सो थान ताने ओए भवना जा मह संत बसारे जन नानक की श्रद्धा पूरो ठाकुर भगत तेरे नमस्कारे तनासरी महला पंजवा छड़ाए लियो महाबली ते अपने चरण परात एक नाम दियो मन मंता बिनस ना कतहु जात सतगुर पूरै कीनी दात हर हर नाम दियो कीर्तन को पई हमारी गात रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने भगतन की राखी पात नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात तनासरी महला पंजवा पर हर ना लोभ झूठ निंद इव ही करत गुदारी मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी एह टेक मन है साधारी साकत की आवरदा जाए बिरतारी जैसे कागद के पार मूसा टूक गवावत काम नहीं गवारी रहाऊ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी एह बंधन छुटकारी बूढ़त अंध नानक प्रभ काढ़त साध जना संगारी तनासरी महला पंजवा सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना शीतल तन मन छाती रूप रंग सुख धन जी का पार ब्रह्म मोरै जाति रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम अपने कै चरण कमल निध थाती रहाओ।

नानक आनंद पये दुख भागे सदा सदा हर जाप। तनासरी महला पंजवा चतुर दिशा कीनो बल अपना सिर ऊपर कर धारियो कृपा कटाक अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारियो हर जन राखे गुरु गोविंद कंठ लाए अवगुण सब मेटे दयाल पुरख बख।

काल सर्ब मनोरथ राज सुख रस सद खुशियां कीर्तन जप नाम जिसकै कर्म लिखिया तुर करतै नानक जन के पूर्ण काम। तनासरी महला पंजवा जन की कीनी पार ब्रह्म सार निंदक टिकन ना पावन मूले उड़ गए बेकार रहाउ जह जह देखो तह तह स्वामी कोए ना पहुंचन हार जो जो करे अवग्या जन की होए गया तत्सार करन हार रखवाला हुआ जाका अंत न पारावार नानक दास रखे प्रभ अपने निंदक काडे मार। तनासरी महला पंजवा घर नौवां पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर चरण सरण गोबिंद दुख भंजना दास अपने को नाम देव हो दृष्ट प्रभ धारु हो कृपा करतारु हो पुजा गह कूप ते काढ लेव हो रहाउ काम क्रोध कर अंध माया के बंद अनक दोखा तन शाद पूरे प्रभ बिना आन ना राखन हारा नाम सिमराव हो सरन सूरे पतत उदारना जी जंत तारना वेद उचार नहीं अंत पायो गुण है सुख सागरा ब्रह्म रत्नागरा भगत वत्सल नानक गायो। तनासरी महला पंजवा हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरनो नाम गोविंद का सदा लीजै मिटह कमाणी पाप चिराणी साध संगत मिल मुआ जीजै रहाउ राज जोगन बिसरंत हर माया महा दुख एहो महात कह आस प्यास रमन हर कीर्तन एहो पदार्थ भागवंत लह सरल समरथ अकथ अगोचरा पतत उदारन नाम तेरा अंतर जामी नानक के स्वामी सर्भक पूर्ण ठाकुर मेरा। तनासरी महला पंजवा घर बारवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय रहाउ बड़े भाग भेटे गुरदेवा कोट पराद मिटे हर सेवा चरण कमल जाका मन रापै सोग अगन किस जन ना व्यापै सागर तरिया साधु संगे निरपौ नाम जपो हर रंगे पर धन दुख किस पाप ना फेड़े जम जंदार ना आवै नेड़े कृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई नानक उदरे प्रभ सरनाई। तनासरी महला पंजवा त्रिपत भई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम ते आया जीवना हर जीवना जीवन हर जप साध संग रहाउ अनक प्रकारी बस्तर ओढ़ाए अन दिन कीर्तन हर गुण गाए हस्ती रथ अस असवारी हर का मार्ग हृदय निहारी मन तन अंतर चरण त्याया हर सुख निदान नानक दास पाया। तनासरी महला पंजवा गुर के चरण जी का निस्तारा समुंद सागर जिन खिन महतारा रहाउ कोई हुआ क्रम रात कोई तीर्थ नाया दासी हर का नाम त्याया बंधन काटन हार स्वामी जन नानक सिमरै अंतर जामी।

हर देवन हारा, चरण कमल स्यो लागो नेहो, नानक की बेनंती एह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तनासरी महला नवा, काहे रे बन खोजन जाई, सर्ब नवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई रहाओ, पोह पमाद ज्यो बास बस्त है, मुकर माहे जैसे शाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, काट ही खोजो पाई, बाहर पीतरे को जानो, एह गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीनै, मिटै ना भ्रम की काई, तनासरी महला नौवां, साधो एहो जग भरम भलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया, माया हाथ बिकाना रहाओ, मात पिता भाई सुत बनता, तां कै रस लपटाना, जोगन धन प्रभता कै मद में, अहनस रह देवाना, दीन दयाल सदा दुख भंजन, तां स्यो मन ना लगाना, जन नानक कोटन मैं किन्हू, गुरमुख होए पछाना, तनासरी महला नौवां, तेह जोगी को जुगत ना जानो, लोभ मोह माया ममता फुन, जेह घट माहे पछानो रहाओ, पर निंदा उस्तत नह जाके, कंचन लोह समानो, हरख सोग ते रह अतीता, जोगी ताहे बखानो, चंचल मन दह दिस को तावत, अचल जाए ठहरानो, कहो नानक एह बिद को जो नार, मुक्त ताहे तुम मानो, तनासरी महला नौवा, अब मैं कौन उपाऊ करूं, जेह बिद मन को संसा चूकै, पौ निध पार परो रहाओ, जन्म पाए कछ परो ना कीनो, ताते अधिक डरो, मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच धरो, गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजियो, पास ज्यो उदर भरो, कहो नानक प्रभ बिरत पछानो, तब हो पतत तरो, तनासरी महला पहला कर दूजा अष्टपदियां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुरसागर रतनी परपूरे, अमृत संत चुगह नहीं दूरे, हर रस चोग चुगह प्रभ पावे, सर्वर मह हंस प्राण पत पावे, क्या बग बपड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबे मैल ना जाए रहाओ, रख रख चरण तरे विचारी, दुबदा छोड़ पए निरंकारी, मुक्त पदार्थ हर रस चाखे, आमन जान रहे गुर राखे, सर्वर हंसा छोड़ ना जाए, प्रेम भगत कर सहज समाए, सर्वर मह हंस हंस मह सागर, कथ कथा गुर बचनी आदर, सुन मंडल एक जोगी बैसे,

आधारी गुरमुख भगत सहज बिचारी भगत वछल पै काटन हारे हौ मैं मार मिले भगत हारी अनक जतन कर काल संताए मरन लखाए मंडल मह आए जन्म पदार्थ दुबदा खोवे आप ना तीनस भ्रम भ्रम रोवे कहतो पढ़तो सुनतो एक तीर्ज धर्म तरनी तर टेक जत सत संयम हृदय समाए चौथे पद को जे मन पति आए साचे निर्मल मैल ना लागे गुर कै शब्द भरम पौ भागे सूरत मूरत आद अनूप नानक जाचै साच स्वरूप तनासरी महल।

दास मह सोई, जह देखा तह अवर ना कोई। गुरमुख भगत सहज घर पाईए, बिन गुर भेटे मर आईए जाइए रहाउ। सो गुर करो जे साच दरड़ावे, कथ कथावे शब्द मलावे। हर के लोग अवर नहीं कारा, साचो ठाकुर साच प्यारा। तन मह मनु

साखी है, सचगुर की साखी अमृत भाखी। तित मन मानिया मेरा, पूज करह आवह बेखला दे। शब्द सच्चा गुर मेरा, आखण तोट ना भगत पंडारी। भरपुर रहे सोई, नानक साच कह बेनंती। मन मांजै सच सोई, तनासरी महला पहला। जीवा तेरे नाए, मन आनंद है जियो। साचो साचा नाओ, गुण गोविंद है जियो। गुर ज्ञान अपार।

लेख है, आपे सुरत बुझाई, नानक साहेब अगम अगोचर, जीवा सच्ची नाई, तुम सारे अवर ना कोए, आया जायसी जियो, हुक्मी होए नबेड़, परम चुकाए सी जियो, गुर परम चुकाए अकथ कहाए, सच मह साच समाना, आप अपाए आप समाए, हुक्मी हुक्म पछाणा, सच्ची वडियाई गुर ते पाई, तू मन अंत सखाई, नानक साहिब अवर ना दूजा, नाम तेरे वडियाई, तू सच्चा सिरजनहार, अलख सिरंदिया जियो, एक साहिब दोए राह, बाद वदंदिया जियो, दोए राह चलाए हुक्म सबाए, जन्म मुआ संसारा, नाम बिना नाही को बेली, बेखला दी सिर पारा, हुक्मी आया हुक्म ना बूझे, हुक्म सवारन हारा, नानक साहिब शब्द सियापे, साचा सिर जनहारा, भगत सोह है दरबार, शब्द सोहाया जियो।

अंत गया पछतावे बिन नावे को साथ न चाले पुत्र कलत्र माया धोया दूजे भाई दुख होए मन मुख जम जोहया जियो कर किरपा ले हो मलाए महल हर पाया जियो सदा रह कर जोड़ प्रभ मन पाया जियो प्रभ मन पावे ता हुक्म समावे हुक्म मन सुख पाया आन दिन जपत रह दिन राती सहजी नाम ते आया नामो नाम मिली वडियाई नानक नाम मन पावे कर किरपा लिहो मलाए महल हर पावे जियो नासरी महला पंजवां शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर दीन दयाल जिस संग हर गावी है जियो अमृत हर का नाम साध संग रावी है जियो पाज संग साधु एक अरादु जन्म मरण दुख नासे तुर कर्म लिखिया साच सिखिया कट्टी जम की फासे पै परम नाठे छुट्टी गाठे जम पंथ मूल ना आवी है बिनवंत नानक।

दिन जागया। सद सदा सिमरतभ्य स्वामी सास सास गुण बोलई, बिनवंत नानक धूर साधु नाम प्रभु अमोलई। राग तलासरी बाणी भगत कबीर जी की, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद, सनक सनंद महेश समाना, सेख नाग तेरो मर्म ना जाना, संत संगत राम हृदय बसाई, रहाउ हनुमान सर गरुड़ समाना, सुरपत नरपत नहीं गुण जाना, चार वेद अर सिमरत पुराना, कमला पत कबला नहीं जाना, कह कबीर सो पर मैं नाही, पग लग राम रह सरनाही, दिन ते पहर पहर ते घड़िया, आप कटै तन सीजै, काल एहेरी फिरै बदक ज्यो, कहो कवन बिद कीजै, सो दिन आवन लागा, मात पिता भाई सुत बनता, कहो को है काका, रहाउ जब लग जोत काया मह बरतै, आपा पशु ना बूझै, लालच करै जीवन पद कारण, लोचन कशु ना।

तीन भव सगल चुकाई है, कहत नाम देव बाहर क्या भरम हो, यह संजम हर पाई है। मारवाड़ जैसे नीर बालहा, बेल बालहा करहला, जो करंक निस नाद बालहा।

ज्यो धरनी को इंद्र बालहा कुसुम बास जैसे भवरला ज्यो कोकिल को अंब बालहा त्यो मेरे मन रामैया चकवी को जैसे सूर बालहा मान सरोवर हंसुला ज्यो तरनी को कंत बालहा त्यो मेरे मन रामैया बारक को जैसे खीर बालहा चात्रक मुख जैसे जल तरा मछली को जैसे नीर बालहा त्यों मेरे मन रामैया साधक सिद्ध सगल गुण चाहे बिरले काहू डीठला सगल पवन तेरो नाम बालहा त्यों नामे मन बीठला पहल पुरिये पुंडरक वना तांचे हंसा सगले जना कृष्णा ते जानू हर हर नचंती नाचना पहल पुरसा बिरा अथोन पुरसा दमरा असगा अस उसगा हरका बागरा नाचै पिंडी महसागरा रहाऊ।

नगाई पयो उजियारो पवन सगलारे नाम तेरो तागा नाम फूल माला पार अठारहा सगल जूठारे तेरो किया तुझह क्या अर्पों नाम तेरा तुही चवर टोलहारे दस अठा अठ सठे चारे खानी यह बर्तन है सगल सं

कर्मरी रहाव शंकर मस्तक बस्ता सुरसरी स्नान रे कुल जन मधे मिलियो सार्ग पान रे कर्म कर कलंक मफीत सरी विश्व का दीपक स्वामी ताचे रे स्वार्थी पंखी राये गरुड़ ताचे बांधवा कर्म कार अरण पिंगलारी अनक पात कहरता त्रे पवन नाथरी तीर्थ तीर्थ भ्रमता लह ना पाररी कर्म कर कपाल मुठीत सरी अमृत ससी तेन लक्ष्मी कल्पतर शिखर सनागर नदी के नाथं कर्म कार खार मुठीत सरी दादी ले लंका गाड़ पपाड़ी ले रावण बाण साल बसाल आण तो खीले हरी कर्म कर कछोटी मफीत सरी पूर्व लो कृत कर्म ना मिटैरी घर गेहन ताचे मोहे जापी अले राम चे नाम बदत त्रलोचन राम जी श्री सैन धूप दीप कृत साज आरती वार ले जाऊ कमलापति मंगला हर मंगला नित मंगल राजा राम राय को रहाऊ उत्तम दियरा निर्मल बाती तुही निरंजन कमला पाती।

जैत श्री महला चौथा कर पहला चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे ही अरे रतन नाम हर बसिया।

जैत श्री महला चौथा हीरा लाल अमोल कह पारी बिन गाहक मीका काखा रतन गाहक गुर साधु देखियो तब रतन बकानो लाखा मेरा मन गुप्त हीर हर राखा दीन दयाल मलायो गुर साधु गुर मिले हीर पराखा रहाओ मन मुख कोठी अज्ञान अंधेरा तिन घर रतन ना लाखा ते उजड़ भरम मोए गावारी माया पुआंग बिख चाखा हर हर साध मेलो जन नीके

जिहवा क्या गुण आख बखान है, तुम वड अगम वड पुरखा, जन नानक हर कृपा धारी, पाखान दुपत हर राखा, जैत श्री महला चौथा, हम बारिक कछु न जान है गत मेत, तेरे मूर्ख मुग्ध एयाना, हर कृपा धार दी।

गुर साधु मिल साधु कपट खला न रहाउ गुर खिन खिन प्रीत लगावो मेरे ही अरे मेरे प्रीतम नाम पराना बिन नावे मर जाइए मेरे ठाकुर जो अमली अमल लुभाना जिन मन प्रीत लगी हर केरी तिन तुर भाग पुराना तिन हम चरण सरे वह खिन खिन जिन हर मीठ लगाना हर हर कृपा धारी मेरे ठाकुर जन बिछरिया चिरी मलाना तन तन सतगुर जिन नाम दिरडाया जन नानक तिस कुरबाना जैत श्री महला चौथा सतगुर साजन पुरख वड पाया हर रसक रसक फल लाघबा माया पुयंग ग्रस्यो है प्राणी गुरबचनी बिसहर काढ़वा मेरा मन राम नाम रस लाघबा हर किए पतर पवित्र मिल साध गुर हर नाम हर रस चाखिबा रहाउ तन तन बड़ भाग मिलो गुर साधु मिल साधु लिव उन्मन लाघबा तृष्णा अगन बुझी शांत पाई हर निर्मल निर्मल गुण गायबा तिनके भाग खीन तुर पाई जिन सतगुर दर्शना पाएबा ते दूजे पाए पवह गर्भ जोनी सब बिरथा जन्म तिन जाएबा हर देहो बिमल मत गुर साध पग सेवह हम हर मीठ लगाएबा जन नानक रेण साध पग मांगे हर हुए दयाल दुआएबा जैत श्री महला चौथा जिन हर हृदय नाम ना बसेऊ तिन मात की जय हर

कृपाल कृपा प्रभ धारी गुरु ज्ञान दियो मन समझा रहाउ हर कीरत कल युग पादे उत्तम हर पाइय सतगुर महजा हम बलिहारी सतगुर अपने जिन गुप्त नाम पर गाजा दर्शन साध मिलियो वड भागी सब किल विख गए गवाजा सतगुर साह पाया वड दाना हर किए बहु गुण सांझा जिनको कृपा करी जग जीवन हर उतारियो मन महजा धर्म राय दर कागद फारी जन नानक लेखा समझा जय श्री महला चौथा सत संगत साध पाई वड भागी मन चल तो भयो अरूड़ा अनहत धुन वाजह नित वाजे हर अमृत

साकत बंद भय है माया, बिख संचय है लाए ज कीड़ा, हर कै अर्थ खर्च नह साक है, जम काल सह सिर पीड़ा, जिन हर अर्थ शरीर लगाया गुर साधु, बहु श्रद्धा लाए मुख धूड़ा, हलत पलत हर सोभा पाव है, हर रंग लगा मन गूड़ा, हर हर मेल मेल जन साधु, हम साध जना का कीड़ा, जन नानक प्रीत लगी पग साध, गुर मिल साधु पाखान हरिओ मन मूड़ा। जैत श्री महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर हर सिमरोह अगम अपारा, जिस सिमरत दुख मिटै हमारा, हर हर सतगुर पुर

हर हर हर हर भगत दृढ़ावहु, हर हर नाम उमा हाराम, हर हर नाम दयाल त्याहा, हर कह रंग सदा गुण गाहा, हर हर हर जस घूमर पावहु।

खिन खिन भगत करह दिन राती, गुरमत भगत अमाहा राम, हर हर गुण गोविंद जपाहा, मन तन जीत शब्द लहलाहा, गुरमत पंच दूत वस आव है, मन तन हर ओ माहा राम, नाम रतन हर नाम।

तोल अत पहारी, गुरमत जप उमाहा राम, सब कर्म धर्म हर नाम जपाहा, किल विख महल पाप तुवाहा, दीन दयाल हो जन ऊपर, देहो नानक नाम उमाहा राम। जय श्री महला पंजवा घर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कोई जाने कवन इहां जग मीत, जिस होए कृपाल सोई बिद बूजै, ताकी निर्मल रीत रहाउ। मात पिता बनता सुत बंदप, इष्ट मीत अर पाई

को कहतो सब बाहर बाहर, को कहतो सब महियो, वर्ण ना दिसे चिन्ह ना लखिए, सुहागन सांत बजहियो, सर्व निवासी कट कट वासी, लेप नहीं अल्पहियो, नानक कहत सुनो रे लोगा, संत रसन को बसहियो, जय श्री महल्ला पंजवां, तीरों सुन तीरों प्रभ को रहाओ, जी प्राण मन तन सब अर्पो, नीरों पेख प्रभ को नीरो, बेशमार बेअंत बड़ दाता, मने गिहीरों पेख प्रभ को, जो चाहो सोई सोई पावो, आसा मनसा पूरो जप प्रभ को, गुर प्रसाद नानक मन वसिया, दुख न कबहू चूरों बुझ प्रभ को, जय श्री महल्ला पंजवां, लड़िंदड़ा साजन मेरा, कर कर मंगल गावो नीके, कट कट

तो सगल मोहे मोहियो तो शरण पर्यो गुर भाग कर कृपा टहल हर लायो तो जम छोड़ी मोरी लाग तरयो सागर पावक को जो संत भेटे वड भाग जन नानक सर्व सुख पाई मोरो हर चरणी चित लाग जय श्री महला पंजवां मन मह सतगुर ध्यान धरा दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मया करा रहाऊ काल जाल अर महा जंजाला छुटके जमह डरा आयो दुख हरन शरण करुणा पत गहयो चरण आसरा नाव रूप भयो

गोविंद जीवन प्राण धन रूप अज्ञान मोह मगन महाप्राणी अंधियारे मह दीप रहाउ सफल दर्शन तुमरा प्रभ प्रीतम चरण कमल अनूप अनक बार करो ते बंदन।

या रस में है मग्न होत कृपाती महाविख्याति तूर आयु शरण दीन दुख भंजन चितवा तुमरी ओर अपै पद दान सिमरन स्वामी को रब नानक बंधन छोर जय श्री महला पंजवा चात्रक चितवत बरसत में कृपा सिंध करुणा प्रभ तारु हर प्रेम।

लाड़दास जाने अपने कुदरे उदर नहारे प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक शरण द्वारे जय श्री महला पंजवां आए अनक जन्म भ्रम सरणी उधर दे अंधकूप ते लाभ हो अपनी चरणी रहाओ ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लाभ हो बिखम नदी जाए तरनी सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन मह तरनी हर दर्शन त्रिपत नानक दास पावत हर नाम रंग आभरनी जय श्री महला पंजवां हर जन सिमरो हृदय राम हर जन को अपदा निकट ना आवे पूर्ण दास के काम रहाओ कोट बिगन बिन सह हर सेवा निश्चल गोविंद धाम भगवंत भगत को भओ किश नाही आदर देवत जाम तज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिनसत खाम चरण कमल हृदय गहु नानक सुख समूह विश्राम जय श्री महला नौवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद भूलियो मन माया उरझायो जो जो कर्म कियो लालच लग तेह तेह आप बंधायो रहाओ समझ ना परी बिखै रस रचियो जस हर को बिसरायो संग स्वामी सो जानियो नाहिन बन खोजन को तायो रतन राम घट ही के पीतर ताको ज्ञान ना पायो जन नानक भगवंत भजन।

मुकू त्रास भयो उरे अंतर, शरण गही कृपा निध तेरी रहाओ। महापतत मुग्ध लोभी फुन, करत पाप अबहारा

नाको जोगी खोज तहारे पायो नाहे तेह पारा सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेख ते न्यारा पावन नाम जगत में हर को कबहू नाहे संभारा नानक सरन परयो जग बंदन राखो हो बिरद तुहारा जैत श्री महला पंजवा संत घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक दर्शन प्यासी दिन सरात चितवन दिन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत संत सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया किस मोहन लाल प्यारे हो फिरो खोजंतिया किस दस प्यारे सिर धरी उतारे एक पूरी दर्शन दीजै नैन हमारे प्रिय रंग रंगारे।

पूरा पाया सगली तिखा बुजंतिया यार वे प्रिय हबे सखिया मुंह कही ना जेहिया यार वे हिक डू हिक चाड़े हौ किस चिते हिया हिक डू हिक चाड़े अनक प्यारे नित कर दे भोग बलासा तिना देख मन चाओ उठंदा हौ कद पाई गुण तासा जिन्नी मैंडा लाल रजाया हौ तिस आगे मन डेहिया नानक कह सुन बिनो सुहागण मूं दस दिखा पेर के हिया यार वे पेरे आपन पाना किसनीशी छंदा यार वे तैरावया लालन मूं दस दसंदा लालन।

रहौ किद्दी गुण अवगुण ना पछाणी गुणहार तै पाया रंग लाल बनाया तिस हब्बू किस सुहंदा जन नानक धन सुहागण साई जिस संग पता।

महामंगल रहस थिया, फिर दयाल साधना वरंगिया, वड भाग पाया गुर मिलाया, साध कै सत संगिया, आसा मनसा सगल पूरी, त्रय अंक अंक मिलाई, बिनवंत नानक सुख सखेंदी, सा मैं गुर मिल पाई, जय श्री महा।

आठ पहर कर जोड़, सो प्रभ त्याई है, त्याए सो प्रभ सदा अपना, मन है चिंदिया पाई है, तज मान मोह विकार दूजा, एक स्यों निवलाई है, अर्प मन तन प्रभु आगे, आप सगल मिटाई है, बिनवंत नानक धार कृपा, साच नाम समाई है, सलोक रे मन ता कौ त्याई है, सब बिद जा कै हाथ, राम नाम तन संची है, नानक निभ है साथ, संत साथी अड़ा प्रभ एक, दूसर नाहे कोय, थान थरंतर आप, जल थल पूर सोए, जल थल मैयल पूर रहया, सर्वदाता प्रभ धनी, गोपाल गोविंद अंत नाही, बे अंत गुणता के क्या गनी, पाज सरन स्वामी सुखागामी, तिस बिना अन नाहे कोए, बिनवंत ना

पद पूरन अंत पूर्ण परमेश्वर है, सिमरंत संत सर्वत्र रमण, नानक अगनाशन जगदीश्वर है। देखन सुनन सनामन मन मह दृढ़ साच, पूर रहे हो सर्वतर में, नानक हर रंग

तथापदा तिस बिन नहीं कोई। खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रविया सब लोई, जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। सलोक रचंत जी रचना मात गर्भ अस्थापनं, सास सास सिमरंत नानक महा अगन ना बनासनं। मुख तले पैरे उपरे बसंदो को हथड़े थाए, नानक सो तनी क्यों वसारियो उदर है जिस दै नाए। पौड़ी रक्त बिंद कर निम्या अगन उदर मझार, उर्द मुख कुचील बिकल नरक घोर गबार। हर सिमरत तू ना जल है मन तन उरतार, बिकम थानो जिन रखिया तिस तिल ना विसार। प्रभ बिसरत सुख कदे नाही जासह जन्म हार। सलोक मन इच्छा दान करन सर्वत्र आसा पूर्ण है, खंडन काल कलेश प्रभ सिमर नानक नह दूर नह। हब रंग मान है जिस संग ऐस्यो लाई है नेहो, सो सहो बिंद ना विसरो नानक जिन सुंदर रचिया देहो। पौड़ी जियो प्राण तन धन दिया दीने रस भोग, ग्रह मंदर रथ आस दिए रच भले संजोग।

ना शांत हुए केत बिद मन तीरे सलोक चरण कमल बिरहं खोजंत बैरागी दह दिसह त्यागंत कपट रूप माया नानक आनंद रूप साध संग मह मन साई मुख उच्चरा वत्ता हब्बे लो नानक हब अडंबर कूड़िया सुन जीवा सच्ची सोए पौड़ी बस्ता टूटी झुंपड़ी चीर सब छिन्ना जात ना पात ना आदरु उद्यान परमिन्ना मित्र ना एठ धन रूपहीन किस साक ना सिन्ना राजा सगली सृष्ट का हर नाम मन पिन्ना जिसकी धूड़ मन उदरै प्रभ होए सो प्रसन्ना सलोक अनक लीला राज रस रूपं शतर चमर तख्त आसनं रचंत मूड अज्ञान अंध है नानक सुपन मनोरथ माया।

लोक बसंत स्वर्ग लोक है, जितते पृथ्वी नव खंडन है, बिसरंत हर गोपाल है, नानक ते प्राणी उद्यान भरमण है, कौतिक कोड तमाशिया चेतना आवस नाउ, नानक कोड़ी नरक बराबरे, उजड़ सोई थाऊ पौड़ी, महाभयान उद्यान नगर कर मानिया।

पछतानिया बिन पूरे गुरदेव फिरै शैतानिया सलोक राज कपटंग रूप कपटंग धन कपटंग कुल गर्भ तह संचंत बिखिया सलंग छिदनंग नानक बिन हर संग ना चालते पे खंदड़ो की भुल तुम्मा दिसम सोहना अड ना लहंदड़ो मुल नानक साथ ना जुली माया पौड़ी चलदिया नाल ना चले सो क्यों संजी है तिसका कहो क्या जतन जिस ते वंजी है हर बिसरिया क्यों त्रिपतावे ना मन रंजी है प्रभु छोड़ अन लागे नरक समंजी है हो कृपाल दयाल नानक पौ भंजी है सलोक नाच राज सुख मिष्टं नाच भोग रस मिष्टं नाच मिष्टं सुख माया मिष्टं साध संग हर नानक दास मिष्टं प्रभ दर्शन लगड़ा सो नेहो मन मजाहू रत्या विदड़ो सच थोक नानक मिठड़ा सो धनी पौड़ी हर बिन कछु ना ला गई भगतन को मीठा आन स्वाद सब फीकिया कर निर्णौ डीठा अज्ञान भरम दुख कटिया गुर भये बसीठा चरण कमल मन बेदिया ज्यो रंग मजीठा जियो प्राण तन मन प्रभु बिनसे सब झूठा सलोक त्यकत जलं नह जीव मीन नह त्याग चातरक मेघ मंडल है बाण बेदंच क्रंक नादं अल बंदन कुसुम बासन है चरण कमल रचंत संत है नानक आन नारुचते मुख दिखाऊ पलक छड आन ना देऊ चेत जीवन संगम तिस धनी हर नानक संता मित पौड़ी ज्यों मछली बिन पानी है क्यों जीवन पावे बूंद विहूना चात्रिको क्यों कर कृपतावे नाद करंक बेदिया सनमुख उठतावे पवर लोभी कुसुम बास का मिले आप बंधावे त्यों संत जना हर प्रीत है देख दर्स अगावे सलोक चितवंत चरण कमलं सास सास आराधन है नह बिसरंत नाम अच्युत नानक आस पूर्ण परमेश्वर है सीतड़ा मन मजाहि पलक ना थीवे बाहरा नानक आसड़ी निबाहि सदा पे खन

कहो कौन है जित प्रभ को पाई। सो मूरत भला संयोग है जित मिले गुसाई। आठ पहर हर त्याई कै मन इच पुजाई। वड्डे भाग सतसंग होए निव लागा पाई। मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई। सलोक पतत पनीत गोबिंद है सर्व दुख निवारण है। सरन सूर भगवान है जपंत नानक हर हर हरे। छड़े ओ हबे आप लगड़ो चरना पास नठड़ो दुख ताप। नान

अंग पाइए वड्डे पुन आठ पहर हर त्याई हर जस नित सुन सलोक दया करन दुख हरन उचरन नाम कीर्तन है दयाल पुरख भगवान है नानक लिपत ना माया पाहे बलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप जिन्हें उपाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप पौड़ी जा प्रभ भय दयाल ना व्यापे माया कोट अगा गए नास हर एक त्याया निर्मल भय शरीर जन धूरी नाया मन तन भय संतोख पूर्ण प्रभ पाया तरे कुटंब संग लोग कुल सुबाया सलोक गुरु गोबिंद गोपाल गुर गुर पूर्ण नारायण है गुर दयाल समरथ गुर गुरु नानक पतत उदाहरण है भवजल बिखम असगाह गुर बोहित है तारियम नानक पूर करम सतगुर चरणी लग्या पौड़ी धन धन गुर देव जिस संग हर जपे गुर किरपाल जब भये ता अवगुण सब छपे पार ब्रह्म गुरदेव नीचो उच थपे काट सिलक दुख माया कर लीने अप दसे गुण गाए बेअंत रसना हर जसे सलोक दृष्टंत एको सुनियंत एको वर्तंत एको नरहर है नाम दान जा चंत नानक दयाल पुरख कृपा करह एक सेवी एक सम्मला हर इकस पह अरदास नाम वखर धन संचिया

गुरप्रसाद राग टोडी महला चौथा घर पहला हर बिन रह ना सकै मन मेरा मेरे प्रीतम प्राण हर प्रभ गुर मेले बहुर न भवजन फेरा रहाउ मेरे ही अरे लोच लगी प्रभ केरी हर नैन हो हर प्रभ हेरा सतगुर दयाल।

तिन मस्तक भाग मंदेरा विवेक बुद्ध सतगुर ते पाई गुर ज्ञान गुरु प्रभ केरा जन नानक नाम गुरु ते पाया तुर

लाग संतन अवर न काहू जानी बेपरवाह सदा रंग हर कै जाको पाख स्वामी रहाउ ऊच समाना ठाकुर तेरो अवर न काहू तानी ऐसो अमर मिलियो भगतन को राच रहे रंग ज्ञानी रोग सोग दुख जरा मरा हर जन है नहीं निकटानी निरपो हुए रहे लिव एक नानक हर मन मानी टोडी महला पंजवा हर बिसरत सदा खुआरी ताको धोखा कहां ब्यापे जाको ओट तुहारी रहाउ बिन सिमरन जो जीवन बलना।

सत पुरुख मनायो धावत कहो धावै बहु भांति ज्यों तेली बल्द परमायो नाम दान इशनान ना कियो एक निमख ना कीरत गायो नाना झूठ लाए मन तो खियो नह बूझियो अपनायो पर उपकार न कबहू किए नहीं सतगुर सेवते आयो पंच दूत रच संगत गोष्ट मतवारो मद मायो करो बेनती साध संगत हर भगत वशल सुन आयो नानक भाग परयो हर पाछे राख लाज अपनायो टोडी महला पंजवा मनुख बिन बूझे बिरता आया अनक साज सिंगार बहु करता ज्यो मृतक ओढ़ाया रहाओ ताए ताए कृपन सरम कीनो

प्रभु को किस हृदय नाम वसाया, साध संगत कै पाछे परयो जन नानक हर रस पाया। टोडी महला पंजवा कृपा निद बसो हृदय हर नीत, तैसी बुद्ध करहो परगासा, लागे प्रभ संग प्रीत रहाउ। दास तुम्हारे की पावो धूरा, मस्तक ले ले लावो, महापतत ते होत पनीता, हर कीर्तन गुण गावो। आज्ञा तुमरी मीठी लागो, कियो तुहारो पावो, जो तू देहे तही एहो तृप्तै, आन न कतहु तावो, सद ही निकट जानो प्रभ स्वामी।

काल अनेक भोग रस सगल तरवर की श्याम ताए ताए बहु विद कौ तावै सगल निरारत काम बिन गोविंद अवर

पंजवां सतगुरे आयो शरण तुहारी मिले सुख नाम हर सोबा चिंता लाहे हमारी रहाओ अवर न सूझे।

कसबाया टोडी महला पंजवा किरपन तन मन तिल विख भरे साध संग भजन कर स्वामी ताकन को एक हरे रहाओ अनक शिदर बोहित के छुटकत थाम ना जाही करे जिसका बोहित तिस अरादे खोटे संग खरे गली सैल उठावत चाहे वे उहां ही है तरे जोर सकत नानक किश नाही प्रभ राखो सरन परे टोडी महला पंजवा हर के चरण कमल मन त्याओ काड कुठार पित बात हंता औखद हर को नाओ रहाओ तीने ताप निवारण हारा।

मुख पंजन जा का बड परताप टोडी महला पंजवा स्वामी सरन परयो दरबारी कोट अपराध खंडन के दाते तुझ बिन कौन उदारी रहाव खोजत खोजत बहु परकारे सर्व अर्थ बिचारे साध संग परम गत पाईए माया रच बंद हारे चरण कमल संग प्रीत मन लागी सुर जन मिले प्यारे नानक अंध करे हर जप जप सगले रोग निवारे टोडी महला पंजवा घर तीजा चौपदी।

तरिया टोडी महला पंजवा हमारे एकै हरी हरी आन अवर सियान ना करी रहाउ बड़े भाग गुरे अपना पायु गुरमुख को हर नाम दृढ़ायु हर हर जाप ताप व्रत नीमा हर हर त्याई।

सब किस किसके ग्रह मह आया, टोडी महला पंजवा घर चौथा दुपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, रूढ़ो मन हर रंग।

ने महाराज रो गाथ बाहु स्यो लुबड़ेओ ने भागड़ो पाहे संजोयो रे सुन मन सीख साधु जन सगलो थारे सगले परास्त मिट्यो रे जाको लहणो महाराज री गाठड़ियो जन नानक गर्भास ना पौड़ियो रे टोडी महला पंजवा घर पंजवा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन पंच दुख अर अंग रोग एह तन ते सगल दूर कीन रहाओ बंधन तोर छोर बिखियाते गुर को शब्द मेरे ही अरे दीन रूप अनरूप मोरो कछ ना बिचारियो प्रेम गहियो मोहे हर रंग पीन पेखियो लालन पाठ बीच खोए अनद चिता हर खे पतीन तिस ही को ग्रहो सोई प्रभ नानक।

राम नाम निर्मल है रीत रहाउ, प्राण आधार जीवन धन मोरै, देखन को दर्शन प्रभ नीत, बात घाट तोसा संग मोरै, मन अपने को मैं हर सखा कीत, संत प्रसाद भय मन निर्मल, कर कृपा अपने कर लीत, सिमर सिमर नानक सुख पाया।

हजूर जो तुमरा जस गावह करते से जन कभो ना मरते चूर धंद बंद बिनसे माया के साधु संगत मिटे बिसूर सुख संपत भोग इस जी के बिन हर नानक जाने कूर।

राम निरंजन करते मन तन ते सब किन विखनास पूर्ण पार ब्रह्म सुख दाते अबनासी बिमल जा को जास संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ कर कृपा भेटे गुण तास शांत सहज सुख माने उपजेव कोट सूर नानक प्रगास टोडी महला पंजवा हर हर पतत पावन जी प्राण मान सुख दाता अंतर जामी मन को पावन रहाओ सुंदर सुगड़ चतुर सब बेता रिददास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी कर्म भूम बीजन सो खावन विस्मन विस्म भय

बल जावन टोडी महला पंजवा माई माया छल त्रिण की अगन मेघ की छाया गोविंद भजन बिन हड़का जल रहाओ छोड़ सियानप बहु चतुराई दोए कर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मनुख दे का एहो उत्तम फल वेद बख्यान करत साधु जन भागहीन समझत नहीं खल प्रेम भगत राचे जन नानक हर सिमरन दहन भय मल टोडी महला पंजवा माई चरण गुर मीठे वड्डे भाग देवै परमेश्वर कोट फला दर्शन गुर दीठे रहाओ गुण गावत अचुत अविनाशी काम क्रोध बिनसे मद ढीठे अस्थिर भये साच रंग राते जन्म मरण बहुर नहीं पीठे बिन हर भजन रंग रस जेते संत दयाल जाने सब झूठे नाम रतन पायो जन नानक नाम बिहून चले सब मूठे टोडी महला पंजवा साध संग हर हर नाम चितारा सहज आनंद हुए दिन राती अंकुर भलो हमारा रहाओ गुरपुरा भेटियो वड भागी जाको अंत न पारा वारा कर गह काढ लियो जाने अपना बिख सागर संसारा जन्म मरण काटे गुर बचनी बहुड़ना संकट द्वारा नानक शरण गई।

सुख कोट आनंद राज सुख भुगवे हर सिमरत बिनसै सब दुख रहाउ। कोट जन्म के किल विख नास है सिमरत पावन तन मन सुख। देख स्वरूप पूर्ण भई आसा दर्शन भेटत उतरी भुख। चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध काम तीन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। टोडी महला पंजवा हर हर चरण हृदय उरतारी। सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्य सफल हम।

अतुल सुख पाया ठाकुर अगम अपारी जो जन पार ब्रह्मे अपने कीने तिनका बहुर कश ना बिचारे नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ मजारे टोडी महला नौवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कहो कहां अपनी अदमहाई।

नहीं कब हूँ, होत जो संग सहाई मगन रहे हो माया मैं इस दिन छुट्टी ना मन की काई। कह नानक अब नाही अंत गत बिन हर की सरनाई। टोडी बाणी भगतां की एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कोई बोले निर्वा कोई बोले दूर, जल की माछली चरे खजूर। कायरे बकबाद लायो जिन हर पायो तिन्ह छपायो रहाओ। पंडित हुए कै बेद बखाने मूर्ख नाम देव राम जाने। कौन को कलंक रहो राम नाम लेत ही, पतत पवित भय राम कहत ही रहाओ। राम संग नाम देव जन को प्रतज्ञा आई, एकादशी बरत रह काहे को तीर्थ जाई। भणत नाम देव सो कृत समत भय, गुरमत राम कह को ना बैकुंठ गए। तीन संदे खेल आछे रहाओ, कुंभार के घर हांडी आछे, राजा के कर सांडी गो, बामन के कर रांडी आछे, रांडी सांडी हांडी गो, बाणिये के कर हींग आछे, पैसर माते सींग गो, देवल मदे लीग आसे, लीग सीग हीग गो, तेली कै कर तेल आछे।

हरि आपी पंच तत् बिस्थारा विच धातु पंच आप पावे जन नानक सतगुर मिले आपी हरि आपी झगर चुकावे बैराड़ी महला चौथा जप मन राम नाम निस्तारा कोटक तंत्र के पाप सब खोवे हर भवजल पार उतारा रहाउ काया नगर बस्त हर स्वामी हर निर्भउ निर्वैर निरंकारा हर निकट बसत कस नदर ना आवै हर लादा गुर विचारा हर आपे साहु सराफ रतन हीरा हर आप की आपा सारा नानक जिस कृपा करे सो हर नाम विहाजे सो साहु सच्चा बणजारा बैराड़ी महला चौथा जप मान हर निरंजन निरंकारा सदा सदा हर त्याय सुखदाता जाका अंत न पारा वारा रहाउ अगन कुंट मह उर्द लिव लागा हर राख उदर मंजारा सो ऐसा हर सेव हो मेरे मन हर अंत शडावन हारा जां कै हृदय बसिया मेरा हर हर तिस जन को करहु नमस्कारा।

व्रत पूजा जित हर स्यो प्रीत लगाए, बिन हर प्रीत होर प्रीत सब झूठी, एक खिन मैं बिसर सब जाए। तू बेअंत सर्व कल पूरा किसी

प्रसाद यक अर्ज गुप्तम पेश तो दरगोस पुन करतार हका कबीर करीम तू बेऐब परवदगार दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिल दानी मम सर मुए अजराइल ग्रिफ तह दिल हेच ना दानी रहाउ जल पिसर पदर बिरादरा कसनेस दस्तंगीर आखर बेअपतम कस ना दारद चू स्वद तकबीर सब रोज गस्तम दर हवा कर देम बदी खयाल गाहे ना नेकी कार करदम मम ईच नी अहवाल बद बखत हम चोब खील गाफिल बे नजर बेबाक नानक बुगोयद जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक तलंग महला पहला कर दूजा।

कर कासा दर्शन की भूख, मैं दर मांगो नीता नीत, तौ दर्शन की करो समाए, मैं दर मांगत भीख्या पाए, रहाउ केसर कुसुम मिर्ग मैं हरना, सर्ब शरीरी चढ़ना, चंदन भगता ज्योत अनेही, सर्बे परमल करना, के पट पांडा कह ना कोई, ऐसा भगत वर्ण मह होए, तेरे नाम निवे रहे लिव लाए, नानक तिन दर पीछिया पाए, तलंग महला पहला कर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एह तन माया पाया प्यारी, लीतड़ा लभ रंगाई, मेरे कंपना पावे चोलड़ा प्यारी।

परमल लाइया एव कह सुहागनी भैनी इनी बाती सहु पाइय आप गुआइय ता सहु पाइय और कैसी चतुराई सहु नदर कर देख सो दिन लेख कामन नौ निद पाई अपने कंत प्यारी सा सुहागन नानक सा सबराई ऐसे रंग राती सहज की माती एहन सफाए समाणी सुंदर साए स्वरूप विचखण कही ऐसा सियाणी तलंग महला पहला जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसरा करी ज्ञान वे लालो पाप की जंज लह काबल हो ताया जोरी मंगे दान वे लालो शर्म धर्म दोहे शप खलोए कूड़ फिरे प्रधान वे लालो काजिया बामना की गल थकी अगद पढ़े शैतान वे लालो मुसलमानिया पढ़े कतेबा कष्ट मह करह खुदाई वे लालो जात सनाती होर हिंदवाणी।

तू है तू हो मनहार अगम अगाध ऊंच अपार जो तुद सेव है तिन पहो दुख नाही गुर प्रसाद नानक गुण गाही जो दिसै सो तेरा रूप गुण निदान गोविंद अनूप सिमर सिमर सिमर जन सोए नानक कर्म प्राप्त होए जिन जपया तिस कौ बलिहार तिस कै संग तरै संसार कहो नानक प्रभ लोचा पूर संत

यार बंदे जिस तेरा आधार, गुनाह उसके सगले आपू, तेरे जन देख है दीदार। दुनिया चीज फिलहाल सगले, सच सुख तेरा नाम, गुर मिल नानक बूझिया।

मन तन बसै सच साहा बंदी मोच रहाउ। दीदने दीदार साहिब कछ नहीं इसका मोल, पाक परवदगार तू खुद खसम वड्डा।

आओ संपत रथ धन राज सिउ हत नेहो लगायो काल पास जब गल परी सब भयो परायो जान बूझ कै बावरे तैं काज बिगारियो।

नाम जपहु तब मथिय इन बिद अमृत पावहु। मन संपट जित सत सर नावन पावन पाती तृप्त करे। पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन बिद साहिब।

नानक नाम संभाल तू बदा छुट है जेता सुई महला पहला जप तप का बंद बेड़ला।

भोगी हुए खाए, तपिया हुए तप करे, तीर्थ मल मल नहाए, तेरा सदड़ा सनीजे भाई, जे को बह अलाए रहाउ, जैसा बीजे सो लुणे, जो खट्टे सो खाए, अगे पुछ न हुवई, जे सण निशाण जाए, तैसो जैसा कांडिए

नानक कामना आवई जित तन नाही सच्चा नाम। सूही महला पहला कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जोग ना खिंसा जोग ना डंडै जोग ना भस्म चढ़ाई है जोग ना मुंडी मूंड मडाया जोग ना सिंगी वाई है। अंजन माहे निरंजन रही है जोग जोगत इव पाई है। गली जोग ना हुई एक दृष्ट कर समसर जान।

जोगना देश दसंतर भवे जोगना तीर्थ नाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है सतगुर भेटै ता सहसा टूटै तावत वर्ज रहाई है निचर चरै सहज धुन लागै कर ही परचा पाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है नानक जीवत आमर रही है ऐसा जोग कमाई है वाजे बाज हो सिंगी वाजे तो निर्भउ पद पाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत तो पाई है सूही महला पहला कौन तराजी कवन तुला तेरा कवन सराप बला।

परे दुहचारिया हर राखो अंगी अंग गुर अमृत सर नवला आया सब लाथे किल विक पंग हर दीना दीन दयाल प्रभु

हर हर करह नित कपट कमावह, हृदय शुद्ध ना हुई अन दिन कर्म करह बहुतेरी, सुपने सुख ना हुई ज्ञानी गुर बिन भगत ना होई, कोरे रंग कदे ना चढ़े जे लोचे सब कोई रहाव, जप तप संयम वर्त करे पूजा मनमुख रोग ना जाई, अंतर रोग महा अभमाना दूजे पाए खुआई, बाहर भेख बहुत चतुरा।

गुण नाम बिरड़ाई, हम हर प्रभ प्यारा ढूंढ टुंडाई, सत संगत मिल हर रस पाई, तुर मस्तक लेख लिखे हर पाई, गुरु नानक तुठा मेले हर पाई, सूही महला चौथा, हर कृपा करी मन हर रंग लाई, गुरमुख हर हर नाम समाई, हर रंग राता मन रंग माणी, सदा आनंद रहै दिन राती, पूरे गुर कै शब्द समाने रहाउ, हर रंग कौ लोचै सब कोई, गुरमुख रंग चलूला होई, मन मुख मुग्ध नर कोरा होई, जेसौ लोचै रंग ना होवै कोई, नदर करे तां सतगुर पावै, नानक हर रस हर रंग समावै, सूही महला चौथा, जिहवा हर रस रही।

जाने जगत गुर नानक पूछ करो बिचारा चहो पीढ़ी आद जगाद बखीली किने ना पायो हर सेवक पाए निस्तारा सूही महला चौथा जिथे हर आराधी है तिथे हर मित सहाई गुर कृपा ते हर मन वसै होरत बिद लया ना जाई हर तन संचियै पाई जे हलत पलत हर होए सखाई रहाओ सत संगती संग हर तन खटियै होरत है होरत उपाय हर तन कितै ना पाई हर रतन का वापारिया हर रतन तन विहाजे कच्चे के वापारिये वाक हर तन लया ना जाई हर तन रतन जवे।

का बीजिया भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाही हलत पलत हर तनै की भगतां को मिली वडियाई हर धन निरपो सदा सदा अस्थिर है साचा एहो हर धन अग्नि तस्कर है पानी है जमदूत है किसे का गवाया ना जाई हर धन को उचक्का नेड़ ना आवी जम जा गाती डंड ना लगाई साख तू पाप करके बिखिया धन संचिया तिना एक विख नाल ना जाई हलते विच साकत दहेले पए हथों छुड़क गया अगे पलत साकत हर दरगाह ढोई ना पाई इस हर धन का साहू हर आप है संतोह जिसनों दे सो हर धन लद चलाई इस

जिसनो हर सो प्रसन्न हुए सो हर गुणा रवे सो भगत सो परवान तिसकी महिमा क्या बनी है जिसकै हृदय बसिया हर पुरख भगवान गोविंद गुण गाइए जियो लाए सतगुरु नाल ध्यान रहाओ सो सतगुरु सा सेवा सतगुर की सफल है जिसके पाइए परम निदान जो दूजे पाए साकत कामना अर्थ दुर्गंध सरेम दे सो निह

समान जो बिन परतीती कपटी कूड़ी कूड़ी अखी मीट दे उनका उत्तर जाएगा झूठ गमान। जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कह

स्वामी मैं तुझे आगे अरदास मैं होर खाऊं नाही जिस पै करूं बेनंती मेरा दुख सुख तुझ ही पास विचे धरती विचे पानी विच काष्ट अगन तरीजै बकरी सिंह इक तै थाए राखे मन हर जप भ्रम पौ दूर कीजै हर की वडियाई देखो संतो हर निमाणिया मान दिवाए ज्यों धरती चरण तले ते ऊपर आवै त्यों नानक साध जना जगत आन सब पैरी पाए सूही महला चौथा तू करता सब किसे आपे जान है क्या तुद पह आख सुनाई है बुरा भला तुद सब किस सूझै जेहा को करे तेहा को पाई मेरे साहिब तू अंतर की बिद जान है बुरा भला तुद सब किस सूझै तुद भावै तिवें भला वह रहाउ सब मोह माया शरीर हर किया विच देही मनुख भगत कराई एक ना सतगुर मेल सुख देव है एक मनमुख धंद पिटाई सब को तेरा तू सबना का मेरे करते तुद सबना सिर लिखिया लेख जे ही तू नदर करह तेहा को हुआ बिन नदरी नाही को भेख तेरी वडियाई तू है जान है सब तुदनो नित त्याई

जिनकै अंतर वस्या मेरा हर हर, तिनके सब रोग गवाए, ते मुक्त भये जिन हर नाम त्याया, तिन पवित परम पद पाए, मेरे राम हर जन अरोग पए, गुरबचनी जिन्ना जपया मेरा हर हर, तिनके हउ मैं रोग गए रहाउ, ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण रोगी, विच हउ मैं कार कमाई, जिनकी ये तिसह ना चेतह बपड़ी, हर गुरमुख सूझी पाई, हउ मैं रोग सब जगत व्यापिया, तिनको जन्म मरण दुख भारी, गुर प्रसादी को विरला छूटै, तिस जन को हौ बलिहारी, जिन शिष्ट साजी सोई हर जाने, ताका रूप अपारो, नानक आपे वेख हर बिगसै।

जो हर भावे त्यो रखिए मेरे हर जियो सब को तेरे वस असा जोर नाही जे किछ कर हम साक है।

तुद श्रेष्ठ सब साजी कोई सेवा करो जे किछ कीता हुए इकना सतगुर मेल तू बुझावे है एक मनमुख करह से रोवे हर की वडियाई हो आख ना साका।

परम गत होई सूही महला पंजवा कीता लोड़ है सो प्रभ होई तुझ बिन दूजा नाही कोई जो जन सेवे तिस पूर्ण काज दास अपने की राखो लाज तेरी सरन पूर्ण दयाला तुझ बिन कवन करे प्रतपाला रहाऊ जल थल महियल रहया परपूर।

पंजवा ग्रहवास गुर की ना हो घर की नार दस दासी कर दीनी पतार सगल समगरी मैं घर की जोड़ी आस पे आसी फिर को लोड़ी कवन कहां गुणकंत प्यारी सुगड़ स्वरूप दयाल मरारी रहाउ सत शिंगार पहु अंजन पाया अमृत नाम तंबोल मुख खाया कंगन बस्त्र गहने बने सुहावे तन सब सुख पावे जा फिर घर आवे गुण कामन कर कंत रिजाया वस कर लीना गुर भरम चुकाया सब ते ऊंचा मंदिर मेरा सब

जन नानक पिर धन मिल सुख पाया, सूही महला पंजवा उमके ओहियो मिलन प्रभ ताई, खोजत चरयो देखो प्रिय जाई, सुनत संदेसरो प्रिय ग्रह सेज बछाई, भ्रम भ्रम आयो तो नदर ना पाई, किन बेदही अरो तीरै निमानो, मिल साजन हों तुझ कुर्बानो रहाओ, एका सेज विशी धन कंता।

पई नरासी बहुत दिन लागी, देश दसंतर मैं सगली झागी, हिन रहन ना पावूं बिन पग पागी, वे कृपाल प्रभ मिलह सुभागी, पयो कृपाल सतसंग मलाया, बूझी तपत करे फिर पाया, सगल शिंगार हुन मुझ है सुहाया, कहो नानक गुर परम चकाया, जह देखा तह पिर है पाई।

कह तू महनी निकट ना आवे, अतीत सदाए माया का माता, मन नहीं प्रीत कह मुख राता, कहो नानक प्रभ बिनो सुनी जय, कुचल कठो

ऊंठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया, अवसर अपना बूझे ना आना, माया मोह रंग लपटाना रहाओ, लोभ लहर को बिगस फूल बैठ।

नैन पतीरी जहां पठाव हो जाओ ततीरी जप तप संयम देव जतीरी एक निमख मलाव हो मोहि प्राण पतीरी मान तान हम्बुद हतीरी सा नानक सुहाग बती।

की देह मनुख अभमानी स्वाद बाद ईरख मद माया इन संग लाग रतन जन्म गवाया दुख भंजन जग जीवन हर राया सगल त्याग नानक सरनाया सूही महला पंजवा पेखत चाखत कहियत अंधा सुनियत सुनिए नाही निकट वस्त को जाने दूरे पापी पाप कमाही सो किस कार जित छुटह परानी हर हर नाम जप अमृत बाणी।

पंजवां जीवत मरै बुझै प्रभ सोए तिस जन कर्म प्राप्त होए सुन साजन यों दुत्तर तरिया मिल साधु हर नाम उच्चरिय रहाउ एक बिना दूजा नहीं जानै घट घट अंतर पार ब्रह्म पछानै जो किछ करै सोई भल मानै आद अंत की कीमत जानै कहो नानक तिस जन बलिहारी जां कै हिरदै वसै मरारी सूही महला पंजवां गुर परमेश्वर करनै हार सगल सिष्ट को दे आधार गुर के चरण कमल मन त्याए दुख दर्द इस तन ते जाए रहाव भव जल डूबत सतगुर काढ़ै जन्म जन्म का टूटा गांडै गुर की सेवा करो दिन रात सुख सहज मन आवे शांत सतगुर की रेन वडभागी पावे नानक गुरु को सद बल जावे सूही महला पंजवां गुरे अपने ऊपर बल जाइए आठ पैर हर हर जस गाई।

मन माही जन्म जन्म के किल विख जाही कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक मांगे संतर वाला सुई महला पंजवां।

अपनी शरण राख प्रभ दाती, गुर प्रसाद किन विरले जाती। सुनो बिनो प्रभ मेरे मीता, चरण कमल

साजन सुत बंधप भाई, जत कत पीखों हर संग सहाई, जत मेरी पत मेरी धन हर नाम, सूख सहज आनंद विश्राम रहाव, पार ब्रह्म जप पहर सलाह, कोट आवद तिस बेदत नाही, हर चरण सरन गढ़ कोट हमारे, काल कंटक जम तिस ना बदारे, नानक दास सदा बलिहारी, सेवक संत राजा राम मरारी, सूही महला पंजवा, गुण गोपाल प्रभु के नित गाहा, आनंद बलोद मंगल।

पंजवां बैकुंठ नगर जहां संत वासा रब चरण कमल रे दमाही निवासा सुन मन तन तुझ सुख दिखलावू हर अनक बिंजन तुझ भोग पुंचावू रहाउ अमृत नाम पुंच मन माही आचर्ज साद ताके बरनी ना जाही लोभ मुआ तृष्णा बुझ थाकी पार ब्रह्म की शरण जन ताकी जन्म जन्म के भय मोह निवारी नानक दास प्रभ कृपा तहारी सूही महला पंजवां अनक बींग दास के पर हरिया कर कृपा प्रभ अपना करिया तुम्हें छडाई लियो जाने अपना उर्ज परियो जाल जग सुपना रहाओ पर्वत दुख महा बिकराला किन मैं दूर किए दयाला सोग रोग विपत अत भारी दूर पई जप नाम मरारी दृष्ट धार लीनो लड़ लाए।

तेरा जल की भूख तेरा नाम आहार तू दाता प्रभ देवनहार राम रमत संतन सुख माना नानक देवनहार सुजाना सूही महला पंजवा बहती जात कदे दृष्ट ना धारत मिथ्या मोह बंद है नित पारच माधवे भज दिन नित रहनी जन्म पदार्थ जीत हर सरनी रहाओ करत विकार दो कर चारत राम रतन रिद तिल नहीं धारत भरन पोखण संग औद बेहानी जय जगदीश की गत नहीं जानी सरन समराते अगोचर स्वा

सिमर रत्नागर सिमर सिमर जीवा नारायण दुख रोग सोग सब बिनसे गुरपूरे मिल पाप तजायन रहाउ जीवन पदवी हर का नाउ मन तन निर्मल साच सुआउ आठ पहर पार ब्रह्म त्याई है पूर्व लिखित होए।

महला पंजवां दर्शन कौ लोचै सब कोई पूरे भाग प्राप्त होई रहाउ श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई महामोहनी दूता लाई प्रेम बशोहा करत कसाई निर्दय जंत तिस दया ना पाई अनक जन्म बीतियन परवाई घर वास ना देवै दुत्तर माई दिन रैन अपना किया पाई किस दोष ना

रहाउ। निर्गुण हरिया सरगुण धरिया, अनक कोठरिया भिन भिन भिन भिन करिया, विच मन कोट वरिया निज मंदर प्रिया, तहां आनंद करिया नह मरिया नह जरिया, कीर्तन जुरिया बहु बिद फिरिया, पर को हिरिया बिखना किरिया, अब साधु संग परिया, हर द्वारे खरिया दर्शन करिया, नानक गुर मिरिया बहुर ना फिरिया।

करनी आया पुरुष आया कृपा आया ज्यो पावे त्यो राखो स्वामी मार्ग गुरह पठाया रहाउ महा दुत्तर माया जैसे पवन चलाया सुन सुन ही डराया कर रो धर्म राया गृह अंध को पाया पावक सगराया गही ओट सधाया नानक हर त्याया अब मैं पूरा पाया राग सूही महला पंजवा कर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर पास बे

पार ब्रह्म तेरिया चरना कौ बलिहारा राग सूही महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तेरा पाना तू है मनाई

करते का निमक सिमरत जित छूटै संतो सागर पार उतरी जे को बचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी तरिए रहाओ कोट तीरथ मज्जन इशनाना इस कल मह मैल प्रीजै साध संग जो हर गुण गावे सो निर्मल कर लीजै वेद कतेब सिमरत सब सासत इन पढ़िया मुक्त ना होई एक अखर जो गुरमुख जापै तिसकी निर्मल सोई खत्री ब्राह्मण सूद वैस अपदेश चहो वरना को सांझा गुरमुख नाम जपै उदरै सो कल मह।

जल थल मही अल सोई रहाउ, कोट अपराधी संत संग उदर है, जम ता कै नेड़ ना आवे, जन्म जन्म का बिछड़िया हुवे, तिन हर

परवासा तुमरा जप नाम तुम्हारा उदरे रहाओ अंध कूप ते काढ लिए तुम आप भये कृपाला सार संभाल सर्ब सुख दिए आप करे प्रतपाला अपनी नदर करे परमेश्वर बंधन काट छुड़ाई अपनी भगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाए परम गया पै मोह बनासे मिटिया सगल वसूरा नानक दया करी सुख दाता टिटिया सतगुर पूरा सूही महला पंजवा जब कसना सी ओ तब क्या करता कमन कर्म करे।

सुहावी जित तुमरे द्वारे आया नानक कहो प्रभ पये किरपाला सतगुर पूरा पाया सूही महला पंजवा तुद चित आए महा आनंदा जिस विसरह सो मर जाए दयाल हो वह जिस ऊपर करती।

चरण धूड़ तेरे जन की होवा, तेरे दर्शन कौ बल जाई, अमृत बचन हृदय उर धारी, तौ कृपा ते संग पाई, अंतर की गत तुद पह सारी, तुद जेवड़े अवर ना कोई, जिसनो लाए लह सो लागे, भगत तुहारा सोई।

राग सूही अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब अवगुण मैं गुण नहीं कोई क्यों कर कंत मलावा होई ना मैं रूप ना बंके नैना ना कुल ढंग ना मीठे बैना रहाव सहज शिंगार कामन कर आवे ता सुहागण जा कंतै पावे ना किस रूप ना रेखिया काई अंत ना साहिब सिमरिया जाई।

यो तिन मुख नाम ना उपजै दूजे व्यापे चोर जियो मूल ना बूझ अपना से पशुआ से ढोर जियो नित नित खुशियां मन करे।

सच्चे की लिव उबरै बक्षे बक्षण हार जियो अनको की जय मितड़ा खाक रल मर जाए जियो बहु रंग देख भुलाया

मूर्ख मन समझाए आखों के तड़ा, गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा, नित नित हृदय संभाल प्रीतम अपना, जे चले गुण नाल नाही दुख संतापना, मनमुख भरम भुलाना ना तिस रंग है,

शब्द पछाणिया एक नानक की अरदास जे तुद भावसी मैं दीजै नाम निवास हर गुण गावसी सूही महला पहला ज्यों आरण लोहा पाए भन कढ़ाई है त्यों साकत जोनी पाए भवै पवाई है बिन बूझे सब दुख दुख कमावना हों मैं आवै जाए भरम भलावना रहाओ तू गुरमुख रखण हार हर नाम त्याई है मेलह तुझ रजाए शब्द कमाई है तू कर कर वेखह आप देह सो पाई है तू देखह थाप उथाप दर बेनाई है देही होवग खाक पमन उड़ाई है एहो कितै घर औताक महल ना पाई है देहो दीवी अंध घोर कब महाई है गर्भ मुसै घर चोर किस रुआई है गुरमुख चोर ना लाग हर नाम जगाई है शब्द निवारी आग जोत दी पाई है लाल रतन हर नाम गुरसुरत बुझाई है सदा रहे निह काम जे गुरमत पाई है रात देह हर नाम मन वसाई है नानक मेल मलाए जे तुद पाई है सूही महला पहला मनो ना नाम वसार एहन सत्याई है जो राखै कृपा धार तिवै सुख पाई है मैं अंदले हर नाम लकटी टोहनी रहो साहिब की टेक नामो है मोहनी रहाओ जह देखो तह नाल गुर देखा लिया अंतर बाहर पाल शब्द निहालिया सेवी सतगुर पाए नाम निरंजना तुद पावै तिवै रजाए परम पौ भंजना जन्मत ही दो

निवाजिया आपे थाप उथाप शब्द निवाजिया देही पसमर लाए ना जापी कह गया आपे रहया समाए सो विस्माद भया तू नाही प्रभ दूर जान है सब तू है गुरमुख।

तीजा कर पहला अष्टपदिया एक ओंकार सतगुरु प्रसाद नामे ही ते सब किश होआ बिन सतगुरु नाम ना जापे गुरु का शब्द महारस मीठा बिन चाखे साध ना जापे कौडी बदले जन्म गवाया कीन सनाही आपे गुरमुख होवे।

गुरमुख गावे गुरमुख बूजे गुरमुख शब्द बिचारी जियो पिंड सब गुरते उपजे गुरमुख कारज सुवारी मनमुख अंधा अंध कमावे दिख खटे संसारी माया मोहे सदा दुख पाए बिन गुर अत प्यारी सोई सेवक जे सतगुर सेवे चाले सतगुर पाई साचा शब्द सिफत है साची।

साचा साचा शब्द सुनाई। गुरमुख काले गुरमुख खटे गुरमुख नाम जपाए। सदा अलिपत साचे रंग राता गुर कै सहज सुपाई। मनमुख सद ही कूड़ो बोले बिख बीजे बिख खाए। जमकाल बादा तृष्णा दादा बिन गुर कवन छिडाए। सच्चा तीरथ जित सत सर नावन गुरमुख आप बुझाए। अठ सठ तीरथ गुर शब्द दिखाए तित नहातै मल जाए। सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल ना मन लगे ना लाए। सच्ची सिफत सच्ची सलाह पूरे गुर ते पाए। तन मन सब किश हर तिस केरा दुर्म

चाखी तृष्णा अग्न बुझाए, गुर कै शब्द राता सहजे माता सहजे रहे आसमाय। हर का नाम सत कर जाने, गुर कै भाई।

अलख न लख आ जाई मनमुख मुगद बूजै नाही बाहर पालन जाई सतगुर सेवे सदा सुख पाए सतगुर अलख दिता लिखाई काया अंदर रतन पदार्थ भगत परे भंडारा इस काया अंदर नौ खंड पृथ्वी हाट पटन बाजारा इस काया अंदर नाम नौ निद पाइय गुर कै शब्द विचारा काया अंदर तोल तलावे आपे तोलन हारा इहो मन रतन जवाहर मानक तिसका मोल अफारा मोल कित ही नाम पाइय नाही नाम पाइय गुर बिचारा गुरमुख होवै सो काया खोजै होर सब भरम भलाई जिसनो दे सोई जन पावे होर क्या को करे चतुराई काया अंदर भाओ भाओ वसै गुर प्रसादी पाई काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा सब ओपत जित संसारा सच्चै अपना खेल रचाया आवा गौण पासारा पूरे सतगुर आप दिखाया।

कोई अमृत भरे भरपूर है ओना तिल ना तमाए गुणकारी गुण संग्रह अवरा उपदेसेन सेवड भागी जे ओना मिल रहे अन दिन नाम लेन देसी रिजक संवाहे जिन उपाई मेदनी एको है दातार सच्चा आप धनी सो सच तेरे नाल है गुरमुख नदर निहाल आपे बख्शे मेल लए सो प्रभ सदा संभाल मन मैला सच निर्मला क्यों कर मिलया जाए प्रभ मेले ता मिल रहे हम मैं शब्द जलाए सो

तन मन सौंपी आगे धरी विचों आप गवाए खिंचो तान विगुची है एक सस्यों लिवलाए हौ मैं मेरा छड तू ता सच रह समाए सतगुर नो मिले से पाहेरा सच्चा शब्द लगन सच मिले से ना बिछड़ है दर सच्चा दिसन से भाई से सजना जो सच्चा सेवन अवगुण विकण पलरन गुण की सांझ करन गुण की सांझ सुख उपजै सच्ची भगत करेन सच वणंज है गुर शब्द स्यों लाहा नाम लेन सोइना रूपा पाप कर कर संची है चलै ना चल दिया नाल विण नावै नाल ना चल सी।

सुतियां गुर सलाहिए उठदियां पी गुर अलाव कोई ऐसा गुरमुख जे मिले हौ तां के धुआं पाव कोई ऐसा सज्जन लोड़ लहो मैं प्रीतम दे मलाए सतगुर मिले हर पाया मिलिया सहज सुपाए सतगुर सागर गुण नाम का मैं तिस देखन का चाओ हौ तिस बिन घड़ी ना जीवं बिन देखे मर जाऊं ज्यों मछली बिन पानी है रह ना किते उपाए त्यों हर बिन संत ना जीवई बिन हर ना मैं मर जाए मैं सतगुर सेती पिरहड़ी

गुरु तुठा देव माए, मैं धर सच्चे नाम की, हर नाम रहा लिव लाए। गुर ज्ञान पदार्थ नाम है, हर नामो दे दृढ़ाए। जिस परापत सोल है, गुर चरणी लागे आए।

सतगुर मीत मलाया, मैं सदा सदा तेरा तान। सतगुर मेरा सदा सदा, ना आवे ना जाए, ओह अविनाशी पुरख है, सब मैं रहया समाय। राम नाम धन संचया, साबत पूंजी रास, नानक दरगाह मन्या, गुरपूरे साबास। राग सूही अष्टपदियां महला पंजवां कर पहला, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद। उर्ज रहयो बिख्या कै संगा, मन है व्यापत अनक तरंगा, मेरे मान अगम अगोचर, कत पाई पूर्ण परमेश्वर रहाउ। मोह मगन में रहया व्यापे, अत तृष्णा कबहू नहीं त्रापे,

संतन पासी मेल लहो नानक अरदासी पयो कृपाल साध संग पाया नानक तृप्ते पूरा पाया रहाओ दूजा राग सूही महला पंजवा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिथन मोह अगन शोक सागर कर कृपा उधर हर नागर चरण कमल सरनाए नारायण दीना नाथ भगत परायण रहाओ अनाथा नाथ भगत पै मेटन साध संग जम दूत ना भेटन जीवन रूप

अंत प्रभ सोई, नानक तिस बिन अवर ना कोई। राग सूही महला पंजवा, अष्टपदियां कर नौवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जिन जिथिया मन रहसी है, क्यों पाई है तिन संग जियो। संत सज्जन मन मित्र से, लाइन प्रभ स्यों रंग जियो, तिन स्यों प्रीत ना टुटई।

मोहे बाद अहंकार सर पर रुन्निया, सुख न पायन मूल नाम विशुन्निया, मेरी मेरी तार बंधन बंधिया, नरक सुर्ग अवतार माया तंदिया, सोदत सोदत सोद तत बीचारिया, नाम बिना सुख नाही सर पर हारिया, आवह जाहि अनेक मर मर जन्मते, बिन बूझे सब वाद जोनी भरमते, जिनको भय दयाल तिन साधु संग भया, अमृत हर का नाम तिनी जनी जप लया, खोज है कोट असंख बहुत अनंत के, जिस बजाए आप नेड़ा तिस हे, विसरना ही दातार अपना नाम देह, गुण गावा दिन रात नानक चाओ एह, राग सूही महला पहला कुचजी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मन कुचजी अम्मावन डोसड़े, हों क्यों सहो रावण जाऊं जियो, एक दू एक चढ़ंदियां कौन जाने मेरा नाऊं जियो, जिन्नी सखी सहो रावया ते अंबी छावड़ी एह जियो, से गुण मानना आमनी हों कै जी दोस त्रेऊं जियो, क्या गुण तेरे विथरा हों क्या क्या किन्ना तेरा नाऊं जियो, इकत टोल ना अंबड़ा हों सद कुरबान तेरे जाऊं जियो, सोइना रूपा रंगला मोती तै माणिक जियो, से वस्तु सह दितियां मैं तिन स्यों लाया चित जियो, मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर की तेरास जियो, हों एनी टोली भुलियस तिस कंत ना बैठी पास जियो, अंबर कुंजा कुरनिया बग बिहठे आए जियो, सा तन चली सोहरे क्या मुंह देसी अगे जाए जियो, सुती सुती झाल किया भुली वाकड़ी आस जियो, तै सह नालो मुतियस दुखा कू त्रियास जियो, तुद गुण मैं सब अवगणा एक नानक की अरदास जियो, सब राती सुहागनी मैं दुहागन काई रात जियो, सूही महला पहला सुचजी जा तू ता मैं सब को, तू साहिब मेरी रास जियो, तुदे अंतर हों सुख वसा तू अंतर सा बास जियो, भाणे तखत वडाइया भाणे भीख उदास जियो, भाणे थल सिर सर्व है कमल फुले आकास जियो, भाणे भवजल लंघी है भाणे मंझ परियास जियो।

जियो, सोई दस उपदेसड़ा, मेरा मन अंत ना काहू जाए जियो। एहो मन तै कूडे वसा, मैं मार्ग देहो बताए।

चित मह मेरा सब दुख गवाई दियो। इत मार्ग चले भाई अड़े गुर कह सो कार कमाई दियो। त्यागे मन की मतड़ी।

प्रसाद हम कर साजने आए साचे मेल मलाए सहज मलाए हर मन पाए पंच मिले सुख पाया साई वस्त प्राप्त होई जिस सेती मन लाया अन दिन मेल भया मन मानिया कर मंदर सोहाई पंच शब्द तुन अनहद वाजी।

सोहाया कार्य शब्द सुवारी ज्ञान महारस नेत्री अंजन त्रिभवन रूप दिखाया सखी मिलो रस मंगल गावो हम घर साजन आया मन तन अमृत भिन्ना अंतर प्रेम रतन्ना अंतर रतन पदार्थ मेरे परम तत् विचारु जंत भेख तू सफले उदाता सिर सिर देवन हारु तू जान ज्ञानी अंतर जामी आपे कारण कीना सुनो सखी मन मोहन मोहिया तन मन अमृत पीना आत्म राम संसारा साचा खेल तुम्हारा सच खेल तुम्हारा अगम अपारा तुद बिन कौन बुझाए सिद्ध साधक सियाने केते तुझ बिन कवन कहाए काल बिकाल पये देवानी मन राखिया गुर ठाई नानक अवगण शब्द जलाए गुण संगम प्रभ पाए राग सूही महला पहला कर तीजा।

मन चाहू कनेरा सुन प्रभ मेरा मैं तेरा परवासा दर्शन देख पई ने केवल जन्म मरण दुख नासा सगली जोत जाता तू सोई मिलिया भाई सुभाई नानक साजन को बल जाइए साच मिले घर आई घर आयड़े साजना ता तन खरी सरसी राम हर मोहे अड़ी साच शब्द ठाकुर देख रहंसी राम गुण संग रहंसी खरी सरसी जां रावी रंग राते अवगण मार गुणी घर छाया पूरे पुरख बधाते तस्कर मार बस्ती पंचायन अदल करे विचारी नानक राम नाम ने सतारा गुरमत मिलह प्यारे वर पायड़ा बालड़िए आसा मनसा पूरी राम फिर रावे अड़ी शब्द रली रव रहया नह दूरी राम प्रभ दूर ना होई घट घट सोई तिसकी नार सबाई आपे रसिया आपे रावे ज्यों तिस दी वडियाई अमर अडोल अमोल अपारा गुरपूरे सच पाईए नानक आपे जोग संजोगी नदर करे लिवलाईए फिर उचड़िए माडड़िए तेहो लोआ सिर ताजा राम हों बिसम भई देख गुणा अनहद शब्द अगाजा राम शब्द विचारी करनी सारी राम नाम निशानो नाम बिना खोटे नहीं ठाहर नाम रतन परवानो पत मत पूरी पूरा परवाना ना आवे ना जास्ती नानक गुरमुख आप पछाणे प्रभ जैसे अवनास्ती।

गुण रवै मन भावै सोई साहिब सो सलाही है जिन कारण किया मैल लागी मन मैल है किने अमृत पिया माथे अमृत पिया इहो मन दिया गुर पह मोल कराया आपनड़ा प्रभ सहज पछाता जा मन साचे लाया तिस नाल गुण गावा जे तिस पावा क्यों मिले हुए पराया साहिब सो सलाही है जिन जगते पाया आए गया की ना आयो क्यों आवे जाता प्रीतम स्यों मन मानिया हर सेती राता साहिब रंग राता सच की बाता जिन बिंब का कोट उसारिया पंच भू नायको आप सरंदा जिन सच का पिंड सवारिया हम अवगुण यारे तू सुन प्यारे तुद भावे सच सोई आवन जाना ना थी है साची मत हुई अंजन तैसा अंजी है जैसा फिर भावे समझे सूझे जानिए जे आप जनावे आप जानावे मार्ग पावे आपे मनुआ लेवे कर्म सकर्म कराए आपे कीमत कौन अपेवे तंत मंत पाखंड ना जाना राम हृदय मन मानिया अंजन नाम तिसे ते सूझे गुर शब्दी सच जानिया साजन होने अपने क्यों पर कर जाही साजन राते सच के संगे मन माही मन माही साजन करह रलिया कर्म धर्म सबाया अठ तट तीर्थ पुन पूजा नाम साचा पहाया आप साजे थाप वेख तिसे पाना पाया साजन रंग रंगी लड़े रंग लाल बनाया अंधा आगू जे थी क्यों पाधर जाने आप मुस्से मत होशी है क्यों राह पछाण क्यों राह जावे महल पावे अंध की मत अंधली बिन नाम हर के कसना सूझे अंध बूढ़ो तंधली दिन रात चानन चाओ उपजे शब्द गुर का मन वसै कर जोड़ गुर पह कर बेनंती राह पादर गुर दसै मन परदेसी जे थी है सब देश पर आया किस पै खोलो गंठड़ी दुखी भर आया जगत सबाया।

आप भुल ना भुले, जय जयकार करह तुद भाव है, गुर कै शब्द अमुले, हीनो नीच करो बेनंती, साच ना छोड़ो भाई, नानक जिन कर देखिया, देवै मत साई, राग सूई संत महला तीजा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सुख सोह लड़ा हर त्याव हो, गुरमुख हर फल पाव हो, गुरमुख फल पाव हो हर नाम त्याव हो, जन्म जन्म के दुख निवारे, बलिहारी गुरे अपने विटो हो, जिन कार्य सब सवारे, हर प्रभ कृपा करे हर जाप हो, सुख फल हर जन पाव हो, नानक कह सुनो जन पाई, सुख सोह लड़ा हर त्याव हो, सुन हर गुण पीने सहज सुपाय, गुरमत सहजे नाम त्याय, जिनको तुर लिखिया तिन गुर मिलिया, तिन जन्म मरण पौ भागा, अंदरों दुरमत दूजी खोई, सो जन हर लिव लागा, जिनको कृपा कीनी मेरा स्वामी, तिने अन दिन हर गुण गाए, सुन मन पीने सहज सुपाय, जुग मह राम नाम निस्तारा, गुर ते उपजै शब्द विचारा, गुर

तारा साजन आए उठे कर माही हर गुण गावे है तृप्त अगाही हर गुण गाए सदा तृप्तासी फिर भूख न लागे आई दह दिस पूज होए हर जन की जो हर हर नाम त्याई नानक।

मर जन्मै दुख होई दूजै पाए परज बिगोई विण गुर तत् ना जानिया भगत विहूणा सब जग भरमिया अंत गया पछतानिया कोट मदे किनै पछाणिया हर नामा सच सोई नानक नाम मिलै वडियाई दूजै पाए पत खोई भगतां कै कर कारज साचा हर गुण सदा बखाणे राम भगत खजाना आपे दिया काल कंटक मार समाणे राम काल कंटक मार समाणे हर मन भाणे नाम निधान सच पाया सदा अखुट कदे नान खुट हर दिया सहज सुपाया हर जन ऊचे सद ही ऊचे गुर कै शब्द सुहाया नानक आपे बख्श मलाए जुग जुग सोभा पाया तूही महला तीजा शब्द सच्चै सच सोहिला जितै सच्चे का हुए विचारो राम हउमै सब किल विख काटे साच रखिया उर तारे राम सच रखिया उर तारे दुत्तर तारे फिर भवजल तरन ना होई सच्चा सतगुर सच्ची वाणी जिन सच बखालिया सोई साचे गुण गावै सच समावै सच वेखै सब सोई नानक साचा साहिब साची नाई सच निस्तारा हुई साचै सतगुर साच बुझाया पात राखै सच सोई राम।

गर्भ ना जूनी वासा ज्योति ज्योत मलाई सच समाई सच नाए परगासा जिन्नी सच जाता से सच्चे होए अन दिन सच त्याएन नानक सच नाम जिन हिरदय वसिया ना विछड़ दुख पाएन सच्ची बाणी सच्चे गुण गाव है तित कर सुहला होई राम निर्मल गुण साचे तन मन साचा विच साचा पुरख प्रभ सोई राम सब सच वरतै सचो बोलै जो सच करै सो होई जह देखा तह सच पसरिया अवर ना दूजा कोई सच्चे उपजै सच समावै मर जन्मै दूजा होई नानक सब किछे आपे करता आप करावै सोई सच्चे भगत सो है दरबारी सचो सच वखाणे राम घट अंतरे साची बाणी साचो आप पछाणे राम आप पछाण है तां सच जाण है साचे सोजी होई सच्चा शब्द सच्ची है सुबा साचे ही सुख होई साच रते भगत इक रंगी दूजा रंग ना कोई नानक जिस को मस्तक लिखिया तिस सच प्राप्त होई तूही महला तीजा जुग चारे तन जे भवै बिन सतगुर सुहाग ना होई राम निश्चल राज सदा हर केरा तिस बिन अवर ना कोई राम तिस बिन अवर ना

हर पाया, बिन हर नावे मुक्त ना होई। नानक कामण कंते रावे, मन माने सुख होई। सतगुर सेव धन बालड़िए, हर वर पावे है सोई राम। सदा होवे है सुहागणी, फिर मैला वेस ना होई राम। फिर मैला वेस ना होई, गुरमुख बूझे कोई। हों मैं मार पछाणिया, करनी कार कमावे। शब्द समावे, अंतर एको जानिया।

गुरमति घट चानन होआ। प्रभ रव रहिया सब थाई राम, प्रभ रव रहिया सब थाई मन वसाई। पूर्व लिखिया पाया सेज सुखाली मेरे प्रभ पाणी, सच सिंगार बनाया कामन निर्मल हमें मल खोई। गुरमत सच समाई नानक आप मलाई, करते नाम नवें निध पाई।

शब्द रवहो, अनदिन शब्द बजाए राम, अनहद शब्द बजाए हर जियो घर आए, हर गुण गावो नारी, अनदिन भगत करह गुर आग्या, सा धन कंत प्यारी, गुर का शब्द वसिया घट अंतर, से जन शब्द सुहाई, नानक तिन घर सद ही सोहिला, हर कर किरपा घर आए, भगता मन आनंद भया, हर नाम रहे लिवलाए राम, गुरमुखे मन निर्मल हुआ, निर्मल

जन निस्तरे घट घट शब्द समाणी तेरे गुण गाव है सहज समाव है शब्दे मेल मलाई नानक सफल जन्म तिन केरा जे सतगुर हर मार्ग पाए संत संगत सियो मेल भया हर हर नाम समाए राम गुर कै शब्द सद जीवन मुक्त भये हर कै नाम लिव लाए राम हर नाम चित लाए गुर मेल मलाए मनुआ रत्ता हर नाले सुखदाता पाया मोह चकाया अन दिन नाम संभाले गुर शब्दे राता सहजे माता नाम मन वसाई नानक तिन घर सद ही सोहिला जे सतगुर सेव समाए बिन सतगुर जग भरम भुलाया।

दुख गवाया जा हर मन पाया सदा गावह रंग राते हर के भगत सदा जन निर्मल जुग जुग सद ही जाते साची भगत करह दा।

सुख होई सूही महला तीजा। जे लोड़ है वर बालड़िए ता गुर चरणी चित लाए राम। सदा होवे सुहागणी हर जियो मरे ना जाए राम। हर जियो मरे ना जाए गुर कै सहज सुपाई। सा धन कंत प्यारी सच संजम सदा है निर्मल। गुर कै शब्द शिंगारी मेरा प्रभ साचा सद ही साचा। जिने आपे आप उपाया नानक सदा।

हर मन तनो गुरमुख भीजै, राम नाम प्यारे राम, राम नाम प्यारे सब कुल उधारे, राम नाम मुख बाणी आवन जान रहे सुख पाया, कर अनहद सुरत सुमाणी हर हर एको पाया हर प्रभ, नानक कृपा तारे सोहे लड़ा हर राम नाम, गुर शब्दी विचारे हम नीवी प्रभ अत ऊचा, क्यों कर मिलिया जाए राम गुर मेली बहु कृपा तारी, हर कै शब्द सुपाए राम मिल शब्द सुपाए आप गवाए, रंग स्यों रलिया माणी सेज सुखाली जां प्रभ पाया, हर हर नाम सुमाणी नानक सुहागन सावड भागी,

तेज गुर शब्द सुखाली ज्ञान तत् कर भोगो अन दिन सुख माने नित रलिया नानक तुर संजोगो सत संतोख कर पाओ कुड़म कुड़म आई।

परम गत पाई, पंच मिले सुहाया गया क्रोध ममता तन नाठी, पाखंड भरम गवाया हौ मैं पीर गई सुख पाया, अरोगत भये शरीरा गुर प्रसादी ब्रह्म पछाता, नानक गुणी गहीरा मनमुख विछड़ी दूर, महल ना पाए बल गई बलराम जियो अंतर ममता कूर, कूड़ विहाजे कूड़ लई बलराम जियो, कूड़ कपट कमावे महा दुख पावे, विन सतगुर मग ना पाया उज्जड़ पंथ भ्रमे गावारी, खिन खिन धक्के खाया आपे दया करे प्रभदाता, सतगुर पुरख मलाए जन्म जन्म के विछड़े जन मेले, नानक सहज सुभाए आया लगन गणाए, हिरदय धन ओमाहिया बलराम जियो, पंडित पांदे आन पत्ती बह वाचाइया बलराम जियो, पत्ती वाचाई मन बजी वधाई, जब साजन सुने घर आए गुणी ज्ञानी बह मता पकाया, फेरे तत दिवाए वर पाया पुरख अगम अगोचर, सद नवतन बाल सिखाई,

वेद धर्म दृढ़ हो, पाप तजाया बलराम जियो, धर्म दृढ़ हो हर नाम त्याव हो, सिमरत नाम दृढ़ाया, सतगुर गुरु पूरा आराध हो, सब किल विख पाप गुआया, सहज आनंद हुआ बड़ भागी,

आ स्वामी सर्व रहे आ पर पूरे अंतर बाहर हर प्रभ एको मिला हर जन मंगल गाए जन नानक दूजी लाम चलाई अनहद शब्द बजाए हर तीजड़ी लाम मन चाओ भया बैरागिया बलराम जियो संत जना हर मेल हर पाया बडभागिया बलराम जियो निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी संत जना बडभागी पाया हर कथिया अकथ कहानी हृदय हर हर हर पुन उपजी हर जपिए मस्तक भाग जियो जन नानक बोले तीजी लावे हर उपजे मन बैराग जियो हर चौथड़ी लाम मन सहज भया हर पाया बलराम जियो गुरमुख मिलिया सुपाए हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया अन दिन हर लिव लाई मन चिंदिया।

हर पाया प्रभ अविनाशी, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। राग सूई संत महला चौथा कर दूजा, गुरमुख हर गुण गाए हृदय रसन रसाए। हर रसन रसाए मेरे प्रभ पाए, मिलिया सहज सुपाए। अन दिन भोग भोगे सुख सोवे, शब्द रह लिवलाए। वड्डे भाग गुर पूरा पाईए, अन दिन नाम त्याए। सहजे सहज मिलिया जग जीवन, नानक सुन समाए। संगत संत मलाए, हर सर निर्मल नाए। निर्मल जल नाए मैल गवाए, पए पवित्र शरीरा। दुर्मत मैल गई भ्रम भागा, हम मैं बिनठी पीरा। नदर प्रभु सत संगत पाई, निज कर होआ वासा। हर मंगल रस रसन रसाई, नानक नाम परगासा। अंतर रतन बीचारी, गुरमुख नाम प्यारी। हर नाम प्यारे शब्द निसतारी, अज्ञान अंधेर गवाया। ज्ञान प्रचंड बलिया घट चानन, कर मंदर सोहाया। तन मन अर्प शिंगार बनाई, हर प्रभ साचे पाया। जो प्रभ कह सोई पर की जय, नानक अंक समाया। हर प्रभ काज रचाया, गुरमुख व्याहन आया। व्याहन आया गुरमुख हर पाया।

हो संत जन हो गुण गाव है गोविंद के रे राम। गुरमुख मिल रही है कर वाज है शब्द कनेरे राम। शब्द कनेरे हर प्रभ तेरे तू करता सब थाई। ऐनस जपी सदा सालाही साच शब्द लिवलाई। अन दिन सहज रह रंग राता राम नाम रिद पूजा। नानक गुरमुख एक पछाणे अवर ना जाने दूजा। सब मह रव रहया सो प्रभ अंतर जामी राम। गुर शब्द रवै रव रहया सो प्रभ मेरा स्वामी राम। प्रभ मेरा स्वामी अंतर जामी कट कट रवया सोई। गुरमत सच पाई सहज समाई है तिस बिन अवर ना कोई। सहजे गुण गावा जे प्रभ पावा आपे लए मलाए। नानक सो प्रभ शब्दे जापै अहनस नाम त्याए। एहो जगो दुत्तर मनमुख पार न पाई राम। अंतरे हउमै ममता काम क्रोध चतुराई राम। अंतर चतुराई थाए ना पाई बिरथा जन्म गवाया। जम मग दुख पावै चोटा खावै अंत गया पछताया। बिन नावै को बेली नाही पुत कटंब सुत पाई।

राम सतगुर पाए चलो जीवत्या इव मरिया राम जीवत्या मरिया पौ जल तरिया गुरमुख नाम समावे पूरा पुरख पाया बड़ भागी सच नाम लिव लावे मत परगास भई मन मानिया राम नाम वडियाई नानक प्रभ पाया शब्द मलाया।

भगवानो निश्चल हब जाना मिथ्या माना संत प्रभु हुए दासा जीवत मरिये भौजल तरिये जे थीवे कर्म लिखे आसा गुर से बीजै अमृत पीजै जिस लाव है सहज त्यानो नानक सरन पया हर द्वार हो बल बल सद कुरबानो सुन बावरे मत जान प्रभ मैं पाया सुन बावरे थियो रेण जिन्नी प्रभ त्याया जिन प्रभ त्याया तिन सुख पाया वडभागी दर्शन पाई है थियो नमाणा सद कुरबाणा सगला आप मिटाई है ओह धन भाग सुदा जिन प्रभ लद्दा हम तिस पह आप विचाया नानक दीन सरन सुख सागर राख लाज अपनाया सूही महला पंजवा हर चरण कमल की टेक सतगुरु दित्ती तुस कै बलराम जीओ हर अमृत भरे भंडार सब किश है घर तिस कै बलराम जीओ बाबुल मेरा वड समरथा करन कारण प्रभहारा जिस सिमरत दुख कोई न लागे भौजल पार उतारा आद जगाद भगतन का राखा उस्तत कर कर जीवा नानक नाम

निर्जनहारा जिसते खाली कोई नाहीं, ऐसा प्रभु हमारा। संत जना मिल मंगल गाया, दिन रहन आस तुम्हारी, सफल दर्श भेटिया गुरपुरा, नानक सद बलिहारी। संभलिया सच थान मान महत, सच पाया बलराम जियो, सतगुर मिलिया दयाल, गुण अविनाशी गाया बलराम जियो। गुण गोविंद गाओ नित नित,

मूर्ख नासे रहस उपजै मन घणा मन तन निर्मल देख दर्शन नाम प्रभ का मुख भणा होए रेण साधु प्रभ आराधु अपने प्रभ पावा बिनवंत नानक दया धार हो सदा हर गुण गावा गुर मिल सागर तरिया हर चरण जपत निस तरिया हर चरण त्याय सब फल पाए मिटे आवन जाना पाए भगत सुपाए हर जप अपने प्रभ पावा जप एक अलख अपार पूर्ण तिस बिना नहीं कोई बिनवंत नानक गुर भरम खोया जत देखा तत सोई पतत पावन हर नामा पूर्ण संत जना के कामा गुर संत पाया प्रभ त्याया सगल इच्छा पुनिया हौ ताप बिन से सदा सरसे प्रभ मिले चिरीव छुनिया मन शांत आई वजी वधाई मनो कदे ना विसरै बिनवंत नानक सतगुर दरडाया सदा भज जगदीसरै राग सूई संत महला पंजवां घर तीजा।

तुम गौहर अत गहर गंभीरा, तुम पेर हम बहुरिया राम। तुम वड्डे वड्डे वड ऊचे, हौ इतनी कलहरिया राम। हौ किस नाही एको तू है, आपे आप सुजाना। अमृत दृष्ट निमख प्रभ जीवा, सर्ब रंग रसमाना। चरण सरनी दास दासी, मन मौल तन हरिया। नानक था

वन्या तू पर्वत मेरा ओला राम। हौ बल जाई लख लख लख बरिया जिन भ्रम परदा खोला राम। मिटे अंधारे तजे बिकारी ठाकुर सिउ मन।

हर गुण निधि हर संतन कै वासिया ही राम संत चरण गुर सेवा लागी तिन्नी परम पद पाई राम परम पद पाया आप मटाया हर पूरन कृपा तारी सफल जन्म हुआ पौ भागा हर भेटिया एक मरारी जिसका साथ नहीं मेल लिया ज्योति ज्योत समाया नानक नाम निरंजन जपिए मिल सतगुर सुख पाया गाओ मंगलो नित हर जनों

मेरे प्यारे मुख हर अरादे मेरा राम हर अरादे जम पंथ साधे दुख ना व्यापै कोई जल थल महियल पूर

तेरा कोट करण दीजै प्रभ प्रीतम हर गुण सुनिय है अविनाशी राम सुन सुन एहो मन निर्मल होवै कटियै काल की फासी राम कटियै जम फासी सिमर अविनाशी सगल मंगल सुगयाना हर हर जप जपियै दिन राती लागै सहज ध्याना कलमल दुख जारे प्रभु चितारे मन की दुर्मत नासी कहो नानक प्रभ कृपा की जय हर गुण सुनिय है अविनाशी करोड़ हस्त ते

सगली तपत बनासी राम, दुख पाप का डेरा ढाठा, कारज आया रासी राम। हर प्रभ फुरमाया मिटी बलाया, साच धर्म पुन फलिया, सो प्रभ अपना सदा त्याई, सोवत बैसत खलिया। गुण निधान सुख सागर स्वामी, जल थल महील सोई, जन नानक प्रभ की सरनाई, तिस बिने अवर ना कोई। मेरा घर बनिया बन ताल बनिया, प्रभ परसे हर राया राम। मेरा मन सुहया मीत साजन सरसे, गुण मंगल हर गाया राम। गुण गाए प्रभु त्याए साचा, सगल इच्छा पाइया। गुर चरण लागे सदा जागे, मन वजिया वाधाइया। करी नदर स्वामी सुखागामी, हलत पलत सुवारिया। बिनवंत नानक नित नाम जपिया, जियो पिंड जिन तारिया। सूही महला पंजवां, भै सागरू भै सागर तरिया। हर हर नाम त्याए राम, बोह थड़ा हर चरण अरादे। मिल सतगुर पार लंघाए राम, गुर शब्दी तरिया बहुड़ ना मरिए। चूकै आवन जाना जो किश करै सोई भल मानो, ता मन सहज समाना। दुख ना भूख ना रोग ना व्यापै, सुख सागर सरनी पाए। हर सिमर सिमर नानक रंग राता, मन की चिंत मटाए। संत जना हर मंत्र दृढ़ाया, हर साजन वसगत कीने राम। आपनड़ा मन आगे धरिया, सर्बस ठाकुर दीने राम। कर अपनी दासी मिटी उदासी, हर मंदर थित पाई। अणद बनोद सिमरहु प्रभ साचा, विछड़ कबहू ना जाई। सावड़ भागन सदा सुहागन, राम नाम गुण कीने। कहो नानक रवह रंग राते, प्रेम महारस पीने। अनद बनोद भये नित सखिए, मंगल सदा हमारे राम। आप नड़ै प्रभ आप शिंगारी, शोभावंती नारे राम। सहज सुभाए भये कृपाला, गुण अवगुण ना बीचारिया। कंठ लगाए लिए जन अपने, राम नाम उर धारिया। मान मोह मद सगल व्यापी, कर कृपा आप निवारी। कहो नानक पै सागर तरिया, पूरन काज हमारी। गुण गोपाल गाव हो नित सखी हो, सगल मनोरथ पाए राम। सफल जन्म हुआ मिल साधु, एक अंकार त्याए राम। जप एक प्रभु अनेक रविया, सर्ब मंडल छाया। ब्रह्मो पसारा ब्रह्म पसरिया, सब ब्रह्म दृष्टि आया। जल थल महियल पूर पूरन, तिस बिना नहीं जाए। पेख दर्शन नानक बिगसे, आप लए मलाए। सूही महला पंजवां, अब चल नगर गोविंद गुरु का। नाम जपत सुख पाया राम, मन इच्छे से ही फल पाए। करते आप वसाया राम, करते आप वसाया सर्ब सुख पाया। पुत भाई सिख बिगासे, गुण गावे है पूर्ण परमेश्वर। कारज आया रासे, प्रभ आप स्वामी आपे रखा। आप पिता आप माया, कहो नानक सतगुर बलिहारी। जिन एहो थान सोहाया, कर मंदर हट नाले सोहे। जिस विच नाम निवासी राम, संत भगत हर नाम अरादह। कटिए जम की फासी राम, काटी जम फासी प्रभ अवनासी। हर हर नाम त्याए, सगल समग्री पूरन होई। मन इच्छे फल पाए, संत सज्जन सुख मान है रलिया। दुख दर्द भ्रम नासी, शब्द सवारे सतगुर पूरे। नानक सद बल जासी,
दात खसम की पूरी होई, नित नित चढ़े सवाई राम। पार ब्रह्म खसमाना किया, जिस दी वड्डी वड्याई राम। आद जगाद भगतन का राखा, सो प्रभ भया दयाला। जी जंत सब सुखी वसाए, प्रभ आपे कर प्रतपाला। दह दिस पूर रहया जस स्वामी, कीमत कहन ना जाई। कहो नानक सतगुर बलिहारी, जिन अब चल नीम रखाई। ज्ञान ध्यान पूर्ण परमेश्वर, हर हर कथा नित सुनिए राम। अनहद चोज भगत पाव पंजन, अनहद वाजे तुनिए राम। अनहद चुनकारे तत बीचारे, संत गोष्ठ नित होवे। हर नाम अराध है, मैल सब काट है। किलविक सगले खोवे, तह जन्म ना मरना आवन जाना। बहुड़ ना पाईऐ जुनी है, नानक गुर परमेश्वर पाया। जिस प्रसाद

ज्ञान कीजै बिसर नाही एक खिनो गुण गोपाल उचर रसना सदा गाइय अन दिनो जिस प्रीत लागी नाम सेती मन तन अमृत पीजै दिनवंत नानक इच्छ पुन्नी पेख दर्शन जीजै राग सूही महला पंजवां शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिट बो

अवगण को नाच तारी, पतत पावन हर बिरद सदाए, एक तिल नहीं पन्ने काले, कट कट वासी सर्ब नवासी, नेरा ही ते नेरा, नानक दास सदा सरनागत, हर अमृत सज्जन मेरा, हौ बिस्म भई जी, हर दर्शन देख अपारा, मेरा सुंदर स्वामी जी, हौ चरण कमल पग शारा, प्रभ पेखत जीवा ठंडी थीवा, तिस जे वड़े अवर ना कोई, आदि अंत मद प्रभ रविया, जल कल मही अल सोई, चरण कमल जप सागर तरिया, पवज

प्राण अधारू गुर सतगुर कहे आजी साचा अगम बीचारू मिल साधु दीना ता नाम लीना जन्म मरण दो

खिन मैं झूठ सब बिन सजाए, ज्यो टिकै ना बिरख की शाम। गुरमुख लालो लाल है, ज्यो रंग मजीठ सचड़ाओ। उल्टी सकत सिवै घर आई, मन वस्या हर अमृत नाम। नानक बलिहारी गुरे अपने, जित

बिन तागे गलहार सच्चा रंग मजीठ का गुरमुख ब्रह्म बीचार नानक प्रेम महारसी सब बुरियाइयां शार पौड़ी एहो जग आप उपायुन कर चोज वडान पंच धात विच पाइयन मोह झूठ गमान आवै जाहे पवाई है मनमुख अज्ञान इकना आप बुझायुन गुरमुख हर ज्ञान भगत खजाना बख्शियोन हर नाम निदान सलोक महला तीजा सुहविये सुहावेश छड तू तां पिर लगी प्यार सूह वेश पिर किने ना पायो।

लाल हुआ रसना रति गुण सार, सदा सुहागण शब्द मन पै पाई करे सिंगार। नानक करमी महल पाया फिर राखिया उरतार महला तीजा, मुंदे सूहा पर हर हो लाल करहो शिंगार। आवन जाना विसर गुर शब्दी विचार, मुंद सहावी सोहनी जिस कर सहज पतार। नानक सा धन रावी है रावे रावण हार, पौड़ी मोह कूड़ कटंब है मन मुख मुग्ध रत्ता। हउ मैं मेरा कर मोए किस साथ ना लिता, सिरे उपर जमकाल ना सुजई दूजे परमिता। फिर वेला हाथ ना आवई जमकाल वस किता, जेहा तुर लिख पायुन से कर्म कमिता। सलोक महला तीजा, सतियां एह ना आखियन जो मरिया लग जलन। नानक सतियां जानियन जे बिरहे चोट मरन। महला तीजा, पीसो सतियां जानियन सील संतोख रहन। सेवन साई अपना नित उठ संभालन। महला तीजा, कंता नाल मेहदिया सेती अग जलाहे, जे जान है तेरे अपना ता तन दुख सहाहे। नानक कंत ना जाननी से क्यों अग जलाहे। भावे जीवो कै मरो दूर हो ही भज जाहे। पौड़ी तुद दुख सुख नाल उपाया, लेख करतै लिखिया नावै जेवड़ होर दात नाही तिस रूप ना रिखिया। नाम अखुट निदान है गुरमुख मन वसिया, कर कृपा नाम देव सी फिर लेख ना लिखिया। सेवक भाए से जन मिले जिन हर जप जपिया,

0: पौड़ी सच ध्यान से सच्चे
1: गुर शब्द विचारी।
0: हउमै माहर मन निर्मला हर नाम पुर धारी कोठे मंडप माड़िया लग पए गावारी जिनकी ये तिसह ना जाननी मन मुख गोबारी जिस बजाए सो बुझसी सच्चिया
1: क्या जंत विचारी।
0: श्लोक महला तीजा कामन तो शिंगार कर जा पहला कंत मनाए मत से जय कंत ना आवई इवें बिरथा जाए कामन फिर मन मानिया तो बनिया शिंगार किया तो प्रवान है जा सहो धरे प्यार पाओ शिंगार तंबोल रस भोजन पाओ करे तन मन सौंपे कंत को तो नानक भोग करे। महला तीजा काजल फूल तंबोल रस ले तन किया शिंगार सेजै कंत ना आयो इवें भया विकार। महला तीजा तन फिर एह ना आखियन बहन इकट्ठे होए एक जोत दोए मूर्ति तन फिर कहिए सोए। पौड़ी पै बिन भगत ना होवी नाम ना लगे प्यार सतगुर मिले पौ उपजै पै पाए रंग सवार तन मन रत्ता रंग सियो हउ मैं तृष्णा मार मन तन निर्मल अत सोहना भेटिया कृष्ण मरार पौ पाओ सब तिसदा सो सच वरतै संसार। श्लोक महला पहला वाह कसम तू वाह जिन रच रचना हम किए सागर लहर समुंद सर

निशान नानक नाम लाहा परवान घर आए बजी वधाई सच नाम की मिली वड्याई महला पहला राती होवन कालिया सोपे दा सेवन देहु बग्गा तपै घणा कालिया काले वन अंधे अकली बाहरी

सह की सार सुहागण जान, ताज अभमान सुख रलिया मान, तन मन दे न अंतर राख, अवरा देख न सुने अपाख, सो कत जान पीर पराई, जा कै अंतर दर्द ना पाई, रहाउ दुखी दुहागण दोए पाख हीनी, जिन नाहा निरंतर

मूर्ख कहन ना जाई, तेरे गुण गावा दे बुझाई। जैसे सच मैं रहूं रजाई रहाऊ, जो किश हुआ सब किश तुझते। तेरी सब असनाई तेरा अंत ना जाना मेरे साहिब, मैं अंधले क्या चतुराई। क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथना।

रहाऊ अगम अगोचर अलख अपारा चिंता करहु हमारी जल थल मही अल भरपुर लीना घट घट जोत तुम्हारी सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी मंदर छावा तेरे तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे जी जंत सब सरन तुम्हारी सर्ब चिंत तुद पासी

कर कृपा मोहि मार्ग पावहु साध संगत कै अंचल लावहु क्यों तरिय बिख्या संसार सतगुरु बोहित पावे पार रहाउ पवन चलारी माया दे हर के भगत सदा थिर से हरख सोग ते रह निरारा सिर ऊपर आप गुरु रखवारा पाया वेड़ माया सर्ब पोयंगा हमे पचे दीपक देख पतंगा सगल श्रृंगार करे नहीं पावे जा हुए कृपाल ता गुरु मलावे हों फिरो उदासी मैं एक रतन दसाया निर्मूलक हीरा मिले ना उपाया हर का मंदिर तिस महलाल गुर खोलिया पड़दा देख भई निहाल जिन चाख्या तिस आया साद ज्यों गूंगा मन मह बिस्माद आनंद रूप सब नदरी आया जन नानक हर गुण आख समाया बलावल महला पंजवां सर्ब कल्याण किए गुरदेव सेवक अपनी लायो सेव बिघन ना लागे जप अलख अपेव तरत पनीत भई गुण गाय दुर्त गया हर नाम त्याय रहाउ सबनी थाई रव्या आप आद जगाद जाका वड प्रताप गुर प्रसाद ना हुए संताप गुर के चरण लगे मन मीठे निर्विघ्न हुए सब थाई बूठे सब सुख पाए सतगुरु तूठे पार ब्रह्म प्रभ भय रखवाली जितै कितै दिसह नाली नानक दास खसम प्रतपाली बलावल महला पंजवां सुख निधान प्रीतम प्रभ मेरे अगणित गुण।

सिमरत नसी जान कै संग सदा प्रभ बसे। प्रभ का नाम मन तन आधार, विसरत नाम होत तन शार। प्रभ चित आई पूर्ण सब काज, हर विसरत सब का मोहताज। चरण कमल संग लागी प्रीत, बिसर गई सब दुर्मत रीत। मन तन अंतर हर हर मंत, नानक भगतन कै घर सदा आनंद। राग बलावल

प्यारी जिसनो होए दयाला सफल मूर्त गुरुदेव स्वामी सर्व कला पर पूरे नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सदा सदा हजूरे सुन सुन जीवा सोए तिना की जिन्हें अपना प्रभ

ही जुगता, नानक के प्रभ सद ही मुक्ता। बलावल महला पंजवा, आप उपावन आप सधरना, आप करावन दोष न लेना, आपन बचन आप ही करना, आपन विभव आप ही जरना, रहाउ आप ही मस्त आप ही बोलना, आप ही अशालना जाई चलना, आप ही गुप्त आप प्रगटना, आप ही घट घट आप अलिपना, आपे अवगत आप संग रचना। कहो नानक प्रभ के सब जचना, बलावल महला पंजवा, भूले मार गजने बताया, ऐसा गुर वड भागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारी, बस रहे हृदय गुर चरण प्यारी। रहाउ काम क्रोध लोभ मोह मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना, दुख सुख करत जन्म फुन मुआ, चरण कमल गुर आश्रम दिया, अग्न सागर बूढ़त संसारा, नानक बाहां पकड़ सतगुर निस्तारा। बलावल महला पंजवा, अन मन तन अर्पौ सबे अपना, कमन सो मत जित हर हर जपना, कर आसा आयो प्रभ मांगन, तुम पेखत सोभा मेरे आंगन। रहाउ अनक जुगत कर बहुत बिचारों, साध संग इस मन है उदारों, मत बुद्ध सुत नाही चतराई, ता मिलिए जा लई मलाई, नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया। कहो नानक सफल सो आया, बलावल महला पंजवा, मात पिता सुत साथ न माया, साध संग सब दुख मिटाया, रव रहे आ प्रभ सब मह आपी, हर जप रसना दुख ना व्यापी। रहाउ तिखा भूख बहु तपत व्यापिया, शीतल पये हर हर जस जापिया, कोट जतन संतोख ना पाया, मन त्रिपताना

मन तन निर्मल पाप जल खीना, कहो नानक प्रभ भये परसीना। बिलावल महला पंजवा, सगल मनोरथ पाई है मीता, चरण कमल सिंह लाई है चीता। हौ बलिहारी जो प्रभु ते आवत, जलन बुझै हर हर गुण गावत। रहाउ सफल जन्म होवत बड़ भागी, साध संग रामह लिव लागी। मत पत धन सुख सहज आनंदा, एक निमुख न विसरो परमानंदा। हर दर्शन की मन प्यास कनेरी, भणत नानक शरण प्रभ तेरी। बिलावल महला पंजवा, मोहे निर्गुण सब गुणै बिहुना, दया तार अपना कर लीना। मेरा मन तन हर गोपाल सुहाया, कर कृपा प्रभ घर मह आया। रहाउ भगत वचल पै काट नहारी, संसार सागर अब उतरे पारी। पतत पावन प्रभ बिरद भेद लेखिया, पार ब्रह्म सो नैन उपेखिया। साध संग प्रगटे नारायण, नानक दास सब दुख पलायन। बिलावल महला पंजवा, कवन जाने प्रभ तुमरी सेवा, प्रभ अविनाशी अलख अपेवा। गुण बेअंत प्रभ गहर गंभीरे,

तुम ही जानो अपनी पूजा, आपो हो कछु ना होवत पाई, जिस प्रभ देवै सो नाम पाई। कहो नानक जो जन प्रभ पाया, गुण निधान प्रभ तिन ही पाया। बिलावल महला पंजवां, मात गर्भ मह हाथ दे राखिया, हर रस छोड़ बिख्या फल चाखिया। पज गोविंद सब छोड़ जंजाल, जब जम आए संघारे मूड़े, तब तन बिन सजाए बेहाल रहाउ। तन मन धन अपना कर थापिया, करन हार एक निमख ना जापिया। महा मोह अंध कूप परिया, पार ब्रह्म माया पटल बिसरिया। वड्डे भाग प्रभ कीर्तन गाया, संत संग नानक प्रभ पाया।

सुधारे शतरपथ संतन कै ख्याल रहाउ। हम बुद्ध को बिनसना एह तुर की ताल, बहु जूनी जन्म है मरह बिख्या बिकराल। सत बचन साधु कह नित जप है गोपाल, सिमर सिमर नानक तरी हर के रंग लाल। बिलावल महला पंजवा, सहज समाद आनंद सुख पूरे गुर दीन, सदा सहाई संग प्रभ अमृत गुण चीन रहाउ। जय जय कार जगतर मह लोचह सब जिया, सो प्रसन्न पए सत गुर प्रभु कछ बिघन ना थिया। जां का अंग दयाल प्रभ ताके सब दास, सदा सदा वडियाईया नानक गुर पास। राग बलावल महला पंजवा, घर पंजवा चौपदी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मृत मंडल जग साजिया ज्यों बालू घर बार, बिन सतबार ना लाग गई ज्यों कागद बुंदार। सुन मेरी मनसा मने माहे सत देख बीचार, सिद्ध साधक गिरही जोगी ताज गए घर बार। रहाउ जैसा सुपना रैन का तैसा संसार, दृष्ट मान सब बिनसी है क्या लग है गावार। कहां सुपाई मीत है देख नैन पसार, एक चाले एक चाल सह सब अपनी वार। जिन पूरा सतगुर सेविया से अस्थिर हर द्वार, जन नानक हर का दास है राख पैज मरार। बुलावल महला पंजवा, लोकन किया वड़ियाईया बैसंतर पागों, ज्यो मिले प्यारा अपना ते बोल करागो। जो प्रभ जियो दयाल हुए तो भगती लागो, लपट रहो मन बासना गुर मिल एह त्यागो। रहाउ करो बेनती अत घणी एहो जियो हमागो, अर्थ आन सब वारिया प्रिय निमख सुहागो। पंच संग गुरते छुटे दुख अर रागो, हृदय परगास प्रगट भया निसबासर जागो। सरल सुहागन आया जिस मस्तक भागो, कहो नानक तिन पाया तन मन सीत लागो। बिलावल महला पंजवा, लाल रंग तिस को लगा जिसके वड भागा, मैला कदे न होवई नह लागे दागा। प्रभ पाया सुखदाईया मिलिया सुख पाई, सहज समाना पीतर।

गुर अमर कराया, सो जाने जिन चाखिया, हर नाम अमोला, कीमत कही ना जाइए, क्या कह मुख बोला, सफल दर्श तेरा पार ब्रह्म, गुण निध तेरी बाणी, पावो तूर तेरे दास की, नानक कुर्बाणी, बलावल महला पंजवां, रख हो अपनी सरन प्रभ, मोहे कृपा तारी, सेवा कछु ना जानू नीच मूर्खारी, मान करो तुदे उपरे, मेरे प्रीतम प्यारे, हम अपराधी सद भूलते, तुम बख्शन हारी, रहाओ हम अवगन करहें असंख नीत, तुम निर्गुण दातारे, दासी संगत प्रभु त्याग, हे कर्म हमारी, तुम देव हो सब किश दया तार, हम अकिर्त कनारे, लाग परे तेरे दान स्यों, नह चित खसमारे, तुझ ते बाहर किश नहीं, पाव काटन हारे, कहो नानक सरन दयाल गुर, देहो मुगद उधारे, बुलावल महला पंजवा, दोष न काहू दीजिए, प्रभ अपना त्याई है, जित सेवे सुख होए कना, मन सोई गाइए, कहिए काए प्यारे तुझ बिना, तुम दयाल स्वामी, सब अवगुण हमा रहाओ, ज्यों तुम राख हो त्यों रहा, अवर नहीं चारा, नी तरिया तर तेरिया, एक नाम अधारा, जो तुम करहो सोई भला, मन लेता मुक्ता, सगल समगरी तेरिया, सब तेरी जुगता, चरण पखारों कर सेवा, जे ठाकुर पावै, हो कृपाल दयाल प्रभ, नानक गुण गावै, बलावल महला पंजवा, मृत हसै श्री उपरे, पशुआ नहीं बुझै, बाद साध अहंकार मह, मरना नहीं सूझै, सतगुर से ओहो अपना, काहे फिर हो अभागे, देख कसुंबा रंगुला, काहे भूल लागे, रहाओ, कर कर पाप दर्ब किया, वर्तन कह ताई, माटी स्यो माटी रली, नांगा उठ जाई, जा कह किए श्रम करे, ते बैर बरोधी, अंतकाल भज जाहेंगे, काहे जलो क्रोधी, दास रेन सोई हुआ, जिस मस्तक कर्मा, कहो नानक बंधन छुटे, सतगुर की सरना, बलावल महला पंजवा, पिंगल पर्वत पार परे, खल चतुर्भ कीता, अंधले त्रिभुवन सूजिया, गुर पेट पनीता, महमा साधु संग की, सुनो मेरे मीता, मैल खोई कोट अग हरे, निर्मल पये कीता रहाओ, ऐसी भगत गोविंद की, पीत हस्ती जीता, जो जो कीनो अपनो, तिस अपै दान दीता, सिंह बलाई होए गयो, त्रिण मेर दखीता, श्रम करते दम आड़ को, ते गनी तनीता,

सर मन आनंद होत चितवत कृपाल रहाव। जगत उदारन साध प्रभ तिन लागो पाल, मोको दीजे दान प्रभु संतन पगराल। उकत सियानप कछ नहीं नाही कछ काल, परम पै राखो मोहते काट हो जम जाल। बिनो करो करना पते पिता प्रतपाल, गुण गावो तेरे साध संग नानक सुख साल। लाभ

जमदूत छड़ जाए, तुमरी कृपा ते छूटी है, बिनसै अहमेव, सर्व कला समर्थ प्रभ, पूरे गुरुदेव रहाओ, खोजत खोजत खोजया नामै बिनकूर, जीवन सुख सब साध संग प्रभ मनसापूर, जित जित लाव हो तित तित लग है, स्यानप सब जाली, जात कात तुम परपूर हो मेरे दीन दयाली, सब किश तुम ते मांगना वडभागी पाए, नानक की अरदास प्रभ जीवां गुन गाए। बलावन महला पंजवां, साध संगत कै बास बै, कल मल सब नसना, प्रभ सेती रंग रातिया, तांते गर्भ ना ग्रसना, नाम कहत गोबिंद का सूची पई रसना, मन तन निर्मल हुई है, गुर का जप जपना रहाव, हर रस चाखत त्रापिया, मन रस लै हसना, बुद्ध प्रगास प्रगट पई, उल्ट कमल बिगसना, शीतल शांत संतोख होए, सब बूझी तृष्णा, दह दिस धावत मिट गए, निर्मल थान बसना, राखन हारै राखिया, पए भ्रम पसना, नाम निधान नानक सुखी, एक साध दर्शना। बलावल महला पंजवां, पानी पखा पीस दास कै, तब होहे निहाल, राज मिलक सिकदारियां, अग्नि मह जाल, संत जना का शोहरा, इस चरणी लाग, माया तारी शत्रपत, तिन छोड़ों त्याग रहाव, संतन का दाना रूखा, सो सर्ब निदान, ग्रह साकत शक्ति ही प्रकार, ते भिखु समान, भगत जना का लूघरा, ओड नगन ना होई, साकत सिर पाओ रेशमी, पहरत पत खोई, साकत स्यों मुख जोरे है, अद विचों टूटे, हर जन की सेवा जो करे, इत उतह छूटे, सब किश तुम ही ते होवा, आप बनत बनाई, दर्शन भेट तसाध का, नानक गुण गाई। बलावल महला पंजवां, सर्वनी सुनो हर हर हरे, ठाकुर जस गावो, संत चरण कर सीस तार, हर नाम त्यावो, कर कृपा दयाल प्रभ, एह निध सिद्ध पावो, संत जना की रेणुका, लै माथे लावो रहाओ, नीच ते नीच अत नीच होए कर, बिनो बलावो, पाम मनोवा आप त्याग, संत संग समाव, सास सास नह विसरे, अनकत है ना तामो, सफल दर्शन गुर पेटी है, मान मोह मटावो, सत संतोख दया धर्म, सिंगार बनावो, सफल सुहागन नानका, अपने प्रभ पावो। बलावल महला पंजवां, अटल बचन साधु जना, सब मह प्रगटाया, जिस जन होवा साध संग, तिस भेटै हर राया, एह प्रतीत गोविंद की, जप हर सुख पाया, अनक बातां सब कर रहे, गुर घर लै आया रहाउ, सरन परे की राखता, नाही सहसाया, कर्म कूम हर नाम बोए, अवसर दुलभाया, अंतर जामी आप प्रभ, सब करे कराया, पतत पनीत कणे करे, ठाकुर बिरदाया, मत भूलोह मनुख जन, माया परमाया, नानक तिस पत राखसी, जो प्रभ पहराया। बलावल महला पंजवां, माटी ते जिन साजिया, कर दुर्लभ दे, अनक सिदर मन मह ढके, निर्मल दृष्टि, क्यों बिसरै प्रभ मने ते, जिसके गुण ए, प्रभ तज रचे जे आनस्यो, सोरलिये खे रहाउ, सिमरहो सिमरहो सास सास, मत बिलम करे, छोड़ परपंच प्रभ स्यो रचो, तज कूड़े ने, जिन अनक एक बहुरंग किए, है होसीये, कर सेवा तिस पार ब्रह्म, गुरते मत ले, ऊचे ते ऊचा वड्डा, सब संग बरने,
दास दास को दासरा नानक कर ले। बलावल महला पंजवा। एक टेक गोविंद की त्यागी अनियास, सब ऊपर समरथ प्रभ पूरन गुणतास। जन का नाम आधार है प्रभ सरणी पाहे, परमेश्वर का आसरा संतन मन माहे। रहाउ आप रखे आप देवसी आपे प्रतपारे, दीन दयाल कृपा निदे सास सास सुमारे। करनहार जो कर रहया साई वड्याई, गुरपूरै अपदेसिया सुख खसमर जाई। चिंत अंदेसा गणत ताज जन हुक्म पछाता, नह बिन सह नह छोड़ जाए नानक रंग राता। बलावल महला पंजवा। महा तप्त ते भई शांत, परसत पाप नाठी अंड कूप मैं गलत थे काढे दे हाथे। ओए हमारे साजना हम उनकी रेन, जिन भेटत होवत सुखी जी दान देन। रहाओ परा पूर्व ला लिखिया मिलिया अब आए, बस्त संग हर साधक पूर्ण असाय।

मन नाम नानक की तू टेक प्रभ तेरा आधार करन कारण समरथ प्रभ हरे अगम अपार बलावल महला पंजवा सोई मलीन दीन हीन जिस प्रभ बिसराना करने हार ना बूझई आप गने बिगाना दुख तदे जद विसरे सुख प्रभ चेते आए संतन कै आनंद एहो नित हर गुण गाए रहाओ ऊचे ते नीचा करे नीच खिन मह थापै कीमत कही ना जाइए ठाकुर प्रतापै पेखत लीला रंग रूप चलने दिन आया सुपने का सुपना भया संग चलिया कमाया।

साध संग मन तन हितै फिर दुख ना जापै हर हर हर हर जापियै अंतर लिव लाई के लिवक उतर है सुध हुए साधु सरनाई सुनत जपत हर नाम जस ताकी दूर बलाई महामंत्र नानक कथै हर के गुण गाई। बलावल महला पंजवा पै ते उपजै भगत प्रभ अंतर होए शांत नाम जपत गोविंद का बिनसै भ्रम भ्रांत गुरपूरा जिस पेटिया ता कै सुख परवेश मन की मत त्यागी है सुनिए उपदेश रहाउ सिमरत सिमरत सिमरिए सो पुरख दातार मन ते कबहु ना विसरै सो पुरख अपार चरण कमल स्यों रंग लगा अचरज गुरदेव जाको कृपा करहु प्रभ ताको लावहु सेव निद निदान अमृत पिया मन तन आनंद नानक कबहु ना विसरै प्रभ परमानंद। बलावल महला पंजवा कृष्ण बुझी ममता गई नाथे भय परमा थित पाई आनंद भया गुर कीने धर्मा गुरपूरा आराध्या बिनसी मेरी पीर तन मन सब शीतल भया पाया सुख बीर रहाउ सोमत हर जप जागया देखिया बिस्माद पी अमृत तृपतासिया ताका अचरज स्वाद आप मुक्त संगी तरे कुल कटंब उदारे सफल सेवा गुरुदेव की निर्मल दरबारे नीच अनाथ अजान मैं निर्गुण गुणहीन नानक को कृपा पई दास अपना कीन। बलावल महला पंजवा हर भगता का आसरा अन नाही ठाऊ तान दे बाण परवार तन प्रभ तेरा नाऊ कर कृपा प्रभ अपनी अपने दास रख लिए निंदक निंदा कर पचे जमकाल ग्रसिए रहाव संता एक त्यामना दूसर को नाहे एक से आगे बेनती रव्या सब थाई कथा परातन इयों सुनी भगतन की बानी सगल दुष्ट खंड खंड किए जान लिए मानी सत बचन नानक कह प्रगट सब माही प्रभ के सेवक सरन प्रभ तिनको भवो नाही। बलावल महला पंजवा बंधन काटै सो प्रभु जा कै कल हाथ अवर कर्म नहीं छूती है राखो हर नाथ तौ शरणागत माधवे पूर्ण दयाल छूट जाए संसार ते राखै गोपाल रहाओ आसा परम बकार मोह इन मह लोभाना झूठ समगरी मन वसी पार ब्रह्म ना जाना परम ज्योत पूर्ण पुरख सब

नानक परिया साध संग हर हर गुण गाव। बलावल महला पंजवां। कवन कवन नहीं पतरिया तुमरी प्रतीत, महा मोहनी मोहया नरक की रीत। मन खुटहर तेरा नहीं बसास, तू महा उदमादा। खर का पैखर तौ छुट्टै जो ऊपर लादा रहाउ। जप तप संयम तुम खंडे जम के दुख डांड, सिमर है नाही जोन दुख निरलजे पांड। हर संग सहाई महामीत तिस स्यो तेरा भेद, बीदा पंच बटवारे उपजियो महाखेद। नानक तिन संतन शरणागति जिन मन वस कीना, तन तन सरबसे अपना प्रभ जन को दीना। बलावल महला पंजवां। उदम करत आनंद भया सिमरत सुख सार, जप जप नाम गोविंद का पूरन विचार। चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा, पार ब्रह्म अराध ते मुख अमृत पीवा। रहाउ जी जंत सब सुख बसे सब कै मन लोच, पर उपकार नित चितव ते नाही कछ पोच। धन सो थान बसंत धन जह जपिय नाम, कथा कीर्तन हर अत घना।

जिस सिमरत सुख पाईए बिनसै बेयोग नानक प्रभ शरणागति करन कारण जोग राग बलावल महला पंजवां दुपदे घर पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद अवर उपाव सब त्यागिया दारू नाम लया।

राखिया अपनी करमया रहाउ बाह पकड़ प्रभ काढ़िया कीना अपनया सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निर्भया बलावल महला पंजवा कर तर मस्तक थापे।

प्रभ राखता भगतन की आन। जो जो चितव है साध जन सो लेता मान रहाओ। शरण परे चरनारबिंद जन प्रभ के प्राण। सहज सुपाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बलावल महला पंजवा चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप। प्रभ शरणागत जन परे तां का सद प्रताप। राखनहार अपार प्रभ तां की निर्मल सेव। राम राज राम दासपुर कीने गुरदेव रहाओ। सदा सदा हर त्याई है किछ बिघन ना लागे। नानक नाम सलाही है भय दुश्मन भागे। बलावल महला पंजवा मन तन प्रभ आराधिया। मिल साध समागे उचरत गुण गोपाल जस दूर ते जम भागे। राम नाम जो जन जपै अन दिन सद जागे। तंत मंत नह जो हुई

रंग नानक सरन लागे बलावल मोहल्ला पंजवा जी जुगत वस प्रभु कह जो कह सो करना पये प्रसन्न गोपाल राय पहो किश नहीं करना दुख ना लागे कदे तुद पार ब्रह्म चितारे जम कंकर नेड़ ना आवे गुर सिख प्यारे रहाओ कर्म कारण समरथ है तिस बिन नहीं होर नानक प्रभ शरणागति साचा मन जोर बलावल महला पंजवा सिमर सिमर प्रभ अपना नाठा दुख ठाओ विश्राम पाए मिन साध संग ताते बहुड़ ना ताओ बलिहारी गुरे अपने चरणन बल जाओ आनंद सुख मंगल बने देखत गुण गाओ रहाओ कथा कीर्तन राग नाद धुन एहो बनियो सुवाओ नानक प्रभ सो प्रसन्न पए बाँचत फल पाओ बलावल महला पंजवा दास तेरे की बेनती हृदय कर परगास तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म दुखन को नास चरण कमल का आसरा प्रभ पुरख गुणतास कीर्तन नाम सिमरत रहूं जब लग घट सास रहाओ मात पिता बंदब तू है तू सर्ब निवास नानक प्रभ शरणागति जा को निर्मल जास बलावल महला पंजवा सर्ब सिद्ध हर गाई है सब भला मनाव है साध साध मुख ते कह सुन दास मलाव है सुख सहज कल्याण रस पूरे गुर कीन जी सगल दयाल पए हर हर नाम चीन रहाओ पूर रहो सर्बतर मैं प्रभ गुणी गहीर नानक भगत आनंद मैं पेख प्रभ की धीर बलावल महला पंजवा अरदास सुनी दातार प्रभ होए कृपाल राख लिया अपना सेव को मुख निंदक शार तुझे ना जो है को मीत जन तू गुर का दास पार ब्रह्म तू राखिया दे अपने हाथ रहाओ जीयन का दाता एक है बिया नहीं होर नानक की बेनंतिया मैं तेरा जोर बलावल महला पंजवा मीत हमारे साजना राखे गोविंद निंदक मृतक होए गए तुम हो निचिंद रहाओ सगल मनोरथ प्रभ किए भेटे गुरुदेव जय जय कार जगत में सफल जाकी सेव ऊच अपार अगंत हर सब जी जिस हाथ नानक प्रभ शरणागति जत कत मेरे साथ बलावल महला पंजवा गुरपुरा आराध्या हुए कृपाल मार्ग संत बताया टूटे जम जाल दुख भूख संसा मिटिया गावत प्रभ नाम सहज सुख आनंद रस पूरन सब काम रहाओ जलन बुझी शीतल पए राखे प्रभ आप नानक प्रभ शरणागति जा का वड प्रताप बलावल महला पंजवा तरत सुहावी सफल थान पूर्ण पए काम पौ नाथा प्रम मिट गया रव्या नित राम साध जना कै संग बस्त सुख सहज विश्राम साई करी सुलखणी सिमरत हर नाम रहाव प्रगट पए संसार मह फिरते पहनाम नानक तिस शरणागति घट घट सब जान बलावल महला पंजवा रोग मटाया आप प्रभ उपजिया सुख शांत वड प्रताप अचरज रूप हर कीनी दात गुर गोविंद कृपा करी राख्या मेरा भाई
हम तिसकी शरणागति जो सदा सहाय रहाओ। बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास, नानक जोर गोविंद का पूरन गुणतास। बलावल महला पंजवा, मर मर जन्मे जिन बिसरिया, जीवन का दाता पार ब्रह्म जन सेविया। अन दिन रंग राता, शांत सहज आनंद घना, पूर्ण भई आस। सुख पाया हर साध संग, सिमरत गुणतास रहाओ। सुन स्वामी अरदास जन,

पार ब्रह्म शरणाई चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे ना पाई सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाई राम नाम औखद दिया एका लिवलाई रहाउ राख लिए तिन रखन हार सब ब्याध मटाई कहो नानक कृपा पई प्रभ पये सहाई बलावल महला पंजवा अपने बाल के आप रखियन

आप रोग मटाए जिवालियन जा कावड परताप दोख हमारे बख्शियन अपनी कल तारी मन बाचत फल दितियन नानक बलिहारी। राग बलावल महला पंजवां चौपदे दो पदे कर शिवां।

दाती मिल संगत हर गुण गाय रसना अगह अगह गुण राती नैन दर्श रंग लाए हो कृपाल दीन दुख भंजन।

बार दंडौत बंदना अनक बार जाओ बारे रहाओ उठत बैठत सोवत जागत एहु मन तुझह चितारे सुख दुख इस मन की बिरथा तुझ ही आगे सारे तू मेरी ओट बाल बुद्ध धन तुम ही तुम्हें मेरे परवार है जो तुम करहो सोई भल हमरे देख नानक सुख चरनारे बलावल महला पंजवा सुनियत प्रभ तो सगल उदारन मोह मगन पतत संग प्राणी ऐसे मन है बसारन रहाउ संच बिख्याले ग्राह जकीनी अमृत मन ते डारन काम क्रोध लोभ रत

मन पूर रही दिनस अर रात रहाओ, कर कृपा अपने प्रभ कीने, नाम अपने की कीनी दात। आठ पहर गुण गावत प्रभ के, काम क्रोध इस तन पे जात। तृप्त अगाए पेख प्रभ दर्शन, अमृत हर रस भोजन खात। चरण सरन नानक प्रभ तेरी, कर कृपा संत संग मलात। बलावल महला पंजवा, राख लिए अपने जन आप। कर कृपा हर हर नाम दीनो, बिनस गए सब सोग संताप। रहाव गुण गोविंद गाव हो सब हर जन, राग रतन रसना आलाप। कोट जन्म की तृष्णा निवरी, राम रसायन आत्म त्राप। चरण गहे सरन सुख दाती,

घर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर शब्द उजारो दीपा बिन सेव अंधकार ते मंदर रतन कोठड़ी खुली अनुपा रहाओ बिस्मन बिस्म पए जो पेखियो कहन ना जाए बड़े आई मगन पए उहां संग माते पोत पोत लपटाई।

सारा एकै अपर अपारा एक बस तीरन एक संपूर्ण एकै प्राण आधारा निर्मल निर्मल सूचा सूचो सूचा सूचो।

बिन हर काम न आवत ही जा स्यो राच माच तुम लागी ओह मोहनी महावत हे रहाओ कनक कामनी सेज सोहनी छोड़ खिनह मैं जावत हे उर्ज रहियो इंद्री रस प्रेरियो बिखैठ गौरी खावत हे त्रिण को मंदर साज सुवारियो पावक तलै जरावत हे ऐसे गढ़ मह ऐठ ठीलो फूल फूल क्या पावत हे पंच दूत मूंड पर ठाटी केस गहे फेरावत हे दृष्ट न आवह अंध अज्ञानी सोई रहियो मद मावत हे जाल पसार चोग बिस्थारी पंखी ज्यों फहावत हे कहो नानक बंधन काटन को मैं सतगुर पुरख त्यावत हे बिलावल महला पंजवां हर हर नाम अपार अमोली प्राण प्यारू मन है अधारू चीत चितवो जैसे पान तंबोली रहाओ सहज समायो गुरह बतायो रंग रंगी मेरे तन की चोली प्रिय मुख लागो जो वड भागो सुहाग हमारो कतो ना डोली रूप ना धूप ना गंध ना दीपा ओत पोत अंग अंग संग मौली कहो नानक प्रिय रवि सुहागन अतनी की मेरी बनी खटोली बिलावल महला पंजवां गोविंद गोविंद गोविंद मई जब ते भेटे साध दयारा तब ते दुर्मत दूर पई रहाओ पूर्ण पूर रहो संपूरन शीतल शांत दयाल दई काम क्रोध तृष्णा अहंकारा तन ते होए सगल खई सत संतोख दया धर्म सोच संतन ते एहो मंत लई कहो नानक जिन मनो पछानिया किन को सगली सोज पई बला

सिद्ध मुन इंदरा बेअंत ठाकुर तेरी गत नहीं पाई। क्या कथिय किस कथन ना जाई, जह जह देखा तह रह समाई रहाओ। जह महाभयान दुख जम सुनिए, तह मेरे प्रभ तू है सहाई। शरण परयो हर चरण गहे प्रभ, गुरु नानक को बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवा, अगम रूप अबनासी करता, पतत पवित एक निमुख जपाई है। अचरज सुनियो प्राप्त भेट ले, संत चरण चरण मन लाई है। कित विधि है कित संयम पाई है, कहो सुरजन कित जुगती त्याई है रहाओ। जो मानुख मानुख की सेवा, ओह तिसकी लई लई फुन जाई है। नानक सरन सरन सुख सागर, मोहे टेक तेरो एक नाई है। बिलावल महला पंजवा, संत सरन संत टहल करी, धंद बंद अर सगल जंजारू। अवर काज ते छूट परी रहाऊ, सुख सहज अर कनो अनंदा। गुर ते पायो नाम हरी, ऐसो हर रस बन ना साको। गुर पूरे मेरी उल्ट तरी, पेखियो मोहन सब कै संगे। ऊन ना काहू सगल भरी, पूर्ण पूर रहो कृपा नित। कहो नानक मेरी पूरी परी। बुलावल महला पंजवा, मन क्या कहता हौ क्या कहता, जान परवीन ठाकुर प्रभ मेरे। तिस आगे क्या कहता रहाऊ, अन बोले को तू ही पछान है। जो जीन मह होता रे मन काए, कहां लो डह कहें। जो पेखत ही संग सुनता, ऐसो जान भये मन आनंद। आन ना बियो करता, कहो नानक गुर।

सुनो तुम भाई, जो कालर भीत गिरी है रहाओ, जो देखे शिदर तो निंदक अमा है, भलो देख दुख भरी है, आठ पहर चितवे नहीं पहुंचे, बुरा चितवत चितवत मरी है, निंदक प्रभु पलाया काल नेरह आया, हर जन स्यों बाद उठरी है, नानक का राखा आप प्रभ स्वामी, क्या मानस बपरे करी है, बलावल महला पंजवा, ऐसे काहे भूल परे, करह करावह मुकर पावह, पेखत सुनत सदा संग हरे रहाओ, काच बेहाजन कंचन छाडन, बैरी संग हेत साजन त्याग खरे।

परम गबार मोह बंद परे, कहो नानक प्रभ होत दयारा, गुर भेट काढ़ बाहां परे। बिलावल महला पंजवां, मन तन रसना हर कीना, पए आनंदा मिटे अंदेसे, सर्ब सुख मोको गुर दीना रहाओ, ज्ञान पते सब पई।

बल जावो दर्शन साधु कै जे प्रसाद हर नाम लीना कहो नानक ठाकुर परोसै कहू ना मान्यो मन छीना बलावल महला पंजवा गुरपुरै मेरी राख लई अमृत नाम हृदय मैं दीनों।

नाम जरा मरा कछु दुख न व्यापै आज्ञा दरगाह पूर्ण काम रहाउ आप त्याग परियै नित सरनी गुर ते पाईऐ एहो निदान जन्म मरण की कटियै फासी साची दर

पंजवा अच्युत पूजा जोग गोपाल मन तन अर्प रखो हर आगै सर्व जिया का है प्रतपाल रहाउ सरन समरथ अकथ सुख दाता कृपा सिंध बड़ो दयाल कंठ लाए राख है अपने को तिसनो लगे ना ताती बाल दामोदर दयाल स्वामी सर्वस संत जना धन माल नानक जाचक दर्श प्रभ मांगे संत

तेरे काटिया हिन मह हुई गया है खाक। मंदा चितवत चितवत पचिया जिन रचिया तिन दीना ताक। पुत्र मीत धन किशु ना रहो सो छोड़ गया सब पाई साक। कहो नानक तिस प्रभ बलिहारी जिन जन का कीनो पूर्ण वाक। बलावन महला पंजवा पूरे गुर की पूरी सेवा। आपे आप वरतै स्वामी कार्ज रास किया गुरुदेव। रहाउ आद मद प्रभ अंत स्वामी।

हस्त प्रभ दीने जगत उधार नव खंड प्रताप दुख बिन से सुख अंद प्रवेशा त्रिशन बुझे मन तन सच त्राप नाथ को नाथ सरन समर्था सगल श्रेष्ठ को माई बाप भगत वशल पै पंजन स्वामी गुण गावत नानक अलाप बलावल महला पंजवा जिसते उपजिया तह पछान पार ब्रह्म परमेश्वर ध्याया कुशल खेम हुए कल्याण रहाउ गुरपुरा पेट्यो बड भागी अंतर जामी सुगड़ सुजान हाथ दे राखे करे अपने बड़ समरथ नमाणिया को मान ब्रह्म पै बिन सगए खिन पीतर अंधकार प्रगटे चानान सास सास अराधै नानक सदा सदा जाइए कुर्बान बलावल महला पंजवा दुए थाम रखे गुर सूरे हलत पलत पार ब्रह्म सवारी कार्ज हुए सग

आई जन्म मरण के मिटे बिसूरे भ्रम पै तरे छुटे पै जम के घट घट एक रहे पर पूरे नानक सरण परयो दुख भंजन अंतर बाहर पेख हजूरे बलावल महला पंजवा दर्शन देखत दुख नस्ते कभो न हो वो दृष्ट अगोचर जी कै संग बसे रहाओ प्रीतम प्राण आधार स्वामी पूर रहे प्रभ अंतर जामी क्या गुण तेरे सार समारी सास सास प्रभ तुझह चितारी कृपा निध प्रभ दीन दयाला जी जंत की करो प्रतपाला आठ पैर तेरा नाम जन जापे नानक प्रीत लाई प्रभ आपे बलावल महला पंजवा तन तन जोबन चलत गया राम नाम का भजन ना कीनो करत बकार निस भोर भया रहाओ अनक प्रकार भोजन नित खाते मुख दंता कस खीन खया मेरी मेरी कर कर मूठो पाप करत नह परी दया महाविकार घोर दुख सागर तिसमह प्राणी गलत पया सरन परे नानक स्वामी की बाह पकर प्रभ काढ़ लया बलावल महला पंजवा अपना प्रभ आया चीत दुश्मन दुष्ट रहे झक मारत कुशल भया मेरे भाई मीत रहाउ गई ब्याद अपाद सब नासी अंगीकार कियो करतार शांत सुख अर आनंद कनेरे प्रीतम नाम हृदय उरहार जियो पिंड तन रास प्रभ तेरी तू समरथ स्वामी मेरा दास अपने को राखन हारा नानक दा

जन चर रज मुख माथे लागी आसा पूर्ण अनंत तरंगा जन पार ब्रह्म जाकी निर्मल महिमा जन के चरण तीर्थ कोट गंगा जन की धूर कियो मज्जन नानक जन्म जन्म के हरे कलंगा बिलावल महला पंजवां ज्यों भावै त्यों मोहे प्रतपाल पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर हम बारक तुम पिता कृपाल रहाओ मोहे निर्गुण गुण नाहीं कोई पहुंच।

0: प्रभ मेरे।
1: पूरब प्रीत गोबिंद विचार हो रहा,
0: पतत पावन प्रभ बिरद तुम्हारो, हमरे दुख हृदय मत तारो, जीवन प्राण हर धन सुख तुम ही, हम मैं पटल कृपा कर जा रहो, जल बिहून मीन कत जीवन, दूध बिना रहन कत बारू, जन नानक प्यास।

कुशल पया गुरपूरै पूरी सब राखी पार ब्रह्म प्रभु कीनी मया रहाउ मन तन रव रहया हर प्रीतम दुख दर्द सगला मिट गया शांत सहज आनंद गुण गाए दूत दुष्ट सब हुए खया गुण अवगुण प्रभ कछ ना बिचारियो कर कृपा अपना कर लया अतुल बढ़ाई अच्युत अबना।

करहु अनुग्रहु पतत उदाहरण राख स्वामी आप परोसे रहाओ सिमरण नहीं आवत फिर तमद मावत बिख्या राता स्वान जैसी औद बिहावत अधिक महावत पाप कमावत बुढ़े ऐसी शरण दुख भंजन पुरख निरंजन साधु संगत रमण जैसे केशव कलेश नास अग खंडन नानक जीवत दर्श दिसे राग बलावल महला पंजवां

जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए रहाऊ। ताजे अभिमान अरचिंत बरानी साध है शरण पाए, जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग खाए। महामुगद अजान अज्ञानी राखे तार दए, कहो नानक गुरु पूरा पिट्यो आवन जान रहे। बलाव महला पंजवा जीवो नाम सुनी, जो सो प्रसन्न पए गुरपुरे तब

रंग मटावहु तव कर ही लालन पावहु तब रस मंगल गुण गावहु आनंद रूप त्यावहु नानक द्वारे आयो तव मैं लालन पायो री मोहन रूप दिखावे अब मोहे नींद सुहावे सब मेरी तिखा बुझानी अब मैं सहज समानी।

जाय दर्शन पावत ही राचहु नाथ ही सहाई संतना अब चरण गहे रहाउ। आहे मन अवर ना पावे चरनावे चरनावे उलझियो अलम करंद कमल जियो अन रस नहीं चाहे एक हर लाहे अनते टूटी है रिखते छूटी है मन हर रस घूटी है

नवा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुख हरता हर नाम पछानो अजा मल गनका जेह सिमरत मुक्त भये जी जानो रहाओ गज की त्रास मिटी सिन्हु मह जब ही राम बखानो नारद कहत सुनत ध्रु बारक भजन माहे लपटानो अचल अमर निरभय पद पायो जगत जाहे हैरानो नानक कहत भगत रस कहार निकट ताहे तुम मानो।

तेहे नर जन्म अकारथ खोया, यह राखो मन माही रहाउ। तीर्थ करे व्रत फुन राखे, नह मनुआ बस जाको, निःफल धर्म ताहे तुम मानु। साच कहत मैं जाको,

देखै सब सोई, गुरमुख विरला बूझै कोई, बिन भै पै भगत ना हुई, शब्द रते सदा सुख होई, ऐसा ज्ञान पदार्थ नाम, गुरमुख पावस रस रस मान रहाउ, ज्ञान ज्ञान कथै सब कोई, कथ कथ बाद करे दुख होई, कथ कहने ते रहे न कोई, बिन रस राते मुक्त न होई, ज्ञान ध्यान सब गुरते होई, साची रहत साचा मन सोई, मनमुख कथनी है पर रहत न होई, नाम भूले थाओ न कोई, मन माया बंदेओ सर जाल, घट घट व्याप रहो बिख नाल, जो आंजै सो दिसै काल, कारज सीधो हृदय संभाल, सो ज्ञानी जिन शब्द लिव लाई, मनमुख होमै पत गवाई, आपे करतै भगत कराई, गुरमुख आपे दे वडियाई, रैण अंधारी निर्मल जोत, नाम बिना झूठे कुचल कशोत, वेद पकारै भगत सरोत, सुन सुन मानै वेखै जोत, शास्त्र सिमरत नाम दृढ़ामं, गुरमुख शांत उत्तम करामं, मनमुख जोनी दुख सहामं।

को दूजा देख कहों पावे मन सोए। नानक कह अवर नहीं कोई, बलावल महला पहला। मन का कहया मनसा करे, इहो मन पुन पाप उच्चरे। माया मद माते तृप्त ना आवे, तृप्त मुकत मन साचा पावे। तन तन कलत सब देख अभमाना,

आप न बूझे लोक बुझावे, मन का अंधा अंध कमावे, दर कर महल ठौर कैसे पावे, हर जियो सेवी है अंतर जामी, घट घट अंतर जिसकी जोत समानी, किस नाल क्या चले पहनामी, साचा नाम साचा शब्द जाने, आपे आप मिले चूके अभमाने।

जल तत खैया, गुरमत नाम अमृत जल पाया, अगन बुझी गुर शब्द बुझैया। इह मन नाचै सत गुर आगै, अनाद शब्द धुन तूर बजैया। हर हर उस्तत करै दिन राती, रख रख चरण हर ताल पूरैया। हर कै रंग रत्ता मन गावै, रस रसाल रस शब्द रवैया। निज कर तार चोऐ अत निर्मल, जिन पिया तिन्ही सुख लहिया। मन हट कर्म करै अभमानी, ज्यों बालक बालू कर उसरैया। आवै लहर समुंद सागर की, खिन मह भिन्न भिन्न टह पैया। हर सर सागर हर है आपे, एहो जग है सब खेल खलैया। ज्यों जल तरंग जल जलह समावह, नानक आपे आप रमैया। बलावल महला चौथा, सतगुर परचै मन मुंदरा पाई, गुर का शब्द तन भस्म दरड़ैया। अमर पिंड भए साधु संग, जन्म मरण दो मिट गईया। मेरे मन साध संगत मिल रहिया, कृपा करहु मधुसूदन माधव। मैं खिन खिन साधु चरण पखैया, रहाव तजै गिरहस्त भया बनवासी। एक खिन मनुआ टिकै ना टकैया, धावत धाए तदे घर आवै। हर हर साधु सरन पवैया, तियां पूत छोड़ सन्यासी। आसा आस मन बहुत करैया, आसा आस करै नहीं बूझै। गुर कै शब्द निरास सुख लहिया, उपजी तर्क दिगंबर होवा। मन दह दिस चल चल गमन करैया, पर पवन करै बूझै नहीं कृष्णा। मिल संग साध दया कर लहिया, आसन सिद्ध सिख है बहुतेरे। मन मांग है रिद्ध सिद्ध चेटक चिटकैया, तृप्त संतोख मन शांत ना आवै। मिल साधु तृप्त हर नाम सिद्ध पैया, अंडज जेरज सेतज उत्पुज। सब वर्ण रूप जी जंत उपैया, साधु सरन परै सो उबरै। खत्री ब्राह्मण सूद वैस चंडाल चंडैया, नामा जय देव कंबीर त्रिलोचन। औजात रविदास चमयार चमैया, जो जो मिलै साधु जन संगत। तन तन्ना जात सैन मिलया हर दैया, संत जना की हर पैज रखाई। भगत वचल अंगीकार करैया, नानक सरन पर

सुन गुर बचन मन पीर लगैया, मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। राम गुर मोहन मोहे मन लैया, हम आकल बिकल पई गुर देखे, हम लोट पोट होए पैया रहाओ। हम निरखत फिरऊं सब देश दसंतर, मैं प्रभ देखन को बहुत मन चैया। मन तन काट देऊं गुर आगे, जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखैया। कोई आन संदेशा दे प्रभ केरा, हृदय अंतर मन तन मीठ लगैया। मस्तक काट देऊं चरना तल, जो हर प्रभ मेले मेल मलैया। चल चल सखी हम प्रभ प्रबुद्ध है, गुण कामन कर हर प्रभ लहिया। भगत वचन ओआ को नाम कहियत है, शरण प्रभु तिस पाछे पैया। थिमा शिंगार करे प्रभ खुशियां, मन दीपक गुर ज्ञान बलैया। रस रस भोग करे प्रभ मेरा, हम तिस आगे जियो कट कट पैया। हर हर हार कंठ है बनिया, मन मोती चूर वड गहन गहनैया। हर हर शरदा सेज वछाई, प्रभ छोड़ न सकै बहुत मन पैया। कह प्रभ अवर अवर किस कीजै, सब बाद शिंगार फोकट फोकटैया। कियो शिंगार मिलन कै ताई, प्रभ लियो सुहागन।

नानक हर गुर सरण समैया बलावन महला चौथा मैं मन तन प्रेम अगम ठाकुर का खिन खिन शरदा मन बहुत उठैया गुर देखे शरदा मन पूरी ज्यो चात्रक प्रयो प्रयो गूंद मुख पैया मिल मिन सखी हर कथा सुनैया सतगुर दया करे प्रभ मेले मैं तिस आगे सिर कट कट पैया रहाउ रोम रोम मन तन एक बेदन मैं प्रभ देखे बिन नींद ना पैया वैदिक नाटक देख पुलानी मैं हृदय मन तन प्रेम पीर लगैया हौ खिन पल रह ना सको बिन प्रीतम ज्यों बिन अमले अमली मर गैया जिनको प्यास हुए प्रभ केरी तिन अवर ना पावे बिन हर को दुइया कोई आन आन मेरा प्रभु मलावे हौ तिस विटहो बल बल घुम गैया अनेक जन्म के विछड़े जन मेले जा सत सत सत गुर सरन पवैया सेज एक एको प्रभ ठाकुर महल ना पावे मन मुख परमैया गुर गुर करत सरन जे आवे प्रभ आए मिले खिन ढील ना पैया कर कर किरिया चार वधाए मन पाखंड कर्म कपट लो भैया बेसवा कह कर बेटा जन्मया पिता ताहे क्या नाम सदैया पूर्व जन्म भगत कर आए गुर हर हर हर हर भगत जमैया भगत भगत करते हर पाया जा हर हर हर हर नाम समैया प्रभ आन आन मेहंदी पसाई आपे कोल कोल अंग लैया।

ज्यो महा खुदयारथ भोग ज्यो बात पूतै हेत हर सिमर नानक नेत ज्यो दीप पतन पतंग ज्यो चोर हितन संग मैगल है कामै बंद ज्यो ग्रस्त

गोविंद भजना रंग रसना बखाने नाम नानक दर्शन दान गुण गाए सुन लिख दे सो सर्ब फल हर ले कुल समूह करत उदार संसार उतरस पार हर चरण बोहित ताहे मिल साध संग जस गाहे हर पैज रखे मरार हर नानक सरन द्वार बलावल महला पहला थिती घर दसवां जत एक ओंकार सतगुर प्रसाद एकम एकंकार नराला अमर अजोनी जात ना जाला अगम अगोचर रूप ना रेखिया खोजत खोजत घट घट देखे।

गुर कै शब्द महल घर दिसै रहाउ, दूजै पाए लगे पछताणी, जम दरबांदे आवन जाने, क्या लै आवहै क्या ले जाहे, सिर जमकाल से चोटा खाहे, बिन गुर शब्द ना छूटस कोए, पाखंड कीनै मुक्त ना होए, आपे सच किया कर जोड़, अंडज फोड़ जोड़ विछोड़, तरत आकाश किए बैसन कौ थाऊ, रात दिनंत किए पौ पाऊ।

कीमत पावै, कीमत पाए रहया भरपूर, किस नेड़ै किसे आखां दूर, चौथ अपाए चारे बेदा, खानी चारे बाणी भेदा, अष्ट दशा

डर जाने तख्त नवास सच मन पाने चौदस चौथे थावे लह पावे राजस तामस सतकाल समावे ससियर कह कर सूर समावे जोग जुगत की कीमत पावे चौदस भवन पताल समाई खंड ब्रह्मांड रहया लिवलाई अमावस्या चंद गुप्त गैनार बुझ हो ज्ञानी शब्द विचार ससियर गगन जोत तिहो लोई कर कर वेख करता सोई गुरते दिसै सो तिस ही माही मनमुख भूले।

भिनस बनासा फूटे खपर दुबदा मनसा ममता जालते रह उदासा प्रणवत नानक हमता के दासा। बलावल महला तीजा वार सत कर दसवां।

आप अपाय सब कीमत पाई, गुरमुख हो ऐसो करे विचार, सच संयम करनी है कार, वर्त नेम नेता प्रत पूजा।

0: वार वार
1: दिन सनहण तिवें संसार आवागौण किया करतार निश्चल साच रहया कल धार नानक गुरमुख बूझै को शब्द विचार बिलावल महला तीजा आदि पुरख आपे सिष्ट साजे जी जंत माया मोहे पाजे दूजे पाए पर पंच लागे आवह जावह मरह अपागे सतगुर भेटे सो जी पाए पर पंच चूकै सच समाए जाकै मस्त।

आया मन सुख समान राम गुरु तुठे हर प्रभ पाया रंग रलिया माना राम वड भागिया सोहागनी हर मस्तक माना राम हर प्रभ हर सुहाग।

अविनाशी वर सुनिया मन उपजया चाया राम मन प्रीत लागै वड्डै भागै कब मिलिया पूर्ण पति सहजे समाइया गोविंद पाइया देहो सखिए मोहे मते दिन रहन ठाडी करो सेवा प्रभ कमन जुगती पाया बिनवंत नानक करो कृपा लहु मोहे लड़ लाया भया समाहड़ा हर रतन वसाहारा।

राम खोजी खोज लद्दा हर संतन पाहा राम मिले संत प्यारे दया तारे कथ है अकथ बिचारू एक चित एक मन त्याए स्वामी लाए प्रीत प्यारू कर जोड़ प्रभ पह कर बेनंती मिले हर जस लाहा बिनवंत नानक दास तेरा मेरा प्रभ अगम अथा।

मेरी आस पूरी संत धूरी हर मिले कंत विछुनिया आनंद अंदिन वजह वाजे अहं मत मन की त्यागी बिनवंत नानक सरण स्वामी संत संग लिव लागी बलावल महला पंजवा भाग सलखना हर कंत हमारा राम अनहद बाजितरा तिस धुन दरबारा राम आनंद अंदिन वजह वाजे दिन सरैन अमाहा तह रोग सोग ना दुख व्यापै जन्म मरन ना ताहा रिद सिद्ध सुधारा से अमृत भगत भरे भंडारा बिनवंत नानक बलिहार वन्या पार ब्रह्म प्राण अधारा सुन सखी सहेलरियो मिल मंगल गावह राम मन तन प्रेम करे तिस प्रभ को रावह राम कर प्रेम रावह तिसै भावह एक निमख पलक ना त्यागी गह कंठ लाइय नह लज्जाइय चरण राज मन पागी भगत ठगौरी पाए मोह है अनत कतहु ना ताव है बिनवंत नानक मिल संग साजन अमर पदवी पाव है बिस्मन बिस्म भई पेख गुण अबनासी राम कर गह पुजा गही कट जम की फासी राम गह पुजा लीनी दास कीनी अंकुर अदोत जनाया मलन मोह बिकार नाठी दिवस निर्मल आया दृष्ट धारी मन प्यारी महा दुर्मत नासी बिनवंत नानक भई निर्मल प्रभ मिले अबनासी सूरज किरण मिले।

आत्म पसारा करनहारा प्रभ बिना नहीं जानिए आप करता आप भुगता आप कारण किया बिनवंत नानक।

सगला बानहरा हर हरा स्वामी सुखागामी आनंद मंगल रस घना नवल नवतन नाह बाला कवन रसना गुण भणा मेरी सेज सोही देख मोही सगल सह

कह सको प्रभ अंतर जामी राम सिमर सिमर नारायण भय पार ग्रामी राम गुण गावत गोविंद के सब इच्छ पजामी राम नानक उदरे जप हरे सबहू का स्वामी राम रास पिन्हड़े अपने।

हरि उत्तम हर प्रभ गावया करनाद बलावल राग अपदेश गुरु सुन मन्या तुर मस्तक पूरा भाग सब दिन सरहन गुण उच्चरै हर हर हर उर लिव लाग सब तन मन हरिया होया मन खिड़िया हरिया बाग अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर चानन ज्ञान चराग जन नानक जीवै देख हर एक निमुख घड़ी मुख लाग महला तीजा बलावल तब ही कीजिय जब मुख होवै नाम राग नाद शब्द सोहणे जान लागै सहज ध्यान राग नाद छोड़ हर सेवी ता दरगाह पाई मान नानक गुरमुख ब्रह्म बिचारी चूकै मन अभमान पौड़ी तू हर प्रभ आप अगम है सब तुदे पाया तू आपे आप वरतदा सब जगत सबाया तुदे आपे ताड़ी लाई है आपे गुण गाया हर त्याव हो भगत हो दिन सरात अंत लये छड़ाया जिन सेव्या तिन सुख पाया हर नाम समाया सलोक महला तीजा दूजे पाए बलावल ना होवे मन मुख ताए ना पाए पाखंड भगत ना होवे पार ब्रह्म ना पाया जाए मन हट कर्म कमावणी थाए ना कोई पाए नानक गुरमुख आप बिचारी है बिचो आप गवाए आपे आप पार ब्रह्म है पार ब्रह्म वस्या मन आए जम्मन मरना कटिया ज्योति जोत मलाई महला तीजा बलावल करे हो तुम प्यारे हो एक सस्यों लिबलाई जन्म मरण दुख कटिया सच्चे रह समाई सदा बलावल आनंद है जे चल है सतगुर पाई।

आप सो भगतां का मित हर सब कोई हर कै वस भगतां कै आनंद घर हर भगतां का मेली सरबत सौ नसल जन टंग धार हर सबना का है खसम सो भगत जन चित कर तुदे अपड़ कोई ना सकै सब चख चख पवै झाड़। श्लोक महला तीजा ब्रह्म बिन्द है ते ब्राह्मणा जे चल सतगुर पाई।

ब्राह्मण ब्रह्म बिंद है चेतलाय, नानक जिन को नदर करे हर सच्चा, से नाम रहे लिवलाय। महला तीजा, सतगुर की सेवना कीतिया, शब्द न लगो पाओ हम मैं रोग कमावना, हत दीर्घ बहु सुआउ, मन हट कर्म कमावनी, फिर जोनी पाए, गुरमुख जन्म सफल है, जिसनो आपे लए मलाए। नानक नदरी नदर करे, ता नाम धन पल्ले पाए पौड़ी, सब वडियाइयां हर नाम विच, हर गुरमुख त्याई, जे वस्त मंगी है साई पाई है, जे नाम चित लाई है, गोहज गल जी की कीचै सतगुरु पास, ता सर्ब सुख पाई है, गुर पूरा हर उपदेश दे, सब भुख लह जाई है, जिस पूर्व हो है लिखिया, सो हर गुण गाई है। सलोक महला तीजा, सतगुर ते खाली को नहीं, मेरा प्रभ मेल मलाई, सतगुर का दर्शन सफल है, जेहा को इच्छे तेहा फल पाए, गुर का शब्द अमृत है, सब तृष्णा भुख गवाए, हर रस पी संतोख हुआ, सच वस्या मन आए, सच त्याए अमरा पद पाया, अनहद शब्द बजाए, सचो दह दिस पसरिया, गुर कै सहज सुभाए, नानक जिने अंदर सच है, से जन छपहना किसे देश पाए। महला तीजा, गुर सेवा ते हर पाई है, जा कहो नजर करे, मानस ते देवते भए, सच्ची भगत जिस दे, हौं मैं मार मलायन, गुर कै शब्द सुचे, नानक सहजे मिल रहे, नाम वडियाई दे पौड़ी, गुर सतगुर विच नावै की वड्डी वडियाई, हर करतै आप वधाई, सेवक सिख सब वेख वेख जीवन, उन्ना अंदर हिरदै पाई, निंदक दुष्ट वडियाई वेख ना सकन, उन्ना पराया भला ना सुखाई, क्या हुआ किसे ही की झख मारी, जा सच्चे स्यों बन आई, जे गल करते पावे सा नित नित चढ़ै सवाई, सब झख झख

फित किया है। सच भगत वडियाई सच साहेब सच्चा न्याओ है, सिर निंदक शाही जन नानक सच अरादिया गुरमुख सुख पाई। श्लोक महला तीजा, पूरे भाग सतगुर पाई है, जे हर प्रभ बख्श करे।

निदान सुखदाता तेरे मन वसै हम मैं जाए अभमान नानक नदरी पाई अमृत गुणी निदान पौड़ी जितने पातशाह सहारा जे खान उमराव सिकदार है कितने सब हर के किए जो किच हर करावे सो ओहे करह सब हर के अर्थिये सो ऐसा हर सबना का प्रभ सतगुर कै वल है जिन सब वर्ण चारे खानी सब सृष्ट गोले

हर हर कृपाल हुआ भगत जना उपर, हरे अपनी कृपा कर हरे आप रख लिए। श्लोक महला तीजा। अंदर कपट सदा दुख है, मनमुख ध्यान ना लागे, दुख विच कार कमावनी, दुख वरतै दुख आगै, करमी सतगुर भेटियै ता सच नाम लिव लागै, नानक सहजे सुख होए, अंदरों भ्रम भउ भागै। महला तीजा। गुरमुख सदा हर रंग है, हर का नाम मन पाया, गुरमुख वेखण बोलना नाम जपत सुख पाया, नानक गुरमुख ज्ञान परगासिया, तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया। महला तीजा। मनमुख मैले मरह गवार, गुरमुख निर्मल हर राखिया उरतार, भणत नानक सुनो जन भाई, सतगुर सेवे हो हऊ मैं मल जाई। अंदर संसा दुख व्यापे, सिर धंधा नित मार, दूजे पाए सूते कबहु ना जागह, माया मोह प्यार। नाम ना चेतह शब्द ना विचार है, इह मनमुख का विचार, हर नाम ना पाया बिरथा जन्म गवाया, नानक जम मार करे खुआर पौड़ी। जिसनो हर भगत सच बख्शियन, सो सच्चा साहु तिसकी महताजी लोक कढ़दा, होर तहट ना वथ ना विसाहु। भगत जना को सन्मुख होवै, सो हर रास लए वे मुख।

आप तरिया कुल उदरे धन जनेंदी माया सदा सहज सुख मन वसिया सच्चे स्यों लिवलाया ब्रह्मा विष्ण महादेव त्रै गुण भुले हमें मोह वधाया पंडित पढ़ पढ़ मोनी भुले दूजे पाए चित लाया जोगी जंगम सन्यासी भुले विण गुर तत न पाया मनमुख दुखिए सदा ब्रह्म भुले तिन्नी बिरथा जन्म गवाया नानक नाम रते सही जन समधे जे आपे बख्श मलाया महला तीजा नानक सो सलाही है जिस वस सब किश हो।

ना ए मारी ना मरे ना ए हट बकाय गुर कै शब्द पर जाली है ता ए विचों जाय तन मन होवे उजला नाम वसे मन आय नानक माया का मारन शब्द है गुरमुख पाया जाई पौड़ी सतगुर की वड़ियाई सतगुर दित्ती तुरहों।

सबना का अपमान जिथे को वेखे तिथे मेरा सतगुरु हर बख्शियोस सब जहान जे सतगुरु नो मिल मन्ने सो हलत पलत सिजे जे विमुख होवे सो फिरे भ्रिष्ट थान जन नानक कै वल हुआ मेरा स्वामी हर सज्जन पुरख सुजान पौंदी भित देख कै

आनंद वडभागी हर पाया पूरन परमानंद जन नानक नाम सलाहया बहुड़ ना मन तन भंग पौड़ी कोई निंदक होवे सतगुरु का फिर शरण गुर आवे पिछले गुनाह सतगुरु बख्श लई।

जो हर पाए तिनकी कथा नरारी रे आवह ना जाहे ना कबहू मरते पार ब्रह्म संगारी रे पुत्र कलत्र।

किंचत प्रीत न उपजय जन को जन कहा करह बेचारी रहाउ त्रिग तन त्रिग एह माया त्रिग त्रिग मत बुद्ध फन्नी जिस माया को दृढ़ कर रखो बांधे आप बचन्नी क्या खेती क्या लेवा दे परपंच झूठ गमाना कह कबीर ते अंत बिगूते आया काल निदाना बलावल शरीर सरोवर पीतरे आछे कमल अनूप परम ज्योत प्रखोतमो जा कै रेख न रूप रे मन हर पज भ्रम तजहो जग जीवन राम रहाउ आवत कछु न दिसै नह दिसै जात जह उपजै बिनसै तही जैसे पुरवन पात मिथ्या कर माया तजी सुख सहज बीचार कह कबीर सेवा करहो मन मंज मरार बलावल जन्म मरण का भ्रम गया गोविंद लिव लागी जीवत सुन समानिया गुर साखी जागी रहाओ काशी ते धुन उपजै धुन काशी जाई काशी फूटी पंडता धुन कहां समाई त्रिकुटी संध मैं पेखिया घट हूं घट जागी ऐसी बुद्ध समाचरी घट माहे त्यागी आप ते जानिया तेज तेज समाना कहो कबीर अब जानिया गोविंद मन माना बलावल चरण कमल जा कह हृदय बस है सो जन क्यों डोले देव मानव सब सुख नौ निदता कै सहज सहज जस बोले देव रहाउ तब एह मत

होए बर्ण अबर्ण रंक नहीं ईश्वर बिमल बास जानी है जग सोए रहाउ ब्राह्मण बैस सूद अर क्षत्री डोम चंडार मलेश मन सोए हुए पुनीत भगवंत भजन ते आप तार तारे कुल दोए धन सो गाओ धन सो ठाओ धन पुनीत कतंब सब लोए जिन पिया सार रस तजे आन रस होए रस मगन डारे बिख खोए पंडित सूर सतर पत राजा भगत बराबर और ना कोए जैसे परैन पात रह

अहंकार में एक भया भेख धारी कामार्थी स्वार्थी वाकी पैज सवारी तब गुण कहां जगत गुरा जो कर्म ना नासे सिंह शरण कत जाइए जो जम्बुक ग्रासे रहाउ एक बूंद जल कारणी चात्रिक दुख पावे।

माया मोह कटंब सब मत तिसकी आस लग जन्म गवाई। इनकै किस हाथ नहीं कहां करह एह बपड़े। इनका वाहया काश ना वसाई मेरे मन। आस कर हर प्रीतम अपने की जो तुझ तारै तेरा कटंब सब छड़ाई। जे किस आस अवर करह परमित्री मत तू जानह तेरा कितै काम आई। ए आस परमित्री भाव दूजा है खिनमह झूठ बिनस सब जाई।

ऐसी मेरा सतगुर बूझ बुझाई, जन नानक की आस तू जान है, हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई। गोंड महला चौथा, ऐसा हर सेवी है नित त्याई है, जो खिन मैं किलविक सब करे बनासा, जे हर त्याग अवर की आस कीजै, ता हर निःफल सब काल गवासा, मेरे मन हर सेवे हो सुख दाता स्वामी, जिस सेवे है सब भुख लहासा, मेरे मन हर ऊपर की जय परवासा, जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी, हर अपनी पैज रखे जन दासा रहाओ, जे अपनी बिरथा कहो अवरा पह, ता आगे अपनी बिरथा बहो बहुत कढासा, अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पह, जो तुमरे दुख तत्काल कटासा, सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पह कही है, अवरा पह कह मन लाज मरासा, जो संसार के कटम मित्र भाई दी सह मन मेरे, ते सब अपने स्वाई मलासा, जित दिन उनका सवाओ होए ना आवे, तित दिन नेड़े को ना टुकासा, मन मेरे अपना हर सेव दिन राती, जो तुद उपकरे दुख सखासा, इसका प्रवासा क्यों कीजे मन मेरे, जो अंति अवसर रख ना सकासा, हर जप मंत गुर उपदेश ले जाप हो, तिन अंत छडाए जिन हर प्रीत चितासा, जन नानक अन दिन नाम जप हो हर संत हो, इहो छूटण का साचा परवासा। गोंड महला चौथा, हर सिमरत सदा हुए आनंद, सुख अंतर शांत शीतल माने अपना, जैसे सकत सूर बहु जलता, गुर सस देखे लह जाए सब तपना, मेरे मन अन दिन त्याए नाम हर जपना, जहां कहां तुझरा कह सब ठाई, सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना रहाओ, जा मह सब निदान सो हर जप मन मेरे, गुरमुख खोज लहो हर रत्ना, जिन हर त्याया तिन हर पाया मेरा स्वामी, किनके चरण मलहो हर दसना, शब्द पिशान राम रस पाव हो, ओहो उत्तम संत भयो बड़ बड़ना, किस जन की वड़ियाई हर आप बधाई, ओहो कटे ना किसे की कटाई, एक तिल तिल तिल ना, जिस ते सुख पावे मन मेरे, सो सदा त्याए नित कर जुरना, जन नानक कहो हर दान एक दीजे, नित बस हृदय हरी मोहे चरना। गोंड महला चौथा, जितने शाह पातशाह उमराव सिकदार चौधरी, सब मिथ्या झूठ।

जो हर जन नीच जात सेवकान, गोंड महला चौथा, हर अंतर जामी सब तह वरतै, जिहा हर कराए तिहा को करइय, सो ऐसा हर सेव सदा मन मेरे, जो तुदनो सब दू रख लइय, मेरे मन हर जप हर नित पड़इय, हर बिन को मार्ग वाल ना साकै, ता मेरे मन कायत कड़इय, रहाउ हर परपंच किया सब करतै, विच आपे अपनी जोत तरई है, हर एक को बोले हर एक बुलावे, गुर पूरे हर एक दिखई है, हर अंतर नाले बाहर नाले, कहो तिस पासो मन क्या चोरई है, निह कपट सेवा कीजे हर केरी, ता मेरे मन सर्ब सुख पई है, जिस दे वास सब किश सो सब दू वड्डा, सो मेरे मन सदा त्यई है, जन नानक सो हर नाल है तेरे, हर सदा त्याए तू तुद ले छड़ई है, गोंड महला चौथा, हर

कबीर। मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के, ले सतगुर की मत तीर। जन नानक की हर आस पुजाव हो, हर दर्शन शांत शरीर। शका एक राग गोंड महला पंजवा, चौपदे कर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सब करता सब भुगता रहाउ। सुनतो करता पेखत करता, अदृष्टो करता दृष्टो करता। ओपत करता परलो करता, व्यापत करता लिपतो करता। बक्तो करता बूजत करता, आवत करता जात पी करता। निर्गुण करता सरगुण करता, गुर प्रसाद नानक समदृष्टा। गोंड महला पंजवा, फाक्यो मीन कपक की न्याई। तू उर्ज रहो संभाए ले, पग धारह सास लेख लै। तो उदरह हर गुण गाए ले, मन समझ छोड़ आवाए ले।

ज्यो पंखी एकत्र हुए फिर बिछरे, फिर संगत हर हर त्याए ले। जैसे मीन रसन साध बिनसेउ, ओहो मूठो मूड लभाए ले। तू हो आ पंच वास वैरी कै, छूट है पर सरनाए ले। ओहो कृपाल दीन दुख भंजन।

राग गोंड महला पंजवा चौपदे घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जी प्राण किए जिन साज माटी मह जोत रखी निवाज बर्तन को सब किश भोजन पुगाए सो प्रभ तज मूड़े कत जाए पार ब्रह्म की लागो सेव गुरते सुजै निरंजन देव रहाओ जिन किए रंग अनक प्रकार उपत पर लो निमख मजार जा की गत मित कही ना जाए सो प्रभ मन मेरे सदा त्याय आए न जावे निश्चल कनी बेअंत गुना ताके केतक गनी लाल नाम जा कह परे पंडार सगल कटा देवे आधार सत पुरख जा को है नाओ मिटे कोट अग निमक जस गाओ बाल सखाई भगतन को मीत प्राण आधार नानक हित चीत गोंड महला पंजवा।

नमस्कार। ऐसो प्रभु मन माहि त्याहि, काटे अवकट जत कतहि सहाय रहाउ। रंक राहु जा कै एक समान, कीत हस्त सगल पुराण। बियो पूछना मसलत तरै, जो किछ करै सो आपै करै। जा काय अंत न जान सकोए, आपे आप निरंजन सोई। आप अकार आप निरंकार, काट काट काट सब काट आधार। नाम रंग भगत भए लाल, जस करते संत सदा निहाल। नाम रंग जन रहे अघाए, नानक तिन जन लागे पाए। गोंड महला पंजवां, जां कै संग इहो मन निर्मल। जां कै संग हर हर सिमरन, जां कै संग किल बिख होहे नास। जां कै संग हृदय परगास, से संतन हर के मेरे मीत। केवल नाम गाइए जां कै नीत रहाउ। जां कै मंत्र हर हर मन वसै, जां कै उपदेश परम पौ नसै। जां कै कीर्त निर्मल सार, जां की रेन बांछै संसार। कोट पतत जां कै संग उधार, एक निरंकार जां कै नाम आधार। सर्ब जियां का जानै पेओ, कृपा निदान निरंजन देव। पार ब्रह्म जब पए कृपाल, तब पेटे गुर साध दयाल। दिन रैन नानक नाम त्याय, सुख सहज आनंद हर नाय। गोंड महला पंजवां, गुर की मूरत मन मह ध्यान।

के सेवक की पूरन काल। गुर के सेवक को दुख ना व्यापे, गुर का सेवक दह दिस जापे। गुर की महिमा कथन न जाए, पार ब्रह्म गुर रहे आसमाय। कहो नानक जाके पूरे पाग, गुर चरणीता का मन लाग। गोंड महला पंजवा, गुर मेरी पूजा गुर गोबिंद। गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत। गुर मेरा देव अलख अपेव, सर्ब पूज चरण गुर सेव। गुर बिन अवर नाही मैं थाओ, अन बिन जपो गुरु गुर नाओ रहाओ। गुर मेरा ज्ञान गुर हृदय ध्यान, गुर गोपाल पुरख भगवान। गुर की शरण रहो कर जोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुर बोहित तारे भव पार, गुर सेवा जमते छुटकार। अंधकार में है गुर मंत्र उजारा, गुर कै संग सगल निस्तारा। गुर पूरा पाई है बड़ भागी, गुर की सेवा दुख ना लागी।

जप नानक दास गोंड महला पंजवा उन को खसम कीनी ठाक हारी दास संग ते मार बदारी गोविंद भगत का महल ना पाया राम जना मिल मंगल गाया सगल श्रेष्ठ के पंच सिकदार राम भगत के पानी हार रहाओ जगत पास्ते लेते दान गोविंद भगत को करह सलाम लूट ले साकत पत खोव है सात जना पग मल मल धोव है पंच पूत जने एक माई उतपुज खेल कर जगत व्याई तीन गुणा कै संग रच रसी इनको छोड़ ऊपर जन बसे कर कृपा जन लिए छड़ाई जिसके से तिन रखे हटाई कहो नानक भगत प्रभ सार बिन भगती सब हुए खुआर गोंड महला पंजवा कल कलेश मिटे हर नाई दुख बिन से सुख कीनो ठाऊ जप जप अमृत नाम अगाई संत प्रसाद सगल फल पाई राम जपत जन पार परी जन्म जन्म के पाप हरी रहाओ गुर के चरण हृदय उड़तारी अग्न सागर ते उतरे पारी जन्म मरण सब मिटी उपाद प्रभ स्यो लागी सहज समाद थान थनंतरे को स्वामी सगल कटा का अंतर जामी।

नानक निस्तरी है। गोंड महला पंजवां गुर के चरण कमल नमस्कार। काम क्रोध इस तन ते मार, होए रही है सगल की रीना। घट घट रमैया सब महचीना, इन बिद रमहु गोपाल गोविंद। तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद रहाओ। आठ पहर हर के गुण गाओ, जी प्राण को एह सुआओ। ताज अभमान जान प्रभ संग, साध प्रसाद हर स्यो मन रंग। जिन तू किया तिस को जान, आगे दरगाह पावे मान। मन तन निर्मल होए निहाल, रसना नाम जपत गोपाल। कर कृपा मेरे दीन दयाला, साधु की मन मंगेर वाला। हो दयाल देहो प्रभ दान, नानक जप जीवै प्रभ नाम। गोंड महला पंजवां धूप दीप सेवा गोपाल। अनक बार बंदन करतार, प्रभ की शरण गही सब त्याग। गुरसो प्रसन्न भये वड भाग, आठ पहर गाइय गोविंद। तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद रहाओ। हर गुण रमत भये आनंद, पार ब्रह्म पूर्ण बख्शंद। कर कृपा जन सेवा लाए, जन्म मरण दुख मेट मलाए। कर्म धर्म एह तत् ज्ञान, साध संग जपिय।

नारायण साध संग नारायण बारंबार नारायण गायन वस्त अगोचर गुर मिल लही नारायण ओट नानक दास गई गोंड महला पंजवा जा कौ राख राखन हार तिसका अंग करे निरंकार रहाउ मात गर्भ मह अग्न ना जो है काम क्रोध लोभ मोह ना पो है साध संग जप

पाए, जो जो गर्भ करे सो जाए, गरीब दास की प्रभु शरण आए, जो जो शरण पया हर राय, सो दास रखिया अपने कंठ लाए, जे को बहुत करे अहंकार, ओह खिन महरो ताखा कूनाल, है पी साचा होवन हार, सदा सदा जाई बलिहार, अपने दास रखे कृपा तार, नानक के प्रभ प्राण आधार, गोंड महला पंजवा।

ना उबाला, ना इस दूख नहीं जम जाला, ना यो बिन सह ना यो जाए, आद जगादी रहया समाए, ना इस उसन नहीं इस सीत, ना इस दुश्मन ना इस मीत, ना इस हरख नहीं इस सोग, सब किस इसका यो करना जोग, ना इस बाप नहीं इस माया, यो अपरंपर होता आया, पाप पुन का इस लेप न लागे, कट कट अंतर सद ही जागे, तीन गुणा एक सकत उपाया, महामाया ता की है छाया, अछल अछेद अभेद दयाल, दीन दयाल सदा कृपाल, ता की गत मित कछु ना पाए, नानक ता कै बल बल जाए, गोंड महला पंजवां, संतन कै बलिहार जाओ, संतन कै संग राम गुण गाओ, संत प्रसाद किल विख सब गए, संत सरन वड भागी पए, राम जपत कछ बिघना व्यापै, गुर प्रसाद अपना प्रभ जापै रहाओ, पार ब्रह्म जब हुए दयाल, साधु जन की करै रवाल, काम क्रोध

जागै चरण कमल जन का आधार गुण गोविंद रौ सच वापार दास जना की मनसा पूर नानक सुख पावै जन तूर राग गोंड अष्टपदियां।

उमराव पतियाई दुष्ट अहंकारी मार पचाई निंदक कै मुख कीनो रोग जय जय कार करे सब लोग संतन कै मन महा आनंद संत जप है गुरुदेव भगवंत संगत के मुख उजल पए सगल थान निंदक के गए सास सास जन सदा सलाही पार ब्रह्म गुर बे परवाही सगल पै मिटे जाकी सरन निंदक मार पाए सब धरन।

निंदक अहंकारी जान पाल मान है, निंदक वेकारी गुर कै सिख सत गुरु ते आया, जान उबरे निंदक नरक पाया। सुन साजन मेरे मीत प्यारे, सत बचन वरत है हर द्वारी, जैसा करे सो तैसा पाई, अबमानी की जाड़ सर पर जाए। ने धरया सतगुर धर तेरी, कर कृपा राख हो जन केरी, कहो नानक तिस गुर बलिहारी, जां कै सिमरन पै जसवारी। राग गोंड बाणी भगतां की, कबीर जी घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, संत मिलै किस सुनिए कहिए, मिलै असंत मस्त कर रही है, बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रव रही है, रहाओ संतन स्यों बोले उपकारी, मूर्ख स्यों बोले झख मारी, बोलत बोलत बढ़ है बेकारा, बिन बोले क्या करह बिचारा, कहो कबीर शूशा घट बोले, भरिया हुए सो कबहु ना डोले, गोंड नरु मरे नर काम न आवे, पशु मरे दस काज सुआरे, अपने कर्म की गत मैं क्या जानो, मैं क्या जानो बाबा रे रहाओ, हाड़ जले जैसे लकड़ी का तूला, केस जले जैसे घास का पूला, कहो कबीर तब ही नर जागे, जम का डंड मूंड में लागे, गोंड आकाश गगन पाताल गगन है, चहो दिस गगन रहाए ले, आनंद मूल सदा पुरखोत्तम, कट बिन सह गगन ना जाए ले, मोहे बैराग भयो एहो जियो, आए कहां गयो रहाओ, पंच तत् मिल काया कीनी, तत् कहां ते कीन रे, कर्म बद तुम जियो कहत हो, कर्म है किन जियो दीन रे, हर मह तन है तन मह हर है, सर्व निरंतर सोए रे, कह कबीर राम नाम ना छोड़ो, सहजे होए सो होए रे। राग गोंड बाणी कबीर जियो की, घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पूजा बांध पिला कर डार्यो, हस्ती क्रोप मूंड मह मार्यो, हस्त भाग कै चीसा मारे, या मूर्त कै हौ बलिहारे, आहे मेरे ठाकुर तुमरा जोर, काजी बकबो हस्ती तोर रहाओ, रे महावत तुझ डारो काट, इसे तराव हो काल हो साट, हस्त न तोरे तरे ध्यान, वाके हृदय बसे भगवान, क्या अपराध संत है कीना, बांध पोट कुंचर कौ दीना, कुंचर पोट लै लै नमस्कार, बूझी नहीं काजी अंधियार, तीन बार पतिया भर लीना, मन कठोर अजहू ना पतीना, कह कबीर हमरा गोविंद, चौथे पद मह जन की जिंद, गोंड ना एहु मानस ना एहु देव, ना एहु जति कहा वैसे, ना एहु जोगी ना अवतूता, ना इस माए ना काहू पूता, या मंदर मह कौन बसाई, ता का अंत न को उपाई, रहाओ ना एहु गिरही ना ओदासी, ना एहु राज ना भीख मगासी, ना इस पिंड न रख तू राती, ना एहु ब्राह्मण ना एहु खाती, ना एहु तपा कहावे सेख, ना एहु जीवे ना मरता देख, इस मरते को जे को रोवे, जो रोवे सोई पत खोवे, गुर प्रसाद में डगरो पाया, जीवन मरन दो मिटवाया, कहो कबीर एहु राम की अंश, जस कागद पर मिटे ना मंस, गोंड टूटे तागे न खुट्टी पान, द्वार ऊपर चिलका वह कान, कूच बिचारे पुए फाल,
ਪਿਆ ਮੁੰਡਿਆ ਸਿਰ ਚੜਬੋ ਕਾਲ ਇਹੋ ਮੁੰਡਿਆ ਸਗਲੋ ਦਰਬ ਖੋਈ ਆਵਤ ਜਾਤ ਨਾਕ ਸਰ ਹੋਈ ਰਹਾਉ ਤੁਰੀ ਨਾਰ ਕੀ ਛੋਡੀ ਬਾਤਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਾਕਾ ਮਨ ਰਾਤਾ ਲੜਕੀ ਲੜਕਨ ਖੈਬੋ ਨਾਹੀ ਮੁੰਡਿਆ ਅਨ ਦਿਨ ਧਾਪੇ ਜਾਹੀ ਇਕ ਦੋਏ ਮੰਦਰ ਇਕ ਦੋਏ ਬਾਟ ਹਮਕੋ ਸਾਥਰ ਉਨ ਕੋ ਖਾਟ ਮੂੰਡ ਪਲੋਸ ਕਮਰ ਬੱਧ ਪੋਥੀ ਹਮਕੋ ਚਾਬਨ ਉਨ ਕੋ ਰੋਟੀ।

इन मुंडियन भज सरन कबीर गोंड खसम मरे तो नार ना रोवे उस रखवारा औरो होवे रखवारी का हुए बनास आगे नरक इहां भोग बलास एक सुहागन जगत प्यारी सगले जी जंत की नारी रहाउ सुहागन गल सो है हार संत को बिख बिगसै संसार कर शिंगार बह पखियारी संत की ठिठकी फिरे बेचारी संत भाग ओ पाछै परे गुर प्रसादी मारू डरे साकत की ओह पिंड परायण हमको दृष्ट परे त्रिख डायण हम तिस काबो जानिया पेव जब हुए कृपाल मिले गुरुदेव कहो कबीर अब बाहर परी संसार कै अंचल लरी गोंड ग्रह सुबा जा करे नाही आवत पहिया खुदे जाए वा कै अंतर नहीं संतोख बिन सुहागन लागे दोख धन सुहागन महापवीत तपे तपीसर डोले चीत रहाउ सुहागन किरपन की पूती सेवक ताज जगत स्यों सूती साधु कै ठाडी दरबार सरन तेरी मोको निस्तार सुहागन है अत सुंदरी पगने वर सनक सुनहरी जौ लग प्राण तउ लग संगे नाहे ता चली बेग उठ नंगे सुहागन भवन त्रै लिया दस अठ प्राण तीर्थ रस किया ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बेदे बड़े भूपत राजे है शेदे सुहागन उरवार ना पार पांच नारद कै संग विद्वार पांच नारद के मिटवे फूटे कहो कबीर गुर कृपा छूटे गोंड जैसे मंदर मह बलहर ना ठहरे नाम बिना कैसे पार उतरे कुंभ बिना जल ना टीकावे साधु बिन ऐसे अवगत जावे जारो तिसे जो राम ना चेते तन मन रमत रह मह खेते रहाउ जैसे हलहर बिना जिमी नहीं बोइये सूत बिना कैसे मणि परोइये कुंडी बिन क्या गंठ चढ़ाइये साधु बिन तैसे अवगत जाइये जैसे मात पिता बिन बाल ना होई बिंब बिना कैसे कपरेत होई कोर बिना कैसे असवार साधु बिन नाही दरबार जैसे बाजे बिन नहीं लीजे फेरी खसम दुहागन ताज ओहेरी कह कबीर एक कर करना गुरमुख होए बहुर नहीं मरना गोंड कूटन सोए जो मन को कूटे मन कूटे तो जमते छूटे कुट कुट मन कसवटी लावे सो कूटन मुक्त बहु पावे कूटन किसे कहो संसार सगल बोलन के माहे विचार रहाउ नाचन सोए जो मन स्यो नाचे झूठ ना पतिये परचे साचे इस मन आगे पूरे ताल इस नाचन के मन रखवाल बजारी सो जो बजारह सोदे पांच पलीत है कौ पर बोधे नौ नायक की भगत पछाने सो बाजारी हम गुरमाने तस्कर सोए जे तात न करे इंद्री कै जतन नाम उच्चरे कहो कबीर हम ऐसे लखन धन गुरुदेव अत रूप विचखन गोंड धन गोपाल धन गुरुदेव धन अनाद भूखे कबल टहकेव धन ओए संत जने ऐसी जानी तिनको मिलबो सारंग पानी आद पुरख ते होए अनाद जपिए नाम अन कै साध रहाउ जपिए नाम जपिए अन्न अम्बे कै संग निकावन अन्न बाहर जो नर होवे तीन भवन में अपनी खोवे छोड़े अन्न करह पाखंड ना सुहागन ना ओहे रंड जग में बगते दूधा धारी गुप्ती खावे है बटका सारी अन्न बिना ना हुए सुकाल तजे अन्न ना मिले गोपाल कहो कबीर हम ऐसे जानिया
तन अनाद ठाकुर मन मानिया राग गोंड बाणी नाम देव जी की घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद असमेद जगने तुला पुरख दाने पराग इशनाने तौ ना पुजह हर कीर्त नामा अपने राम है भाजरे मन आलसिया रहाऊ गया पिंड भरता बनारस अस बसता मुख बेद चतर पढ़ता सगल कर्म अशता गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता खट कर्म सहत रहता सेवा सकत संबादं मन छोड़ छोड़ सगल भेदं सिमर सिमर गोबिंदं पाज नामा तरस भाव सिंदं गोंड नाद भ्रमे जैसे मृगाई प्राण तजे वाको ध्यान ना जाए ऐसे रामा ऐसे हेरो राम छोड़ चित अंत ना फेरो रहाओ ज्यों मीना हिरे पशुआरा सोना गढ़ते हिरे सुनारा ज्यों बिखी हिरे पर नारी कौडा डारते हिरे जुआरी जह जह देखो तह तह रामा हर के चरण

निराश बलाए निहचो नानक करते पाए प्रणवत नानक अगम सुनाए गुर चेले की संद मलाए दीखिया दारू भोजन खाए छे दर्शन की सोजी पाए राम कली महला पहला हम डोलत बेड़ी पाप भरी है पवन लगे मत जाई सनमुख सिद्ध भेटन को आए निश्चो देह वड्याई गुर तार तारन हारिया देह भगत पूर्ण अवनासी हौ तुझको बलिहारिया रहाउ सिद्ध साधक जोगी अरजंगम एक सिद्ध जिन्नी त्याया परसत पैर सिजत ते स्वामी अखर जिनको आया जप तप संयम कर्म ना जाना नाम जपी प्रभ तेरा गुर परमेश्वर नानक भेट्यो साचे शब्द नवेरा राम कली महला पहला सुरती सुरतर लाइए एत तन कर तुलहा लंघ जेत अंतर पाहे तिसे तू रख अहनस दीवा बले अथक ऐसा दीवा नीर तराए जित दीवे सब सोजी पाए रहाओ हसी मिट्टी सोजी होए ताका किया माने सोए करनी ते कर चको टाल एथे उथे निभही नाल आपे नदर करे जा सोए गुरमुख विरला बूझे कोए तित घट दीवा निश्चल होए पानी मरे ना बुझाया जाए ऐसा दीवा नीर तराए डोले वाओ ना वड्डा होए जापे ज्यो संघासन लोए खतरी ब्राह्मण सूद के वैस निरत ना पाइया गणी संस ऐसा दीवा बाले कोए नानक सो पारंगत होए राम कली महला पहला तुदनो निमन मनन तेरा नाऊ साच भेट बैसन कौ थाउ सत संतोख होवे अरदास तां सुन सद बहाले पास नानक बिरथा कोए ना होए ऐसी दरगाह साचा सोए रहाउ प्राप्त पोता कर्म पसाउ तू देव है मंगत जन चाउ भांडे भाउ पवे ते त्याए तुरते छोड़ी कीमत पाए जिन किश किया सो किश करे अपनी कीमत आपे तरे गुरमुख प्रगट हुआ हर राय ना को आवे ना को जाए लोक तकार कह मंगत जन मांगत मान ना पाया सहकिया गल्ला दरकिया बाता तैं तां कहन कहाया राम कली महला पहला सागर मह बूंद बूंद मह सागर कमन बुझे बिद जाने उत कुछ चलत आप कर कीने आपे तत पछाने ऐसा ज्ञान बिचारे कोई तिस्ते मुक्त परम गत होई रहाउ दिन मह रैन रैन मह दिनियर उसन सीत बिद सोई ताकि गात्मित अवर न जाने गुर बिन समझ न होई पुरख मह नार नार मह पुरखा बूझो हो ब्रह्म ज्ञानी तुन मह ध्यान ध्यान मह जानिया गुरमुख अकथ कहानी मन मह जोत जोत मह मनुआ पंच मिले गुर पाई नानक तिनके सद बलिहारी जिन एक शब्द लिवलाई राम कली महला पहला जा हर प्रभ किरपा तारी ता हो मैं विचों मारी सो सेवक राम प्यारी जो गुर शब्दी बिचारी सो हर जन हर प्रभ पावे अहनस भगत करे दिन राती लाज छोड़ हर के गुण गावे रहाओ तुन वाजे अनहद घोरा मन मानिया हर रस मोरा गुर पूरे सच समाया गुर आद पुरख हर पाया सब नाद बेद गुरबाणी मन राता सारंग पानी तह तीर्थ वर्त तप सारी गुर मिलिया हर निस्तारी जह आप गया पौ भागा गुर चरणी सेवक लागा
गुर सत गुर परम चुकाया, कहो नानक शब्द मलाया। राम कली महला पहला, साधन भोजन मांगत भागे, खुदिया दुष्ट जलै दुख आगे। गुरमत नहीं लीनी दुरमत पत खोई, गुरमत भगत पावे जन कोई। जोगी जुगत सहज घर वासै, एक दृष्ट एको कर देखिया। भीखिया पाए शब्द तृपता सै रहाउ, पंच बैल गडिया देह धारी। राम कला निबह पत सारी, घर टूटी गाडो सिर भार। लकड़ी बिखर जरी मंज भार, गुर का शब्द विचार जोगी। दुख सुख सम करना सोग बियोगी, भुगत नाम गुर शब्द विचारी। अस्थिर कंध जपै निरंकारी, सहज जगोटा बंधन ते छूटा। काम क्रोध गुर शब्दी लूटा, मन मह मुंदरा हर गुर सरना। नानक राम भगत जन तरना, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राम कली महला तीजा घर पहला, सत जुग सच कह सब कोई। घर घर भगत गुरमुख होई, सत जुग धर्म पैर है चार। गुरमुख बूझै को बीचार, जुग चारे नाम वडियाई होई। जे नाम लागै सो मुक्त होवै, गुरबिन नाम ना पावै कोई। रहाउ त्रेतै एक कल कीनी दूर, पाखंड वर्त्या हर जानन दूर। गुरमुख बूझै सोजी होई, अंतर नाम वसै सुख होई। द्वापर दूजै दुबदा होई, परम पलानी जानह दोए। द्वापर धर्म दोए पैर रखाई, गुरमुख होवै ता नाम दृढ़ाई। कलयुग धर्म कला एक रहाई, एक पैर चलै माया मोह वधाई। माया मोह अत गुबार, सतगुर भेटै नाम उधार। सब जुग मह साचा एको सोई, सब मह सच दूजा नहीं कोई। साची कीरत सच सुख होई, गुरमुख नाम बखाणे कोई। सब जुग मह नाम उत्तम होई, गुरमुख विरला बूझै कोई। हर नाम त्याए भगत जन सोई, नानक जुग जुग नाम वडियाई होई। राम कली महला चौथा घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जे वड भाग हुए वड भागी,

हृदय प्रगास हुए लिव लागे, गुरमत हर हर नाम सुमानी रहाओ। हीरा रतन जवे हर माणक, बहु सागर भरपूर किया, जिस वड भाग हुए वड मस्तक, तिन गुरमत कड कड लिया। रतन जवेहर लाल हर नामा, गुर काड तली दिखलाया, भाग हीन मनमुख नहीं लिया, त्रिन उलै लाख छपाया। मस्तक भाग हुए तुर लिखिया, ता सतगुर सेवा लाए, नानक रतन जवे हर पावे, तन तन गुरमत हर पाए। राम कली महला चौथा, राम जना मिल भया आनंदा, हर नीकी कथा सुनाई। दुर्मत मैल गई सब निकल, सत संगत मिल बुद्ध पाए। राम जन गुरमत राम बुलाए, जो जो सुने कह सो मुक्ता, राम जपत सोहाए रहाउ। जे वड पाग हो वह मुख मस्तक, हर राम जना पेटाए। दर्शन संत देहो कर कृपा, सब दालत दुख लह जाए। हर के लोग राम जन नीके, भाग हीन ना सुखाए। ज्यो ज्यो राम कह जन ऊचे, नर निंदक डंस लगाए। त्रिग त्रिग नर निंदक, जिन जन नहीं पाए, हर के सखा सखाए। से हर के चोर वे मुख मुख काले, जिन गुर की पैज ना पाए। दया दया कर राख हो हर जियो, हम दीन तेरी सरनाए। हम बारक तुम पिता प्रभ मेरे, जन नानक बख्श मलाए। राम कली महला चौथा, हर के सखा साध जन नीके, तिनी ऊपर हाथ बतावे। गुरमुख साध से प्रभ पाए, कर कृपा आप मलावे। राम मोको हर जन मेल मन पावे, अमयो अमयो हर रस है मीठा, मिल संत जना मुख पावे रहाउ। हर के लोग राम जन उत्तम, मिल उत्तम पदवी पावे। हम होवत चेरी दास दासन की, मेरा ठाकुर खुशी करावे। सेवक जन सेव है, सेवड भागी, हृदय

कात बाद सिर राखो जित नानक संत चढ़ आवे राम कली महला चौथा जे वड पाग होवे वड मेरे जन मिलदिया ढिल ना लाइए हर जन अमृत कुंट सरनी के वडभागी तित नवाइए राम मोको हर जन कार लाइए हों पानी पखा पीसो संत आगे पग मल मल तूर मुख लाइए रहाओ हर जन वड्डे वड्डे वड ऊचे जो सतगुर मेल मलाइए सतगुर जेवड़ अवर ना कोई मिल सतगुर पुरख त्याइए सतगुर सरन परे तिन पाया मेरे ठाकुर लाज रखाइए एक अपने सवाए आए बह गुर आगे जो बगल समाध लगाइए बगला काग नीच की संगत जाए करंग बिखू मुख लाइए नानक मेल मेल प्रभ संगत मिल संगत हंस कराइए राम कली महला चौथा सतगुर दया करहो हर बेलो मेरे प्रीतम प्राण हर राया हम चेरी होए लग हैं गुर चरनी जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाया राम मैं हर हर नाम मन पाया मैं हर बिन अवर ना कोई बेली मेरा पिता माता हर सिखाया रहाओ मेरे एक खिन प्राण ना रहे बिन प्रीतम बिन देखे मरह मेरी माया तन तन वड भाग गुर सरणी आई हर गुर मिल दर्शन पाया मैं अवर न कोई सूजे बूजे मन हर जप जपो जो पाया नाम हीन फिर है सेन कटे तिन कस कस नक वढाया मोको जग जीवन जवाल लै स्वामी हृदय अंतर नाम वसाया नानक गुरु गुरु है पूरा मिल सतगुर नाम ते आया राम कली महला चौथा सतगुर दाता वड्डा वड पुरख है जित मिले हर उर तारे जी दान गुर पूरे दिया हर अमृत नाम सुमारे राम गुर हर हर नाम कंठ तारे गुरमुख कथा सुनी मन पाई तन तन वड भाग हमारे रहाओ कोट कोट ते तीस त्यावह ताका अंत ना पावह पारे हृदय काम कामनी मांग है हृद मांग है हाथ पसारी हर जासु जप जप वड्डा वडेरा गुरमुख रखो उर धारी जे वड भाग होवह ता जपिए हर पहो जल पार उतारी हर जन निकट निकट हर जन है हर राख है कंठ जन धारी नानक पिता माता है हर प्रभ हम बारक हर प्रित पारी राग राम कली महला पंजवां घर पहला।

सुख होई, जो इच्छो हो सोई फल पावहु, फिर दुख न व्यापै कोई रहाउ। काचे भांडे साज नवाजी, अंतर जोत समाई, जैसा लिखत लिखिया धुर करतै, हम तैसी किरत कमाई। मन तन थाप किया सब अपना, एहो आवन जाना, जिन दिया सो चेतना आवै, मोहे अंध लपटान।

ऊपर आवहु, ऐसी सेव कमावहु, आपस ते ऊपर सब जानहु, तौ दरगाह सुख पावहु। संत हो ऐसी कथो कहानी, सुर पवित्र नर देव पवित्रा, खिन बोल हो गुरमुख बाणी रहाव। परपंच छोड़ सहज कर बैसो, झूठा कहो ना कोई, सतगुर मिलहो नवे निध पावहो, इन बिद तत बिलोई। परम चकावहो गुरमुख लिव लावहो, आत्म चीनो पाई, निकट कर जानहो सदा प्रभ हाजिर,

पूर भंडारा ऐसा रस अमृत मन चाखिया तृप्त रहे आगाई कहो नानक मेरी आसा पूरी सतगुर की सरनाई। राम कली महला पंजवां अंगीकार किया प्रभ अपने बैरी सगले साधे जिन बैरी है इहो जग लूटिया ते बैरी लै बहांदे सतगुर परमेश्वर मेरा अनक राज भोग रस माणी नाउ जपी परवासा तेरा रहाउ चीत ना आवस दूजी बाता सिर उपर रखवारा बेपरवाह रहत है स्वामी एक नाम कह आधारा पूर्ण होए मिलियो सुखदाई ऊन ना काई बाता तत सार परम पद पाया छोड़ ना कतहू जाता बरन ना साकों जैसा तू है साचे अलख अपारा अतुल अथाह अडोल स्वामी नानक खसम हमारा। राम कली महला पंजवा तू दाना तू अब चल तू ही तू जात मेरी पाती तू अडोल कदे डोलह नाही।

तुने अगाजा निर्त करे कर मनुआ नाचे आनी घुंगर साजा राम को निर्तकारी पेख पेखनहार दयाला जेता साज सिंगारी रहाउ अखार मंडली तरन सबाई ऊपर गगन चंदोवा पवन विचोला करत अकेला जल के ओपत होवा पांच तत कर पुतरा कीना।

दास पातों पांच संगीता एक है भीतर साथे भिन्न भिन्न हुए भाव दिखावे सब हो नरारी पाखे कर कर निरत हो दिन राती कट कट वाजे तूरा एक नचाव है एक पवाव है एक आई जाए होए तूरा कहो नानक सो बहुर ना नाचै जिस गुर भेटै पूरा राम कली महला पंजवा ओ अंकार एक धुन एक है एक है राग अलापै।

कब ही एक शब्द बंद पाल नार दी नर हर जान हदूरे पूंगर खड़क त्याग विसूरे सहज आनंद दिखावे पावे एहो नित कारी जन्म ना आवे जे को अपने ठाकुर भावे कोट मद एहो कीर्तन गावे साध संगत की जावो।

कोई बाछै पिसत कोई सुरगिंदु। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। राम कली महला पंजवा, पवन मह पवन समाया, ज्योति मह ज्योत रल जाया। माटी माटी हुई एक, रोव नहारे की कवन टेक। कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो बीचारा। एहो तौ चलत भया रहाउ, अगली किश खबर न पाई। रोव नहार पे उठ सदाई, परम मोह के बांधे बंद। सुपन भया पखलाए अंध, एहो तौ रचन रचिया कर।

रहाउ रथ में वसिया सत का खेड़ा तृतीय मह किस भया दुतेड़ा द्वितीया अर्दो अर्ध समाया एक रहे आता एक दिखाया एक सूत परोए मणिए गांठी पिन पिन पिन पिन तनिए फिरती माला बहु विद पाए खिंचया सूत ता आई थाए चहो मह एक मत है किया तह बिखड़े थान अनक खिड़कियां खोजत खोजत द्वारे आया ता नानक जोगी महल कर पाया इउं किंकुरी अनूप वाजै सुन जोगी कै मन मीठी लागै रहाउ दूजा राम।

गुरमुख मिलिया रंग माना, ऐसो रे हर रस मीठा, गुरमुख किने विरले दीठा, रहाव निर्मल ज्योत अमृत हर नाम, पीवत अमर भय निह काम, तन मन शीतल अग्न निवारी, अनंद रूप प्रगटे संसारी, क्या देवो जा सब किस तेरा, सद बलिहार जाओ लख बेरा, तन मन जियो पिंड दे साजिया, गुर किरपा ते नीच निवाजिया, फूल कुवारा महल बुलाया, जैसा सा तैसा दिखलाया।

देव अमृत नाम दियो मुख देव सगली चिंता आप नवारी किस गुर को हौ सद बलिहारी काज हमारे पूरे सतगुर बाजे अनहद तूरे सतगुर रहाओ महिमा जा की गहर गंभीर।

प्यारी जो किस करै सो मन मेरा मीठा ता एहो अचरज नैन डीठा अब मोहि जानी रे मेरी गई बलाई बुझ गई तृष्ण नवारी ममता गुरपूरै लियो समझाए रहाओ कर कृपा राखियो गुर सरना गुर पक

तार जिसा सहाई होए भगवान अनक जतन ओआ कै सरंजाम रहाउ करता राखै कीता कौन कीरी जी तो सगला भवन बे अंत महिमा तां की केतक वर्ण बल बल जाइए तां के चरण तिन्ही किया जप तप ध्यान

आपन कर्म आपे ही बंद, आवन जावन माया तंद, ऐसी जानी संत जनी, प्रगास भया पूरे गुर बचनी रहाउ, तन

जन्म जन्म का सोया जाग, हर हर जाप जपला, गुर कृपा ते हृदय वास्तै, पौजल पार परला रहाओ, नाम निदान त्याए मन अटल, तां छूटह माया के पटल, गुर का शब्द अमृत रस पियो, तां तेरा होए निर्मल जियो, सोदत सोदत सोद बीचारा, बिन हर भगत नहीं छुटकारा, सो हर भजन साध कै संग, मन तन रापै हर कै रंग, छोड़ सियाणप बहु चतराई, मन बिन हर नावे जाए नाकाई, दया तारी गोविंद गुसाई, हर हर नानक टेक टकाई।

ध्याया संत प्रसाद कमल बिगसाया नाम रतन जिन पाया दान तिस जन होए सगल निदान संतोख आया मन पूरा पाए फिर

सो भूखार है, इस संग राचे सो कशु नाल है, इस त्याग सत संगत करे, वड भागी नानक ओ तरे। राम कली महला पंजवा, आत्म राम सर्ब मह पेख, पूर्ण पूर रहया प्रभु।

साध कै संग मन तन रातो हर कै रंग राखे राखन हार दयाल ना किस सेवा ना किस काल कर कृपा प्रभ कीनी दया बूढ़त दुख मह काड लया सुन सुन उपजियो मन मह चाऊ आठ पहर हर के गुण गाओ गावत गावत।

लाज नाही सुख सागर पूर्ण परमेश्वर हर ना चेत्यो मन माही रहाओ अमृत कौरा बिखिया मीठी साकत की बिद नैनो दीठी।

कबह न उस्तत करे निरपहो निरंकार दातार तिस स्यो प्रीत न करे गवार सब साहा सिर साचा साह वे मोहताज पूरा पातशाह मोह मगन लपटे ओ भ्रम गिरह नानक तरिया ते

कबहू न व्यापै हो मैं रोग। खोजो संत हो हर ब्रह्म ज्ञानी, बिस्मन बिस्म पये बिस्मादा, परम गत पाव है हर सिमर प्राणी रहाव। गण में देखो सगल विचार, नाम बिना को सके ना तार, सगल अपाव ना चाले संग, पवजल तरिय प्रभ कै रंग, देही धोए न उतरे मैल, हों मैं व्यापै दुबदा फैल, हर हर औखद जो जन खाए, तां का रोग सगल मिट जाए, कर कृपा पार ब्रह्म दयाल, मन ते कभो न बिसर गोपाल, तेरे दास की हो आतूर, नानक की प्रभ शरदा पूर, राम करे महला पंजवां, तेरी शरण पूरे गुरुदेव, तुद बिन दूजा नाही कोई, तू सम्राट पूर्ण पार ब्रह्म, सो त्याए पूरा जिस कर्म, तरन तारन प्रभ तेरो नाओ, एका शरण गही मन मेरा, तुद बिन दूजा नाही ठाऊ रहाओ, जप जप जीवा तेरा नाओ, आगे दरगाह पावो ठाओ, दुख अंधेरा मन ते जाए, दुर्मत बिन सह राचे हर नाए, चरण कमल स्यों लागी प्रीत, गुरपूरे की निर्मल रीत, पवो भागा निरपो मन बसै, अमृत नाम रसना नित जपै, कोट जन्म के काटे फाहे, पाया लाभ सच्चा धन लाहे, टूट ना आवे अखुट भंडार, नानक भगत सोह है।

का पूता हर भगता हवालै होता मेरे राम को भंडार खात खर्च कछ तोट ना आवे अंत नहीं।

करत तह हरक ना सोग ना जन्म ना मरत कर कृपा जिस आप दिवाया साध संग तिन हर धन पाया दयाल पुरख

नहीं जानह भेद, अवतार न जानह अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत, अपनी गत आप जानह, सुन सुन अवर बखानै रहाउ, संकरा नहीं जानह भेव, खोज तहारे देव, देवियां नहीं जानह मर्म, सब ऊपर अलख पार ब्रह्म, अपने रंग करता केल, आप बिछोरै आपे मेल, एक परमे एक भगती लाए।

मत सार जित हर सिमरिजै कर कृपा जिसे आपे दीजै सुख सहज आनंद हर नाउ नानक जपया गुरु।

तिसका सब कोए, तिसह अराध सदा सुख होए। काहे भ्रम भ्रम है बेगानी, नाम बिना किस काम ना आवे। मेरा मेरा कर बहुत पछतानी रहाउ, जो जो करे सोई मान लेहु। बिन माने रल हो वह खेह, किसका पान।

जिस चेते आए बिन सह दुखा, हलत पलत तेरा उजल मुखा, कौन कौन उधरे गुण गाए, गनन ना जाई कीम ना पाए, बूढ़त लोह साध संग करै, नानक जिसह प्राप्त करै, राम कली महला पंजवा, मन माहे जाप भगवंत, गुरपुरै इहो दीनो मंत, मिटे सगल पै त्रास, पूर्ण होई आस, सफल सेवा गुरदेवा, कीमत किछ कहन ना जाई, साचे सच अलग।

सच सहज सुख पावे मीत, साहिब मेरा अत पारा, जिन मैं थापियो थाप नहारा, तिस बिन अवर न कोई, जन का राखा सोई, कर कृपा अरदास सुनीजै, अपने सेवक को दर्शन दीजै, नानक जापी जप जाप, सब ते ऊच जा का प्रताप, राम कली महला पंजवां, बिरथा परवासा लोक, ठाकुर प्रभ तेरी टेक, अवर छूटी सब आस, अचिंत ठाकुर भेटे गुणतास, एको नाम त्याए मन मेरे, कार्य तेरा होवे पूरा, हर हर हर गुण गाए मन मेरे रहाओ, तुम ही कारण करन, चरण कमल हर सरन, मन तन हर ओही त्याया, आनंद हर रूप दिखाया, तिस ही की ओट सदीव, जाके कीने है जीव, सिमरत हर करत निदान, राखन हार निदान, सर्व की रेण हवीजै, आप मटाए मलीजै, आनंदेन त्याय नाम, सफल

चित लागा तन तन संयोग सुभागा संत की धूर लागी मेरे माथे तिल विख दुख सगले मेरे लाथे साध की सच टहल कमानी तब होए मन शुद्ध परानी जन का सफल दर्श डीठा।

हाथी मछली का जाला टूटा, सूखे काष्ट हरे चलूल, ऊंचे थल फूले कमल अनूप, अग्ननवारी सतगुर देव, सेव के अपनी लायो सेव, किरत कणा का करे उदार, प्रभ मेरा है सदा दयार, संत जना का सदा सहाई, चरण कमल नानक सरनाई, राम कली महला पंजवां, पंच सिंह राखे प्रभ मार, दस बिगियाड़ी लई निवार, तीन अवर्त की चूकी केर, साध संग चूके पै फेर, सिमर सिमर जीवा गोविंद, कर कृपा राखियो दास अपना, सदा सदा साचा बख्शिंद, रहाउ दाज गए तृण पाप समेर, जप जप नाम पूजे प्रभ पैर, अंध रूप प्रगट।

सिंध समायो कट के माही, करनहार को किस अचरज नाही। जो छूटो तो जाए पयाल, जो काडे हो तो नदर निहाल। पाप पुन हमरे बस नाही, रसक रसक नानक गुण गाए। राम कली महला पंजवां।

किंत जाल काल चक्र पेल हर चरण कमल सरनाए मना राम नाम जप संग सहाई गुरमुख पावह साच तना रहाउ ऊणे काज न होवत पूरे काम क्रोध मद सद ही चूरे करे बिकार जियरे कैताई गाफल संग न तसुआ जाई तरत तो हो अनक शाल जाने

पार ब्रह्म जब पये दयाल इह मन हुआ सादरवाल हस्त कमल लड़ लीनो लाए नानक साचे।

जिस कृपा करे साध संग सो पव जल तरे अमृत पीवो हो साध प्यारे मुख उज्जल साचे दरबारी आनंद करहो तज सगल विकार नानक हर जप उतरोह पार राम कली महला पंजवा ईंधन ते बैसंतर भागे माटी को जल दह दिस त्यागे ऊपर चरण तले आकाश घट मह सिंध कियो परगास ऐसा समरथ हर जियो आप निमख न बिसरै जी भगतन कै।

गर्भ जोन मह किरत पया पुरब कमाणी छोडह नाही जमदूत ग्रास्यो महा भया बोलै झूठ कमावै अवरा कृष्ण ना बूझै बहुत हया असाद रोग उपजया संत दुखन देह बनासी महा खया जिन्ह नवाजे तिन्ही साजे आपे कीने संत जया नानक दास कंठ लाए राखे कर कृपा पार ब्रह्म मया राम कली महला पंजवा ऐसा पूरा गुरदेव सहाई जाका सिमरन बिरथा न जाई रहाव दर्शन पेखत हुए निहाल जाकी धूर काटे जम जाल चरण कमल बसे मेरे मन के कार्य सवारे सगले तन के जाके मस्तक राखे हाथ प्रभ मेरो अनाथ को नाथ पतत उदाहरण।

बिन से अभमान, एक त्याई है साध कै संग, पाप बनासे नाम कै रंग, गुर परमेश्वर सगल निवास, घट घट रव रहिया गुणतास, दर्श दे तारू प्रभ्यास, नित नानक चितवै सच अरदास, राग राम कली महला पंजवां, कर दूजा दुपदे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, गावु राम के गुण गीत, नाम जपत परम सुख पाई, आवागौण मिटै मेरे मीत, रहाओ गुण गावत होवत परगास, चरण कमल मैं हुए निवास, संत संगत मैं हुए उदार, नानक भवजल उतरस पार, राम कली महला पंजवां, गुरपूरा मेरा गुरपूरा, राम नाम जप सदा सुहेले, सगल मनासे रोग कूरा रहाओ, एक अरातो साचा सोए, जा की सरन सदा सुख होए।

सुख संत भावनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग राम कली महला नौवां ए पदे रे मन ओटले हो हर नामा जा कै सिमरन दुरमत नासै पावह पद निर्बाना रहाउ बड भागी ते जन कौ जानहु जो हर के गुण गावै जन्म जन्म के पाप खोए कै हुन बैकुंठ सदावै अजामल को अंत काल में नारायण सुधि आई जा गत को जोगी सर्वांशत सो गत छिन मह पाई नाहिन गुण नाहिन कछ विद्या धर्म कौन गज कीना नानक बिरद राम।

जाते दुर्मत सगल बनासै राम भगत मन पीजे रहाउ। मन माया मह उर्ज रहियो है बूझे नह कछ ज्ञाना। कौन नाम जग जाकै सिमरै पावे पद निर्वाणा। भई दयाल कृपाल संत जानू

बिस्बा सुरमह निमक एक उर तारह जम को त्रास मिटे नानक तेह अपनो जन्म सवार राम कली महला नवा प्राणी नारायण सुदले छिन छिन औध कटे निस्बासुर बिरथा जात है दे रहाओ तरना को बिखिन स्यो खोयो बालपन अज्ञाना बिरद भयो अजहू नहीं समझे कौन कुमत उरजाना मानस जन्म दियो जेह ठाकुर सोते क्यों बिसरायो मुक्त होत नर जा कै सिमरै।

वेद अथर्वण करनी कीरत लहया पातविण पूजा सतविण संयम जातविण काहे जनेऊ नाव हो तो वो तिलक चढ़ाव हो सोचविण सोच ना होई कल परवान कते बकरान पोथी पंडत रहे पुराण नानक नाव पया रहमान कर करता तू एको जान नानक नाम मिले वडियाई एदू उपर कर्म नहीं जे घर हुंदे मंगण जाइए फिर ओ लामा मिले तही राम कली महला पहला जग प्रबोध है मड़ी बंधावे है।

दुखदा दुख भागे धर कर मांगत लाज ना लागे रहाउ गावह गीत ना चीनह आप ज्यों लागी निवरै प्रताप गुर कै शब्द रचै मन पाए तिख्या सहज विचारी खाए पसम चढ़ाए करह पाखंड माया मोहे सह जमदंड फूटे खापर पीख न पाई बंधन बांधिया आवे जाए बिंद न रख है जति कहावह माई मांगत त्रै लुभावह निर्दया नहीं जोत उजाला बूढ़त बूढ़।

कैसे उतरस पारी, मुंदरा फटक बनाई कान, मुक्त नहीं विद्या विज्ञान, जेवा इंद्री साध लुभाना, पशु पये नहीं मिटे निशाना, त्रिभिद लोगा त्रिभिद जोगा, शब्द विचार चूक ससोगा, उजल साच सो शब्द होए, जोगी जुगत विचारे सोए, तुझ पह नौ नित तू करने जोग, थाप उथापे करे सो होग, जात सत संयम सच सुचीत, नानक जोगी त्रे पवन मीत, राम कली महला पहला, खट मट देही मन बैरागी, सुरत शब्द धुन अंतर जागी, वाजै अनहद मेरा मन नीना, गुरबचनी सच नाम पतीना, प्राणी राम भगत सुख पाईऐ, गुरमुख हर हर मीठा लागै, हर हर नाम समाईऐ रहाउ, माया मोह विवर्ज समाई, सतगुर भेटै मेल मलाई, नाम रतन निर्मोल कहीरा, तितराता मेरा मन पीरा, हौं मैं ममता रोग न लागै, राम भगत जम का भौ भागै, जम जंदार न लागै मोहे, निर्मल नाम हृदय हर सोहे, शब्द विचार भय निरंकारी, गुरमत जागे दुरमत परहारी, अन दिन जाग रहे लिवलाई, जीवन मुकत गत अंतर पाई, अलिपत गुफा मह रह निरारी, तस कर पंचो शब्द संघारी, पार कर जाए न

पाए अनहद शब्द बजे दिन राती अवगत की गात गुरमुख जाती तौ जानी जा शब्द पछानी एको रव रहया निर्वाणी सुन समाद सहज मन राता।

सब सारथ मुक्त प्राण जप हर किरतारथ वाचै वाद ना बेद विचारै आप डुबै क्यों पितरा तारै कट कट ब्रह्म चीनै जन कोए सतगुर मिलै तां सोझी होए गणत गणियै सहसा दुख जीयै गुर की शरण पवै सुख थीयै कार्य अपराध शरण हम आया गुर हर भेटे पुरब कमाया गुर शरण ना आईयै ब्रह्म ना पाईयै भरम भलाईयै जन्म मर आईयै जमदर बहंत हो मरे बेकार ना हृदय नाम ना शब्द आचार एक पांदे पंडित मिस्र कहाव है दुबदा राते महल ना पाव है जिस गुर प्रसादी नाम आधार कोट मध्य को जन आपार एक बुरा भला सच एक बूझ ज्ञानी सतगुर की टेक गुरमुख।

राम कली महला पहला हठ निग्रह कर काया सीजै वर्त तपन कर मन नहीं पीजै राम नाम सर अवर ना पूजै गुरसेव मना हर जन संग कीजै।

गुण भिखिया जन्म मरीजै, राम नाम बिन दुख सहीजै, चारस पवन संघासन पीजै, न्योली कर्म खट कर्म करीजै, राम नाम बिन बिरथा सास लीजै, अंतर पंच अगन क्यों तीरज तीजै, अंतर चोर क्यों साध लहीजै, गुरमुख होए काया गढ़ लीजै, अंतर महल तीर्थ परमीजै।

देही दुख दीजै, बिन गुर ज्ञान तृप्त नहीं चीजै, मनमुख जन्म जन्म मरीजै, सतगुर पूछ

दुंदर पास तरीजै तुरकी सेवा राम रुवीजै नानक नाम मिलै कृपा प्रभु की जय राम कली महला पहला अंतर उत्पुज अवर ना कोई जो कही है सो प्रभ ते होई जुगह जुगंतर साहिब सच सोई उत्पत पर लहो अवर ना कोई ऐसा मेरा ठाकुर गहर गंभीर जिन जपया तिन्ही सुख पाया हर कै नाम ना लगे जम तीर रहाउ नाम रतन हीरा निर्मोल साचा साहिब अमर अतोल जेवा सूची साचा बोल घर दर साचा नाही रोल एक बन मह बैस है डूंगर अस्थान नाम बसार पच है अभमान नाम बिना क्या ज्ञान त्यान गुरमुख पाव है दरगह मान हठ अहंकार करे नहीं पावे पाठ पढ़े ले लोक सुनावे तीरथ परमस ब्याद ना जावे नाम बिना कैसे सुख पावे जतन करे बिंद किवे ना रहाई मनुआ डोले नरके पाई जमपुर बहादुर लह सजाई बिन नामे जियो जल बल जाई।

मन तन निर्मल अभिमान अभिवा कर्म मिले पावे सच नाउ तुम शरण लागत रहूं स्वभाव तुम ते उपजेओ भगति पाओ जप जापो गुरमुख हर नाउ हौ मैं गर्भ जाय मन पीने झूठ ना पाव सपा खंड कीने बिन गुर शब्द नहीं घर बार नानक गुरमुख तत बीचार राम कली महला पहला ज्यों आया त्यों जावह बौरे ज्यों जन्मे त्यों मरन भया ज्यों रस भोग किए तेता दुख लागे नाम विसार भवजल पया तन तन देखत गर्भ गया कनक कामनी स्यों हेत वधाई है की नाम विसार है परम गया रहाऊ जत सत संयम सील ना राखिया प्रेत पिंजर मह काष्ट भया पुन दान इशनान ना संयम साध संगत बिन बात जया लालच लागे नाम बसारे ओ आवत जावत जन्म गया जां जम ताए केस गह मारे सुरत नहीं मुख काल गया अहनस निंदा तात पराई हृदय नाम ना सर्ब दया बिन गुर शब्द न गत पत पावह राम नाम बिन नरक गया खिन मैं वेस करह नटुआ ज्यो मोह पाप मह गलत गया हित उत माया देख पसारी मोह माया कै मगन भया करह विकार वथार कनेरे सुरत शब्द बिन भरम पया हौ मैं रोग महा दुख लागा गुरमत लेव हो रोग गया सुख संपत को आवत देखै साकत मन अभिमान भया जिसका एहो तन धन सो फिर लेवै अंतर सहसा दुख पया अंतकाल किस साथ ना चालै जो दिसै सब तिसह मया आदि पुरख अपरंपर सो प्रभ हर नाम हृदय लै पार पया मुए को रोवह किसै सुनावह भय सागर असराल पया देख कटंब माया ग्रह मंदर साकत जंजाल पराल पया।

दृष्ट समय सर अनहत शब्द रंगीना सात बंद कुपीन भरपुर लीना जेवा रंग रसीना मिलै गुर साचे जिन रच राचे किरत भी चार पतीना एक मह सर्ब सर्ब मह एका एह सतगुर देख दिखाई जिन किए खंड मंडल ब्रह्मंडा सो प्रभ लखन ना जाई दीपक ते दीपक परगासिया त्रे पवन जोत दिखाई सच्चे तखत सच महली बैठे निरपहु ताड़ी लाई मोहे गया बैरागी जोगी कट कट कुंगरी वाई नानक सरन प्रभु की छूटे सतगुर सच सिखाई राम कली महला पहला आओ हठ हस्त मड़ी कर छाया तरन गगन कल तारी गुरमुख केती शब्द उधारी संत हो रहाओ ममता मार हूं मैं सुख है तेरे पवन जोत तुम्हारी मनसा मार मन मह राख सतगुर शब्द विचारी सिंह सुरत अनाह दवाजै कट कट जोत तुम्हारी परपंच बेन तही मन राखिया ब्रह्म अग्न पर जारी पंच तत् मिल अहनस दीपक निर्मल ज्योत अपारी राव सस लोके इहो तन किंगरी वाजै शब्द निरारी शिव नगरी मह आसन औदू अलख अगम अपारी काया नगरी इहो मन राजा पंच वसह विचारी शब्द रवै आसन घर राजा अदल करे गुणकारी काल बकाल कहे कह बपरी

जोग जुगत इव पाए नदरी आवंदा सब किस बिनसै हर सेती चित लाए सतगुर नाल तेरी भावनी लागै ता एह सोझी पाए एहो जोग न होवै जोगी जे कतंब छोड़ पर भवन करहै ग्रह शरीर मह हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रभ लह एहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी इसमें रोग वड्डा तृष्णा माया अनेक जतन भेख करे जोगी रोग ना जाए गवाया हर का नाम औखद है जोगी जिसनो मन वसाई गुरमुख होवै सोई बूझै जोग जुगत सो पाए जोगै का मार्ग बिखम है जोगी जिसनो नदर करे सो पाए अंतर बाहर एको वेखै विचों भरम चुकाए बिन बजाई।

सच समाई काया नगरी शब्दे खोजे नाम नमंग निध पाई मनसा मार मन सहज समाना बिन रसना उस्तत कराई लोयन देख रहे बिस्मादी एता अधिष्ट लगाई अधिष्ट सदा रह निरालम ज्योति ज्योत मलाई हौ गुर सलाही।

भय भंजन अत पाप निखंजन मेरा प्रभ अंत सखाई सब किसे आपे आप वरतै नानक नाम वडियाई राम कली महला तीजा हम कुचल कचील अत अभमानी मिल शब्दे मैल उतारी संत हो गुरमुख नाम निसतारी सच्चा नाम वस्या घट अंतर करतै आप सवारी रहाउ पारस परसे फिर पारस होए हर जीव अपनी कृपा तारी एक भेख करह फिर है अभमानी इन जूए बाजी हारी एक अन दिन भगत करह दिन राती राम नाम उरत हारी अन दिन राते सहजे माते सहजे हों मैं मारी भय बिन भगत न होई कब ही भय पाए भगत सवारी माया मोह शब्द जलाया ज्ञान तत बीचारी आपे आप कराए करता आपे बख्श भंडारी तिस क्या गुणा का अंत ना पाया हों गावा शब्द बीचारी हर जियो जपी हर जियो सालाही विचो आप निवारी नाम पदार्थ गुरते पाया अखुट सच्चे भंडारी अपनिया भगतानो आपे तुठा अपनी कृपा कर कल धारी तिन साचे नाम की सदा भुख लागी गावन शब्द विचारी जियो पिंड सब किश है तिसका आखन बिखम बीचारी शब्द लगे से जन निस्तरे भवजल पार उतारी बिन हर साचे को पार ना पावे बूझे को विचारी जो तुर लिखिया सोई पाया मिल हर शब्द सुवारी काया कंचन शब्दे राती साचे नाई प्यारी काया अमृत रही पर पूरे पाईए शब्द विचारी जो प्रभ खोज है से ही पाव है और फूट मुए अहंकारी।

अहंकारी जिचर अंतर सास तिचर सेवा कीच जाए मिलिए राम रारी अन दिन जागत रह दिन राती अपने प्रिय प्रीत प्यारी तन मन वारी वार कमाई अपने गुर विटों बलिहारी माया मोह बिनस जाएगा उबरे शब्द विचारी आप जगाए से जागे गुर कै शब्द विचारी नानक से मुए जे नाम ना चेत है भगत जीवे विचारी राम कली महला तीजा नाम खजाना गुरते पाया कृपत रहे आघाई संत हो गुरमुख मुक्त गत पाई एक नाम वस्या घट अंतर।

जो किस करना सु कर रहे आ, अवर ना करना जाई। आपे साजे सिरट अपाए, सिर सिर तंदे लाई। तिसह सरेवो ता सुख पावहु, सतगुर मेल मलाई। अपना आप उपाई, लख ना लखना जाई। आपे मार्ज वाले आपे, तिसनो तिल ना तमाई। एक दाते एक मंगते कीते, आपे भगत कराई। सेवड भागी जिनी एको जाता, सच्चे रहे समाई। आप स्वरूप सियाणा आपे, कीमत कहन ना जाई। आपे दुख सुख पाए अंतर, आपे परम पलाई। वड्डा दाता गुरमुख जाता, नगुरी अंध फिरै लोकाई। जिन्नी चाखिया तिन्ना साध आया, सतगुर बूझ बुझाई। इक ना नाम हो आप पलाई, इक ना गुरमुख दे बुझाई। सदा सदा सलाह हो संतो, तिस दी वड्डी वड्याई। तिस बिन अवर ना कोई राजा, करत पा

सदा त्यावहु जिन गुरमुख बणत बनाई सतगुर भेटै सो जन सीजै जिस हृदय नाम वसाई सच्चा आप सदा है साचा बाणी शब्द सुनाई नानक सुन वेख रहया विस्माद मेरा प्रभ रव्या सर्व थाई राम कली महला पंजवां अष्टपदियां।

भावै नहीं सीजै, कार्ज सबरै मन प्राप्त आइजै, इहां उहां एकै ओही, जत कत देखिए तत तत तोही, तिस सेवत

कर मारे गुर बोहित बड़ भागी मिलिया नानक दास संग पाथर तरिया राम कली महला पंजवा काहू बिहावे रंग रस रूप काहू बिहावे माए बाप पूत काहू बिहावे राज मिलख वपारा संत बिहावे हर नाम अधारा रचना साच बनी सबका एक तनी रहाउ काहू बिहावे बेद अर बाद काहू बिहावे रसना साध काहू बिहावे लपट संग नारी संत रचे केवल नाम मरारी काहू बिहावे खेलत जुआ काहू बिहावे अमली हुआ काहू बिहावे पर दर्ब चुराए हर जन बिहावे नाम त्याय काहू बिहावे जोग तप पूजा काहू रोग सोग परमीजा काहू पवन धार जात बिहाय संत बिहावे कीर्तन गाय काहू बिहावे दिन रहन चालत काहू बिहावे सो पेड़ मालत काहू बिहावे बाल पढ़ावत संत बिहावे हर जस गावत काहू बिहावे नट नाटक निरते काहू बिहावे जिया एह हिरते काहू बिहावे राज मह डरते संत बिहावे हर जस करते काहू बिहावे मता मसूरत काहू बिहावे सेवा जरूरत काहू बिहावे सोदत जीवत संत बिहावे

का धन प्राण आधार त्यों हर जन हर हर नाम प्यार किरसानी ज्यों राखै रखवाला मात पिता दया ज्यों बाला प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए त्यों हर जन राखै कंठ लाए ज्यों अंधले पेखत होए आनंद गूंगा भक्त गावै बहु छंद पिंगल पर्वत परते पार हर कै नाम सगल उदार ज्यों पावक संग सीत को नास ऐसे प्रासत संत संग बनास ज्यों साबुन का परिउजल होत नाम जपत सब भ्रम पहु खोत ज्यों चकवी सूरज की आस ज्यों चात्रक बूंद की प्यास ज्यों क्रंक नाद करन समाने त्यों हर नाम हर जन मन है सुखाने तुमरी कृपा ते लागी प्रीत दया।

कोट जाने ऊपर नानक वन्य वारना राम कली महला पंजवा अष्टपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद दर्शन भेटत पाप सब नास है।

जन्म मरण की टेक, मुख उज्जल सदा सुखी, नानक सिमरत एक, मन तन राता राम प्यारी, हर प्रेम भगत बन आई संतो, सतगुरु खेप निबाही संतो, हर नाम लाहा दास को दिया, सगली तृष्ण उलाही संतो, रहाउ खोजत खोजत लाल एक पाया, हर कीमत कहन

निहाला हर सिमरत तृप्त अगाई संत हो आत्म राम रविया सब अंतर कत आवे कत जाई संत हो आद जुगादी है पी होसी सब जिया का सुखदाई संत हो आप बेअंत अंत नहीं पाई है पूर रहया सब ठाई संत हो मीत साजन माल जोबन सुत हर नानक बाप मेरी माई संत हो राम कली महला पंजवा मन बच क्रम राम नाम चितारी घूमन घेर महा अत बिखड़ी गुरमुख नानक पार उतारी रहाओ अंतर सूखा बाहर सूखा हर जप मलन भये दुष्टारी जिसते लागे तिन्ह निवारी प्रभ जीओ अपनी कृपा तारी उदरे संत परे हर सरनी पच बिन से महा अहंकारी साधु संगत एहो फल पाया एक केवल नाम अधारी ना कोई सूर ना कोई हीना सब प्रगति जोत तुम्हारी तुम समर्थ अकथ अगोचर रविया एक मरारी कीमत कौन करे तेरी करते प्रभ अंत न पारा वारी नाम दान नानक वडियाई तेरिया संत जनारे नारी राम कली महला।

सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावणे आईयां शब्दो तांगा वो हरि केरा मन जिन्नी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाली।

संतोहु शब्द करहु प्यारु साचा नाम मेरा आधारु वाजे पंच शब्द तित कर सा भागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिनको ते नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे साची लिवै बिन देह निमाणी देह निमाणी लिवै बाजू क्या करे बेचारिया तुद बाज समरथ कोई नाई किरपा कर बनवारिया एस नौ होर थाऊ नाही शब्द लाग सवारिया।

आनंद सदा गुरते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदर

सुरलार मुन जाने अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन वसाया, जी जंत सब तुद उपाय, एक वेख परसन आया, लब लोभ अहंकार चूका, सतगुरु भला पाया,

भगतः तेरी विखव मार्ग चलना, लाभ लोभ अहंकार तज तृष्णा, बहुत नाही बोलना, थन्योहो तिखी वालोहो निक्की, एक मार्ग जाना, गुर प्रसादी जिन्नी आप तजया, हर वास ना समाणी, कह नानक चाल भगता, जुग हो जुग नराली।

नानक शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया पवित होए से जना जिन्नी हर त्याया पवित होए गुरमुख जिन्नी त्याया पवित माता पिता कटंब सहत सियो पवित संगत सबाइया कहंदे पवित सुनदे पवित से पवित जिन्नी मन वसाया कह नानक से पवित जिन्नी गुरमुख हर हर त्याया।

है, कित संयम धोता जाय, मन तो वो हो शब्द लागो, हर सिंह रहो चित लाय, कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै, एहो सहसा इव जाय, जियो मैले बाहर हो निर्मल, बाहर हो निर्मल जियो ता मैले, तिन्नी जन्म जू है हारिया, ए तिसना वड्डा रोग लगा, मरन मनो वे सारिया।

जन्म जुए हारिया जियो निर्मल बाहरो निर्मल बाहरो ता निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी कूड़ की सोए पहुंचे नाई मनसा सच समाणी जन्म रतन।

सेती सनमुख होवै, होवै ता सनमुख सिख कोई। जियों रह गुर नाले, गुर के चरण हिरदय त्याए। अंतर आत्मै सुमाले, आप छड सदा रह परनै। गुर बिन अवर न जाने कोई। कह नानक सुनो संतो, सो सिख सनमुख होए। जे को गुर ते गे मुख होवै, बिन सतगुर

मन बन जारा, हर रास मेरी मन बन जारा, सतगुर तेरा स जानी, हर हर रित जपे हो जियो, लाहा कटे हो दिहाड़ी, एहो धन तिना मिलिया जिन हर आपे पाणा, कह नानक हर रास मेरी मन होआ बनजारा, ए रसना तू अनरस राच रही, तेरी प्यास ना जाए, प्यास ना जाए होत किते, जिचर हर रस पल्ले ना पाए, हर रस पाए पल्ले पीए हर रस, बहुड़ ना तृष्णा लागे आए, एहो हर रस करमी पाईए, सतगुर मिले जिसे आए, कह नानक होर अनरस सब विसरे, जा हर वसे मन आए, ए शरीरा मेरिया हर तुम मह जोत रखी, ता तू जग मह आया, हर जोत रखी तुद विच, ता तू जग मह आया, हर आपे माता आपे पिता, जिन जियो उपाए जगत दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया, कह नानक सृष्ट का मूल रचिया, जोत राखी ता तू जग मह आया, मन चाहो पया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनिया, हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख ना व्यापे, गुर चरण लागे दिन सभागे, अपना फिर जापे, अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो।

तुद कर्मक माया, ते कर्मक माया तुद शरीरा, जां तू जग मह आया, जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन ना वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूर्व लिखिया पाया, कह नानक एहो शरीर परवान हुआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया, ए नेत्र हो मेरे हो, हर तुम मह जोत धरी, हर बिन अवर ना देखो कोई, हर बिन अवर ना देखो कोई, नदरी हर ने हालिया, एहो इस संसार तुम देख दे, एहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझिया, जा वेखा हर एक है, हर बिन अवर ना कोई, कह नानक एह नेत्र अंध से, सतगुर मिलिया दिब दृष्ट होई, ए श्रवण हो मेरे हो, साचे सुनने नो पठाई, साचे सुनने नो पठाई, शरीर लाए सुनो सत बाणी, जित सुनी मन तन हरिया हुआ, रसना रस समाणी, सच अलख वडाणी, तां की गत कही ना जाए, कह नानक अमृत नाम सुनो

सुगड़ सुजान सुगड़ सुजाना सद परधाना अमृत हर का नामा चाक अगानी सारंग पाने जिनके भाग मथाना तिन ही पाया तिन्ह ते आया सगल तिसै का माणु कहो नानक थिर तक निवासी सच तिसै दी बाणु मंगला हर मंगला मेरे प्रभ कह सुनिए मंगला सोहिलड़ा प्रभ सोहिलड़ा अनहद तुनिए सोहिलड़ा अनहद वाजे शब्द अगाजे नित नित जिसै वधाई सो प्रभ त्याई है सब किश पाई है मरे ना आवे जाई चूकी प्यासा पूर्ण आसा गुरमुख मिल निर्गुणी।

हर हर ध्याए मना खिन ना विसारी है। राम रामा राम रमा कंठ उर तारी है। उर तार हर हर पुरख पूरन पार ब्रह्म निरंजनो। पै दूर करता पाप हरता दुसह दुख भव खंडनो। जगदीश ईश गोपाल माधो गुण गोविंद विचारी है। बिनवंत नानक मिल संग साधु दिन सरैन चितारी है। चरण कमल आधार जन का आसरा माल मिलक भंडार नाम अनंत धरा। नाम नरहर निदान जिनकै रस भोग एक नारायणा। रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास त्याएणा। किल विख हरना नाम पुनः चरना नाम जम की त्रास हरा। बिनवंत नानक रास जन की चरण कमल है आसरा। गुण बेअंत स्वामी तेरे कोई ना जाने। देख चलत दयाल सुन भगत बखाने। जी जंत सब तुझ त्याव है पुरख पत परमेश्वरा। सर्व जाचिक एक दाता करुणा मैं जगदीशरा। साधु संत सुजान सोई जिसे प्रभ जी माने। बिनवंत नानक करहो कृपा सोए तुझे पछाने। मोहे निर्गुण अनाथ सरनी आया बल बल बल गुरुदेव जिन नाम दृढ़ाया। गुर नाम दिया कुशल थिया सर्व इच्छा पुनिया। जल ने बुझाई छांत आई मिले चिरी बछुनिया। आनंद हरख सहज साचे महामंगल गुण गाया। बिनवंत नानक नाम प्रभ का गुरपुरे ते पाया। राम कली महला पंजवा रुण चुनो शब्द अनाहद। नित उठ गाइय संतन कै किल वेख सब दुख बनासन। हर नाम जपिय गुरमंतन कै हर नाम लीजै अमयो पीजै। रैन दिनस अराधी है जोग दान अनेक किरिया। लग चरण कमल है साधी है भाओ भगत दयाल मोहन। दुख सगले पर हरै बिनवंत नानक तरै सागर। त्याए स्वामी नर हरै सुख सागर गोविंद सिमरन। भगत गावह गुण तेरे राम अंध मंगल गुर चरणी लागे। पाए सूख कनेरे राम सुख निदान मिलया दुख हरिया। कृपा कर प्रभ राखिया हर चरण लागा भ्रम पौ भागा। हर नाम रसना भाखिया हर एक चितवै प्रभ एक गावै। हर एक दृष्टि आया बिनवंत नानक प्रभ करी कृपा। पूरा सतगुर पाया मिल रही है प्रभ साध जना। मिल हर कीर्तन सुनिए राम दयाल प्रभु दामोदर माधो। अंत ना पाइय गुनिए राम दयाल दुख हर सरण दाता। सगल दुख निवारनो मोह सोग बकार बिखड़े। जपत नाम उदारनो सब जी तेरे प्रभु मेरे। कर कृपा सब रेण थीवा बिनवंत नानक प्रभ मया की जय। नाम तेरा जप जीवा राख लिए प्रभ भगत जना। अपनी चरणी लाए राम आठ पैर अपना प्रभ सिमरह। एको नाम त्याए राम त्याए सो प्रभ तरे भवजल। रहे आवन जाना सदा सुख कल्याण कीर्तन। प्रभ लगा मीठा पाना सब इच्छ पुन्नी आस पूरी। मिले सतगुर पूरिया बिनवंत नानक प्रभ आप मेले। फिर नाही दुख वसूरिया राम कली महला पंजवा। संत सलोक चरण कमल शरणागति आनंद मंगल गुण गाम। नानक प्रभ आराधी है विपत निवारन राम। संत प्रभ विपत निवारनो तिस बिन अवरना कोई जियो। सदा सदा हर सिमरी है जल थल महियल सोए जियो।
जल थल महियल पूर रहया, एक निमख मनहो ना विसरै, गुर चरण लागे दिन सा भागे, सर्व गुण जगदीसरै, कर सेव सेवक दिन सरैणी, तिस भावै सो होए जियो, बल जाए नानक सुख है दाते, परगास मन तन होए जियो। सलोक हर सिमरत मन तन सुखी, बिनसी दुतिया सोच, नानक टेक गोपाल की, गोविंद संकट मोच। शंत पै संकट काटे नारायण दयाल जियो, हर गुण आनंद गाए प्रभ दीना नाथ प्रतपाल जियो। प्रतपाल अचुत पुरख एको, तिसह स्यो रंग लागा, कर चरण मस्तक मेल लीने, सदा अन दिन जागा। जियो पिंड ग्रह थान तिसका, तन जोबन धन माल जियो, सदा सदा पल जाए नानक, सर्ब जिया प्रतपाल जियो। सलोक रसना उचरै हर हरि, गुण गोविंद वखियान, नानक पकड़ी टेक एक, परमेश्वर रखै निदान। शंत सो स्वामी प्रभ रख को, अंचल तां कै लाग जियो, भज साधु संग दयाल देव, मन की मत त्याग जियो। एक ओट की जय जियो दीजै, आस एक धरनी धरै, साध संगे हर नाम रंगे, संसार सागर सब तरै। जन्म मरण बेकार छूटे, फिर ना लागै दाग जियो, बल जाए नानक पुरख पूरन, फिर जाका सुहाग जियो। सलोक धर्म अर्थ हर काम मोख, मुक्त पदार्थ नाथ, सगल मनोरथ पूरिया, नानक लिखिया माथ। शंत सगल इच मेरी पुनिया, मिलिया निरंजन राय जियो, अंद भया वडभागी हो, ग्रह प्रगटे प्रभ आए जियो। ग्रह लाल आए पुरब कमाए, ताकी उपमा क्या गणा, बेअंत पूर्ण सुख सहज दाता, कवन रसना गुण भणा। आपे मलाए गह कंठ लाए, तिस बिना नहीं जाए जियो, बल जाए नानक सदा करते, सब मह रहया समाए जियो। राग राम कली महला पंजवा, रण झुंझनड़ा गाओ सखी, हर एक त्याव हो, सतगुरु तुम सेव सखी, मन चिंदियाड़ा फल पावो। राम कली महला पंजवा, रुति सलोक एक ओंकार, सतगुर प्रसाद कर बंधन प्रभ पार ब्रह्म, बांछो साधा धूर, आप निवार हर हर भजो, नानक प्रभ भरपूर। किलविख काटन पै हरन, सुख सागर हर राय, दीन दयाल दुख भंजनो, नानक नीत त्याए। संत जस गाव हो वडभागी हो, कर कृपा भगवंत जियो। रुति महा मूर्त घड़ी, गुण उचरत शोभावंत जियो। गुण रंग राते तन तेजन, जिन्नी एक मन त्याया, सफल जन्म भया तिनका, जिन्नी सो प्रभ पाया। पुन दान ना तुल किरिया, हर सर्व पापा हंत जियो। बिनवंत नानक सिमर जीवा, जन्म मरण रहंत जियो। सलोक उद्दम अगम अगोचरो, चरण कमल नमस्कार, कथनी सा तुद भावसी, नानक नाम आधार। संत सरण साजन परहो, स्वामी सिमर अनंत, सूके ते हरिया थिया, नानक जप भगवंत। शंत रुत सरस बसंत माह, चेत वसाख सुख मास जियो, हर जियो नाह मिलिया, मौलिया मन तन सास जियो। कर नाह निश्चल आनंद सखिए, चरण कमल पर फुल्लिया, सुंदर सुगड़ सुजान बेता, गुण गोविंद अमूल्या,
ਵਡਭਾਗ ਪਾਇਆ ਦੁੱਖ ਗਵਾਇਆ ਭਈ ਪੂਰਨ ਆਸ ਜੀਓ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਤੇਰੀ ਮਿਤੀ ਜਮ ਕੀ ਤਰਾਸ ਜੀਓ ਸਲੋਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਭ੍ਰਮ ਮੁਈ ਕਰਤੀ ਕਰਮ ਅਨੇਕ ਕੋਮਲ ਬੰਧਨ ਬਾਂਧਿਆ ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਹੈ ਲੇਖ ਜੋ ਭਾਣੇ ਸੇ ਮੇਲਿਆ ਵਿਛੋੜੇ ਭੀ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਜਾਂ ਕਾ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੰਤ ਗ੍ਰੀਖ ਮਰੁਤ ਅਤ ਗਾਖੜੀ ਜੇਠ ਅਖਾੜੈ ਕਾਮ ਜੀਓ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਸ਼ੋਹ ਦਹਾਗਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰੀ ਰਾਮ ਜੀਓ ਨਹਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਵੈ ਮਰਤ ਹਾਵੈ ਮਹਾਂ ਗਾਰਭ ਮੁਠੀਆ ਜਲ ਬਾਜ ਮੱਛਲੀ ਤੜਫੜਾਵੈ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਰੁਠੀਆ ਕਰ ਪਾਪ ਜੋਨੀ ਭੈ ਪੀਤ ਹੋਈ ਦੇਹ ਸਾਸਨ ਜਾਮ ਜੀਓ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਓਟ ਤੇਰੀ ਰਾਖ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ਜੀਓ ਸਲੋਕ ਸ਼ਰਧਾ ਲਾਗੀ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਮੈਂ ਇਕ ਤਿਲ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਰਵ ਰਹੇ ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਕਰ ਗਹਿਲੀਨੀ ਸਾਜਨ ਹੈ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਮੀਤ ਚਰਨਹਾ ਦਾਸੀ ਕਰ ਲਈ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਹਿਤ ਚੀਤ ਸ਼ੰਤ ਰੁੱਤ ਬਰਸ ਸੁਹੇਲੀਆ ਸਾਵਣ ਭਾਦਵੇ ਆਨੰਦ ਜੀਓ ਧਾਨ ਉਨਮ ਉੱਠੇ ਜਲ ਤਲ ਪੂਰਿਆ ਮਕਰੰਦ ਜੀਓ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਠਾਈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਵਨਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਭਰੇ ਸਿਮਰ ਸਵਾਮੀ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਕੁਲ ਸਮੂਹਾ ਸਭ ਤਰੇ ਪ੍ਰਿਆ ਰੰਗ ਜਾਗੇ ਨਹਿ ਸਿਧਰ ਲਾਗੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਜੀਓ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਧ

है कोई साजन संत जन नानक प्रभ मेलन हार बिन मिल बे शांत ना उपजै तिल पल रहन ना जाए हर साध शरनागति नानक आस पुजाय संत रोत शरद अडम्बरु असू कट के हर प्यास जियो खोजंती दर्शन फिरत तब मिली है गुणतास जियो बिन कंत प्यारे नह सूख सारे हार कंगन त्रिक बना सुंदर सुजान चतुर बेती सास बिन जैसे तना ईत उत दह दिस अलोकन मन मिलन की प्रभ प्यास जियो बिनवंत नानक तार कृपा मेलो प्रभ गुणतास जियो सलोक जलन बुझी शीतल भये मन तन उपजी शांत नानक प्रभ पूरन मिले दुतिया बिनसी प्रांत साध पठाए आप हर हम तुम ते नाही दूर नानक भ्रम पै मिट गए रमन राम भरपूर शंत रुत सिसियर शीतल हर प्रगटे मंगर पोह जियो जलन बुझी दर्स पाया बिन से माया त्रोह जियो सब काम पूरे मिल हजूरे हर चरण सेवक सेविया हार डोर शिंगार सब रस गुण गाओ अलख अपेविया पाओ भगत गोविंद बांछत जमना साकै जोहे जियो बिनवंत नानक प्रभ आप मेली तहना प्रेम बशोह जियो सलोक हर तन पाया सुहागिनी डोलत नाही कीत संत संजोगी नानका ग्रह प्रगटे प्रभ मीत नाद विनोद आनंद कोट प्रिय प्रीतम संग बनी मन बांछत फल पाया हर नानक नाम भने संत हिम कर रुत मन भावती माघ फगण गुणवंत जियो सखी सहेली गाओ मंगलो ग्रह आए हर कंत जियो ग्रह लाल आए मन त्याए सेज सुंदर सोहिया वन त्रिण त्रे पवन भये हरिया देख दर्शन मोहिया मिले स्वामी इच्छ पुन्नी मन जपया निर्मल मंत जियो बिनवंत नानक नित करो रलिया हर मिले श्री धर कंत जियो सलोक संत सहाई जी के भवजल तारन हार सब ते उचे जानिए नानक नाम प्यार जिन जानिया से तरे से सूरे से वीर नानक तिन बलिहार न हर जप उतरे तीर संत चरण बराजत सब उपरे मिटिया सगल कलेश जियो आवन जावन दुख हरे हर भगत किया प्रवेश जियो हर रंग राते सहज माते तिलना मन ते बिसरे तज आप सरनी परे चरनी सर्व गुण जगदीसरे गोविंद गुण निद श्री रंग स्वामी आदि कौ आदेश जियो बिनवंत नानक मया तारहु जुग जुगो एक वेश जियो राम कली।

ओंकार शब्द उधरे ओंकार गुरमुख तरे ओन में अखर सुनो विचार ओन में अखर त्रे पवन सार सुन पांडे क्या लिखो जंजाला लिख राम नाम गुरमुख गोपाला रहाउ सत्सै सब जग सहज उपाया तीन भवन एक ज्योति गुरमुख वस्त प्राप्त होवै चुन लै माणक मोती समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै अंत निरंतर साचा गुरमुख देखै सात संभाले बिन साचे जग काचा तद्दै धर्म धरे धर्मापुर गुणकारी मन पीरा तद्दै धूल पड़ै मुख मस्तक कंचन भये मनूरा तन धरनी तर आप अजोनी तोल बोल सच पूरा करते कीमित करता जाने कह जाने गुरसूरा ज्ञान गवाया दूजा पाया गर्भ गले बिख खाया गुर रस गीत बाद नहीं भावै सुनिए गहर गंभीर गवाया गुर सच कहया अमृत लहया मन तन साच सुख

गुण गोपाला उगव्या असरूप दिखावे कर कृपा अपन है घर आवे ऊनव बरसै नीचर तारा उत्तम शब्द सुवारन हारा इस एके का जाने पेव आपे करता आपे देव उगवै सूर असुर संघार ऊचो देख शब्द विचार ऊपर आदि अंत त्यो लोय आपे करे कथ सुने सोय ओह बधाता मन तन दे ओह बधाता मन मुख सोय रब जग जीवन अवर ना कोय नानक नाम रते पत होय राजन राम रवै हितकार रण महलू जय मनुआ मार।

आच लिब लाय रोस न कीजै अमृत पीजै रहन नहीं संसारे राजे राय रंक नहीं रहना आए जाए जुग चारे रहन कहन ते रह न कोई किस पह करो बेनंती एक शब्द राम नाम निरोधर गुरुदेव पतमती लाज मरंती मर गई घूंघट खोल चली सास दीवानी बावरी सिर ते संक टली प्रेम बलाई रली स्यों मन मह शब्द आनंद लाल रती लाली पई गुरमुख पई निचिंद लाहा।

घर हुए आथ देख निवै जिस दोए आथ हुए ता मुग्ध सियाना भगत बिहूना जग बौराना सब मह वरतै इको सोए जिसनो कृपा करे तिस प्रगट होए।

जागत जाग रहा तुद पावा, जा तू मेलहै ता तुझै समावा। जय जय कार जपो जगदीश, गुरमत मिलिया बीस अकीस। चख बोलन क्या जग स्यों वाद, झूर मरै देखै परमाद। जन्म मुए नहीं जीवन आसा, आए चले पय आस मरासा। चुर चुर चख माटी रल जा।

आपे बूझै, आपे समझै, आपे सूझै, गुर का कहया अंक समावै, निर्मल सूचे साचो पावै, गुर सागर रतनी नहीं तोट, लाल पदार्थ साची अखोट, गुर कहया साकार कमाव हो, गुर की करनी काहे ताव हो, नानक गुरमत साच समाव हो, टूटै नेहो के बोलह सही, टूटै बाहा दुहू दिस गही, टूट परीत गई बुर बोल, दुर्मत पर हर छाडी ढोल, टूटै गंठ पड़ै विचार, गुर शब्दी घर कारज सार, लाहा साच न आवै टोटा, त्रे पवन ठाकुर प्रीतम मोटा, ठाको मनुआ राखो ठाई, ठहक मुई अब गुण पछताय, ठाकुर एक सबाई नार, बहुते वेश करे कूड़ियार, पर घर जाती ठाक रहाई, महल बलाई ठाक न पाई, शब्द सवारी साच प्यारी, साई सुहागन ठाकुर तारी, डोलत डोलत हे सखी, फाटे चीर सिंगार, दाहपन तन सुख नहीं, बिन डर बिन ठी डार, डरप मुई घर आपणै, दीठी कंत सुजान, दर राख्या गुरे आपणै, निरपहु नाम बखान, डूंगर वास तिखा कणी, जब देखा नहीं दूर, तिखा नवारी शब्द मन, अमृत पिया भरपूर, देह देह आखै सब कोई, जय पावै तै दे, गुरु द्वारै देवसी, तिखा नवारै सोई, टंडोलत टूंडत हौं फिरी, तह तह पवन करार, पारे तह ते तह पए, हौले निकसे पार, अमर अजाची हर मिली, तिनकै हौं बल जाऊं, तिनकी धूड़ अकुली है, संगत मेल मलाऊं, मन दिया गुर आपने, पाया निर्मल नाऊं, जिन नाम दिया तिस सेव सां, तिस बलिहारै जाऊं, जो असारे सो ढासी, तिस बिन अवर ना कोए, गुर परसादी तिस सम्मला, तां तन दुख ना होए, ना को मेरा किस गही, ना को हुआ ना हो।

भीड बानी बिन साचे क्यों छूटी है हर गुण कर्म मानी आप छाए छूटी है वड्डा आप धनी गुर प्रसादी छूटी है कृपा आप करे अपने हाथ वडाइया जय पावे तैं दे।

सर्वे थान थनंतरी तू दाता दातार जह देखा तह एक तू अंत ना पारावार थान थनंतर रव रहया गुर शब्दी विचार अणमंगया दान देवसी वड्डा अगम अपार दया दान दयाल तू कर कर देखना।

चाहे पुन आए गए पछताहे, लख चौरासी मेदनी कटै न वधै उताहे, सेजन उभरे जिन हर पाया

अपना तन मन आगै देव हस्तर करता तू तनी तिस ही की मैं ओट गुण की मारी हो मुई शब्द रत्ती।

राह गुरा पेहावला सर ढूंगर असगाह मैं तन अवगुण झुर मुई विन गुण क्यों कर जाह गुणिया गुण ले प्रभ मिले क्यों तिन मिलो प्यार तिन ही जैसी थी रहा जप जप हृदय मुरार अवगुणी भरपूर है गुण पी वसह नाल बिन सतगुर गुण ना जापनी जिचर शब्द ना करे बीचार नस करिया घर संभले आए वजह लिखाए कार कमावे है सिर धनी लाहा पल्ले पाए लब लोभ बुरे आईया छोडे मनो विसार गढ़ दोही पातशाह की कदे ना आवे हार चाकर कहिए खसम का सौहे उत्तर दे वजहो गवाए अपना तख्त ना बैसह से प्रीतम हथ वडियाईया जय पावे तै दे आप करे किसे आखिए अवर ना कोई करे बीजो सूजै को नहीं बह दलीचा पाए नरक नवारन नरह नर साचो साचै नाय वाण त्रिण ढूंढत फिर रही मन मह करो बीचार लाल रतन बहु मान की सतगुर हाथ भंडार उत्तम होवा प्रभ मिले एक मन एक पाए नानक प्रीतम रस मिले लाहा लै परथाय रचना राच जिन रची जिन सिरिया आकार गुरमुख बे अंत त्याई है अंत ना पारावार हड़ाड़े रूड़ा हर जियो सोई तिस बिन राजा अवर ना कोई हड़ाड़े गारड़ तुम सुनो हर वस्ते मन माही गुर प्रसादी हर पाई है मत को परम पलाही सो साहो साचा जिस हर धन रास गुरमुख पूरा तिस साबास रूड़ी बाणी हर पाया गुर शब्दी बीचार आप गया दुख कटिया हर वर पाया नार सोयना रूपा संचिय धन का चा बिखशार साहो सदाए संच धन दुबदा हुए खुआर सचियारी सच संचिया

साचो ठाकुर मन वसै कौ बलिहारी तिस माया ममता मोहनी जिन कीती सो जान बिख्या अमृत एक है बूझै पुरख सुजान खिमा विहूणे खप गए हूहन लख असंख गणत न आवै क्यों गणी खप खप मुए बिसंख खसम पछाणै आपना खूलै बंद न पाई शब्द महली खरा तू खिमा सच सुख पाई खर्च खरा तन ध्यान तू आपे वसह शरीर मन तन मुख जापै सदा गुण अंतर मन धीर हो मैं खपै खपाए सी बीजो वथ विकार जंत उपाए विच पायन करता अलग अपार सृष्टि प्यो न जाने कोए सृष्टा करै सुनिश्चो होए संपै को ईश्वर त्याई संपै पुरब लिखे की पाई है संपै कारण चाकर चोर संपै साथ ना चालै होर बिन साचे नहीं दरगाह मान हर रस पीवै छुटै निधान हेरत हेरत हे सखी होए रही हैरान हों हों करती मैं मुई शब्द रवै मन ज्ञान हार डोर कंकन घने कर था की शिंगार मिल प्रीतम सुख पाया सगल गुणा गलहार नानक गुरमुख पाई है हर स्यों प्रीत प्यार हर बिन किन सुख पाया देखो हो मन विचार हर पढ़ना हर बुझना हर स्यों रखो हो प्यार हर जपिए हर त्याई है हर का नाम आधार लेख न मिटई हे सखी जो लिखिया करतार आपे कारण जिन किया कर कृपा पग धार करते हथ वडियाईया बूझो हो गुर बीचार लिखिया फेर न सकी है ज्यों भावी त्यों सार नदर तेरी सुख पाया नानक शब्द विचार मनमुख भूले पच मोए उबरे गुर बीचार जे पुरख नदर ना आवे जिसका क्या कर कहया जाए बलिहारी गुरे अपने जिन हिरदै दिता दिखाए पांदा पढ़िया आखी विद्या विचरै सहज सुभाए विद्या सोधै तत लहै राम नाम लिवलाए मनमुख विद्या बिकरदा बिख खटै बिख खाए मूर्ख शब्द ना चीनई सूझ बूझ नह काए पांदा गुरमुख आखी चाटड़िया मत दे नाम संभालो नाम संग्रहो लाहा जग महले सच्ची पट्टी सच मन पढ़िए शब्द सो सार नानक सो पढ़िया सो पंडित बीना जिस राम नाम गलहार राम कली महला पहला सिद्ध गोष्ट एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारू तिस आगै रह रास हमारी साचा अपर अपारू मस्तक काट धरी तिस आगै तन मन आगै देउ नानक संत मिले सच पाईऐ सहज पाए जस लेउ क्या भविऐ सच सूचा होए साच शब्द बिन मुक्त ना कोए रहाउ कौन तुम्हें क्या नाउ तुम्हारा कौन मार्ग कौन सुआउ साच कहो अरदास हमारी हौ संत जना बल जाओ कह बैसो हो कह रही है बाले कह आवो कह जाओ नानक बोले सुन बैरागी क्या तुम्हारा राहु घट घट बैस निरंतर रही है चल है सतगुर भाई सहजे आए हुक्म सुधाई नानक सदा रजाई आसन बैसन फिर नारायण ऐसी गुरमत पाई
गुरमुख बूझै आप पछाणै, सच्चे सच समाए, दुनिया सागर दुत्तर कहियै, क्यों कर पाइयै पारो, चरपट बोलै औदू नानक, देहो सच्चा बीचारो, आपे आखै आपे समझै, तिस क्या उत्तर दीजै, साच कहो तुम पार जरामी, तुझ क्या बैसन दीजै, जैसे जल मह कमल नरालम, मुर्गाई नैसाणी, सुरत शब्द भव सागर तरियै, नानक नाम वखाणी, रह एकांत एको मन वसिया, आसा माही निरासु, अगम अगोचर देख दिखाए, नानक ताका दासु, सुन स्वामी अरदास हमारी।

चेतना आवे पर घर चेतना डुलाई बिन नावे मन टेक ना टिकई नानक भूख ना जाई हाट पटन घर गुरु दिखाया सहजे सच वपारो खंडत निंदरा अल्प आहारम नानक तत् बिचारो दर्शन भेख करो जोगिंदरा मुंदरा झोली खिंथा बारह अंतर एक सरेव हो खट दर्शन एक पंथा इन बिद मन समझाइए पुरखा बहुड़ चोट ना खाइए नानक बोले गुरमुख बूजे जोग जुगत इव पाइए अंतर शब्द निरंतर मुंदरा हौमै ममता दूर करी काम क्रोध अहंकार निवारे गुर कै शब्द सो समझ परी हिंथा झोली भरपुर रहया नानक तारे एक हरी साचा साहेब साची नाई परखै गुर की बात खरी हुंदौ खप्पर पांच भू टोपी काया कड़ासन मन जा गोटी सत संतोख संजम है नाल नानक गुरमुख नाम संभाल कमन सो गुप्ता कमन सो मुक्ता कमन सो अंतर बाहर जुगता कमन सो आवे कमन सो जाई कमन सो त्रे भवन रहे आसमाई कट कट गुप्ता गुरमुख मुक्ता अंतर बाहर शब्द सो जुगता मनमुख बिन सह आवे जाई नानक गुरमुख साच समाई क्यों कर बादा सरपन खादा क्यों कर खोया क्यों कर लादा क्यों कर निर्मल क्यों कर अंधियारा यह तत् बिचार है सो गुरु हमारा दुर्मत बादा सरपन खादा मनमुख खोया गुरमुख लादा सतगुरु मिले अंधेरा जाई नानक हूं मैं मेट समाई सुन निरंतर दीजे बंद उड़े ना हंसा पड़े ना कंध सहज गुफा कर जाने साचा नानक साचे भावे साचा किस कारण ग्रह तज्यो उदासी किस कारण एहो भेख निवासी किस वखर के तुम बन जारे क्यों कर साथ लंघावो हो पारी गुरमुख खोजत भये उदासी दर्शन कै ताई भेख निवासी साच वखर के हम बन जारी नानक गुरमुख उतर सपारी चित बिद पुरखा जन्म बटाया काहे को तुझ एहो मन लाया चित बिद आसा मनसा खाई

මටාය අනහතරාති යොමනලාය මනසාය සා ශබ්ද ජලයි ගුරුමුඛ ජෝත නිරන්තර පායි ත්‍රෑ ගුණ මේටේ ඛායය සාර නානක තාරේ තාරණහාර ආද කෝ කවන විචාර කතියලේ සොන්න කහා කර වාසෝ ज्ञान की मुंदरा कवन कथियले कट कट कवन निवासो काल का ठींगा क्यों जलाइयले क्यों निरभउ घर जाइय सहज संतोख का आसन जाने क्यों छेदे बहराइय गुर कै शब्द होमे बिख मारे ता निज कर होवे वासो जिन रच रचिया किस शब्द पछाणे नानक ताका दासो कहां ते आवे कहां एहो जावे कहां एहो रहे समाई एस शब्द को जो अर्थावे तिस गुर तिल ना कमाई क्यों तत्ते अवगत्ते पावे गुरमुख लगे प्यारू आपे सुरताय।

गत मित शब्दे पाई आद कौ बिस्माद विचार कथियली सुन निरंतर वासलिया अकलपत मुंदरा गुरु ज्ञान विचारियली घट।

गुर कै शब्द सो मुक्त भया, नानक तारे तारनहारा, हौं मैं दूजा पर हरिया, मन मुख भूलै जम की कान।

अनहत सुन कहां ते होई, अनहत सुन रती सी कैसी, जिस ते उपजे तिस ही जैसी, कोई जन्म ना मरह ना आवह जाही, नानक गुरमुख मन समझाही, नौ सरस भार दसवै पूरी, तह अनहत सुन बजावह तूरी, साचै राचे देख हजूरे, घट घट साच रहिया पर पूरे, गुप्ती बाणी प्रगट होए, नानक परख लए सच सोए, सहज भाए मिलिए सुख होवे, गुरमुख जागै नींद ना सोवे, सुन शब्द अपरंपर तारै, कहते मुक्त शब्द निस्तारै, गुर की दीखिया से सच राते, नानक आप गुआए मिलन नहीं प्रांते, कबुद्ध चुआवे सो के तथाए, क्यों तत न बूझे चोटा खाए, जम दर बाते कोई न राखे, बिन शब्द ना ही पत साखे, क्यों कर बूझे पावे पार, नानक मन मुख ना बुझे गवार, कबुद्ध मिटे गुर शब्द बीचार, सतगुर भेटे मुख द्वार, तत ना चीने मन मुख जल जाए, दुर्मत विछड़ चोटा खाए, माने हुक्म सबे गुण ज्ञान, नानक दरगाह पावे मान, साच वक्र धन पल्ले होए, आप तरह तारे पी सोए, सहज रत्ता बूझे पत होए, ताकी कीमत करे ना कोई, जह देखा तह रहे आसमाए, नानक पार परे सच पाए, सो शब्द का कहां वास कथियले, जित तरिये भवजल संसारो, त्रै सत अंगुल वाई कहिये, तिस कहो कवन अधारो, बोले खेले अस्थिर होवे, क्यों कर लख लखाए, सुन स्वामी सच नानक प्रणवे, अपने मन समझाए, गुरमुख शब्दे सच लिव लागे, कर नदरी मेल मलाय, आपे दाना आपे बीना, पूरे भाग समाय, सो शब्द को निरंतर वास अलखं, जह देखा तह सोई, पवन का वासा सुन निवासा, अकाल कला धर सोई, नदर करे शब्द घट मह वसै, विचों भरम गवाय, तन मन निर्मल निर्मल बाणी, नामो मन वसाय, शब्द गुरु भव सागर तरिए, इत उत एको जाने, जेहन वर्ण नहीं छाया माया, नानक शब्द पछाणे, त्रै सत अंगुल वाई औदू, सुन सच आहारू, गुरमुख बोले तत बिरोले, चीने अलख अपारू, त्रै गुण मेटे शब्द वसाई, ता मन चूके अहंकारू,

साचा सतगुर शब्द समाय मन का जियो पवन कथि अले पवन कहाँ रस खाई ज्ञान की मुद्रा कवन औदू सिद्ध की कवन कमाई बिन शब्द रस न आवे औदू हमें प्यास न जाई शब्द रत्ते अमृत रस पाया साचे रहे अगाई कमल बुद्ध जित अस्थिर रही है कित भोजन तृप्ता सह नानक दुख सुख सम कर जापै सतगुर ते काल ना ग्रासै रंग ना राता रस नहीं माता बिन गुर शब्द है जल बल ताता बिंद ना राखिया शब्द ना भाखिया पवन ना साध्या सच ना अराध्या कथ कथा ले सम कर रह तो नानक आत्म राम कौल है।

आत्म सुख धारी सच आराध्या गुरमुख तर तारी नानक बूझै को विचारी इहो मन मैगल कहां बसियले कहां बसै इहो पवना कहां बसै सो शब्द औदू ताको चूकै मन का पवना नदर करे ता सतगुर मेले ता निज करवासा इहो मन पाए आपै आप खाए ता निर्मल होवै धावत वर्ज रहाए क्यों मूल पछाणै आत्म जाणै क्यों सस कर सूर समावै गुरमुख हो मैं विचों खोवै तव नानक सहज समावै इहो मन निश्चल हिरदै बसियले गुरमुख मूल पछाण रह नाभ पवन घर आसन बैसै गुरमुख खोजत तत लह सो शब्द निरंतर निज घर आसै त्रे भवन जोत सो शब्द लह।

कह सच सफाकै सच रपै रंग कबहू ना जावै जां एहो हिरदा देह ना होती तो मन कै ठहर रहता नाभ कमल अस्थंब ना हो तो ता पवन कमन घर सहता रूप ना हो तो रेख ना काई ता शब्द कहां लिवलाई रखत बिंद की मड़ी ना होती मित कीमत नहीं पाई वर्ण भेख असरूप ना जापी क्यों कर जापस साचा नानक नाम रते बैरागी इब तब साचो साचा हिरदा दे ना होती ओदू तौ मन सुन रह बैरागी नाभ कमल असथंब ना हो तो ता निज कर बस तौ पवन अनरागी रूप न रेखिया जात ना होती तौ अकुल लीन रह तो शब्द सोसार गौन गगन जब तब है ना हो तो त्रे पवन ज्योत आपे निरंकार वर्ण भेख असरूप सो एको एको शब्द वडाणी साच बिना सूचा को नाही नानक अकथ कहानी कित कित बिद जागे उपजै पुरखा कित कित दुख बिन सजाई हम मैं विच जग उपजै पुरखा नाम विसरे है दुख पाई गुरमुख होवै सो ज्ञान तत बीचारे हम मैं शब्द जलाई तन मन निर्मल निर्मल बाणी साचै रह समाई नामे नाम रह बैरागी साच रखिया उर धारी नानक बिन नावै जोग कदे ना होवै देखो हृदय बीचारी गुरमुख साच शब्द बीचारै कोई गुरमुख सच बाणी प्रगट होई गुरमुख मन भीजै बिरला बूझै कोई गुरमुख निज घर वासा होई गुरमुख जोगी जुगत पछाणै गुरमुख नानक एको जाणै बिन सतगुर सेवे जोग ना होई बिन सतगुर भेटे मुक्त ना कोई बिन सतगुर भेटे नाम पाया ना जाई बिन सतगुर भेटे महा दुख पाई बिन सतगुर भेटे महा गर्भ गोबार नानक बिन गुर मुआ जन्म हार गुरमुख मन जीता हो मैं मार गुरमुख साच रखिया उर धार गुरमुख जग जीता जम काल मार बिदार गुरमुख दरगाह ना आवै हार गुरमुख मेल मलाए सो जाने नानक गुरमुख शब्द पछाणै शब्द कान बेड़ा सुन तू औदू बिन नावै जोग ना होई नामे राते अन दिन माते नामै ते सुख होई नामै ही ते सब प्रगट होवै नामे सोजी पाई बिन नावै

है सहसा गया बलाई, ना किस बीजे ना उगवै, जो बख्शे सो खाए, अंब है सेती अंब रलिया, बहुड़ ना निकसिया जाए, नानक।

कूई। राम कसौटी सो सह जो मर जीवा होए महला तीजा। क्यों कर इहो मन मारिय क्यों कर मृतक होए। कहया शब्द ना मानी हों मैं छड़ै ना कोई। गुर प्रसादी हों मैं छुट्टै जीवन मुक्त सो होई। नानक जिसनो बख्शे तिस मिलै तिस बिघन ना लागै कोई। महला तीजा जीवत मरना सब को कहै जीवन मुक्त क्यों होई। भय का संयम जे करे दारू भाऊ लाए। अन दिन गुण गावै सुख सहजे बिख भव जल नाम तरे। नानक गुरमुख पाई है जा को नदर करी पौड़ी।

ना दूजह बीचारा, सब किश तेरा खेल है, सच सिरजन हारा, जिस भावै तिस बख्श लै, सच शब्द समाई। सलोक महला तीजा, मन का झूठा झूठ कमावै, माया नू फिरै तपा सदावै, परमे भूला सब तीरथ गह, ओ तपा कैसे परम गत लह, गुर प्रसादी को सच कमावै, नानक सो तपा मूखंतर पावै। महला तीजा, सो तपा जे इहो तप काले, सतगुर नो मिलै शब्द संभाले, सतगुर की सेवा इहो तप परवान, नानक सो तपा दरगह पावै मान। पौड़ी, रात दिन स उपायन, संसार की वर्तन, गुरमती घट चानना, अनेर बनासन, हुक्मे ही सब साजियन, रबिया सब वन त्रिन, सब किसे आपे आप है, गुरमुख सदा हर पहन, शब्दे ही सोजी पई, सच्चै आप बुझाई। श्लोक महला तीजा, अभ्यागत ए नायाखियन, जिनके चित में परम, किस दै दितै नानका, ते हो जेहा धर्म, अपै निरंजन परम पद, ताका भूखा होए, तिसका भोजन नानका, विरला पाए कोई। महला तीजा, अभ्यागत एह ना आखियन, जे पर कर भोजन करेन, उदरै कारण अपने, बहले भेख करेन, अभ्यागत से नानका, जे आत्म गौण करेन, पाल लहन सहो अपना, निज कार रहन करेन। पौड़ी, अंबर धरत विछोड़ियन, विच सच्चा असराव, घर दर सबो सच है, जिस विच सच्चा नाव, सब सच्चा हुक्म वर्तदा, गुरमुख सच समाव, सच्चा आप तखत सच्चा, वह सच्चा करे नियाव, सब सच्चो सच वर्तदा, गुरमुख अलख लखाई।

लोभ रथ विचों जाए, ज्यों बैसंतर धात सुध होए, त्यों हर का पौ दुरमत मैल गुआए। नानक तेजन सोहनी जो रते हर रंग लाए, महला तीजा राम कली राम मन वसिया, ता बने आशिंगार गुर कै शब्द कमल बिगसिया, ता सौंपिया भगत भंडार।

तैं सो जाए सियाण होर पकड़ हिंदू मुसलमान सबना का दर लेखा होए करनी बाजो तरे ना कोई सचो सच बखाने कोई नानक अगे पुछ ना होए पौड़ी हर का मंदिर आखिए काया कोटगढ़ अंदर लाल जवेहरी गुरमुख हर नाम पढ़ हर का मंदिर शरीर अत सोहना हर हर नाम देड़ मनमुख आप खुआयन माया मोह नित काढ़ सबना साहिब एक है पूरे भाग पाया जाई श्लोक महला पहला ना सत दुखिया ना सत सुखिया ना सत पानी जंत फिरह ना सत मूंड मडाई केसी ना सत पढ़िया देस फिरह ना सत रुखी बिरखी पत्थर आप तशाव है दुख सह ना सत हस्ती बदे संगल ना सत गाई काहु चरह जिस हथ सिद्ध देवे जे सोई जिस नो दे तिसे आए मिले नानक ताको मिले बढ़ाई जिस घट भीतर शब्द रवे सब घट मेरे हो सब ना अंदर जिसे खवाई तिस कौन कह जिसे दिखाला वाटड़ी किसे पलावे कौन जिसे पलाई पंध सिर किसे दिखावे कौन महला पहला सो गिरही जो निग्रह करे जप तप संयम भीख्या करे।

पौड़ी, हर मंदिर सोई आखी जिथों हर जाता, मानस दे गुरबचनी पाया, सब आत्म राम पछाता, बाहर मूल ना खोजी है, कर माहे बधाता, मनमुख हर मंदिर की सार ना।

मूर्ख के क्या लक्षण है, क्या मूर्ख का करना। मूर्ख ओह जे मुग्ध है अहंकारे मरना। एत कमाणे सदा दुख, दुख ही मह रहना। अत प्यारा पवे खूह केहो संयम करना। गुरमुख हो सो करे विचार, ओस अलिप्तो रहना। हर नाम जपे आप उधरे, ओस पिछे डुब दे पी करना। नानक जो तिस पावे सो करे, जो दे सो सहना। महला पहला। नानक आखे रे मना, सुनिए सिख सही। लेखा रब मगेसिया, बैठा कड वही। तलबा पौसन आकिया, बाकी जिना रही। अजराइल फरिश्ता, होसी आए तई। आवन जान ना सुजई, पीड़ी गली फही। कूड़न खुटे नानका, ओड़क सच रही। पौड़ी हर का सब शरीर है, हर रब रहया सब आपे। हर की कीमत ना पवे, किस कहन ना जापे। गुर प्रसादी सलाही है, हर भगती रापे। सब मन तन हरिया हुआ, अहंकार गुआपै।

इंद्र रो आया, परशुराम रो वह घर आया, अजय सुरो वह भीख्या खाई, ऐसी दरगाह मिले सजाई, रोए राम निकाला पया, सीता लक्ष्मण बिछड़ गया, रोए दह सिर लंक गवाई, जिन सीता आंधी डौरू वाई, रोए है पांडव पये मजूर, जिनकै स्वामी रहत हदूर, रोए जनमेजा खोए गया, एकी कारण पापी पया, रोए है शेख मसाइक पीर, अंतकाल मत लागे पीड़, रोवे है राजे कान पड़ाए, कर कर मांगे है भीख्या जाए, रोवे है किरपन संच है धन जाए, पंडित रोवे है ज्ञान गवाए, बाली रोवे नाहे पतार, नानक दुखिया सब संसार, मन्ने नाओ सोई जन जाए, औरी कर्म ना लेख लाए, महला दूजा जप तप सब किश मन्ने है, अवर कारा सब बाद, नानक मन्या मन्नी है, बुझिए गुर प्रसाद पौड़ी, काया हंस तुर मेल करतै लिख पाया, सब मैं गुप्त वर्तदा गुरमुख प्रगटाया, गुण गावे गुण उच्चरै गुण माही सुमाया, सच्ची बाणी सच है सच मेल मलाया, सब किसे आपे आप है आपे दे वड़ियाई, श्लोक महला दूजा, नानक अंधा होए कै रतना।

दूजै भाई बोलै, दूजै भाई सदा दुख है, नित नीर बरोलै, गुरमुख नाम त्याई है, मत तत कडोलै, अंतर प्रगास घट चानना।

सुई धागा गंढे माह पाख केहो चले नाही करी मोहत किस हंडे सच पराणा हुए नाही सीता कदे ना पाटे नानक साहिब सचो सच्चा किचर जापी जापे महला पहला सच की काती सच सब सार घाड़त तिसकी अपर।

चल एहो धन सास सास अराधी निर्मल सोए जन अंतर जामी अगम रसना एक पन राव रहे आसरबत नानक बल जाई। श्लोक महला पहला सरवर हंस तुरे ही मेला खसमै वै पाणा सरवर अंदर ही राम मोती सो हंसा का खाना बगला कागना रही सरवर

सचो पाइए कूड़े कूड़ा माना। नानक तिनको सतगुर मिलिया जिन्ना तुरे पया परवाना। महला पहला साहिब मेरा उजला जे को चित करे नानक सोई सेविए सदा सदा जो दे। नानक सोई सेविए जित सेविया दुख जाए अवगुण वंजन गुण रवह मन सुख वसै आए। पौड़ी आपे आप वरतदा आप ताड़ी लायन आपे ही उपदेश दा गुरमुख पतियायन। एक आपे उजड़ पायन एक भगती लायन जिस आप बुझाए सो बुझसी आपे नाए लायन। नानक नाम ते आई है सच्ची वड्याई शुद्ध राम कली की वार। महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला पंजवा जैसा

आपे रंग रटिया कुदरत कीम ना पाए अलख ब्रह्म टिया अगम अथाह बेअंत परे परटिया आपे वड पातशाह आप वजीर टिया कोई ना जाने कीम केवड़ मटिया सच्चा साहिब आप गुरमुख प्रगटिया सलोक महला पंजवा सुन सज्जन प्रीतम मेरिया मैं सतगुर देहो देखाल हौं तिस देवां मन आपना नित हिरदै रखां संभाल इकस सतगुर बाहरा त्रिग जीवन संसार जन नानक सतगुर तिना मलायुन

गाय रात दिनंत गावन जोगिया जो गुर की पैरी पाहे तिन्नी हर रस भोगिया। श्लोक महला पंजवा भीड़ो मोक लाई कीतियन सब रखे कटंबे नाल कारज आप सवारियन सो प्रभ सदा संभाल प्रभ मात पिता कंठ लाईंदा लहुड़े बालक पाल दयाल हुए सब जी जंतर हर नानक नदर निहाल। महला पंजवा बिन तुद होर जे मंगना सिर दुखा कै दुख देह नाम संतोखिया उतरै मन की भुख गुरवण तिन हरिया कीतिया नानक क्या मनुख पौड़ी सो ऐसा दातार मनो ना विसरै घड़ी ना मोत चसा तिस बिन ना सरै अंतर बाहर संग क्या को लुक करै जिस पत रखै आप सो पवजल तरै भगत ज्ञानी तपा जिस कृपा करै सो पूरा प्रधान जिसनो बल धरै जिसे जराए आप सोई अजर जरै तिस ही मिलिया सच मंत्र गुरमन धरै। श्लोक महला पंजवा धन सुराग सुरंगड़े अलापत सब तिख जाए धन सो जंत सुहावड़े जो गुरमुख जप दे नाउ जिन्नी एक मन एक अरादिया तिन सद बलिहारै जाउ तिन की धूड़ हम बाछ दे करमी पल्लै पाए जो रत्ते रंग गोविंद कै हौ तिन बलिहारै जाउ आखा बिरथा जी की हर सज्जन में लोहराए गुरपूरै में लाया जन्म मरण दुख जाए जन नानक पाया अगम रूप अनत ना काहू जाए। महला पंजवा तन सो वेला घड़ी तन तन मूर्त पल सार तन सो दिन संजोगड़ा जित डिठा गुर दरसार मन किया इच्छा पूरिया हर पाया अगम अपार हम मैं टुटा मोहड़ा एक सच नाम आधार जन नानक लगा सेव हर उदरिया सगल संसार पौड़ी सिफत सलाहन भगत विरले दितियन सौंपे जिस भंडार फिर पुछ ना लीतियन जिसनो लगा रंग से रंग रत्या ओना इको नाम आधार इका उन पत्या ओना पिछे जग पुंचे भू गई ओना प्यारा रब ओना हां जो गई जिस मिलिया गुर आए तिन प्रभ जानिया हौ बलिहारी तिन जे खसम पाणिया। श्लोक महला पंजवा हर इक सह नाल मैं दोस्ती हर इक सह नाल मैं रंग हर इको मेरा सजनो हर इक सह नाल मैं संग हर इक सह नाल मैं गोसते मुह मैला करै ना भंग जाने बिरथा जी की कदे ना मोड़ै रंग हर इको मेरा मसलती पन्नन कर्ण समरथ हर इको मेरा दातार है सिर दात्या जग हाथ हर इक सह दी मैं टेक है जो सिर सबना समरथ सतगुर संत मलाया मस्तक तर कै हाथ वड्डा साहिब गुरु मलाया जिन तारिया सगल जगत मन किया इच्छा पूरिया पाया तुर संजोग नानक पाया सच नाम सद ही भोगे भोग। महला पंजवा मन मुखा केरी दोस्ती

ब्राह्मणी टिचर रखण गांड जित दिन किश ना होवई तित दिन बोलण गंद जी की सार ना जाननी मनमुख ज्ञानी अंद कूड़ा गंड ना चलई।

लाई तहों लगी तू सुन सच संदेसा साई सुहागण साई भागण जय फिर कृपा धारी फिर औगण तिसके सब गवाए गल सीती लाए सवारी कर्महीन धन करै बेनंती कद नानक आवै वारी सब सुहागण मान है रलिया एक देव हो रात मरारी महला पंजवा काहे मन तू डोलता हर मनसा पूर्ण हार सतगुर पुरख त्याए तू सब दुख वसारन हार हर नामा आराद मन सब किलविख जाहे विकार जिनको पूर्व लिखिया तिन रंग लगा निरंकार ऊनी छड़िया माया सुआवड़ा धन संचिया नाम अपार अठे पहर इक तैलिवै मन्ने न हुक्म अपार जन नानक मंगै दान एक देहो दर्श मन प्यार पौड़ी।

हर हर कहावे, वैष्णो नाम कर्म हो जुगता, तोह कुटे क्या फल पावे, हंसां विच बैठा बग न बणी, नित बैठा मच्छी नो तार लावे, जां हंस सुभा विचार।

बगला मत हुआ मन लखावे जित को लाया तित ही लागा किस दोष दिच्चे जा हर एवं पावे सतगुर सरवर रतनी परपूरे जिस प्राप्त सो पावे सिख हंस सरवर इकट्ठे होए सतगुर कै हुक्मावे रतन पदार्थ माणक सरवर परपूरे खाए खर्च रहे टूट न आवे सरवर हंस दूर न होई करते एवं पावे जन नानक जिस दे मस्तक भाग तुर लिखिया सो सिख गुरु पह आवे आप तरिया कुटंब सब तारी सभा।

पुत्र सत्तर समाने औगण कटे करे सुध देहा नानक जिस तुर मस्तक होवै लिखिया तिस सतगुर नाल सनेहा अमृत बाणी सतगुर पूरे की जिस कृपाल होवै तिस हृदय बसेहा आवण जाना तिसका कटिया सदा सदा सुख होहा पौड़ी जो तुद पाणा जंत सो तुद बुझई जो तुद पाणा जंत सो दरगाह सिजई जिसनो तेरी नदर हौमै तिस गई जिसनो तू संतुष्ट कल मल तिस खई जिसकै स्वामी वल निरभउ सो

तेरा अंग सो निर्मली हूँ निर्मला, जिसनो तेरी नदर ना लेखा पुछी है, जिसनो तेरी खुशी तिन नौ निध पुंची है, जिसनो तू प्रभु वल तिस क्या मोह शंदगी, जिसनो तेरी मेहर सो तेरी बंदगी। सलोक महला पंजवां। ओ कृपाल स्वामी मेरे संता संग विहावे, तुदहो भुले से जम जम मर दे, तिन कदे ना चुकन हावे। महला पंजवां। सतगुर सिमरो अपना, घट अवकट घट घाट,

साहि सब सैनो कृपाल संभाली साहि साहि बिरथा कोई न जाय जे आवे तुदे आहि। श्लोक महला पंजवा दूजा तिस न बजायो पार ब्रह्म नाम देहो आधार अगम अगोचर साहिबो समरथ सच दातार तू निश्चल निर्वैर सच सच्चा तुद दरबार कीमत कहन ना जाइए अंत ना पारावार प्रभ छोड़ होर जे मंगना सब बिखिया रस शार से सुखिए सच साहसे जिन सच्चा व्यवहार जिन्ना लगी प्रीत प्रभ नाम सहज सुख सार नानक एक।

आए अवर से आड़ पछाड़ दे नानक उदरस नाए पौड़ी ना तू आवह वस बहुत कनावणे ना तू आवह वस बेद पढ़ावणे ना तू आवह वस तीरथ नाइय।

आवह वस बहुता दान दे सब को तेरे वस अगम अगोचरा तू भगतां कै वस भगतां तान तेरा। श्लोक

होगा हरख आनंद हुक्मी जपे निरोधर गुरमंत हुक्मी आवन जान रहाई नानक जाको भगती लाई पौड़ी हौ तिस ढाडी कुर्बान जे तेरा सेवदार हौ तिस ढाडी बलिहार जे गावे गुण अपार सो ढाडी धन धन जिस लोड़े निरंकार सो ढाडी भागठ जिस सत्या द्वार बार ओह ढाडी तुद त्याई कलाने दिन रैनार मंगे अमृत नाम ना आवे कदे हार कपड़ भोजन सच रहंदा लिवे धार सो ढाडी गुणवंत।

मन तन हृदय सिमर हर आठ पहर गुण गाओ। उपदेश सुनो तुम गुर सिखो हो सच्चा यह सुआउ। जन्म पदार्थ सफल हुए मन में लायो पाओ। सुख सहज आनंद घना प्रभ जपत्या दुख जाय। नानक नाम जपत सुख उपजै दरगाह पाईए थाउ। महला पंजवा नानक नाम त्याई है गुरपूरा मत दे। भाणै जप तप संयम भाणै ही काढ ले। भाणै जून पवाई है भाणै बख्श करे। भाणै दुख सुख भोगी है भाणै कर्म करे। भाणै मिट्टी साज कै भाणै जोत तरे।

जिस भगती लाए नानक विरले पौड़ी वड्याई सच्चे नाम की हों जीवा सुन सुने पशु प्रेत अज्ञान उधारे एक खाने दिनस रहन तेरा नाऊ सदा सद जापी है तृष्णा भुख विकराल नाए तेरे त्रापी है रोग सोग दुख वंजै जिस नाऊ मन वसै तिसह प्राप्त लाल जो गुर शब्दी रसै खंड ब्रह्मांड बेअंत उदाहरण हारिया तेरी शोभा तुद सच्चे मेरे प्यारिया सलोक महला पंजवां मित्र प्यारा नानक जी मैं छड गवाया रंग कसुंबै भुली तौ सज्जन की मैं कीम ना पाउंदी हौं तुद बिन अड ना लहंदी महला पंजवां सस वरायण नानक जीओ ससुरावादी जेठो पौ पौलू है हबे भस पणेंदे वतन जा मैं सज्जन तू है पौड़ी जिस तू उठा चित तिस दर्द निवारणो जिस तू उठा चित तिस कदे ना हारणो जिस मिलिया पूरा गुरु सो सर पर तारनो जिसनो लाए सच तिस सच संभालनो जिस आया हाथ निदान सो रहया पालनो जिसनो एको रंग भगत सो जान।

करतबा रंग परंग अनेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किस जान ला सब किस तेरे वस तेरा घर भला तेरे घर आनंद वधाई तुद घर मान महत्ता तेज अपना आप जर सर्ब कला भरपूर जिसे जत कथा नानक दासन दास तुद आगे बिनवता। श्लोक महला पंजवा सतड़े बाजार सोहन विच वपारिये वखर एक अपार नानक खटे सो धनी महला पंजवा कबीरा हमरा को नहीं हम किसहु के नाही जिन एहो रचन रचाया तिस ही माहे समाहे पौड़ी सफले ओ बिरख सुहावड़ा हर सफले अमृता मन लोचै उन मिलन को क्यों वंजै किता वरना चेहना बाहरा ओह अगम अजिता ओह प्यारा जी का जो खोले पिता सेवा करी तसाड़िया मैं दस्य हो मिता कुर्बानी वन्या वारने बले बल किता दसन संत प्यारिया सुनो लाए चिता जिस लिखिया नानक दास तिस नाओ अमृत सतगुर दिता। श्लोक महला पंजवा कबीर धरती साधकी तस्कर बैसह गाही धरती भार ना ब्यापई उनको लाहू लाहे महला पंजवा कबीर चावल कारनी दुख को मोहली लाए संग संगी बैसती तब पूछे धर्म राय पौड़ी आपे ही वड परवार आप एकातिया

जो नर पीर निवाजिया तिना अंचना लाग महला पंजवा फरीदा उमर सुहावड़ी संग सवनड़ी दे विरले के पाइन जिन्ना प्यारे ने पौड़ी जप तप संयम दया धर्म जिस देह सो पाए जिस बुझाए अग्नि आप सो नाम ते आए अंतर जामी अगम पुरख एक दृष्ट दिखाए साध संगत कै आसरै प्रभ स्यो रंग लाए औगण कट मुख उजला हर नाम तराय जन्म मरण भव कट्यों फिर जोन ना पाए अंधकूप ते काढ़ियन लाड़े आप फड़ाई नानक बख्श मलायन रखे गल लाई सलोक महला पंजवां मोहब्बत जिस खुदाए दी रत्ता रंग चलूल नानक विरले पाई है तिस जन कीम ना मूल महला पंजवां अंदर विद्दा सच नाई बाहर पी सच डिठो नानक रव्या हब थाई वण त्रिण त्रे भवन रोम पौड़ी आपे की तो रचन आपे ही रत्या आपे होयो एक आपे बहु पत्या

सच्चा करी सा बात हुए दरहाली गुरु अंगद दी दोही फिरी सच करते बंद बहाली नानक काया पलट कर मल तख्त बैठा सह डाली दर सेवे उम्मत खड़ी मस कल्ले हुई जंगाली दर दरवेश खसम दे नाए सच्चे बाणी लाली बलवंड खीवी नेक जन जिस बहुती छाओ पतराली लंगर दौलत वंडी है रस अमृत खीर क्याली गुरसिखा के मुख उजले मन मुख थीए पराली पए कबूल खसम नाल जा काल मरदी काली माता खीवी सहो सोए जिन गोए उठाली होरे ओ गंग बहाई है दुनियाई आखै के क्यों नानक ईसर जगन्नाथ उचहदी वैन बिरक्योन माधाना पर्वत कर नेत्र बासत शब्द रिड़क्योन चौदह रत्न निकालियन कर आवा गौण चिलक्योन कुदरत ऐह वे खालियन जिन ऐवड पिंड ठिणक्योन लहणे धरियन छत्र सिर असमान क्याड़ा सिक्योन ज्योत समाणी ज्योत माहि आप आपे सेती मिक्योन सिखा पुतना कोख कै सब

उस मन में है शब्द प्रमाण आवागौण निवारयू कर नगर निशान अवतरिया अवतार ले सो पुरख सो जान।

महन मेलो गुर का शब्द गुड़ की नरे तृष्णा काम क्रोध मद मत्सर काट काट कस दीन रे कोई है रे संत सहज सुख अंतर जाको जप तप देव दलाली रे एक बूंद भर तन मन देव जो मद दे कलाली रे रहाउ पवन चतर दस पाठी कीनी ब्रह्म यगन तन जारी रे मुंदरा मदक सहज धुन लागी सुखमन पोचन हारी रे तीर्थ बरत नेम सुच संयम रव सस गहन देओ रे सुरत प्याल सुधा रस अमृत एहो महारस प्यो रे निचार धार चोवै अत निर्मल एह रस मनुआ रातो रे कह कबीर सगले मद छूछै एह महारस साचो रे गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर महुआ पौ पाठी मन धारा सुख मन नारी सहज समानी पीवै पीवन हारा औदू मेरा मन मतवारा उन्मद चढ़ा मदन रस चाखिया त्रे भवन भया उजियारा रहाउ दोए पुर जोर रसाई पाठी पियो महारस भारी काम क्रोध द्वे किए जलेता छूट गई संसारी प्रगट प्रगास ज्ञान गुर गम्मत सतगुर ते सुध पाई दास कबीर तास मत माता उचक ना कबहू जाई तू मेरो मेर पर्वत स्वामी।

कै कर जानी, हम निर धन ज्यों इहो धन पाया, मरते फूट गमानी, करै गमान चुभ तिस सूला, को काढ़न को नाही, अजै सो चोभ को बिलल बलाते, नरके घोर पचाई, कवन नरक क्या सुर्ग बिचारा, संतन दोहरा दे हम काहू की कान ना कटते, अपने गुर पर सादे, अब तो जाए चढ़े सिंहासन।

भोगी जप तप संयम गुरमुख भोगी रहाउ बुद्ध बेपूत चढ़ावो अपनी सिंगी सुरत मलाई कर बैराग फिरो तन नगरी मन की किंगरी।

जग भीतर जन्म कमन फल पाया भावले धर्म तारन चिंतामन एक निमुख नायो मन लाया गोविंद हम ऐसे अपराधी जिन प्रभ जियो पिंड था दिया तिसकी भाऊ भगत नहीं साधी रहा पर तन परती निंदा पर अपवाद ना छूटै आवागमन होत है फुन फुन एहो प्रसंग ना टूटै जे घर कथा होत हर संतन एक निमख ना कीनो मैं फेरा लंपट चोर दूत मतवारी।

कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद बंदच बंदन पाया मुक्त गुर अनल बुझाया जब नक सिख इहो मन चीना तब अंतर मज्जन कीना पवन पत उन मन रहन खरा नहीं मृत ना जन्म जरा रहा उल्टी ले सकत सहारं पैसी ले गगन मजारं बेदिया ले चक्र पुंगा पेटिया ले रायन संगा चूकिया ले मोह मयासा सस कीनो सूर ग्रासा जब कुंभक पर फुर लीना तह बाजे अनहद बीना बकते बक शब्द सुनाया।

परमियले पंच जनास्यो बात बतौआ चीत सो डोरी राखियले मन राम नामा वेदियले जैसे कनक कला चित मांडियले रहाउ आनी ले कुंभ पराई ले उदक राजकुमार पुरंदरिये हस्त बनोद विचार करती है चीत सो गागर राखियले मंदर एक द्वार दस जाके गऊ चरावन छाडियले पांच कोस पर गऊ चरावत चीत सो बछरा राखियले कहत नाम देव सुनो तलोचन बालक पालन पौडियले अंतर बाहर काज विरुद्धि चीत सो बारक राखियले वेद पुराण शास्त्र अनंता गीत कबित न गावो गो अखंड मंडल निरंकार मह अनहद बीन बजावो गो बैरागी रामह गावो गो।

रहाउगो। चंद सूरज दोए सम कर राखो, ब्रह्म ज्योत मिल जाओगो। तीर्थ देखना जल मह पैसो, जी जंत ना सतावोगो। अठ सठ तीर्थ गुरु दिखाए, घट ही भीतर नहाओगो। पंच सहाई जन की सोभा, पलो पलो ना कहाओगो। नामा कह चित हर सिओ राता, सुन समाद समाओगो। माए ना होती बाप ना होता, कर्म ना होती काया। हम नहीं होते तुम नहीं होते, कमन कहां ते आया। राम कोई ना किसी ही केरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। रहाउ चंद ना होता सूर ना होता, पानी पवन मलाया।

नित नितह की जय। आत्म जो निर्मायल की जय। आप बराबर कंचन दी जय। राम नाम सर तउ ना पूजै। मनह ना की जय रोस। जमह ना दी जय दोस। निर्मल निर्वाण पद चीन लीजै। जस रथ राय नंद। राजा मेरा राम चंद। प्रणव नामा तात रस अमृत

वचन हिरण हुए कैसी, जो पारस है ना परस है, देव संसय गांठ ना छूटे, काम क्रोध माया मद मत्सर, इन पंचों मिल लूटे रहाओ। हम बड कब कलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, एह बुद्ध कब है ना नासी, कहो रब दास सब है नहीं समझस, भूल पर

साखी जागी गुरमुख जानी उपजै ज्ञान दुर्मत सीजै अमृत रस गगनंतर पीजै एस कला जो जानै पियो भेटै तास परम गुरुदेव दसम द्वारा अगम अपारा परम पुरख की घाटी ऊपर हाट हाट पर आला आले पीतर खाती जागत रहै सो कबहो ना सोवै तीन तलोक समाध पलोवै बीज मंत्र ले।

ज्ञान जप एहन सुनाम हरे कोट कोट दुख बहु कीने सब पर हर पास तरे रहाउ हर हर नाम जप है आराध है सेवक पाए खरे किल बिख दुख गए सब नीकर ज्यों पानी मैल हरे खिन खिन नर

मुख बोलह नर नर हरि, पंच दोख असाध नगर मह, एक खिन पल दूर करे, वड भागी हर नाम त्यावह, हर के भगत हरे, तिनकी संगत देहे प्रभ जाच्यों, मैं मूड मुग्ध निस्तरे, किरपा किरपा तार जग जीवन, रख ले वो सरन परे, नानक जन तुमरी सरनाई, हर राख हो लाज हरे, नट महला चौथा, राम जप जन, रामे नाम रले, राम नाम जप्यो गुरबचनी, हर धारी हर किरपले रहाउ, हर हर अगम अगोचर स्वामी, जन जप मिल सलल सलले, हर के संत मिल राम रस पाया, हम जन कै बल बलले, पुरखोत्तम हर नाम जन गायु, सब दालद दुख दलले, विच देही दोख असाध पंच धातु, हर किए खिन परले, हर के संत मन प्रीत लगाई, ज्यो देखै सस कमले, उनवै कन कन कन हर गरजै, मन बिगसै मोर मुरले, हमरै स्वामी लोच हम लाई, हम जीवह देख हर मिले, जन नानक हर अमल हर लाई, हर मेल हो आनंद भले, नट महला चौथा, मेरे मन जप हर हर नाम सखे, गुर प्रसादी हर नाम त्यायु, हम सतगुर चरण पखे रहाउ, उत्तम जगन्ना जगदीश्वर, हम पापी सरन रखे, तुम वड पुरख दीन दुख भंजन, हर दियो नाम मुखे, हर गुण ऊच नीच हम गाए, गुर सतगुर संग

पालक स्वामी हमरा कुह वड पाप गे तुमरी संगत हर पो को ना उधरियो प्रभ किए पतत पवगे गुण गावत शीपा दुष्टारियो प्रभ राखी पैज जनगे जो तुमरे गुण गाव है स्वामी हौ बल बल बल तिनगे पवन पवन पवित्र सब किए जह तूर परी जन पगे तुमरे गुण प्रभ कह ना सकह हम तुम वड वड पुरख वडगे जन नानक को दया प्रभ धारु हम सेव है तुम जन पगे।

प्रभ तारी मत गुरमत नाम बने रहाउ हर जन हर जस हर हर गायु अपदेश गुरु गुर सुने किल बिख पाप नाम हर काटे जिव खेत किरसान लुने तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानहु हम कह ना सकह हर गुने जैसे तुम तैसे प्रभ तुम ही गुण जानहु प्रभ अपने माया फास बंद बहु बंदे हर जप्यो खुल खुलने ज्यों जल कुंचर तंदुए बांधियो हर चेतियो मोख मुखने स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम खोजो हो जुग जुगने तुमरी था पाई नहीं पावे जन नानक के प्रभ वडने नट महला चौथा मेरे मन कल कीर्त हर प्रवणे हर हर दयाल दया प्रभ तारी लग सतगुर हर जपने रहाउ हर तुम वड अगम अगोचर स्वामी सब त्याव है हर रुड़ने जिनको तुमरे वड कटाख है ते गुरमुख हर सिमरने इहो प्रपंच किया प्रभ स्वामी सब जग जीवन जुगने ज्यो सलल सलल उठ है बहु लहरी मिल सलल सलल समणे जो प्रभ किया सो तुम ही जानो हम नह जानी हर गहने हम बारक कौर देवस्तत तार हो हम करह प्रभु सिमरणे तुम जल निद हर मान सरोवर जो सेवे सब फलने जन नानक हर हर हर हर पंछ हर देव हो कर कृपणे नट नारायण महला चौथा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन सेव सफल हर काल ले गुर पगरे नरवाल सब दाल पंज दुख दाल हर हो नदर निहाल रहाउ हर का ग्रह हर आप सवारियु हर रंग रंग महल बेअंत लाल लाल हर लाल हर अपनी कृपा करी आप ग्रह आयु हम हर की गुर की है बसीठी हम हर देखे भई निहाल निहाल निहाल निहाल हर आवते की खबर गुर पाई मन तन आनंद आनंद भय हर आवते सुने मेरे लाल जन नानक हर हर मिले भय गलतान हाल निहाल निहाल नट महला चौथा मन मिल संत संगत शुभवंती सुन कथ कथा सुखवंती सब किल बिख पाप लहंती हर हो लिखत लखंती रहाउ हर कीरत कलयुग विच उत्तम मत गुरमत कथा पजंती जिन जन सुनी मनी है जिन जन तिस जन कै हो कुर्बानंती हर कथ कथा का जिन रस चाखिया तिस जन सब भूख लहंती नानक जन हर कथा सुन तृप्ति जप हर हर हर होवंती नट महला चौथा कोई आन सुनावे हर की हर गाल तिस को हो बल बल बाल सो हर जन है पल पाल हर हो मेल निहाल रहाउ हर का मार्ग गुर संत बतायु गुर चाल दिखाई हर चाल अंतर कपट चकाव हो मेरे गुर सिख हो निह कपट कमाव हो हर की हर काल निहाल निहाल निहाल ते गुर के सिख मेरे हर प्रभ पाई जिन्ना हर प्रभ जानियो मेरा नाल जन नानक को मत हर प्रभ दीनी हर देख निकट हदूर निहाल निहाल निहाल निहाल राग नट नारायण।

मन प्यास बहुत दरसावे रहाउ। सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जिस ऊपर रुचि आवे, कृपा करहु जिस पुरख बधाते सो सदा सदा तुद त्यावे। कमन योग कमन ज्ञान त्या

सुख पायो। हर गुण सद ही गावे, देखियो अचरज महामंगल रूप, किस आन नहीं दिसटावे। कहो नानक मोर्चा गुर लाहियो, तह गर्भ जोन कह आवे। नट नारायण महला पंजवां दुपदे,

दयाल उठत बैठत सोवत जागत जी प्राण धन माल दर्शन प्यास बहुत मन मेरे नानक दर्शन हाल नाटक।

दहदिस हर मुश्की मुश्क गंधारी तेरी निर्गुण कथा कथा है मीठी गुरनी के बचन संहारी गावत गावत हर गुण गाई गुण गावत गुर निस्तारी विवेक गुरु गुरु समदर्शी तिस मिलिए संक उतारी सतगुर मिले परम पद पाया हम सतगुर कै बलिहारी पाखंड कर कर भरमी लोभ पाखंड जग बुरियारी हलत पलत दुखदाई होवे जम काल खड़ा सिर मारी उगवे दिनस आल जाल संभाले बिख माया के बिस्थारी आई रहन भया सुपनंतर बिख सुपने भी दुख सारी कल्लर खेत लै कूड़ जमाया सब कूड़े के खलवारी साकत नार सब भूख पुखानी दर ठाढ़े जम जंदारी मनमुख करज चढ़िया बिख भारी उतरे शब्द विचारी जितने करज करज के मंगिए कर सेवक पग लगवारी जगन्नाथ सब जंतर उपाई नख खीनी सब नथहारी नानक प्रभ खिंच

हर अमृत सर नावहारे, सतगुर ज्ञान मज्जन है नीको, मिल कलमल पाप उतारी रहाउ, संगत का गुण बहुत अधिकाई, पर सुआगन के उधारी, परसन परस भय कुबिजाको, लै बैकुंठ सधारी,

बिचारे। सत संगत मिलै ता दृढ़ता आवै, हर राम नाम निस्तारे। जब लग जियो पिंड है साबत, तब लग किसना संभारे। जब घर मंदर आग लगानी, कड कूप कड़े पनेहारे। साकत स्यो मन मेल ना करियो, जिन हर हर नाम बिसारे। साकत बचन बिशुआ ज्यो दसी, तज साकत परे परारे। लग लग प्रीत बहु प्रीत लगाई, लग साधु संग सवारे। गुर के बचन सत सत कर माने, मेरे ठाकुर बहुत प्यारे। पूर्व जन्म परचून कमाए, हर हर हर नाम प्यारे। गुर प्रसाद अमृत रस पाया।

गुर सरल प्रभु रखवारे, ज्यो कुंचर तंदुए पकड़ चलायो, कर ऊपर कढ़ निस्तारे रहाओ। प्रभ के सेवक बहुत आत्मिके, मन श्रद्धा कर हर तारे, मेरे प्रभ श्रद्धा भगत मन भावे।

का नदर निहारी हर प्रभ ठाकुर रविया सब ठाई सब चेरी जगत समारी आप दयाल दया दान देवे विच पाथर कीरे कारी अंतरवास बहुत मुशकाई भ्रम भूला मिर्ग सिंघारी

जन माने प्रतख गुरु निस्तारी सब है ब्रह्म ब्रह्म है पसरिया मन बीजिया खवारी ज्यों जन चंद्र हांस दुखिया त्रिष्ट बुद्धि अपना घर लूकी जारी प्रभ को जन अंतर रिद लोचे प्रभ जन के सास निहारी कृपा कृपा कर भगत दृढ़ाए।

कर कृपा आप निस्तारी। नट महला चौथा राम कर कृपा लेहो उभारी। जो पकर द्रौपदी दुष्टायानी हर हर लाज निवारी। रहाओ कर कृपा जाचक जन तेरे एक मांगो दान प्यारी। सतगुर की नित श्रद्धा लागी मोको हर गुर मेल सवारी। साकत कर्म पानी ज्यो मथी है नित पानी झोल चुलारे। मिल सत संगत परम पद पाया कड माखन के गटकारे। नित नित काया मजन किया नित मल मल दे सवारे। मेरे सतगुर के मन बचन ना पाए सब फोकट चार शिंगारे। मटक मटक चल सखी सहेली मेरे ठाकुर के गुण सारे। गुरमुख सेवा मेरे प्रभ भाई मैं सतगुर अलख लखारे। नारी पुरख पुरख सब नारी सब एको पुरख मरारे। संत जना की रेन मन पाई मिल हर जन हर निस्तारे। ग्राम ग्राम नगर सब फिरिया हृदय अंतर हर जन पारे। शरदा शरदा उपाय मलाई मोको हर गुर गुर निस्तारी। पवन सूत सब नीका करिया सतगुर शब्द विचारी। निज कर जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारी। तौ गुण ईस वर्ण नहीं साको।

मन तीरे नट महला चौथा मेरे मन भज ठाकुर अगम अपारे हम पापी बहु निर्गुण यारे कर कृपा गुर निस्तारे रहाउ साधु पुरख साध जन पाए एक बिनो करो गुर प्यारे राम नाम धन पूंजी देव हो सब तिसना भूख निवारे पचै पतंग मृग भृंग कुंचर मीन एक इंद्री पकर संघारे पंच भूत।

सतसंगत गुर निस्तारी, प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी, जिव सूरज कमल निहारी, मेर समेर मोर बहु नाचे, जब उनवे कन कन हारी, साकत को अमृत बहु सिंचो, सब डाल फूल बिस्कारी, ज्यो ज्यो निवह साकत नर सेती, छेड़ छेड़ कड्डे बिख खारी, संतन संत साध मिल रही है, गुण बोल है पर उपकारी, संत संत मिले मन बिगसे, ज्यो जल मिल कमल सवारी, लोभ लहर सब सुवान हलक है, हलकियो सबह बिगारी, मेरे ठाकुर कह दिबान खबर हुई, गुर ज्ञान खड़ग लै मारी, राख राख राख प्रभ मेरे, मैं राखो कृपा तारे, नानक मैं तारे अवर ना काई, मैं सतगुर

प्रसाद अनक जतन कर रहे हर अंत नाही पाया हर अघम अगम अगाद बोध अदेश हर प्रबराया रहाउ काम क्रोध लोभ मोह नित झगरते झगराया हम राख राख दीन तेरे हर शरण हर प्रभ आया शरणागति प्रभ पालते हर भगत वचल नाया प्रहलाद जन हर नाख पकरियो

ठाकुर हर गुरमति प्रब पाया हर पतत पावन नाम स्वामी पौ भगत भंजन गाया हर हार।

राम नाम सुख दाता, सत संगत मिल हर साध आया, गुरमुख ब्रह्म पछाता रहाउ, वड भागी गुर दर्शन पाया, गुर मिलिया हर प्रभ जाता, दुर्मत मैल गई सब नीकर, हर अमृत हर सरनाता, तन तन साध जिन्नी हर प्रभ पाया, किन पूछो हर की बाता, पाए लगो नित करो जुदरिया, हर मेलो कर्म बधाता, ललाट लिखे पाया गुर साधु, गुर बचनी मन तन राता, हर प्रभ आए मिले सुख पाया, सब किल विख पाप गवाता, राम रसायन जिन गुरमत पाया, इनकी उत्तम बाता, इनकी पंक पाई बड़भागी, जन नानक चरण पराता, माली गौड़ा महला चौथा, सब सिद्ध साधक मुन जना, मन भावनी हर त्यायो, अपरंपरु पार ब्रह्म स्वामी, हर अलख गुरु लखायो रहाओ, हम नीच मध्यम कर्म किए, नहीं चेतेओ हर रायो, हर आन मेलेओ सतगुरु, खिन बंध मुक्त करायो, प्रभ मस्त के तुर लिखिया, गुरमति हर लिवलायो, पंच शब्द दरगाह बाजिया, हर मिलेओ मंगल गायो, पतत पावन नाम नरहर, मंद भागियां नहीं पायो, ते गर्भ जोनी गालिय है, ज्यो लोन जलह गलायो, मत देहे हर प्रभ अगम ठाकुर, गुर चरण मन मैं लायो।

अवर कहना झूठियां नित करै जम सिर मार रहाउ जिन्ना मस्तक लिखिया ते मिले संगार संसार भौजल तारिया हर संत पुरख अपार नित चरण से वोह साध के ताज लोभ मोह बेकार सब तजहो दूजी आसड़ी रख आस एक निरंकार एक भरम भूले साकता बिन गुर अंध अंधार तुर होव ना सो होया को ना मेटन हार अगम रूप गोबिंद का अनक नाम अपार तन तन ते जन नानका जिन हर नामा उरतार माली गौड़ा महला पंजवा राम नाम को नमस्कार जास जपत होवत उधार रहाउ जा कै सिमरन मिट है तंद जा कै सिमरन छूट है बंद जा कै सिमरन मूर्ख चतर।